FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी बिलासपुर है। आज रविवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की 18वीं तिथि, तदनुसार 9 अगस्त सन 2026। इस समय प्रातः के 5:57 होने वाले हैं। हमारा आज का प्रसारण अब प्रारंभ होता है।

FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी बिलासपुर है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब समाचार आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है और इस महीने की 17 तारीख तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये अभियान 2022 में शुरू हुआ था और अब एक बड़े जनभागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की

0: 50वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस वर्ष सूर्य पथ तिरंगा डिजिटल रिले भी आयोजित होगी। इसमें 54 भारतीय राजनयिक मिशन और केंद्र हिस्सा लेंगे। ये रिले 15 अगस्त को फिजी से शुरू होकर सैन फ्रांसिस्को में समाप्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वो अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है।
1: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाया, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूँ चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है फर्स्ट इन माई ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
0: श्री मोदी ने कल अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेरी वेंस से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। श्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जेरी वेंस और सेकंड लेडी उषा वेंस को उनके पुत्र के जन्म पर बधाई देते हुए शुभकामनाएं भी व्यक्त की। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कल आबिदजान में कोटी डी आयवर के राष्ट्रपति अलासानी उटारा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और कोटी डी आयवर के बीच बढ़ती साझेदारी पर चर्चा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह पुदुचेरी के गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण स्कूल मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगे। दोपहर में श्री शाह मुरुगा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा रैली को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री शाह दो दिन के दौरे पर कल पुदुचेरी पहुंचे थे। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा कि यह आंकड़ा भारत की स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति दर्शाता है। झारखंड में JPSC और JSSC की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध के सिलसिले में आज राज्य सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच अगले दौर की वार्ता होगी। झारखंड सरकार ने परीक्षा प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल ID जारी किया है। इसके माध्यम से छात्र और सभी संबंधित पक्ष अपने सुझाव भेज सकते हैं। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 99 हो गई है, जबकि 1,47,000 से अधिक लोग अब भी प्रभावित हैं। सरकार ने बताया है कि 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। उधर जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा से जुड़े मार्गों की मरम्मत और प्रतिकूल मौसम को देखते हुए इस यात्रा को आज से बालतल और पहलगाम दोनों मार्गों से स्थगित कर दिया गया है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में आज भारत की अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यू हान से होगा। ये मुकाबला दक्षिण कोरिया के आसन में भारतीय समय अनुसार सुबह 7:30 बजे से खेला जाएगा। अश्मिता ने कल सेमीफाइनल में भारत की ही रक्षिता रामराज को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं क्यू हान ने दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया की जी किम को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: समाचार अभी हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे थे। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी बिलासपुर है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। आइए सबसे पहले करें देश वंदना समूह स्वर में।

देश वंदना अभी आपने सुनी समूह स्वर में, अब आइए सुनते हैं MS सुब्बलक्ष्मी की आवाज में कबीर भजन।

0: हरिहरन के गए इस भक्ति रचना के साथ ही आज की आराधना अब हम यहीं संपन्न करते हैं। FM बैंड 103.2 MHz पर यह आकाशवाणी बिलासपुर है। अब लीजिए खेती की बात में सुनिए, करेला मां रोग नियंत्रण, इस विषय पर जानकारी वाचन स्वर नंद कुमार यादव का।
1: किसान भाई हो बिहनिया के, राम राम, जय जोहार। संगवारी हो आज खेती की बात मां, लेके आए हवन करेला लगाए हन, उमा रोग राई आ जाते तो एकर नियंत्रण करके बढ़िया फसल ला ले सकत हन। आवाओ जाना थन के एमा कौन प्रकार के विधि ला चेत करीन तो बढ़िया रही। संगवारी हो पत्ता मा सादा धब्बा नाव के जौन बीमारी होते तेन हर आए लगते, जौन हर पाना डार के ऊपर सतह मा सादा रंग के धब्बा ला रख देते, ए बीमारी के सेतीर पाना डारा हे तेन हर सुखाए लगते। जेकर रोकथाम करे बर कार्बेंडा जीम 3 ग्राम ला प्रति लीटर पानी के दर ले छींचा थन तो सुघर रही। पत्ता के तरीकती धब्बा हर घलाव बने लगते। संगवारी हो एकरो ले करेला के फसल ला अब्बड़ नुकसान होत रही थे। जेकर रोकथाम करे बर मैंकोजेब 2 ग्राम ला प्रति लीटर पानी के दर ले 10 से 15 दिन के अंतराल में 2 पैत छिड़काव करथन तो फसल हर बढ़िया रही। हानिकारक जौन किरवा होते तेनो हर आए लगते, जेमा चेपा नाव के जौन किरवा होते तेनो हर पाना डारा के रसा ला चुहकत रही थे। जेकर से तिर का होते पाना डारा हर पिंवरा होए लगते और आखिर में गिर जाते। संगवारी हो एकर ले फसल ला नुकसान होए लगते। जेकर रोकथाम करे बर इमिडाइक्लोप्रिड 0.5 मिलीलीटर ला प्रति लीटर पानी के दर ले मिला के बढ़िया ले छिड़काव करथन तो सुघर रही। जूहा नाव के जौन किरवा होते तेनो हर आए लगते, थ्रिप्स के से तीर पाना डारा हर मुड़ जाते और पत्ता जौन है तेन हर कप के आकार के हो जाते, ऊपर कति मुड़े लगते। ए किरवा के रोकथाम करे बर डीकोफाल 18.5% SC ला 2.5 मिलीलीटर ला प्रति लीटर पानी में मिला के छिड़काव ला करना चाहिए। भुंडी के सुंडी हर घलाव करेला के फसल ला नुकसान करत रही थी। जेकर से तीर फूल है, पत्ता है और तना है, ओला नुकसान होए लगते। संगवारी हो एकर रोकथाम करे बर मैलाथियान 50 EC ला 1 मिलीलीटर ला प्रति लीटर पानी के दर ले बढ़िया ले मिला के छींचना चाहिए। बंद कचरा के घलाव रोकथाम करे बर लगते, जेकर ले हमर फसल हर बढ़िया रही और बीमारी हर कम होही। नींदा के रोकथाम करे बर हाथ ले 2-3 पैत बढ़िया ले निंदाई गुड़ाई करथन तो पौधा के शुरुआती बढ़वार के बेरा सुघर रही थे। खातू माटी ला डाले के बेरा माटी मा निंदाई गुड़ाई के काम बूता ला करे जाते और बारिश के बेरा मा हमन माटी चढ़ाथन तो सुघर रही। संगवारी हो सिंचाई के बात करीन तो एकर बार 8 से 9 पैत सिंचाई के आवश्यकता हर होते। करेला के फसल मा खातू के घलाव चेत रखे बर पड़ते। सरहा गलहा जौन गोबर के खातू है तेला 10 से 15 टन, नाइट्रोजन 13 किलोग्राम, फास्फोरस 20 किलोग्राम और पोटेशियम 20 किलोग्राम ला प्रति एकड़ के दर ले देना चाहिए। फास्फोरस और पोटेशियम के जम्मो मात्रा ला और नाइट्रोजन के 1/3 मात्रा ला बीजा के बुवाई के पहली देहे जाते। बाकी बचे वाला नाइट्रोजन के मात्रा ला बुवाई के 1 महीना के बाद देवथन तो सुघर रही। ज्यादा जानकारी लेहे बर कृषि वैज्ञानिक के सलाह लेके फसल मा दवाई पानी के उपयोग करथन तो उपज क्षमता हर और आमदनी हर ज्यादा मिलते। एकरे संग जय जोहार, राम राम।
0: खेती की बात में अभी आप सुन रहे थे करेला मा रोग नियंत्रण, इस विषय पर जानकारी वाचन स्वर नंद कुमार यादव का था। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी बिलासपुर है। सुबह के 6:35 हुए हैं। अब प्रस्तुत है रामचरित मानस गान, मुख्य गायन स्वर भूपेंद्र।

0: प्रयाग क्षेत्र को तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गंगा यमुना तथा सरस्वती के संगम पर स्थित इस पुण्य भूमि पर पहुंचकर सबके मनोरथ सफल हो जाते हैं। ऐसी पावन भूमि के दर्शन कर श्री रामचंद्र ने परम सुख का अनुभव किया। उन्होंने सीता, लक्ष्मण तथा सखा निषाद राज को तीर्थराज प्रयाग की महिमा कह सुनाई। सभी ने त्रिवेणी के दर्शन किए, वहां स्नान कर विधि पूर्वक शिव तथा तीर्थ देवताओं की पूजा की और फिर भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचे। श्री राम ने भरद्वाज मुनि को दंडवत प्रणाम किया तो मुनिराज ने उन्हें हृदय से लगा लिया। आनंदातिरेक में आशीर्वाद देते हुए उन्हें यह प्रतीति हुई कि देवी सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम के दर्शन कराकर विधाता ने उनके संपूर्ण पुण्यों का फल लाकर आंखों के सामने रख दिया है। प्रेम सहित पूजन करके भरद्वाज जी ने उन्हें कंद मूल फल खिलाए और स्नेह सनिवाणी में अपने उद्गार प्रकट किए। आपके दर्शन कर आज मेरी तपस्या, जप योग, तीर्थ सेवन और त्याग, वैराग्य सभी सफल हो गए। प्रभु दर्शन के अतिरिक्त लाभ और सुख की कोई अन्य सीमा नहीं है। जब तक मनुष्य मन, वचन और कर्म से छल कपट त्याग कर आपका दास नहीं हो जाता, तब तक कोटि उपाय करके भी उसे स्वप्न में भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती।
1: सेव ही सुकृति साधु सुच।

आज मेरी तपस्या, जप योग, तीर्थ सेवन और त्याग, वैराग्य सभी सफल हो गए। प्रभु दर्शन के अतिरिक्त लाभ और सुख की कोई अन्य सीमा नहीं है। जब तक मनुष्य मन, वचन और कर्म से छल कपट त्याग कर आपका दास नहीं हो जाता, तब तक कोटि उपाय करके भी उसे स्वप्न में भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती।

0: रामचरित मानस गान अभी आप सुन रहे थे। मुख्य गायन स्वर भूपेंद्र सिंह का और संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी बिलासपुर है। सुबह के 6:45 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए चिंतन। विषय है सच, बड़ा सच, संपूर्ण सच।
1: बच्चा सच के अधिक निकट होता है, वो जैसा देखता है वैसा ही बोल देता है। इसका अर्थ यह है कि सच बोलना मानव की स्वाभाविक वृत्ति हुई, झूठ बोलना उसकी बनावटी वृत्ति है। जब हम सड़क चलते किसी पूछते हैं कि भाई क्या वजह है, तो शायद ही कोई होता होगा जो अपनी घड़ी देखकर उत्तर में झूठ बोलता होगा। सिद्ध है कि सच बोलने का मतलब हुआ वस्तु परक होना, जबकि झूठ बोलने का मतलब होता है व्यक्ति परक होना, स्वयं परक होना। झूठ बोलने वाला व्यक्ति अपना मतलब निकालने के लिए दूसरों को धोखा देता है। झूठ बोलने वाले बच्चे की पिटाई इसलिए की जाती है कि वो पीटने वाले का विश्वास तोड़ देता है। सच बोलने को नैतिकता के साथ इसलिए जोड़ दिया गया है कि उससे परिवार और समाज के सदस्यों में परस्पर सामंजस्य की स्थिति बनी रहती है। झूठ बोलने से विश्वास हट जाता है। इस बात से संबंधित गडरिये और भेड़िये की शिक्षाप्रद कहानी सबने सुनी पड़ी होगी। यदि पति पत्नी एक दूसरे से झूठ बोलेंगे तो उनके मन में एक दूसरे के प्रति भिन्न भिन्न प्रकार की शंकाएं और संदेह जन्म लेंगे ही। यदि आप अपने बच्चों से झूठ बोलेंगे तो बदले में वे भी उसी तरह का व्यवहार करना सीखेंगे। व्यापारी लोग कई बार अपने ग्राहकों से झूठ बोलकर अपना काम निकाल लेते हैं, लेकिन किसी भी झूठ का लाभ अस्थाई ही होता है, क्योंकि धोखा खाने वाले लोग स्वयं तो सतर्क हो ही जाते हैं

0: वे अन्यों को भी वस्तु स्थिति से अवगत कराते रहते हैं, जिससे झूठ बोलने वाले की असलियत धीरे धीरे सबके सामने खुल जाती है और आगे चलकर उसकी बात में कोई वजन नहीं रह जाता। कहते हैं कि एक झूठ को छिपाने के लिए झूठा व्यक्ति 100 झूठों का सहारा लेता है और इस प्रकार वो जाल में स्वयं फंसता चला जाता है, जबकि सदा सच बोलने वाले को कभी भय नहीं रहता कि उसकी पोल खुल जाएगी। इसलिए सदा सच बोलने वाले व्यक्ति में गजब की नैतिक शक्ति होती है। ऐसे व्यक्ति को कोई बात केवल एक बार बोलने की आदत और ज़रूरत होती है, जबकि झूठा व्यक्ति न तो कसमें खाकर भी अपनी बात पर किसी को विश्वास दिला पाता है और न स्वयं किसी की बात पर जल्दी विश्वास कर पाता है। उसे सारा संसार झूठा लगता है। वो सत्य ही परमेश्वर है जैसी सूक्तियों को बहुत हल्के ढंग से लेता है और गीता पर हाथ रखकर ये कहने के बाद भी कि जो कुछ कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, झूठी गवाही दे देता है। झूठ की कमाई पर जिंदा रहने वाला आदमी कितनी कम कीमत पर बिक सकता है, इसका अंदाज़ा कोई भी लगा सकता है। अभी तक सच के सामान्य और सर्वत्र प्रचलित अर्थ की बात की गई, अब उसका बड़ा रूप देखें। हमें समझाया गया है कि यदि कोई व्यभिचारी किसी अबला का पीछा कर रहा है और अबला उसकी आंखों से ओझल हो गई है, जिसका ठौर ठिकाना आपको पता है, और यदि व्यभिचारी आपसे उसके बारे में पूछता है कि वो कहाँ है, तो आप व्यभिचारी से झूठ बोलकर उसे गलत रास्ता बता दीजिए। ऐसे झूठ को बड़े सच के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि उससे आप सत्य की रक्षा करते हैं। ऐसा झूठ बोलने और स्वार्थ साधन के लिए झूठ बोलने में बड़ा अंतर है। जब आदमी बड़े हित के लिए स्वार्थ छोड़कर दूसरों के भले के लिए या किसी महान कार्य या उद्देश्य के लिए झूठ बोलता है, तो उसे व्यक्तिगत झूठ लेकिन सामाजिक सच यानी बड़ा सच कहा जाता है। अब और भी बड़े अर्थात संपूर्ण सच की बात करें। संपूर्ण सच कोई भी आदमी देख या जान नहीं सकता। आदमी किसी भी वस्तु का केवल वही भाग देख सकता है जो उसकी आंखों की ओर होता है, पीछे की ओर का भाग उसे दिखाई नहीं पड़ता। जाहिर है कि संपूर्ण सच का ज्ञान आदमी की क्षमताओं से ऊपर की चीज़ है, लेकिन एक सच्चा आदमी अधूरे सच को जानकर भी अपना इरादा हमेशा सच्चा रख सकता है। वो उतने के लिए सदा ईमानदार रह सकता है जितना उसे दिखाई देता है, और उतने से ही उसकी जीत निश्चित रहती है। सत्यमेव जयते, इसका दार्शनिक ढंग का कारण यह है कि सच और परमेश्वर सर्वत्र विद्यमान कहे जाते हैं। सच के सहारे जब इतनी बड़ी चीज़ पाई जा सकती है, तो वो निश्चित रूप से स्थायी लाभ का सौदा है। वो सिर्फ बच्चों को सिखाकर खत्म कर दी जाने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि आदमी को आसमान की ऊंचाई तक ले जाने वाला जीवन व्यापी अभ्यास है। एक मामूली सी लेकिन चिंतन मनन करने योग्य बात है कि हमेशा के लिए सच के आदर्श राजा हरिश्चंद्र, युधिष्ठिर और गांधी जी जब पैदा हुए थे, तब वे भी सिर्फ सामान्य बच्चों के समान थे।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, विषय था सच, बड़ा सच, संपूर्ण सच। FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी बिलासपुर है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

आज शाम 6:05 पर जिले की चिट्ठी और शाम 6:30 पर कानून की बात, ये दोनों कार्यक्रम आकाशवाणी रायपुर से हम रिले करेंगे। कानून की बात में आज किशोर न्याय अधिनियम यानी बालकों की देखरेख एवं संरक्षण के संबंध में जिला सरगुजा अंबिकापुर की महिला एवं बाल विकास विभाग की सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती शालिनी सिन्हा जानकारी देंगी। आज सुबह 7:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम सेहत की बात डॉक्टर के साथ में आज परामर्श और बाल मनोचिकित्सक डॉक्टर यशिका कौर से पद्मामणि की बातचीत आप सुनेंगे। विषय होगा प्रसव के तुरंत बाद होने वाले अवसाद को समझें और सुरक्षित रहें।

0: आज रात 8 बजे नगर निगम आयुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री आशुतोष पांडे से डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की बातचीत आप सुनेंगे। विषय होगा कैच द रेन कैंपेन और कोरबा की बदलती तस्वीर। कार्यक्रम प्रस्तुति होगी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की। आओ बच्चों, कार्यक्रम में सुबह 10 बजे आप सुनेंगे आज की सामयिक चर्चा, जिसका विषय होगा काकोरी के क्रांतिवीर। और साथ ही सुनिएगा ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल मिशन हॉस्पिटल रोड बिलासपुर के बच्चों की प्रस्तुति। आज सुबह कार्यक्रम हम प्रस्तुत करेंगे सुबह 7:05 पर। सदाबहार नगमे सुनिएगा सुबह 7:40 पर। और नए तराने कार्यक्रम का समय होगा सुबह 10:30 और माटी के स्वर कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 8:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ शाम 5 बजे और विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम न्याय विभाग सुनिएगा सुबह 9 बजे। शाम 7:30 पर ग्राम सभा में बेरा के गुट का विषय होगा ग्रामीण विकास में ग्राम सभा का महत्व। और साथ ही सुनिएगा फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम आप मन के गीत। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। FM बैंड 103.2 MHz पर यह आकाशवाणी बिलासपुर है। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। अब समाचार आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना ह्यः IIT दिल्ली इति भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानस्य विद्यार्थिनः समाकारिताः यत्ते स्वनिर्णयेषु राष्ट्रहितं सर्वोपरि स्थापयन्तु। IIT दिल्ली इत्यस्य 75वें दीक्षांत समारोहं संबोधयन् श्रीमोदी अवदत् यत् प्रत्येकं संततिः तात्कालिकं विशिष्टं समाह्वानं सम्मुखीकरोति, स्वस्य राष्ट्रियदायित्वं च निर्वहति। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् देशे नूतनानां क्षेत्राणां विकासेन युवभ्यः नूतनाः अवसराः सृज्यन्ते। सेमीकंडक्टर अंतरिक्ष ड्रोन इत्यादीनां क्षेत्राणां उदाहरणानि उद्धृत्य सः अवदत् यत् भारतं सर्वेषु क्षेत्रेषु आत्मनिर्भरता प्राप्तये कार्यं कुर्वन्नस्ति। श्रीमोदी अवदत् यत् आत्मनिर्भरतायाः अयम् उपक्रमः विकसित भारतस्य निर्माणार्थं दृढाधारस्य कार्यं करिष्यति। अर्धचालक क्षेत्रम् अपि उदाहरणम् अस्ति। अत्रावसरे प्रधानमन्त्रिणा IIT दिल्ली इत्यत्र परमप्रज्ञा इति उच्चदक्षतायुक्तस्य सङ्गणसौविध्यस्य उद्घाटनमपि कृतम्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना ह्यः अमेरिकादेशस्य उपराष्ट्रपतिना J.D. वेन्स इत्यनेन सह दूरभाषमाध्यमेन वार्ता कृता। एकस्मिन् सामाजिकान्तर्जालीये लेखे श्रीमोदी अवदत् यत् तौ प्रमुखेषु क्षेत्रेषु भारत अमेरिका समग्र वैश्विक सामरिक सहभागिताम् इतोपि सुदृढं कर्तुम् उपायेषु चर्चितवन्तौ। उभौ उच्चस्तरीय कार्येषु निरन्तरगतिं दृष्टवन्तौ, अपि च व्यापारस्य रक्षायाः महत्वपूर्ण उदयोन्मुखप्रौद्योगिकीनाम् ऊर्जासुरक्षायाः महत्वपूर्ण खनिजानां च क्षेत्रेषु सहकारम् इतोपि सुदृढं कर्तुं प्रतिबद्धतां पुनरुद्घाटितवन्तौ। उभौ नेतारौ परस्पर हितस्य क्षेत्रीयस्य वैश्विकस्य च विकासविषये

0: अपि विचाराणाम् आदानप्रदानं कृतवन्तौ। हर घर तिरंगा इत्यभियानम् अद्यारभ्य अस्मिन् मासे सप्तदश दिनांक पर्यन्तं च प्रचलिष्यति। राष्ट्रध्वजारोहणार्थं नागरिकान् प्रोत्साहयितुं देशभक्तिं राष्ट्र ऐक्यं भारतस्य सांस्कृतिक परम्परां च आचरितुं कार्यक्रमेषु भागग्रहीतुं च अस्य उपक्रमस्य उद्देश्यः अस्ति। द्वाविंशत्यधिकद्विसहस्रतमे वर्षे आजादी का अमृत महोत्सवस्य अंशरूपेण आरब्धम् एतत् अभियानम् ततः परं देशस्य बृहत्तमेषु जनसहभागित्व आन्दोलनेषु अन्यतमम् अभवत्। वर्षानुवर्षेषु एतत् यथार्थ जनान्दोलनत्वेन परिवर्तितम्, यत् भारतस्य एकतायाः, सम्मानस्य, सामूहिक राष्ट्रिय अस्मितायाः च प्रतीकरूपेण त्रिवर्णध्वजम् आचरितुं प्रदेशेषु समुदायेषु च नागरिकान् प्रेरयति। अस्य वर्षस्य अभियानस्य विशिष्टं महत्त्वं वर्तते यत् एतत् भारतस्य राष्ट्रियगीतस्य वन्दे मातरम् इत्यस्य सार्धैकशततमस्य वार्षिकोत्सवस्य संयोगेन भवति, यत् राष्ट्रध्वजं राष्ट्रगीतं च देशभक्तिविशेषस्य उत्सवे सङ्गृह्यति। उत्सवस्यांशरूपेण सम्पूर्णे देशे वन्दे मातरम् इत्यस्य सामूहिकगायनस्य आयोजनं भविष्यति। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णनवर्यः अद्य श्रीविजयपुरम् नगरस्य फ्लैग पॉइंट इत्यत्र हरघर तिरंगा अभियाने भागं स्वीकृत्य राष्ट्रध्वजम् उत्तोलयिष्यति। उपराष्ट्रपतिः ह्यः अण्डमान निकोबार द्वीपानां द्विदिवसीय यात्रायै श्रीविजयपुरम् नगरे सम्प्राप्तवान्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर इति राष्ट्रपति आरक्षक वर्ण प्रदान समारोहे भागं ग्रहीष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है। यह अभियान 17 अगस्त तक चलेगा। इसका उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर राष्ट्रध्वज फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह अभियान 2022 में शुरू हुआ था और अब एक बड़े जन भागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ होने के कारण इसका विशेष महत्व है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अमरीका के उपराष्ट्रपति JD Vance से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमरीका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया गया। श्री मोदी ने उपराष्ट्रपति JD Vance और उनकी पत्नी उषा वेंस को उनके पुत्र के जन्म पर शुभकामनाएं दी। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कल आबिजान में कोट डी आइवर के राष्ट्रपति अलासाने ओटारा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और कोट डी आइवर के बीच बढ़ती साझेदारी पर चर्चा की। श्री सिंह ने अफ्रीका के साथ मजबूत और व्यापक संबंधों को आगे बढ़ाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि वे भारत और कोट डी आइवर के लंबे समय से चली आ रही मित्रता को और मजबूत करने तथा विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पुदुचेरी के गोरी मेडू के पुलिस प्रशिक्षण स्कूल मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगे। श्री शाह मुर्गा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा रैली को भी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री शाह दो दिन के दौरे पर कल पुदुचेरी पहुंचे थे। झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध के सिलसिले में आज राज्य सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच अगले दौर की वार्ता होगी। झारखंड सरकार ने परीक्षा

0: प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी जारी की है। इसके माध्यम से छात्र और सभी संबंधित पक्ष अपने सुझाव भेज सकते हैं। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 99 हो गई है, जबकि 1,47,000 से अधिक लोग अब भी प्रभावित हैं। सरकार ने बताया है कि 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रशासन की ओर से 53 राहत शिविर संचालित किए जा रहे हैं। इनमें 8,568 विस्थापित लोगों ने शरण ले रखी है। लगभग 10,600 हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न है। इसके अलावा 41 राहत वितरण केंद्र भी कार्यरत हैं। जम्मू कश्मीर में वर्षा और खराब मौसम के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से अमरनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई है। मौसम विभाग के अनुमान को देखते हुए यात्रा को अस्थायी रूप से रोका गया है। कल जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से किसी भी नए जत्थे को रवाना नहीं किया गया। इस बीच बालतल आधार शिविर में ठहरे हुए 1,202 तीर्थयात्रियों के 28वें जत्थे को 44 वाहनों के काफिले में जम्मू के लिए रवाना किया गया। कल श्री अमरनाथ जी गुफा में 3,336 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इस वर्ष अब तक अमरनाथ यात्रा में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 4,80,019 हो गई है। 57 दिन की अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को पहलगाम के पारंपरिक चंदनवाड़ी मार्ग और गांदरबल के बालतल मार्ग से एक साथ शुरू हुई थी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को पारंपरिक छड़ी मुबारक समारोह के साथ होगा। चीन के हिफेई में 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में भारत के साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। क्रोशिया के एम फेरेनका और एफ कटुसिच ने दूसरा स्थान और चीन के जे हान और जेड वांग ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में आज भारत की अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यू हान से होगा। मैच दक्षिण कोरिया के आसन में कुछ देर बाद 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समाचार अभी हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी बिलासपुर है। सुबह के 7:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आज सुबह।

मित्रों नमस्कार। अगस्त का ये महीना देश प्रेम से ओतप्रोत, हवाओं में वीर रस की कविताएं और गीत खुले हुए भारत माता की महिमा का बखान कर रहे हैं। जी हाँ मित्रों, हम सभी तैयारियां कर रहे हैं स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाने की। अगस्त का महीना रिमझिम फुहारों के साथ साथ आज़ादी का जश्न भी साथ लेकर आता है। रग रग में जोश भर जाता है। भारत माँ के वीर सपूतों का बलिदान हमें याद दिलाता है। सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और मन श्रद्धा से भर जाता है। उन सभी शहीदों के लिए आदर सम्मान हमारे दिल में है जिन्होंने हम सभी को स्वाधीन भारत की सौगात दी। हमारा जान से प्यारा भारत।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: ना कोई मजबूरी।
1: बजाज जनरल इंश्योरेंस साथ लाए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
0: तभी तो कहते हैं हम, तभी तो रहते हैं हम आपकी रक्षा में पूरी, आपकी रक्षा में पूरी।
1: कृषि और बीमा की जानकारी एवं पंजीकरण के लिए आज ही हमारा फार्म मित्र ऐप डाउनलोड कीजिए।
0: आपकी रक्षा में पूरी।
2: मित्रों, इतिहास के पन्नों पर दर्ज आज का दिन बहुत ही खास है, जुड़ा है भारत छोड़ो आंदोलन से। जी हाँ, 8 अगस्त 1942 को उस वक्त के बॉम्बे के गोवालिया टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव को औपचारिक रूप से पारित किया गया और शाम को महात्मा गांधी जी ने अपने ऐतिहासिक भाषण में देशवासियों को दिया एक महामंत्र, जो था करो या मरो। अगले दिन यानी 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की जमीनी शुरुआत हुई और गिरफ्तारियां भी हुई। ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को कुचलने के लिए 9 अगस्त यानी आज ही के दिन सुबह तड़के ऑपरेशन जीरो आवर चलाया था और महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू सहित कांग्रेस के सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। 9 अगस्त को यह आंदोलन पूरे देश की सड़कों पर उतर गया। अरुणा आसिफ अली ने गोवालिया टैंक मैदान में तिरंगा फहराकर आंदोलन को गति दी। देश की आम जनता ने अंग्रेजों के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया और स्वतंत्रता के लिए नए सिरे से तैयारियों के साथ बिगुल बज गया। हर तरफ करो या मरो नारे के साथ साथ भारत माता की जय के नारे भी गूंज उठे। वतन के लिए जान निछावर करने वाले हर देशवासी ने कमर कस ली।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
3: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
2: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
3: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
2: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
3: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
4: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
5: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
6: और अब

महिला सभा हेतु एक सूचना सुनिए। श्रोताओं, कार्यक्रम स्वास्थ्य वार्ता फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण हर महीने के दूसरे मंगलवार को होता है। इस माह इसका प्रसारण 11 अगस्त 2026 मंगलवार को शाम 5:35 से किया जाएगा। इसकी रिकॉर्डिंग 10 अगस्त दिन सोमवार को दोपहर 3 बजे से 3:30 के बीच की जाएगी। आप हमें फोन करके डॉक्टर से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे कार्यक्रम के विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर आकांक्षा गुप्ता। आपसे चर्चा का विषय होगा फेफड़े एवं श्वसन रोग और उपाय। आप हमें फोन कर सकते हैं इन नंबरों पर 07752 कोड लगाइएगा और फिर उसके बाद नंबर 2665922। आपके फोन कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा।

मित्रों, 9 अगस्त के साथ जुड़े हैं भारत की आज़ादी के लिए किए गए कई प्रयास। उनमें से एक और ख़ास घटना की बात हम करें। 9 अगस्त 1925 को हुई वो घटना जो हुई थी उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पास स्थित काकोरी नामक रेलवे स्टेशन पर, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक बेहद साहसिक और ऐतिहासिक घटना जिसे काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जानते हैं हम सभी। उस वक्त क्रांतिकारी संगठन को अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए हथियारों की खरीदारी करनी थी जिसके लिए धन की आवश्यकता थी। तब क्रांतिकारियों ने तय किया कि वे भारतीयों से चंदा मांगने के बजाय ब्रिटिश सरकार का सरकारी खजाना लूटेंगे। इस घटना को अंजाम देने में कुल 10 क्रांतिकारी शामिल थे जिनके सूत्रधार थे रामप्रसाद बिस्मिल और बाकी थे अशफाकुल्ला खां, चंद्रशेखर आज़ाद, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, सचिंद्र नाथ बख्शी, मनमत नाथ गुप्त, मुकुंदी लाल, बनवारी लाल और मुरली लाल। इस घटना से सरकार हिल गई और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई। प्रसिद्ध काकोरी मुकदमा चला। 1927 में 4 मुख्य नायकों को अलग अलग जेलों में फांसी दे दी गई। वो थे रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी। सचिंद्र नाथ सान्याल जो संगठन बनाने वाले यानी फाउंडर थे, इसलिए उन्हें मुख्य साजिशकर्ता के रूप में काला पानी भेज दिया गया। इस संगठन और घटना से जुड़े अन्य वीरों को जेल की लंबी सजा सुनाई गई क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने इस घटना के बाद देशव्यापी तलाशी अभियान चलाया था और 40 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया। क्रांतिकारियों ने आज़ादी की लौ जला दी थी और देश के इन वीर सपूतों ने अपना तन मन धन न्योछावर कर दिया था भारत माँ की चरणों में।

0: और अब चलते चलते आइए सुनते हैं आज के ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर।
1: नमस्कार, बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था पर आधारित दैनिक प्रस्तुति ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर के साथ मैं हूं उमा शंकर पांडे।

0: कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज विश्व आदिवासी दिवस है, शुभकामनाएं। इस अवसर पर जिले भर में तमाम प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस क्रम में आज कोटा, बिल्हा, हिर्री, बेलगहना, सकरी, सीपत, चकरभाटा, जूनापारा, तखतपुर थाना क्षेत्र में रैली, शोभा यात्रा आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी परिपेक्ष में शहर बिलासपुर में भी दो पृथक पृथक समूहों के द्वारा रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रातः 10 बजे जराभाटा आदिवासी छात्रावास से एक रैली चलकर मंदिर चौक, आंबेडकर चौक, लकीराम ऑडिटोरियम, सीन चौक, सदर बाजार, गोल बाजार होते हुए लाल बहादुर शास्त्री स्कूल प्रांगण पहुंचकर यहां स्थित देकी नंदन दीक्षित सभागार में सभा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। वहीं दूसरी रैली जिसमें महिलाएं भी शामिल होंगी, यह प्रातः 11 बजे आदिवासी छात्रावास जराभाटा से प्रारंभ होगी, जो मंदिर चौक, इंदू चौक, अग्रसेन चौक, पुराना बस स्टैंड, तेलीपारा, गोल बाजार, नेहरू चौक होते हुए पुनः जराभाटा आदिवासी छात्रावास पहुंचकर संपन्न होगी। शहर के साथ साथ जिले भर में इस संदर्भ में आयोजित रैली के सभी सदस्य एवं आयोजकों से विशेष अनुरोध है, रैली के समय पूरी सड़क में बिखर कर न चलें, कतार में चलें, और यह भी ध्यान रखें कि आपकी रैली के कारण आम यातायात तनिक भी बाधित ना हो, लोग परेशान ना हो, क्योंकि सभी को जल्दी है, सभी के पास अपना महत्वपूर्ण काम है। तथा यह भी ध्यान दें, रैली के दौरान एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड जैसे वाहनों के आने पर तत्काल साइड दे दें। मित्रों, ये भगवान शंकर जी का विशेष पूजन भक्ति का माह सावन चल रहा है। इसी श्रद्धा भक्ति के संदर्भ में जगह जगह कांवड़ यात्रा का भी आयोजन हो रहा है। आज शहर में भी एक विशेष कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया है। इस क्रम में आज छठ घाट तोरवा से प्रातः 9 बजे एक विशाल कांवड़ यात्रा प्रारंभ होगी, जो गुरु नानक चौक, जगमल चौक, गांधी चौक, सदर बाजार, गोल बाजार, सिंह चौक, देकी नंदन चौक, राम सेतु, सीपा चौक, नूतन चौक होते हुए जोरापारा मोड़ स्थित नंदेश्वर मंदिर में भगवान शिव जी पर जल अभिषेक पश्चात कांवड़ यात्रा संपन्न होगी। आप सभी कांवड़ यात्रियों से विशेष अनुरोध है, यात्रा के दौरान तथा जल अभिषेक के दौरान सुगम यातायात का ध्यान रखें। यदि आदिवासी समाज की रैली से कहीं भेंट होती है तो आपसी सामंजस्य बनाकर चलें। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें, आपकी यात्रा शुभ हो।
1: ये थे ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर। सर्वे जना सुजना भवंतु, सर्वे सुजना सुखिनो भवंतु, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज सुबह कार्यक्रम से हमें दीजिए विदा। नमस्कार। आज सुबह ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे, FM बैंड 103.2 MHz पर, ये आकाशवाणी बिलासपुर है। अब आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम सेहत की बात डॉक्टर के साथ। आज इसमें सुनिएगा परामर्श और बाल मनोचिकित्सक डॉक्टर यशिका कौर से पद्ममणि की बातचीत। विषय है प्रसव के तुरंत बाद होने वाले अवसाद को समझें और सुरक्षित रहें। कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की, और इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं GI फाउंडेशन और लीवर एंड गैस्ट्रो सेंटर, लिंक रोड, बिलासपुर।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गुरदीप इंदरजीत हेल्थ फाउंडेशन, लीवर एंड गैस्ट्रो सेंटर, लिंक रोड, बिलासपुर। अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ स्वास्थ्य जागरूकता, निशुल्क स्वास्थ्य परामर्श, समय पर जांच के साथ रोगों की शीघ्र पहचान और चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए हम प्रयासरत हैं। गुरदीप इंदरजीत हेल्थ फाउंडेशन, लीवर एंड गैस्ट्रो सेंटर, लिंक रोड, बिलासपुर।
1: श्रोताओं नमस्कार, सेहत की बात डॉक्टर के साथ की एक

0: एक और कड़ी लेकर पुनः हाजिर हैं हम आपके पास। और आज हमारे साथ हैं काउंसलिंग एंड चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर यशिका कौर, जो हमें बताएंगी प्रसव के बाद माताओं में होने वाले डिप्रेशन के बारे में, अवसाद के बारे में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
1: नमस्कार श्रोताओं, मुझे भी बहुत आनंद महसूस हो रहा है आज आप सबके साथ बातचीत करके।
0: जी, सभी श्रोता भी बहुत खुश हैं क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील विषय है। बताइएगा, आखिर ये होता क्या है, ये अवसाद प्रसव के बाद जो होता है माताओं में, ये है क्या?
1: तो अवसाद सिर्फ प्रसव के बाद नहीं, आपकी डेली लाइफ में भी काफ़ी सारे लोगों को अवसाद महसूस होता है, जिसे हम डिप्रेशन भी कहते हैं। तो डिप्रेशन है बेसिकली कि आपको जो भी चीज़ें करने का शौक था, आपको सडनली वो सारी चीज़ें करने का मन नहीं करता। आपको जो चीज़ें खाने में पसंद थी, आपको वो खाने का मन नहीं करता। आप बिना कारण के, बिना बात के दुखी रहते हैं या आपको रोना आता रहता है। तो ये सारे कुछ लक्षण हैं जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि आपको अवसाद है।
0: जी, ये जो माताओं में जो होता है, तो क्या डिलीवरी के बाद हर एक को होता है ये?
1: 5 में से 1 महिला इस चीज़ से ज़रूर गुजरती है, और ये सिर्फ वो स्टैटिस्टिक्स है जो रिपोर्टेड है। रिपोर्टेड मतलब कि जिनके बारे में पढ़ा गया है। इसके अलावा काफ़ी सारी माताएं ये चीज़ें तो बोल ही नहीं पाती, क्योंकि हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जिसके बारे में हम बात ही नहीं करना चाहते लोग।
0: जी बिल्कुल, तो ये आखिर होता क्यों है? प्रसव के बाद ऐसे माताओं में ये लक्षण क्या दिखाई देते हैं, या क्या ऐसा होता है कि फैमिली वाले समझें कि ये इनको पोस्टपार्टम डिप्रेशन की शुरुआत हो रही है?
1: तो इसके बहुत छोटे छोटे सिम्टम्स होते हैं, और ये जो आपका परिवार है वो इजीली देख सकता है। जैसे एक सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन रहती है कि जैसे ही डिलीवरी हुई है उसके बाद माँ का अटैचमेंट हो बच्चे से, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता। काफ़ी सारी माताओं का एकदम से अटैचमेंट नहीं होता, पर अगर ये चीज़ 2 हफ्ते या उससे ज़्यादा खिंच रही है और आप देख पा रहे हैं कि माता ना अपना ध्यान रख पा रही है ना बच्चे का ध्यान रख पा रही है, तो ये एक बहुत बड़ा सिम्टम है। एक माँ का बिना वजह रोना, ये एक सिम्टम है। उनका खाने पीने पर अपने ध्यान ना देना या अपना ही ध्यान ना रख पाना, ये एक सिम्टम है।
0: तो ऐसे समय में फैमिली को ध्यान रखना होगा कि कहीं ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं तो कुछ ऐसे भ्रांतियों में ना पहुंच जाएं, जैसे कि खुद के इलाज करने लगें। या फिर ऐसे कॉमन मिथ्स क्या हैं डॉक्टर साहब, जो कि हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में हैं, जो ऐसी भ्रांतियां हैं?
1: सबसे बड़ा मिथ तो ये है कि डिलीवरी के एकदम बाद माँ को बच्चे पे प्यार आ जाता है। नहीं आता, क्योंकि आपका बच्चा जब बाहर आता है ना, जब तक वो अंदर है तब तक आप 9 महीने में उसके साथ आपका अटैचमेंट रहता है, पर जैसे ही वो बाहर आए तो वो आपके लिए एकदम बिल्कुल नया इंसान है।
0: जी।
1: तो आपको एकदम से प्यार नहीं आता, उसमें टाइम लगता है। फिर उसके बाद आपका शरीर भी शुरू के, चाहे आप नॉर्मल डिलीवरी कराओ चाहे आप सिजेरियन कराओ, शुरू के कुछ हफ्ते आपका शरीर भी आपका साथ नहीं देता। ना आप सो पाते हो, ना आप उठ पाते हो, और चलने के लिए तो डॉक्टर्स बिल्कुल मना ही कर देते हैं। तो आपका अपने शरीर के साथ भी अटैचमेंट धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। फिर उसके बाद बच्चे को देखने के लिए जब फैमिलीज साथ में आती हैं, तो कभी कभी वो आपको ऐसी बातें बोल जाती हैं कि ये अपने बच्चे को प्यार नहीं करती, ये दूध नहीं पिला पा रही है, है ये चीज़ें कि ये देखो इसने तो इतना ज़्यादा वजन आ गया है, इसमें बच्चा पतला सा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक नई माता को नहीं बोली जानी चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी एक ऐसी चीज़ से गुजर रही है जो उसके लिए लाइफ ऑल्टरिंग है, जिस चीज़ ने शायद उसकी ऑलरेडी लाइफ बदल दी है। तो इन चीज़ों का हमें एज अ सोसाइटी, एज अ फैमिली ध्यान रखना चाहिए।
0: बिल्कुल, डिलीवरी के बाद तो कहा जाता है माता का एक नया जन्म होता है, तो पूरा परिवार और ख़ास करके पति इसमें किस तरह से मदद कर सकते हैं एक नई मदर का?
1: तो एक नई माता को सपोर्ट करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो हस्बैंड कर सकता है वो ये है कि कभी कभी बीच बीच में वो भी आके बच्चे को संभाले।
0: जी,
1: कि आजकल जो हमारी वाली जनरेशन है, जो जेन जी आई है या जेन बीटा है, जेन अल्फा है, उन पतियों में ये समझदारी है कि हाँ इसको भी नींद की ज़रूरत है। उनको भी आजकल डाइपर्स बदलने या छोटे छोटे की, आजकल माताएं वैसे भी कोशिश उनकी यही रहती है कि वो ब्रेस्ट फीडिंग हमारे इसमें काफ़ी कम हो चुकी है, और सिर्फ कारण यही है कि ताकि माता की नींद भी पूरी हो पाए, क्योंकि उनको भी ज़रूरत है। और एक खुश माता ही एक खुश बच्चा ला सकती है दुनिया में,
0: उसे संभाल सकती है, बाद में पूरा एक स्वस्थ माहौल दे सकती है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। डॉक्टर साहब, अभी ब्रेस्ट फीडिंग वीक चल रहा है, नई माताओं को ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में आप क्या सलाह देना चाहेंगी?
1: तो मेरी सिर्फ एक यही सलाह रहेगी कि जब

0: भी आपको अपने बच्चे के साथ अटैचमेंट ना फील हो रहा हो, तो हमारे उसमें इसे बोलते हैं स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट,
1: जी
0: कि आप कोशिश कीजिए अपने बच्चे को अपने से थोड़ा सा चिपका के रखिए, उसे दूध पिलाने की कोशिश कीजिए, और बच्चे को भी टाइम लगता है क्योंकि वो भी अभी अभी बाहर आया है, तो उसको भी बहुत टाइम लगेगा आपके साथ अटैच होने में और आपसे दूध लेने में। तो आप कोशिश करते रहिए 2 हफ्ते तक 3 हफ्ते तक, ये एक नॉर्मल टाइम है कि बच्चे को इतना वक्त लगता है। तो इसके अलावा ऐसे भी बहुत केसेस होते हैं जहाँ पे बच्चा नहीं पी पा रहा है दूध मदर की ब्रेस्ट में से, तो आजकल बहुत नई नई चीज़ें आ चुकी हैं जैसे कि ब्रेस्ट पंप। ब्रेस्ट पंप को यूज़ करके अपना दूध निकाल के बॉटल में डाल के आप अपने हाथ से अपने बच्चे को पिला सकते हैं, उससे भी बच्चे को उतना ही अटैचमेंट होगा, क्योंकि जब बच्चा आपके अंदर होता है तो उसको सिर्फ आपके दिल की धड़कन सुनाई दे रही होती है, वो बाहर निकल के सिर्फ अपनी माँ की तरफ ही देख पाता है, उसके लिए बाकी के रिश्ते आँख खोलने के बाद हैं,
1: जी
0: उससे पहले वो सिर्फ अपनी माँ को जानता है।

0: ही बच्चे को उतना ही अटैचमेंट होगा, क्योंकि जब बच्चा आपके अंदर होता है तो उसको सिर्फ आपके दिल की धड़कन सुनाई दे रही होती है, वो बाहर निकल के सिर्फ अपनी माँ की तरफ ही देख पाता है। उसके लिए बाकी के रिश्ते आँख खोलने के बाद हैं,
1: जी।
0: उससे पहले वो सिर्फ अपनी माँ को जानता है।
1: और ऐसा कभी है कि अवसाद या जो ये डिप्रेशन है बहुत बढ़ जाए, और कब ऐसा है कि उसको प्रोफेशनल हेल्प लेनी ही है, अब जाना ही है डॉक्टर के पास, अब ये घरेलू इलाज नहीं चलने वाले?
0: जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो आप नोटिस कर रहे हो कि वो रो रही है, बहुत ज़्यादा उदास है, खा पी नहीं रही है, या बच्चे का ध्यान या अपना ध्यान नहीं रख पा रहे, अगर ये 2 हफ्ते से ज़्यादा चले तो आपको ज़रूर एक साइकियाट्रिस्ट, नहीं तो पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए।
1: यानी इसका ट्रीटमेंट भी उपलब्ध है डॉक्टर साहब, इसके लिए दवाइयाँ और इलाज संभव है?
0: बिल्कुल संभव है, और दवाइयाँ लास्ट ट्रीटमेंट होता है इसका। सबसे पहले आप थेरेपी के लिए जाइए, जिसमें जो थेरेपिस्ट है वो आपको समझाएगा कि आपके शरीर में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, आपके रिलेशनशिप में क्या क्या चेंजेस हैं, और आप अपने बच्चे के साथ और अटैचमेंट कैसे फॉर्म कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि इसका इलाज संभव है, तो कुछ क्लिनिकल चेकअप्स भी होते होंगे इसके लिए?
0: क्या होता है ना कि जब भी माँ की जैसे डिलीवरी हुई है, काफ़ी सारे केसेस में बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस भी हो जाता है,
1: जी।
0: जिसकी वजह से जो नई माताएं हैं वो एनीमिक हो जाती है, यानी कि खून की कमी हो जाती है उसमें। तो उसके लिए कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट होता है। पहले कोई भी साइकियाट्रिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट आपको यही बोलेगा कि पहले आप अपना ब्लड टेस्ट करवा के आइए, जिसमें इंक्लूडेड होता है आपका CBC, फिर उसके बेसिस पे आपको आगे अगर ज़रूरत होगी तो आपको दवाइयाँ भी रिकमेंड की जाएगी।
1: और जैसे यदि दवाइयाँ लेती हैं माता डिलीवरी के बाद, तो क्या बच्चे पे असर पड़ेगा? क्योंकि यदि फीडिंग कर रही हैं वो बच्चे को, इसका कुछ गलत प्रभाव पड़ सकता है?
0: पहले ऐसा होता था कि उनका प्रभाव पड़ता था, पर अब विज्ञान ने इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है और पोस्टपार्टम डिप्रेशन इतना ज़्यादा कॉमन हो चुका है कि अब ऐसी दवाइयाँ हैं जिससे ना बच्चे पे इफ़ेक्ट पड़ेगा ना माँ को ज़्यादा नींद आएगी।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है। एक और बात पूछना चाहेंगे हम आपसे कि माताओं को खाना क्या दिया जाए, इस बारे में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बातें, लेकिन पुराने समय की बात अलग है और अब चूंकि दवाइयाँ और टेक्निक और शरीर में भी कई बदलाव देखे जाते हैं, तो इस लिहाज से आप क्या बताना चाहेंगी कि माता को क्या दिया जाए खाने में?
0: तो माता को मेनली आपको प्रोटीन रिच डाइट देनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका शरीर भी रिकवरी वाले फेज़ में है। इतना ज़्यादा डिलीवरी के टाइम पर प्रेशर आता है बॉडी के ऊपर, उससे रिकवर करने में भी 2 से 3 महीना माता को लग ही जाता है। तो उसके लिए अगर आप अंडा खाते हैं तो अंडे खाइए, दिन में 2 बार आप एग्स खाइए, उसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी हरी सब्जियां खाइए। उसके साथ साथ जो आयुर्वेदा में लिखा हुआ है कि घर पे जो पंजीरी बनती है, आयुर्वेदिक स्पाइसेस, गूंद गूंद के लड्डू, पंजीरी, ये सब भी खाई जा सकती है।
1: और अंत में अब चलते चलते संदेश क्या देंगी आप हमारे श्रोताओं को, खासकर उन नई माताओं को जो अपने नौनिहाल को गोद में लिए हुए हैं?
0: जैसे आप अपने बच्चे से प्यार करती हैं, जैसे आप अपने बच्चे का ध्यान रखती हैं, वैसे ही उसी तरीके के प्यार की और देखभाल की आपको भी ज़रूरत है। और आप मदद मांगने में मत घबराइए, डरने की ज़रूरत नहीं है। आप हेल्प लीजिए, अपने हस्बैंड की हेल्प लीजिए, अपने इन-लॉज की हेल्प लीजिए, अपने घर वालों से हेल्प लीजिए। और आप अगर अफोर्ड कर पा रहे हैं उस चीज़ को, तो हमारे देश में काफ़ी सालों से एक कॉन्सेप्ट है जापा मेड का, तो आप उनको भी हायर कर सकते हैं और वो आपको बच्चे को दूध कैसे पिलाना है, आपको कितनी सारी नई नई चीज़ें वो सिखा सकती हैं। और आपकी प्रेगनेंसी के बाद वाला जो फेज़ है, पोस्टमार्टम वाला फेज़ है, वो बहुत ईजी हो सकता है अगर आप सिर्फ हेल्प मांगना सीख जाएं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। आज हमारे बीच थी काउंसलिंग एंड चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर यशिका कौर, आपका बहुत बहुत पुनः धन्यवाद करते हैं।
0: शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
2: उत्तम स्वास्थ्य और समाज समृद्ध राष्ट्र की आधारशिला है। स्वस्थ जीवन शैली की ओर प्रेरित करना, रोगों की रोकथाम और नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य के लिए जागरूक करना हमारा उद्देश्य है। गुरदीप इंदरजीत हेल्थ फाउंडेशन, लीवर एंड गैस्ट्रो सेंटर, लिंक रोड, बिलासपुर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे गुरदीप इंदरजीत हेल्थ फाउंडेशन, लीवर एंड गैस्ट्रो सेंटर, लिंक रोड, बिलासपुर।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम सेहत की बात डॉक्टर के साथ। आज इसमें आप सुन रहे थे परामर्श और बाल मनोचिकित्सक डॉक्टर यशिका कौर से पद्मा मणि की बात।

बातचीत विषय था प्रसव के तुरंत बाद होने वाले अवसाद को समझें और सुरक्षित रहें। कार्यक्रम प्रस्तुति थी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की और इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे GI फाउंडेशन और लीवर एंड गैस्ट्रो सेंटर लिंक रोड बिलासपुर। FM बैंड 103.2 MHz पर यह आकाशवाणी बिलासपुर है और अब आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे। आज सदाबहार नगमों के इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं सावन कुमार की फिल्मों से लिए गए कुछ गाने, जो थे निर्देशक, निर्माता और गीतकार भी। इनका फिल्म सौतन आपको याद होगा, जो काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। इनका निर्देश इनके द्वारा निर्देशित फिल्म है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की सौतन फिल्म के इस गीत के साथ।

0: मजबूरी।
1: बजाज जनरल इंश्योरेंस साथ लाए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
0: तभी तो कहते हैं हम, तभी तो रहते हैं हम आपकी रक्षा में पूरी, आपकी रक्षा में पूरी।
1: कृषि और बीमा की जानकारी एवं पंजीकरण के लिए आज ही हमारा फार्म मित्र ऐप डाउनलोड कीजिए।
2: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
3: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से, वाह।
4: अनजान ऐप से बचें।
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: बजाज जनरल इंश्योरेंस साथ लाए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
1: तभी तो कहते हैं हम, तभी तो रहते हैं हम, आपकी रक्षा में पूरी, आपकी रक्षा में पूरी।
0: कृषि और बीमा की जानकारी एवं पंजीकरण के लिए आज ही हमारा फार्म मित्र ऐप डाउनलोड कीजिए।
2: हम आपको याद दिला दें

आज रात 8 बजे नगर निगम आयुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री आशुतोष पांडे से डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की बातचीत आप सुनेंगे। विषय होगा कैच द रेन कैंपेन और कोरबा की बदलती तस्वीर। कार्यक्रम प्रस्तुति होगी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की। और अब महिला सभा हेतु सूचना सुनिए। श्रोताओं, कार्यक्रम स्वास्थ्य वार्ता फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण हर महीने के दूसरे मंगलवार को होता है। इस माह इसका प्रसारण 11 अगस्त 2026 मंगलवार को शाम 5:35 से किया जाएगा। इसकी रिकॉर्डिंग 10 अगस्त दिन सोमवार को दोपहर 3 बजे से 3:30 के बीच की जाएगी। आप हमें फोन करके डॉक्टर से प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे कार्यक्रम की विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर आकांक्षा गुप्ता। आपसे चर्चा का विषय होगा फेफड़े एवं श्वसन रोग और उपाय। आप हमें फोन कर सकते हैं इस नंबर पर 07752266592। आपके फोन कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा। और अब सदाबहार नगमे कार्यक्रम में आइए सुनते हैं सावन कुमार जी के निर्देशित फिल्म साजन बिन सुहागन। इस फिल्म का गीत पहुंच रहा है आप तक यशुदास की आवाज में। इंदिवर के बोल हैं उषा खन्ना का संगीत।

0: येसुदास के गाए इस गीत के साथ ही सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब हम यहीं समाप्त करते हैं। FM बैंड 103.2 MHz पर आकाशवाणी बिलासपुर है ये, और अब सुबह के 8 बजे हैं। अब समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
1: देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और प्रगाढ़ करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ हर घर तिरंगा अभियान आज से देश भर में शुरू। मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 30 न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी। वर्षा के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। मौसम विभाग का उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। और साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी ने 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप के अंडर 31 स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अमरीका के उपराष्ट्रपति जीडी वेंस से टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमरीका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। श्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी उषा वेंस को उनके पुत्र के जन्म पर शुभकामनाएं दी। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है। यह अभियान 17 तारीख तक चलेगा। इसका उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।
6: घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा।
7: हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी और अब ये एक बड़े जन भागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष हर घर तिरंगा अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा।

14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्यिक दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस वर्ष सूर्यपथ तिरंगा डिजिटल रिले भी आयोजित होगी। इसमें 54 भारतीय राजनयिक मिशन और केंद्र हिस्सा लेंगे। ये रिले 15 अगस्त को फिजी से शुरू होकर सैन फ्रांसिस्को में समाप्त होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।

0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर पुदुचेरी में हैं। श्री शाह गोरीमेडू के पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज पुडुचेरी पुलिस को औपचारिक झंडा सौंपेंगे। भारत के राष्ट्रपति ने 8 मई को पुडुचेरी पुलिस की असाधारण सेवा, अनुशासन और शानदार उपलब्धियों के सम्मान में उन्हें पुलिस कलर देने की घोषणा की थी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित औपचारिक परेड में केंद्र शासित प्रदेश पुलिस की विभिन्न शाखाओं के जवान भी भाग ले रहे हैं। इस समारोह में पुडुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन, मुख्यमंत्री एन रंगासामी और गृह मंत्री ए नमासीवयम भी मौजूद रहेंगे। दोपहर बाद अमित शाह पुडुचेरी में मुरुगा थिएटर सिग्नल पर हर घर तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। गृह मंत्री के दौरे को देखते हुए पूरे पुडुचेरी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। विभिन्न एसनाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
0: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य और देश के विकास में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 15 अगस्त से राष्ट्र निर्माण में भागीदार कार्यक्रम शुरू करने का आह्वान किया है। श्री नायडू ने कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर राष्ट्र ध्वज फहराने और मेरा राष्ट्र राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। सबसे अधिक 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति मद्रास उच्च न्यायालय में की गई है। वहीं कलकत्ता उच्च न्यायालय में 8, कर्नाटक उच्च न्यायालय में 6 और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में 1 न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। विधि और न्याय मंत्रालय के अनुसार इन 30 न्यायाधीशों में 20 वकील और 10 न्यायिक अधिकारी शामिल हैं। इन नियुक्तियों को राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय की कलीजियम की सलाह के बाद मंजूरी दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध अब समाधान की दिशा में बढ़ता दिख रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों के बीच आज दोपहर करीब 12 बजे अगले दौर की वार्ता होने की संभावना है।
2: सरकार के वार्ता दल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर छात्रों के साथ हुई पहली दौर की बातचीत में हुई प्रगति से उन्हें अवगत कराया है। सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के विभिन्न गुटों के बीच पहले दौर की उच्च स्तरीय वार्ता कल रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सकारात्मक माहौल में हुई थी। सरकार के प्रतिनिधियों ने परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के प्रति प्रतिबद्धता जताई। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी भी जारी की है, जिसके माध्यम से छात्र और हितधारक अपने सुझाव दे सकते हैं। इधर छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि छात्र पिछले 15 दिनों से अनिश्चितकाल धरने पर हैं और पहली वार्ता में उन्होंने अपनी मांगे विस्तार से सरकार के सामने रखी हैं। इस बीच कल शाम रांची में छात्रों ने JPSC JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के लिए जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर फ्लैशलाइट मार्च भी निकाला। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: जम्मू कश्मीर में वर्षा और खराब मौसम के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा स्थगित कर दी गई है। मौसम विभाग के अनुमान को देखते हुए यात्रा अस्थायी रूप से रोकी गई है। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से कल किसी भी नए जत्थे को रवाना नहीं किया गया। इस बीच बालतल आधार शिविर में ठहरे हुए 1202 तीर्थयात्रियों के 28वें जत्थे को 44 वाहनों में जम्मू के लिए रवाना किया गया। श्री अमरनाथ गुफा में कल 3,336 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इस वर्ष अब तक अमरनाथ यात्रा में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 4,80,019 हो गई है। 57 दिन की अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को पहलगाम के पारंपरिक

0: चंदनवाड़ी मार्ग और गांधरबल के बालतल मार्ग से एक साथ शुरू हुई थी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को पारंपरिक छड़ी मुबारक समारोह के साथ होगा। इस बीच मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज वर्षा की आशंका है। विभाग ने जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज चमक और आंधी तूफान की संभावना जताई है। इधर दिल्ली और आसपास के इलाकों में दिन के दौरान हल्की वर्षा और बादल छाए रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में अगले 48 घंटों में बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के पर्वतीय जिलों में तेज वर्षा की संभावना है। देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत में कल भी भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टेहरी, पौड़ी, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर में कहीं कहीं भारी वर्षा का येलो अलर्ट है। मौसम की स्थिति को देखते हुए सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने सभी संबंधित जिलों को 24 घंटे सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। श्री सुमन ने प्रदेशवासियों और पर्यटकों से मौसम विभाग की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतने की अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: उड़ीसा में भी कई क्षेत्रों में तेज वर्षा जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बाढ़ के कारण बड़े स्तर पर फसलों को नुकसान होने की आशंका है।
2: उड़ीसा में एक बार फिर बड़े पैमाने पर बारिश हो रही है। आईएमडी ने कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। सुंदरगढ़, संबलपुर, झारसुगड़ा और बरगढ़ जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है, जबकि राज्य के बाकी हिस्सों के लिए येलो वार्निंग है। भद्रक में बैतरणी और सालंदी नदियों का जल स्तर बढ़ने से यहां निचले और जोखिम वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को फिर से बाढ़ आने का डर सता रहा है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और जोखिम वाले इलाकों में पूरी तैयारी बनाए हुए हैं।
0: चीन के हेफेई में 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में भारत के साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। क्रोएशिया की एम फेरेनका और एफ कटुसिच ने दूसरा स्थान और चीन के जे हान और जेड वांग ने तीसरा स्थान हासिल किया। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में भारत की अश्मिता चालिहा और चीन की क्यू हान के बीच मुकाबला जारी है। मैच का पहला गेम क्यू हान ने 21-14 से अपने नाम कर लिया है। अमरीकी सरकार विदेशी कर्मचारियों को नई नौकरी खोजने के लिए 60 दिन का अतिरिक्त समय देने वाले नियम को समाप्त करने पर विचार कर रही है। ये प्रस्ताव व्हाइट हाउस की प्रबंधन और बजट कार्यालय के पास है। ये नियम लागू होने पर कई H-1B वीजा धारक कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को अमरीका छोड़ना पड़ सकता है। इस बदलाव का असर भारतीयों पर भी पड़ सकता है। H-1B वीजा धारकों में भारतीय नागरिकों की बड़ी हिस्सेदारी है। अमेरिका में भारतीय मूल के 52 लाख से अधिक लोग रहते हैं। ये समाचार हमारे news on AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुकेश। IIT दिल्ली के दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी बोले, युवा सिर्फ सवाल ना पूछे समाधान भी खोजे, भारत को नए शोध की जरूरत। जनसत्ता की सुर्खी है, बिना सोचे समझे स्वीकार की जाने वाली बातों पर सवाल उठाएं विद्यार्थी। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा, याद रखिएगा जो सीखेगा वो जीतेगा। जेंजी को पीएम ने दिया संदेश, कहा पैकेज और नौकरी की तुलना करने से बचे। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, जेंजी के रंग में मोदी, सतपुड़ा के पराठे, हॉस्टल निकनेम के साथ भविष्य की सीख, आरा कारा विंधी जिया सराय का पोहा। पंजाब केसरी ने अकाली भाजपा का गठजोड़ शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, राज्य स्तर पर जब भी पंजाब में अकाली दल के नेतृत्व में प्रकाश सिंह बादल या उनके पुत्र सुखबीर बादल की सरकार बनी उसमें भाजपा के प्रतिनिधि शामिल हुए, लेकिन अकाली जनसंघ गठजोड़ की इस विरासत में इस दौरान राज्य की बदलती परिस्थितियों के अनुरूप मूलभूत बदलाव भी आते रहे हैं। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, हाइब्रिड और ईवी कारें सस्ती होंगी, ज्यादा प्रदूषण वाली होंगी महंगी, ऑटो इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव, नई पॉलिसी अप्रैल 2027 से लागू होंगी। अमर उजाला की सुर्खी है, अंतरिक्ष के कचरे से होगा कारोबार, मलबा हटेगा, उपग्रहों की मरम्मत भी, एस्ट्रोस्केल, क्लियर स्पेस जैसी कंपनियों ने शुरू किया काम। जनसत्ता ने आस्था शीर्षक से विशेष खबर में लिखा है, कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा, परंपरागत के साथ

0: आधुनिक व्यंजन भी। मुख्यमंत्री योगी ने कहा 4.5 करोड़ कांवड़िए जल लेकर आएंगे, श्रद्धालु अपने इलाके में शिव मंदिरों में जलाभिषेक करेंगे। लोकसत्ता के अनुसार E20 विवाद के बीच सरकारी तेल कंपनियों का दावा, ईंधन पूरी तरह सुरक्षित, न घटेगी माइलेज न खराब होगा इंजन। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार बठिंडा में हनी ट्रैप गिरोह, 23 महिलाओं समेत 28 काबू, वायुसेना अफसर ने पाक को दी सैन्य जानकारी, गिरफ्तार। दैनिक जागरण का शीर्षक है AI ने भारत में जितनी नौकरियां घटाई उससे 2.5 गुना ज्यादा पैदा की। नोमुरा की रिपोर्ट में दावा 83,100 AI से जुड़ी नौकरियां बढ़ी, 31,921 पर पड़ा असर।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और प्रगाढ़ करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ हर घर तिरंगा अभियान आज से देश भर में शुरू। सरकार ने मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 30 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी। वर्षा के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। और साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी ने 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप की अंडर 31 स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभाग का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and US Vice President J.D. Vance discuss ways to further strengthen comprehensive global strategic partnership in key areas. Har Ghar Tiranga campaign begins today, coinciding with 150th anniversary of India's national song Vande Mataram. Appointment of 30 judges for High Courts of Madras, Calcutta, Madhya Pradesh and Karnataka notified. Amarnath Yatra to remain suspended from both Pahalgam and Baltal routes due to repair of tracks and forecast of bad weather. IMD issues orange alert for heavy rainfall in Uttarakhand and Chhattisgarh today. Sagnik Roy and Sayantan Kushari win gold medal in under 31 pairs at 9th World Bridge Federation Youth Transnational Championships. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and US Vice President J.D. Vance discussed ways to further deepen India-US comprehensive global strategic partnership across key areas. Mr. Modi received a phone call from Vice President Vance yesterday. In a social media post, Mr. Modi said they noted the sustained momentum in the high-level engagements and reaffirmed their commitment to further strengthening cooperation in trade, defense, critical and emerging technologies, energy security and critical minerals. Both leaders also exchanged views on regional and global developments of mutual interest. Prime Minister Narendra Modi has said new sectors are emerging in the country, offering fresh opportunities for the youth. Addressing the 57th convocation of Indian Institute of Technology, IIT Delhi, yesterday, the Prime Minister cited sectors such as semiconductors, space and drones, and said India is working towards becoming self-reliant across all sectors. Mr. Modi said this drive towards self-reliance will serve as a strong foundation for building a Viksit Bharat.
3: Aaj Bharat economic self-reliance, technological self-reliance, industrial self-reliance, aise har sector mein aatmanirbhar banne ke liye kaam kar raha hai. Yahi Viksit Bharat ki majboot neev ka saboot hai. Is majboot neev par आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है।
2: He further urged the students to keep the national interest at the center of their decisions.
3: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
2: The Har Ghar Tiranga campaign will begin today and will run through 17th of this month. The initiative is aimed at encouraging citizens to hoist the national flag and participate in activities celebrating patriotism, national unity and India's cultural heritage. The campaign, which began in 2022 as part of the Azadi Ka Amrit Mahotsav celebrations,

माटी के स्वर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम और सुनते हैं पहला गीत आप सभी की फरमाइश पर। बाजार पारा बेमेतरा से भाई भरतलाल सिन्हा, लव कुमार लक्की सिन्हा, डोंगर गांव छत्तीसगढ़ के हमारे ये श्रोता हैं। राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबियानीश का तन्मय गजबिये, बिलाईगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन, पहंदा कोरबा से सम्मीलाल कुर्रे, सावित्री देवी कुर्रे, रायपुर से हैं मोहनलाल देवांगन, प्रभा देवी देवांगन, सरक बुंदिया से गब्बर साहू, निर्मला देवी साहू, ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिवकुमार अंगारे, अंजनी त्रैंबिका, लीना अंशु और आशुतोष अंगारे, नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज, आप सभी लूत्रा खमरिया से, और रिंगनी से हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। आइए आप सभी की पसंद पे सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गाना।

0: बजाज जनरल इंश्योरेंस साथ लाए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। कृषि और बीमा की जानकारी एवं पंजीकरण के लिए आज ही हमारा फार्म मित्र ऐप डाउनलोड कीजिए।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: ना कोई मजबूरी।
1: बजाज जनरल इंश्योरेंस साथ लाए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
0: तभी तो कहते हैं हम, तभी तो रहते हैं हम आपकी रक्षा में पूरी, आपकी रक्षा में पूरी।
1: कृषि और बीमा की जानकारी एवं पंजीकरण के लिए आज ही हमारा फार्म मित्र ऐप डाउनलोड कीजिए।
2: माटी के स्वर कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अब अगला गीत आप सभी की पसंद पे। भाटापारा से श्याम रतन मुंदड़ा रचनाकार मुंदड़ा, रावण भाटा भाटापारा से हैं बबला यादव, रिकी राम यादव, श्रीमती कमलेश्वरी यादव। हथकेरा भाटापारा से पंचू यादव, दादू यादव और बावली से हैं कमलेश साहू, हरेंद्र साहू और

0: योजना की जानकारी एवं पंजीकरण के लिए आज ही हमारा फार्म मित्र ऐप डाउनलोड कीजिए। आपकी रक्षा में पूरी।
1: माटी के स्वर कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अब अगला गीत आप सभी की पसंद पे। भाटापारा से श्याम रतन मुंदड़ा रचनाकार मुंदड़ा, रावण भाटा भाटापारा से हैं बबला यादव, रिकी राम यादव, श्रीमती कमलेश्वरी यादव। हथकेरा भाटापारा से पंचू यादव, दादू यादव और बावली से हैं कमलेश साहू, हरेंद्र साहू और सुशील बिलसपुरिया। भाटापारा दत्रेंगी से हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा। बावली बराकोना से उत्तम कुमार कौशिक, बिहारी लाल कौशिक, हरीश कुमार कौशिक, शिवम कुमार कौशिक। बेमेतरा से हैं श्रीमती पूर्णिमा सारथी, पूजा आरती, भाव्या सारथी और श्रीमती सुषमा सारथी। रुआ बांधा शनिचरी बाजार भिलाई के श्रोता सुशील जैन, कल्पना जैन, श्रेया जैन, सौरभ जैन, शौर्य जैन और शुभम जैन। और महमदपुर भक्तिन बाजार अकलतरा से हैं रमेश कैवर्त, राजकुमारी आरती कैवर्त भी हैं साथ में। आप सभी की पसंद पे आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गाना ममता चंद्राकर और साथियों की आवाज़ों में।

और अब महिला सभा हेतु सूचना सुनिए। श्रोताओं, कार्यक्रम स्वास्थ्य वार्ता फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण हर महीने के दूसरे मंगलवार को होता है। इस माह इसका प्रसारण 11 अगस्त 2026 मंगलवार को शाम 5:35 से किया जाएगा। इसकी रिकॉर्डिंग 10 अगस्त दिन सोमवार को दोपहर 3 बजे से 3:30 के बीच की जाएगी। आप हमें फ़ोन करके डॉक्टर से प्रश्न पूछ सकते हैं अपने। हमारे कार्यक्रम की विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर आकांक्षा गुप्ता। आपसे चर्चा का विषय होगा फेफड़े एवं श्वसन रोग और उपाय। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं इस नंबर पर 07752266592, कोड 07752 और फ़ोन 2665922। आपके फ़ोन कॉल्स का हमें इंतज़ार रहेगा।

FM बैंड 103.2 MHz पर आकाशवाणी बिलासपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम माटी के स्वर। और आइए सुनते हैं अगला गीत आप सभी की पसंद पे। खमरिया से हैं साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार और मधु आयाम। पोटिया कला दुर्ग से हैं संजय साहू।

राजा साहू, शशांक साहू और सीमा साहू, द त्रेंगी भाटापारा से नोखेलाल वर्मा, हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा और पुष्पेंद्र मणि वर्मा, पुड़ी भाटा अकलतरा से दिलीप चंदन, चोवाराम यदु, निखिल चंदन, वसुंधरा चंदन, प्रांजल चंदन, बिरगांव तखतपुर से हैं जैमून कोल, दिलीप कोल, रामायणी कोल और भुवनेश्वर कोल, ग्राम भर्री टोला डोंडी बालोद से नमित कुमार गौतम, पीहू नीतू और मुरली गौतम, ग्राम बुड़गहन से हैं रामदुलारी प्रजापति, रामशरण प्रजापति, चंद्रेश कुमार प्रजापति, चंद्रकला प्रजापति और शशिकांता प्रजापति। आप सभी की पसंद पे आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गाना, बरसाती कौशिक और ईश्वरी बैनर्जी की आवाज़ों में।

और अब कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं इन सभी श्रोताओं की पसंद पे गीत। डोंडी लोहारा बालोद से हैं, देवशंकर तामुरिया, अजय तुषार तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, प्रभा देवी तामुरिया, ग्राम बन बघेरा राजनंदगांव से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश और कुमारी अंजलि सारवा, शीतला नगर दुर्ग से शिव चंद्राकर और भगवान चंद्राकर, ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका, प्रोनामिका और उत्कर्ष नेताम, सिहावा पर्वत अंचल बेलर गांव ग्राम से मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु और अंकित देवांगन, ग्राम रसेड़ा से हैं मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी साहू, योगेश कुमार साहू, कीर्ति कुमार साहू, संध्या साहू, डिकेश कुमार साहू, वासु, डॉली और पूर्वेश साहू, और महावीर वार्ड भाटापारा से श्रीमती अमृता यादव, श्रीमती पार्वती यादव, ईश्वरी यादव, लक्ष्मी यादव, कुमारी प्रेरणा डिम्पी यादव, हदबन नेवधा से श्रीमती दुलारी यादव, प्रियंका यादव, प्रीति यादव, उमेश्वरी यादव और श्रीमती सुमती यादव। आप सभी की पसंद पे आइए सुनते हैं भगवत सप्रे की आवाज मिलेगी।

0: माटी के स्वर। ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी बिलासपुर है। सुबह के 9 बजे हैं। अब आइए सुनते हैं विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम न्याय विभाग। आज इसकी 6वीं कड़ी हम आपको सुनवा रहे हैं।
1: Bring you a talk on strengthening access to justice for senior citizens, from constitutional values to classroom learning, by Professor Vageshwari Deswal, University of Delhi. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.
2: भारत में एक बहुत ही स्पीड से डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हो रहा है। हमारी जो जनसंख्या है उसमें जो हम एल्डर पॉपुलेशन की बात करें तो वो 2011 में जो 100 मिलियन के करीब थी वो 2036 तक जाते जाते 230 मिलियन हो जाएंगी, अर्थात कि वो डबल से भी ज़्यादा हो जाएंगी। और हमें ये समझना होगा कि आने वाले समय में हर 7 भारतीयों में से एक भारतीय इसी कैटेगरी से बिलोंग करेगा, मतलब वो 60 या उससे ज़्यादा उम्र का होगा। तो हम जब इस टॉपिक पर बात करें तो पहले ये समझें कि सीनियर सिटीजन कौन है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि जो भी 60 या उससे बड़ी उम्र के हैं उन्हें हम एल्डरली मानेंगे। इंडिया में भी नेशनल पॉलिसी ऑन सीनियर सिटीजन्स के हिसाब से जो भी 60 साल से ऊपर की आयु के हैं वो सब सीनियर सिटीजन्स हैं। यही डेफिनेशन हमने अपने सीनियर सिटीजन्स एक्ट में भी डाली है। तो आप देखिए, कानून ने तो एज बेस्ड हमको बता दिया है कि एल्डरली लोग कौन हैं, लेकिन जनरली हम लोग कैसे मानते हैं कि जो 80 से ऊपर हैं उनको हम एक एल्डरली कैटेगरी में शामिल करते हैं। इंडिया में हमेशा से जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति है, उसमें बुजुर्गों को बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता है। वो हमेशा से बहुत आदरणीय रहे हैं, देव स्वरूप हैं। तो हम एक ऐसे देश के निवासी हैं जहां हम अपने बुजुर्गों को इतना मान सम्मान देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि एल्डर एब्यूज, ये जो ऐसे वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स थे जो कि हमारे यहाँ थे ही नहीं, वो क्यों यहाँ पर आ गए, जिसके लिए कि अब उन्हें एड्रेस करने के लिए हमें कानून की सहायता लेनी पड़ रही है। अगर हम बात करें, शहरीकरण होता गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, हमारा जो जॉइंट फैमिली सेटअप था वो डिसइंटीग्रेट हो गया। जॉइंट फैमिलीज में जब तक हम लोग रहते थे तो एक पर्सनलाइज्ड होम केयर, हर इंसान के परिवार में उसको किस चीज़ की आवश्यकता है उस चीज़ का ध्यान रखा जाता था। लोनलीनेस की तो कोई बात थी ही नहीं। अगर हम कहें इमोशनल आइसोलेशन, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों के बारे में कोई क्यों नहीं बात करता था, क्योंकि एक भरा पूरा परिवार होता था जिसमें बुजुर्गों को भी कंपनी मिल रही है, बच्चों को भी कंपनी मिल रही है, जो लोग जॉब करते हैं, जो कमाने वाली आयु के लोग हैं उसमें, उनको भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता था क्योंकि परिवार की तरफ से वो निश्चिंत रहते थे। तो एक अच्छी मेंटल हेल्थ थी, इमोशनली सब लोग स्टेबल थे, सब घर का जो भी चोर्स, जो डोमेस्टिक चोर्स की हम बात करें, काम काज आपस में बढ़ जाता था। पेरेंट्स जो थे, एल्डरली थे, उनको भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस रहता था कि हम किसी तरीके से परिवार के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर हम पैसा नहीं भी कमा रहे हैं तो हम बच्चों की देखभाल करने में अपना सहयोग दे रहे हैं। हमारा योगदान है कि किस तरीके से हम उन्हें अपने कल्चर, अपने वैल्यूज, कस्टम्स, ये सब उन्हें हम पास ऑन कर रहे हैं। तो एक कल्चरल कॉन्टीन्यूटी भी बिलोंग थी और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस भी था। लेकिन जैसे जैसे फैमिली, जॉइंट फैमिली सेटअप का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो समझ में आने लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं हम इग्नोर कर रहे हैं बच्चों को, महिलाओं को, एल्डरली लोगों को भी, क्योंकि ये तीनों ऐसे वर्ग थे जिनके हाथ में कोई भी फाइनेंशियल या अर्निंग कैपेसिटी नहीं थी, तो कोई डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी भी नहीं थी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 जो कि एक इतना इलास्टिक प्रोविजन है कि हर तरीके के जो मानव अधिकार हैं उन्हें हम आर्टिकल 21 के तहत कवर कर लेते हैं। और आर्टिकल 21, वैसे तो उसको कानूनी भाषा में कहें ये वो कहता है।

0: no one to be deprived of his right to life and personal liberty except in accordance with procedure established by law. लेकिन इसमें जो right to life and personal liberty है, तो जो right to life है उसके dimensions बहुत ज़्यादा हैं, और right to life सिर्फ एक पशु के समान जीवन की नहीं, हम एक डिग्निफाइड लाइफ की बात करते हैं, तो उसमें हर तरीके का आदर सम्मान भी होना चाहिए, आपके फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, हर चीज़ का ध्यान उसमें रखा जाना चाहिए. राम दुलार गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी अलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट है, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 21 को हम वायलेट कर रहे हैं अगर हम अपने बुजुर्गों का ध्यान नहीं रख रहे हैं. ऐसे ही 2018 में अश्विनी कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट आया है, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि हम इन पेंशन स्कीम्स वगैरह को रीअसेस करें, ओल्ड एज होम्स बनाएं, जो हमारा ये कानून है सीनियर सिटीजन एक्ट उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करें, मेंटेनेंस जो ले सकते हैं अपने बच्चों से उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे जजमेंट्स हैं. आर्टिकल 41, स्टेट शैल विद इन द लिमिट्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट मेक इफेक्टिव प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग राइट टू पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ ओल्ड एज. एंड आर्टिकल 46 जो कि मैंडेट करता है कि स्टेट हमारे जितने भी कमजोर वर्ग हैं उन सबके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, उन कमजोर वर्गों में हमारे जो बुजुर्ग हैं वो भी आते हैं. तो आर्टिकल 41 और 46 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमारे देश को, हमारे स्टेट को एक गोल देते हैं कि उस हिसाब से हमको कानून बनाने हैं, उस हिसाब से हमें पॉलिसीज बनानी है जिसमें कि हम अपने बुजुर्गों की को सुरक्षित रख सके. हमारे पास अन्य कानून भी हैं जैसे कि हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है, जहां कि ये एक पर्सनल लॉ है जो कि केवल हिंदुओं पे लागू होता है. तो इस कानून के हिसाब से बेटों और बेटियों दोनों के ऊपर जिम्मेदारी होती है अपने माता और पिता को संभालने की. देखिए पहले हम कहते थे बेटी को ही जब शादी कर दी गई तो उसे दूसरे परिवार का हिस्सा मानते थे, उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती थी. लेकिन अब कानून क्या कहता है, न दहेज न महंगी शादी, बेटी को दीजिए संपत्ति आधी. और जब हम उसको अधिकार दे रहे हैं तो साथ में हम उस पर जिम्मेदारी भी डालेंगे. तो ये जिम्मेदारी है कि अब केवल ये नहीं कि बेटे ही संभालेंगे, बेटियों की भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि वो अपने माता पिता का ध्यान रखें. उसी तरीके से मुस्लिम लॉ जो है उसमें भी बेटियों के ऊपर बराबर की जिम्मेदारी है. पारसी लॉ और क्रिश्चियन लॉ में कोई इस तरीके की बात नहीं कही गई है कि बच्चों की जिम्मेदारी है बड़ों को संभालने के लिए. इसीलिए हमारे पास सेक्युलर लॉ है, पहले हम CRPC कहते थे उसे, अब हम कहते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. तो ये जो कानून है ये भी प्रोवाइड करता है एक सेक्युलर रेमेडी, जिसमें कि हर धर्म के लोग जाकर के वहाँ पर जो बच्चे हैं उनसे माता पिता अपना मेंटेनेंस मांग सकते हैं. उनके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि अगर वो संभालने में सक्षम हैं अपने माता पिता को और माता पिता खुद को ध्यान रखने में सक्षम नहीं है तो जिम्मेदारी उनके ऊपर है. उसके अलावा 2005 में हमें कानून मिला प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, क्योंकि देखा गया है कि अगर हम हमारे से पहली पीढ़ी की महिलाओं की बात करें तो बहुत ऐसी महिलाएं बहुत कम थी जो कि बाहर जाती थी, कमाती थी, उनका कोई सोशल सर्कल था या उनकी कोई इनकम थी ओल्ड एज में. तो ऐसी जो औरतें हैं जो परिवारों में हैं लेकिन अगर उनका किसी भी तरीके से अब्यूज हो रहा है तो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में क्योंकि वो रह रही हैं तो उनके लिए प्रोटेक्शन ऑर्डर्स, उनके लिए रेजिडेंस ऑर्डर्स, उनके लिए मेंटेनेंस ऑर्डर्स, इन सब तरीके के रिलीफ्स का प्रावधान है कानून में.
1: यू हैव बीन लिसनिंग टू अ टॉक ऑन स्ट्रेंथनिंग एक्सेस टू जस्टिस फॉर सीनियर सिटीजंस फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज टू क्लासरूम लर्निंग. वी स्लिप इनटू अ शॉर्ट ब्रेक.

0: Daily Law के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है.
1: We continue with the talk on strengthening access to justice for senior citizens from constitutional values to classroom learning.
2: मेजर एरियाज जिन पे हमें ध्यान देने की जरूरत है, इनकम सिक्योरिटी, क्योंकि अगर हम किसी तरीके से ये इंश्योर कर सकें कि बुजुर्गों के पास अपने लायक एक इनकम है तो उनको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं. फिर उनके हेल्थ केयर एक बहुत ही मेजर एरिया ऑफ कंसर्न है, क्योंकि जैसे वो बड़े होते जाते हैं फंक्शनल कैपेसिटी उनकी इम्पेयर हो जाती है. उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हेल्पलाइंस बनाई जानी चाहिए जो कि हमारे स्टेट में बना भी रखी हैं. हाउसिंग लोन्स मिलने चाहिए. एक हमें प्रोडक्टिव एजिंग, मतलब जब तक उनको किसी न किसी काम में अगर हम लगा सकते हैं तो उनको री एम्प्लॉयमेंट किसी तरीके से ऐसे उनको एंगेज करा जा सके ताकि मेंटल उनकी फैकल्टीज काम करती रहे. उनके लिए वेलफेयर फंड्स सेटअप करें. और उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मीडिया को हम इन्वॉल्व करें.

प्रोग्राम्स किए जाने चाहिए मीडिया. आजकल भी आप देखेंगे बुजुर्गों के हाथ में भी अगर स्मार्टफोन्स हैं वो भी व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे वो रील देखते हैं. तो ऐसी ऐसी इंफॉर्मेटिव हम रील्स बना सकते हैं बिकॉज वी आर ऑल हुक्ड ऑन टू दोज रील्स ना, कि जिसमें दिखाया जा रहा है कि अगर बच्चा परेशान कर रहा है तो किस तरीके से वो कानून को अप्रोच कर सकती हैं, उनके लिए क्या क्या कानून में अलग अलग प्रावधान हैं. एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत जो हमारे देश में की गई 2005 में, उससे पहले यूएन ने तो पहले ही कह दिया था कि हमें अपने ओल्डर पर्सन्स के लिए एक इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट करना है. इंडिया में भी 2005 से हमने ये एक ओल्ड पर्सन्स डे सेलिब्रेट करना शुरू किया है, जो कि हर एक स्कूल में अगर आप देखें तो ग्रैंड पेरेंट्स डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है. तो उसमें क्या है, ज़रूरी है कि बच्चा अपने ग्रैंड पेरेंट को, दादा दादी नाना नानी को साथ में स्कूल लेके जाए. तो जहां वो साथ में नहीं भी रहते थे फिर भी उनको बुलाया जाता है, ग्रुप एक्टिविटीज़ दी जाती हैं, बच्चे मिलके उनके साथ कोई प्रोग्राम्स अपने प्रिपेयर करते हैं, आइटम्स प्रेजेंटेशंस, वहां पर अलग अलग कॉम्पिटिशन्स किए जाते हैं. तो इस तरीके से बच्चों का और ग्रैंड पेरेंट्स का एक इतना अच्छा इन्वॉल्वमेंट होता है कि वो फिर इस तरीके के इवेंट्स के लिए दे लुक फॉरवर्ड टू दैट. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नैतिक पतंग एक गेम डिजाइन किया है कि जिससे कि हम इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स में हम सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें कि सारे के सारा परिवार मिलकर के साथ में इस गेम को खेलता है. हमें ज़रूरत है इस समय कि हम एल्डरली केयर को एजुकेशन में इंटीग्रेट करें. क्यों? क्योंकि हमें ऐसी कंडीशंस क्रिएट करनी है, कानून तो हमारे पास बहुत हैं, लीगल अवेयरनेस के लिए लीगल एड भी बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाता है ना, हमने वो हेल्पलाइंस भी इंस्टीट्यूट करी हैं, हमने कोशिश करी है किसी की तरीके से हम डिजिटलाइज कर दें सिस्टम्स ताकि वो इजीली एक्सेस कर सकें, लेकिन उसके बावजूद भी एल्डर एब्यूज तो रुक नहीं रहा है बल्कि बढ़ता जा रहा है. तो हमें इस तरीके के इंटरजेनरेशनल प्रोग्राम्स बनाने हैं, हमें अपने करिकुलम को रिवाइज करना है ताकि जेरियाट्रिक हेल्थ, कॉग्निटिव डिक्लाइन, फिजिकल फंक्शनैलिटी, न्यूट्रिशनल नीड्स, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं बचपन से ही बच्चों को पढ़ाई जाएं. हम मॉड्यूल डाल दें स्कूल्स नहीं, बच्चे समझे, वो देखें घर में ये सब ध्यान में रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा. यही बच्चे घर जाके अपने पेरेंट्स को बताएंगे, कल को उनके पेरेंट्स भी अपना देखभाल करने में सक्षम होंगे, अपने बुजुर्गों की भी देखभाल कर पाएंगे, और ये बच्चे भी कल को जब बड़े होंगे इनके ऊपर जिम्मेदारियां आएंगी तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में उन चीज़ों का असर रहेगा. उसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, नॉर्मली स्कूल्स कॉलेजेस में मेडिकल मॉड्यूल्स इंट्रोड्यूस करें, CPR किस तरीके से वाइटल्स को चेक करना है, मेडिकेशन शेड्यूल्स को हम कैसे कर सकते हैं, मोबिलिटी एड्स, हियरिंग एड्स, इन सबको किस तरीके से प्रयोग में लाया जा सकता है. फिर चाहे हम बायोलॉजी पढ़ते हैं चाहे सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, एजिंग से रिलेटेड जो एजुकेशन है कि बड़े होते होते क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, कई बार क्या होता है कि हम रियलाइज़ ही नहीं करते, सडनली हमें लगता है कि इनको तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं. तो हम शुरू से ही अगर उस चीज़ को समझ सकें, अगर हमारे बच्चों में हम वो सेंसिटिविटी डाल सकें, उनको एजुकेट कर सकें, तो वो चीज़ बहुत अच्छी होगी, चाहे स्कूल्स में कॉलेजेस में. और जो एडल्ट्स के लिए हमने इतने डिजिटल प्रोग्राम्स बनाए हैं उसमें उनको डिजिटली उनको लिटरेट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि प्रोग्राम्स हैं लेकिन वो एक्सेस कैसे कर पाएंगे जब तक वो डिजिटली अवेयर नहीं होंगे. तो उसमें फिर यही जो स्कूल्स कॉलेजेस में अगर हम कम्युनिटी आउटरीच कोई एक्टिविटीज़ रखें, बच्चों को कहें कि आप प्रोजेक्ट्स बनाइए, आप जा कर के उनके साथ ये आप उनको एजुकेट कीजिए, आप ओल्ड एज होम्स में जाइए या आपके घर में आपकी कम्युनिटी में जो एल्डर लोग हैं आप उनको अवेयर कीजिए, आप उनके साथ मिल करके ये क्विज सॉल्व कीजिए, या इस तरीके से अगर हम प्रोग्राम्स इंटीग्रेट कर पाएंगे तो बहुत बेहतर होगा. बैरियर्स जो हैं जस्टिस के लिए, कानून है सारे के सारे हमारे पास, पॉलिसीज हैं, स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, लेकिन फिर भी जो हमारे लीगल प्रोसीजर्स हैं बहुत कॉम्प्लेक्स हैं. जो बुजुर्ग हैं उनके अपने मोबिलिटी के इश्यूज हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स भी हैं, बहुत जगह पर उन्हें पता भी नहीं है कानून का. उसके अलावा जो एक सोशल स्टिग्मा है, कोई क्या कहेगा कि आपने अपने ही बच्चों के खिलाफ शिकायत कर दी, परिवार उससे टूट जाएगा. वो ये नहीं समझते, परिवार तो तब टूट गया जब आपके बच्चों ने आपके साथ इस तरीके की हरकत करी. आप तो केवल उस हरकत की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन वो जो स्टिग्मा है जिसमें कि हम कहते हैं नहीं बड़ों को ही समझदार होना चाहिए, बच्चों ने तो गलती की थी आप तो समझ सकते थे, लेकिन अब देखिए इतने अच्छे अच्छे जजमेंट्स आए हैं जिसमें कोर्ट ने क्या कहा है कि अगर आपके बच्चे आपको परेशान कर रहे हैं ना, आप उन्हें अपने घर से एविक्ट कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं कि मैं अपने घर में एब्यूजिव बच्चों का बोझ ढूँढूं, या फिर मैंने प्रेम में आकर के अपने बच्चों के नाम पर कोई प्रॉपर्टी कर दी थी, कल को वो मेरा ध्यान नहीं रखते हैं तो मैं उस ट्रांसफ़र को भी अवॉइड कर सकती हूँ. तो वीव गॉट सच गुड जजमेंट्स, बट द थिंग इज कि लोगों को पता नहीं है, जिससे की वजह से वो घबरा जाते हैं. एक्सेस बढ़ाने के लिए हमें ई कोर्ट्स का

0: सहारा लेना पड़ेगा, ऑनलाइन फाइलिंग, टेली लॉ सर्विसेज, जैसे अगर हम टेली मेडिसिन की बात करते हैं वैसे ही हमें टेलीफोन पे भी कंसल्टेशंस की बात करनी पड़ेगी। सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल है जो एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है। बस ज़रूरी है अवेयरनेस की, हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम स्कीम्स हैं अवेयरनेस, जिसमें कि हर एक वर्ग की ये जिम्मेदारी है, बच्चा बूढ़ा जवान सब मिल करके जब इस पे काबू करने की कोशिश करेंगे तभी हमें सक्सेस मिलेगी।
1: यू हैड बीन लिसनिंग टू अ टॉक ऑन स्ट्रेंथनिंग एक्सेस टू जस्टिस फॉर सीनियर सिटीजंस फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज टू क्लासरूम लर्निंग बाय प्रोफेसर वागेश्वरी देसवाल, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। दिस टॉक वॉज पार्ट ऑफ अ वेबिनार ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस।
2: अभी आप सुन रहे थे विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम न्याय विभाग। FM बैंड 103.2 MHz पर यह आकाशवाणी बिलासपुर है। सुबह के 9:15 हुए हैं। अब से 9:55 तक हम रिले करेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम और 9:55 पर आकाशवाणी रायपुर से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। फिलहाल आइए जुड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा से।

0: एबीसीडी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। अनुष्का मनचंदानी और साथियों की आवाजें थी। मयूर पुरी ने इस गीत को लिखा था। चित्रलोक कार्यक्रम आप इस समय सुन रहे हैं।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए
6: विविधा में इस रविवार 9 अगस्त 2026 को सृजन भारती के अंतर्गत विविध भारती में आयोजित विशेष ऑडियो विजुअल शो भारतीय फिल्म संगीत में वंदे मातरम, इसके संपादित अंश।
7: वंदे
6: सहभागी विशेषज्ञ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के मूर्धन्य अध्येता मिलिंद प्रभाकर सबनीस।
8: वंदे मातरम का जो संगीत प्रवास है वो बहुत बहुत ही लंबा है, रविंद्रनाथ से लेकर आज के A.R. रहमान और अजय अतुल तक अभी भी वो चालू है।
6: सुनना न भूलिए विविधा, रविवार 9 अगस्त दिन में 11 बजे।

रॉक स्टार फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें यार रहमान, जावेद अली, मोहित चौहान की थी। इरशाद कामिल के बोल थे ए आर रहमान की तर्ज थी। इसी गाने के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने के सविता सिंह को इजाजत दीजिए। नमस्कार, आप सदैव प्रसन्न और समृद्ध रहिए, इसी कामना के साथ इजाजत।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

सावन कुमार फिल्म दर्शकों के लिए फिल्मों की बहार और गीतों की बौछार लेकर आए। फिल्म जगत का एक जाना पहचाना और प्रतिष्ठित नाम है निर्माता निर्देशक गीतकार सावन कुमार टाक का। आज ये कार्यक्रम इन्हीं पर केंद्रित है।

बच्चन को मुमताज के नायक के रूप में भूमिका निभाने के लिए विचार कर रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुमताज के नायक बने समीर खान। संगीत आर डी बर्मन का था। ये फिल्म उतनी सफल नहीं हुई जितनी उम्मीद थी। आइए सुनते हैं गोमती के किनारे इस फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

सन 1972 में आई फिल्म गोमती के किनारे। इस फिल्म के निर्माता निर्देशक थे सावन कुमार। सामाजिक ताने बाने को दर्शाती ये फिल्म कई मायने में महत्वपूर्ण है। ये फिल्म मीना कुमारी की आखिरी फिल्म थी और उनके मरणोपरांत रिलीज हुई थी। इस फिल्म में सावन कुमार और मीना कुमारी अमिताभ

बात करते हैं सन 1967 की फिल्म नौनिहाल की। इस फिल्म की कहानी लिखी थी सावन कुमार टाक ने और इस फिल्म को प्रोड्यूस भी किया था। फिल्म में कलाकार थे संजीव कुमार, बलराज साहनी और इंद्राणी मुखर्जी। गीत कैफी आजमी के थे और संगीत मदन मोहन का था। निर्देशक राज मार्बो।

लेखक, निर्माता और निर्देशक के रूप में सावन कुमार ने 1974 में रिलीज हुई एक बेहद संवेदनशील फिल्म बनाई हवस। अनिल धवन, नीतू सिंह, बिंदु, विद्या सिन्हा और विनोद मेहरा जैसे कलाकारों ने इस फिल्म में काम किया था और ये एक सफल फिल्म थी। इस फिल्म के लिए लिखे सावन कुमार के गीत को आइए सुनते हैं, जिसे संगीतबद्ध किया है उषा खन्ना ने।

सावन कुमार का जन्म 9 अगस्त 1936 को जयपुर में हुआ। वैसे अमूमन फिल्मों में हीरो बनने की चाहत से लोग मुंबई आते हैं। सावन कुमार भी अपवाद नहीं थे। कोशिश की रोल पाने की, सफल नहीं हुए तो इन्होंने फिल्म बनाने की ही सोच ली। जैसा सोचा उसे करने के लिए रुपयों की जरूरत थी। अपनी बहन से मदद मांगी, पर उनकी आनाकानी के बीच इनके ब्रदर इन लॉ ने इनकी कोशिश को सहारा दिया और सावन कुमार ने फिल्म बनाई नौनिहाल। संजीव कुमार को अपनी फिल्म में पहले पहल रोल देने वाले सावन कुमार

बहन से मदद मांगी, पर उनकी आनाकानी के बीच इनके ब्रदर इन लॉ ने इनकी कोशिश को सहारा दिया और सावन कुमार ने फिल्म बनाई नौनिहाल। संजीव कुमार को अपनी फिल्म में पहले पहल रोल देने वाले सावन कुमार

एक गीतकार के रूप में भी हम सावन कुमार को जानते हैं। अपनी कई फिल्मों में इन्होंने गीत लिखे हैं, साथ ही अन्य फिल्मकारों की फिल्मों के लिए भी इनके लिखे गीतों ने श्रोता दर्शकों को मुतासिर किया है। शत्रुघ्न सिन्हा और अभिनेत्री पूनम द्वारा अभिनीत 1973 की इनकी फिल्म सबक का आइए ये गाना सुनते हैं।

सावन कुमार ने 2004 की फिल्म कहो ना प्यार है के लिए कुछ गाने लिखे और इसी साल देव फिल्म के लिए भी इन्होंने गाने लिखे। आइए सुनते हैं कहो ना प्यार है का ये गाना।

श्रावण कुमार टाक ने अपनी ही फिल्मों में कई गीत लिखे जो लोकप्रिय भी हुए, जैसे फिल्म सौतन की बेटी का गाना हम भूल गए और फिल्म बेवफा से वफा का ये गाना।

एक थिएटर आर्टिस्ट के रूप में एक कलाकार लोकप्रियता हासिल कर रहा था। ऐसे ही एक अच्छे वक्त में सावन कुमार ने उन्हें ड्रामा करते हुए देखा और इतने प्रभावित हुए कि अपनी पहली ही प्रोडक्शन नौनिहाल में कास्ट कर दिया और उनके मूल नाम हरिभाई जरीवाला से बदलकर एक नया और फिल्मी नाम और उम्दा नाम दिया उम्दा कलाकार को, जिनका नाम है संजीव कुमार। वैसे ही सावन कुमार ने जूनियर महमूद को भी ब्रेक दिया। संगीतकार उषा खन्ना के साथ इनका फिल्मी और व्यक्तिगत जीवन काफी लंबा चला। हवस से साजन बिन सुहागन तक कई हिट गाने इस साथ ने दर्शक श्रोताओं को दिए।

सावन कुमार लिखते हैं, साजन बिन सुहागन मेरे लिए एक विशेष फिल्म थी क्योंकि ये मेरी पहली गोल्डन जुबली फिल्म थी। साजन बिन सुहागन फिल्म से जुड़ा हुआ एक किस्सा सुनाते हुए सावन कुमार कहते हैं कि उन दिनों कोई भी डायरेक्टर राजेंद्र कुमार और नूतन की जोड़ी को नहीं चाहता था। मैंने सोचा इन दोनों ही कलाकारों ने अपने दिनों में एक साथ काम नहीं किया है, क्यों ना ये एक साथ आए। मैं राजेंद्र कुमार से मिलने उनके घर गया। उनकी पत्नी ने बताया अपने मित्र के साथ हैं, जाइए। वहां जाकर देखा तो राज कपूर थे। उन्होंने सोचा ऐसे ही मिलने आया होऊंगा। तब बात रोशन हो गई जब मैंने 11,000 रुपए का चेक साइनिंग अमाउंट के रूप में राजेंद्र कुमार को दिया। दोनों खुश हुए और अचंभित भी। राज जी ने कहा, मैं इनका इतना घनिष्ठ दोस्त होने के बाद भी इन्हें कास्ट करने की नहीं सोच पाया था।

0: विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अभी हम रिले कर रहे थे। FM बैंड 103.2 MHz पर यह आकाशवाणी बिलासपुर है। सुबह के 9:55 हुए हैं। अब प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रायपुर से।
1: समाचार ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। आज से देश भर में हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो रहा है। विश्व आदिवासी दिवस पर आज प्रदेश में हो रहे हैं अनेक कार्यक्रम। और मौसम विभाग ने आज उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। अब समाचार विस्तार से। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है और इस महीने की 17 तारीख तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। इधर छत्तीसगढ़ में भी आज से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश में 10 से 14 अगस्त तक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। पार्टी द्वारा 11 से 15 अगस्त तक हर घर प्रतिष्ठान और कार्यालयों में तिरंगा फहराने के लिए जन जागरण अभियान भी चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि जो सीखेगा वही जीतेगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है। आज विश्व आदिवासी दिवस है। इस अवसर पर राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं विभिन्न जिलों में जागरूकता रैली भी निकाली जाएगी। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में आज दोपहर एक सभा का आयोजन किया जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम बंगाल और उससे लगे उत्तरी ओडिशा के तट पर एक निम्न दाब का क्षेत्र बना हुआ है। इसके असर से आज प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वहीं उत्तरी छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 5 जिलों सरगुजा, जशपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और कोरबा के लिए येलो अलर्ट तथा 2 अन्य जिलों सूरजपुर और बलरामपुर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं पिछले 24 घंटों में बलरामपुर और बीजापुर जिले में भारी बारिश दर्ज की गई है। राजधानी रायपुर में भी कल शाम तेज बारिश हुई है। जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुई बारिश के कारण पहलगाम और बालटल दोनों मार्गों पर अमरनाथ यात्रा आज से स्थगित कर दी गई है। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए यात्रा को अस्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया गया है। कल जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से किसी भी नए यात्रा जत्थे को रवाना नहीं किया गया। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के लिए UPI निशुल्क रहेगा और सभी व्यक्तिगत लेनदेन निशुल्क बने रहेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि UPI के माध्यम से भुगतान करते समय उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार का लेनदेन शुल्क नहीं देना होगा, जबकि अधिकांश व्यापारी लेनदेन भी निशुल्क रहेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि यदि व्यापारी छूट दर शुल्क लागू किया जाता है तो यह केवल एक निश्चित सीमा से अधिक के सीमित व्यापारी लेनदेन पर नाममात्र दर से लागू होगा। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। जगदलपुर के आड़ावाल स्थित जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में कल 10 अगस्त को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। और भिलाई के पावर हाउस स्थित आदर्श शासकीय ITI में भी कल 10 अगस्त को सुबह 9:30 से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेले का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज से देश भर में हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो रहा है। विश्व आदिवासी दिवस पर आज प्रदेश में हो रहे हैं अनेक कार्यक्रम। और मौसम विभाग ने आज उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन

0: 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रायपुर से अभी हम रिले कर रहे थे। FM बैंड 103.2 MHz पर यह आकाशवाणी बिलासपुर है। सुबह के 10 बजे हैं। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम आओ बच्चों। प्रस्तुति है लिंटा की।

0: बच्चों जय हिंद।
1: जय हिंद।
0: स्वागत आप सभी का आपके फेवरेट प्रोग्राम आओ बच्चों में और आप सभी को आपकी दीदी लिंटा का प्यार। प्यारे बच्चों, आज की चर्चा में हम काकोरी के उन अमर क्रांति वीरों को याद करेंगे जिनके साहस, देशभक्ति और बलिदान की कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए देश प्रेम की मिसाल बन गई। और आज मैं आपको इतिहास के ऐसे ही एक अध्याय की कहानी सुनाने जा रही हूं बच्चों, जिसमें रेलगाड़ी है, कुछ युवा क्रांतिकारी हैं, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह का जज्बा है और इन सब से बढ़कर भारत देश को आजाद देखने का सपना है। बच्चों, बात 9 अगस्त सन 1925 की है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में काकोरी रेलवे स्टेशन के पास एक ट्रेन को क्रांतिकारियों ने रोका। उनका उद्देश्य अंग्रेजी सरकार के उस खजाने को अपने कब्जे में लेना था जो कि सरकारी धन था। इस धन का इस्तेमाल वे अपने क्रांतिकारी आंदोलन के लिए करना चाहते थे और इस घटना को काकोरी ट्रेन एक्शन या काकोरी कांड के नाम से जाना गया। लेकिन बच्चों, काकोरी की कहानी सिर्फ एक ट्रेन और सरकारी खजाने की कहानी नहीं है, ये कहानी है उन नौजवानों की जिन्होंने अपनी जिंदगी देश के नाम कर दी। इस साहसिक कार्य से जुड़े प्रमुख क्रांतिकारियों में थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र नाथ लहाड़ी और रोशन सिंह। इनके साथ कई अन्य क्रांतिकारी भी इस आंदोलन से जुड़े थे। बच्चों, जिनके लिए देश की आजादी कोई सपना भर नहीं था, वह उनके जीवन का सबसे बड़ा संकल्प भी था। सोचिए बच्चों, आज आप स्कूल जाते हैं, अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं, भविष्य के सपनों को पूरा करते हैं, लेकिन उस समय के युवाओं ने अपने भविष्य से ज्यादा हमारे देश भारत के भविष्य की चिंता की। उनका सपना था एक ऐसा भारत जो अंग्रेजी शासन की गुलामी से मुक्त हो। काकोरी की घटना के बाद बच्चों, अंग्रेजी सरकार ने क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए बहुत बड़ा अभियान चलाया, जिसमें अनेक क्रांतिकारी गिरफ्तार किए गए और उन पर मुकदमा भी चलाया गया। वो समय भी आया जब इन वीरों को कठोर सजाएं सुनाई गई। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह को फांसी दी गई। बच्चों, इन वीरों ने अपने प्राणों की चिंता नहीं की, उनके लिए देश सबसे आगे था। और इनको याद करते ही हमारे सामने ऐसे नौजवानों की तस्वीर उभरती है बच्चों, जिनके लिए अपनी जिंदगी से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था मातृभूमि का सम्मान और उसकी आजादी। और यही वजह है कि हर साल आज के दिन 9 अगस्त को काकोरी के क्रांति वीरों के साहस और बलिदान को याद किया जाता है। यह दिन बच्चों, हम सभी को उन वीरों को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ यह समझने का भी अवसर देता है कि हमारे देश की आजादी के पीछे कितने युवाओं का त्याग और बलिदान छिपा हुआ है। प्यारे बच्चों, आज जब हम काकोरी के क्रांति वीरों को याद करते हैं तो अपने आप से जरूर पूछें कि हमारे देश के लिए आप क्या कर सकते हैं। उत्तर यही है कि अपने देश के प्रति छोटे छोटे कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाएं, जैसे एक अच्छे विद्यार्थी बने, हमारे देश की संपत्ति की रक्षा करें, उनका दुरुपयोग नहीं करें, दूसरों की मदद करें, आपस में प्रेम और एकता बनाए रखें, प्रकृति का भी सम्मान करें और आसपास स्वच्छता का ध्यान रखें। इस प्रकार से बच्चों, काकोरी के उन अमर क्रांति वीरों को नमन करते हुए उनके जीवन से यह सीख लें आप सभी कि अपने देश की आजादी का हम सम्मान करेंगे, अपने कर्तव्यों को समझते हुए हमारे देश भारत को और बेहतर बनाने में अपना योगदान भी देंगे। काकोरी के सभी अमर क्रांति वीरों को कार्यक्रम के माध्यम से हम शत शत नमन करते हैं। और बच्चों, बातों का सिलसिला हम आपके साथ आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं ये गीत।

0: कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए बच्चों, आइए मिलते हैं उन बाल कलाकारों से जो कि रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से हमारा मन मोह लेंगे। और आप हैं ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल मिशन हॉस्पिटल रोड बिलासपुर से आमंत्रित छात्र छात्राएं, आइए बिना देरी किए जुड़ते हैं हम इनसे।
1: नमस्कार, मैं कोमल शर्मा ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल की ओर से आकाशवाणी के सभी सम्मानित श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। वर्ष 2001 से शिक्षा, संस्कार और उत्कृष्टता का दीप प्रज्वलित करने वाला ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल आज अपने शहर बिलासपुर में 3 सफल शाखाओं के माध्यम से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर समर्पित है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों और आधुनिक ज्ञान के समन्वय के साथ हमारा विद्यालय ऐसे जागरूक, संवेदनशील और उत्तरदायी नागरिकों के निर्माण के लिए सतत प्रयासरत है जो राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के सशक्त आधार बने। विश्व आदिवासी दिवस के पावन अवसर पर उन जनजातीय समुदायों को सादर नमन करते हैं जिन्होंने अपनी समृद्ध संस्कृति, लोक परंपराओं, प्रकृति के प्रति अटूट आस्था, अदम्य साहस और सरल जीवन मूल्यों से भारत की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध बनाया है। उनकी जीवन शैली हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य, सामुदायिक एकता और पर्यावरण संरक्षण का अमूल्य संदेश देती है। इन्हीं प्रेरणादायी भावों को समर्पित ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल मिशन हॉस्पिटल रोड की यह विशेष प्रस्तुति आपके समक्ष है। आइए आरंभ करते हैं इस सांस्कृतिक यात्रा का। थैंक यू।
0: आइए सुनते हैं बच्चों सरस्वती वंदना। प्रस्तुति दे रहे हैं प्रिशा तिवारी, आरुषि सिंह, लावण्या साहू, यशस्वी रजक, अनुष्का महार, युवान निर्मलकर और सागर कटेरिया।

0: सचमुच जब इतने सारे नन्हे स्वर एक साथ मिलकर माँ शारदा का गुणगान करते हैं तो मन अपने आप से ही कह उठता है, वाह बच्चों क्या खूब गाया। आइए जुड़ते हैं भाव्या बोले से, जो कि आदिवासी दिवस पर कुछ बातें साझा करेंगी।
1: आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम भाव्या है। मैं ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल मिशन कैंपस से कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। आज मैं विश्व आदिवासी दिवस के पावन अवसर पर अपने विचार को प्रस्तुत करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ। क्या आपने कभी सोचा है, यदि जंगल ना हो, नदियाँ सूख जाए, पहाड़ उजड़ जाए और पक्षियों की मधुर ध्वनि सुनाई ना दे तो हमारी धरती कैसी लगेगी? इस प्रश्न का उत्तर हमें आदिवासी समाज देता है, क्योंकि उन्होंने सदियों से प्रकृति को केवल संसाधन नहीं बल्कि जीवन का आधार माना है। विश्व आदिवासी दिवस प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य विश्व भर के आदिवासी समुदायों की संस्कृति, परंपराओं, भाषाओं, ज्ञान और अधिकारों का सम्मान करना तथा इनके योगदान को पहचान देना है। भारत विभिन्नताओं का देश है। यहाँ गोड़, भील, संथाल, बैगा जैसी अनेक जनजातियाँ अपनी पहचान के साथ हमारी सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध बनाती है। इनके लोकगीत, लोक नृत्य, चित्रकला और जीवन शैली हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बनकर जीने की प्रेरणा देते हैं। हमारे पूर्वजों ने कहा है, जल है तो कल है और बूंद बूंद से सागर भरता है। आदिवासी समाज इन दोनों बातों को अपने जीवन में चरितार्थ करता है। वे जंगलों से उतना ही लेते हैं जितना आवश्यकता होती है, इसीलिए इन्हें प्रकृति का सच्चा संरक्षक कहा जाता है। स्वतंत्रता संग्राम में भी आदिवासी वीरों का योगदान अतुलनीय रहा है। धरती आबा बिरसा मुंडा, सिंधु कानू, तिलका मांझी, रानी दुर्गावती और वीर नारायण सिंह जैसे महान योद्धाओं ने न्याय और शोषण के विरुद्ध संघर्ष कर हमें साहस और स्वाभिमान का मार्ग दिखाया है। इनका जीवन हमें सिखाता है कि जहाँ चाह वहाँ राह, और साहस ही सफलता की पहली सीढ़ी है। प्रिय साथियों, आज आधुनिकता की दौड़ में हम अक्सर प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। इस समय हमें आदिवासी समाज याद दिलाता है कि विकार और पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। यदि हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तभी हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। हमारे संविधान ने प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार दिया है, इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि हम आदिवासी समाज की संस्कृति, भाषा और परंपराओं का सम्मान करें तथा इनके ज्ञान और अनुभव से सीखें। विविधता में एकता केवल एक नारा नहीं बल्कि भारत की आत्मा है। आइए इस अवसर पर हम सभी संकल्प लें, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करेंगे, सभी संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करेंगे।

0: आदिवासी समाज के योगदान को पहचानेंगे, समानता, भाईचारे और मानवता के मूल को अपनाएंगे। अंत में मैं गांधी जी के विचार को याद करना चाहूंगी। पृथ्वी हर व्यक्ति की आवश्यकता को पूरी कर सकती है, लेकिन किसी एक के लालच को नहीं। इस संदेश के साथ मैं अपनी इन बातों को इन पंक्तियों में समाप्त करती हूँ। वन है जीवन की शान, इनसे है धरती की पहचान। आदिवासी संस्कृति का मान करें, प्रकृति का हम सम्मान करें, यही हमारा सच्चा अभियान, यही है भारत की गौरवमयी शान। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
1: बहुत खूब भाव्या, आपकी प्रस्तुति ने हमें ये याद दिलाया कि हमारी विविधता ही हमारे देश की सबसे बड़ी खूबसूरती है। अलग अलग परंपराएं, भाषाएं और संस्कृतियां मिलकर ही हमारे देश को इतना समृद्ध बनाती हैं। अगली प्रस्तुति लेकर आ रही हैं बच्चों आयशा सिद्दीका, जो कि हमें कविता सुनाएंगी।
2: गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम आयशा सिद्दीका ऑफ ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल फ्रॉम क्लास 6B। टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक पोम ऑन आदिवासी दिवस। रूटेड डीप where the ancient rivers flow, guardian of the forest from long ago, with feet that know the rhythm of the earth, they celebrate the soil that gave them birth. No concrete towers can ever match their grace, or sacred groves and mountains face. Their songs are written in the whispering breeze, their histories carved in the oldest trees. Through storms of change and history's pain, their spirit and their pride remain, a legacy of balance, parents and free, living in a perfect bond with land and sea. Today, we honor the first hand of the land on Adivasi Divas. Together we stand to shield the culture, the wisdom, the tongue, and keep the timeless tribal chorus sung. Thank you.
1: तो बच्चों, आप थी आयशा, जिन्होंने सुंदर पोयम की प्रस्तुति दी, जिसमें उनके आवाज की मिठास के साथ हमारे संस्कृति के प्रति सम्मान भी था। बच्चों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए श्रीनिका साहू भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के जीवन से जुड़ी जानकारी देंगी।
3: गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज श्रीनिका साहू एंड आई एम फ्रॉम क्लास 7th। Today I am here to tell the story of our respected President Draupadi Murmu. The 15th and current President of India made history as the first person from a tribal community and the first President born in independent India to hold the national high office. Her inspiring life journey is defined by perseverance, public services and profound personal resilience. Born into a Santhali tribal family on June 20, 1958, in the remote village of Uttarpeda, Orissa, Draupadi Murmu experienced deep poverty during her childhood, defying society barriers. She became the first woman in her village to attend the college, earning a Bachelor of Art degree from Rama Devi Women's College in Bhubaneswar. She began her professional life as a junior assistant in the irrigation and power department and later worked as a teacher. Her political career took off in 1997 and was elected as a councillor in Rairangpur. She was elected to the Odisha Legislative Assembly twice in 2000 and 2004 and served as a state minister holding portfolios such as commissioners, transport, fisheries and animal resources. In 2015, she made history as the first female governor of Jharkhand, serving until 2021. Alongside her political achievements, Draupadi Murmu introduced significant personal tragedies between 2009 and 2004. She suffered the devastating loss of her husband Shyam Chandra Murmu and her two sons. Despite becoming an advocate from marginalized in July 22, she was elected as a president of India. Thank you.
1: श्रीनिका, आपने माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में हमें बताया, और उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, दृढ़ इच्छा शक्ति, मेहनत और अपने सपनों पर विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना हम सभी का कर्म है।

आइए सुनते हैं सामूहिक गीत। प्रस्तुति दे रहे हैं सागर कटेरिया, प्रिशा तिवारी, आरोशी सिंह, लावण्या साहू, अनुष्का महार, यशस्वी रजक और युवान निर्मलकर।

0: मनमोहक प्रस्तुति बच्चों, बहुत सुंदर।
1: दोस्तों आइए, अब मैं भाव्या आप सभी को हमारे भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के जीवन से जुड़ी कुछ बातें साझा करती हूँ। दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू जी का जीवन हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें आगे बढ़ते रहना है। वे ओडिशा के एक साधारण आदिवासी परिवार में पली बड़ी। दोस्तों, संसाधन कम थे लेकिन पढ़ने की लगन उनमें बहुत थी। उन्होंने मेहनत से पढ़ाई की, फिर नौकरी की, समाज सेवा की और राजनीति में भी आई। दोस्तों जानते हैं, जीवन में उन्हें कई बड़े व्यक्तिगत दुख भी झेलने पड़े हैं। उन्होंने अपने परिवार के कई प्रिय सदस्यों को उस दौरान खो दिया। ऐसे समय में दोस्तों कोई भी टूट सकता है, लेकिन मुर्मू जी ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपना साहस बनाए रखा, वे लोगों की सेवा करती रहीं, अपने कर्तव्यों पर डटी रहीं और यही कारण है कि उन्हें देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के पद से नवाजा गया। दोस्तों जानते हैं, द्रौपदी मुर्मू जी को कई किलोमीटर पैदल चलकर पढ़ाई करने के लिए स्कूल जाना पड़ता था। रास्ता आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं छोड़ी। राष्ट्रपति बनने के बाद भी द्रौपदी मुर्मू जी अपनी सादगी और विनम्रता के लिए जानी जाती हैं। वे सभी से आदर और अपनापन दिखाते हुए मिलती हैं। दोस्तों, एक छोटे से गांव की इस बेटी ने कभी नहीं सोचा होगा कि वो एक दिन हमारे देश भारत की राष्ट्रपति बनेंगी, लेकिन मेहनत, ईमानदारी और सेवा के भाव ने उनके सपनों को सच कर दिया। इस प्रकार से दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू जी का जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां नहीं बल्कि हमारा साहस और मेहनत हमारी पहचान बनाती है। इसलिए दोस्तों, ईमानदारी से पढ़िए, मेहनत कीजिए और हमेशा दूसरों की मदद करने का प्रयास भी कीजिए। इन्हीं बातों के साथ मैं भाव्या अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।
0: क्या बात है भाव्या, आपने केवल माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के जीवन के बारे में ही नहीं बताया, लेकिन उनके जीवन से मिलने वाली प्रेरणा और संघर्ष की सीख भी हमारे सामने रखा।

अंत में आइए सुनते हैं बच्चों छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति पर केंद्रित सामूहिक गीत। प्रस्तुति दे रहे हैं आरुषि सिंह, अनुष्का महार, लवण्या साहू, प्रिशा तिवारी, यशस्वी रजक, युवान निर्मलकर और सागर कटेरिया।

0: बहुत खूब बच्चों, आपने सिर्फ एक लोकगीत नहीं गाया लेकिन हमारी माटी की खुशबू और छत्तीसगढ़ की लोक परंपरा को अपनी मधुर आवाज के माध्यम से हम सभी तक पहुंचाया। और जिस खूबसूरती से आपने एक साथ सुर मिलाए उससे आपकी प्रस्तुति हमारे दिलों को छू गई। बच्चों, ये शानदार प्रस्तुति थी ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल मिशन हॉस्पिटल रोड बिलासपुर के छात्र छात्राओं की। आशा करते हैं कि इनकी प्रस्तुति को आप सभी ने जरूर सराहा होगा। यदि आप भी कार्यक्रम के दौरान हमसे जुड़ना चाहते हैं, प्रस्तुतियों का हुनर प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो पत्रों के जरिए हमसे जरूर संपर्क करें। हमारा पता, कार्यक्रम चिट्ठी मिली द्वारा केंद्र निदेशक, पोस्ट बॉक्स नंबर 49, आकाशवाणी नूतन कॉलोनी सरकंडा बिलासपुर। पिन नंबर है 495006। आप हमें पत्र ईमेल bsp@gmail.com पर भी मेल्स के जरिए अपनी प्रतिक्रिया भेज सकते हैं। और बच्चों, आपको बताना चाहेंगे कार्यक्रम में प्रस्तुति मोनाली ठाकरे की। और अब अनुमति दीजिए आपकी दीदी लिंटा को कार्यक्रम समाप्त करने की। जय हिंद।
1: जय हिंद।
2: आओ बच्चों, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे, प्रस्तुति थी।

लिमटा की। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी बिलासपुर है। सुबह के 10:30 हुए हैं। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम नए तराने। कार्यक्रम का पहला गीत आप तक पहुंच रहा है मोनाली ठाकुर की आवाज में। कुमार ने लिखा है, मीत ब्रदर्स का संगीत है, फिल्म का नाम बागी।

बागी फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, मोनाली ठाकुर और साथियों की आवाज़ें। गीतकार थे कुमार और संगीतकार थे मीत ब्रदर्स।

0: दीदी नौकरी लग गई।
1: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
0: पर दीप
1: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
1: अच्छा
3: RBI कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना। अनुपम रॉय की आवाज़, गीत और संगीत में पीको फिल्म से लिया है इसे हमने।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती।
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती।
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता।
1: कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत।
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट।
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल। 22 की बातें यादों के उजाले।
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग
3: सखी सहेली।
1: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे।
1: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा।
5: मुझे याद सब है जरा जरा।
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
0: मन का सुकून दिल की आरती
1: सुरीली संदली।
6: FM बैंड 103.2 MHz पर आकाशवाणी बिलासपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नए तराने। और आइए अब सुनते हैं बिट्टू बॉस फिल्म का गीत। शाहिद मालिया की आवाज़ है, असीम अहमद अब्बासी ने लिखा है, राघव सच्चर का संगीत।

अरब महिला सभा हेतु सूचना सुनी। श्रोताओं, कार्यक्रम स्वास्थ्य वार्ता फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण हर महीने के दूसरे मंगलवार को होता है। इस माह इसका प्रसारण 11 अगस्त 2026 मंगलवार को शाम 5:35 से किया जाएगा। इसकी रिकॉर्डिंग 10 अगस्त दिन सोमवार को दोपहर 3:00 से 3:30 के बीच की जाएगी। आप हमें फोन करके डॉक्टर से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे कार्यक्रम के विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर आकांक्षा गुप्ता। आपसे चर्चा का विषय होगा फेफड़े एवं श्वसन रोग और उपाय। आप हमें फोन कर सकते हैं इस नंबर पर 07752 26599।

0: और अब आइए सुनते हैं आज के ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर उमाशंकर पांडे जी से।
1: नमस्कार। बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था पर आधारित दैनिक प्रस्तुति ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर के साथ मैं हूं उमाशंकर पांडे। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज विश्व आदिवासी दिवस है। शुभकामनाएं। इस अवसर पर जिले भर में तमाम प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस क्रम में आज कोटा, बिल्हा, हिर्री, बेलगहना, सकरी, सीपत, चकरभाटा, जूनापारा, तखतपुर थाना क्षेत्र में रैली, शोभा यात्रा आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी परिपेक्ष में शहर बिलासपुर में भी दो पृथक पृथक समूहों के द्वारा रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रातः 10 बजे जराभाटा आदिवासी छात्रावास से एक रैली चलकर मंदिर चौक, आम्बेडकर चौक, लखीराम ऑडिटोरियम, सिंह चौक, सदर बाजार, गोल बाजार होते हुए लाल बहादुर शास्त्री स्कूल प्रांगण पहुंचकर यहां स्थित देकी नंदन दीक्षित सभागार में सभा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। वहीं दूसरी रैली, जिसमें महिलाएं भी शामिल होंगी, यह प्रातः 11 बजे आदिवासी छात्रावास जराभाटा से प्रारंभ होगी, जो मंदिर चौक, इंदु चौक, अग्रसेन चौक, पुराना बस स्टैंड, तेलीपारा, गोल बाजार, नेहरू चौक होते हुए पुनः जराभाटा आदिवासी छात्रावास पहुंचकर संपन्न होगी। शहर के साथ साथ जिले भर में इस संदर्भ में आयोजित रैली के सभी सदस्य एवं आयोजकों से विशेष अनुरोध है, रैली के समय पूरी सड़क में बिखर कर ना चलें, कतार में चलें। और यह भी ध्यान रखें कि आपकी रैली के कारण आम यातायात तनिक भी बाधित ना हो, लोग परेशान ना हो, क्योंकि सभी को जल्दी है, सभी के पास अपना महत्वपूर्ण काम है। तथा यह भी ध्यान दें, रैली के दौरान एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड जैसे वाहनों के आने पर तत्काल साइड दे दें। मित्रों, ये भगवान शंकर जी का विशेष पूजन भक्ति का माह सावन चल रहा है। इसी श्रद्धा भक्ति के संदर्भ में जगह जगह कांवड़ यात्रा का भी आयोजन हो रहा है। आज शहर में भी एक विशेष कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया है। इस क्रम में आज छठ घाट तोरवा से प्रातः 9 बजे एक विशाल कांवड़ यात्रा प्रारंभ होगी, जो गुरु नानक चौक, जगमल चौक, गांधी चौक, सदर बाजार, गोल बाजार, सिंह चौक, देकी नंदन चौक, राम सेतु, सीपा चौक, नूतन चौक होते हुए जोरापारा मोड़ स्थित नंदेश्वर मंदिर में भगवान शिव जी पर जल अभिषेक पश्चात कांवड़ यात्रा संपन्न होगी। आप सभी कांवड़ यात्रियों से विशेष अनुरोध है, यात्रा के दौरान तथा जल अभिषेक के दौरान सुगम यातायात का ध्यान रखें। यदि आदिवासी समाज की रैली से कहीं भेंट होती है तो आपसी सामंजस्य बनाकर चलें। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा शुभ हो।
0: ये थे आज के ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर। अब आइए सुनते हैं अरिजीत सिंह की आवाज में राजी फिल्म का गीत। मेरे वतन। अलामा इकबाल ने लिखा है शंकर एहसान लॉय का संगीत।

और आइए अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं मणिकर्णिका फिल्म का गीत है। प्रसून जोशी ने लिखा है, शंकर महादेवन की आवाज़ है, संगीत शंकर एहसान लॉय का।

0: मणिकर्णिका फिल्म के इस गीत के साथ ही नए तराने कार्यक्रम अब हम यहीं समाप्त करते हैं। FM बैंड 103.2 MHz पर यह आकाशवाणी बिलासपुर है। दिन के 11 बजे हैं। अब से शाम के 5 बजे तक हम रिले करेंगे विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।
1: कार्यक्रमों की विविधता।

0: मित्रों, विविधा के इस अंक में हम लेकर आए हैं सृजन भारती के अंतर्गत 28 जुलाई 2026 को विविध भारती में आयोजित विशेष कार्यक्रम के संपादित अंश, जिसका शीर्षक था भारतीय फिल्म संगीत में वंदे मातरम। विशेषज्ञ थे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के मूर्धन्य अध्येता एवं लेखक मिलिंद प्रभाकर सबनीस। पेशे से चित्रकारिता के शिक्षक रह चुके मिलिंद जी को प्रेरणा मिली वंदे मातरम के बारे में लिखी पुस्तक से, जिसके लेखक थे अमरेंद्र गाडगिल। अप्रैल 1994 में वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की निर्वाण शती के अवसर पर अपनी युवावस्था में मिलिंद जी ने वंदे मातरम पर एक आयोजन में विचार व्यक्त किए और तब से आरंभ हुई एक शोध यात्रा जो आज तक अनवरत जारी है। भारतीय फिल्म संगीत में वंदे मातरम इस शोध यात्रा का एक हिस्सा भर है। आइए सुनते हैं सृजन भारती के अंतर्गत 28 जुलाई 2026 को विविध भारती में आयोजित एक विशेष ऑडियो विजुअल शो भारतीय फिल्म संगीत में वंदे मातरम, इसके संपादित अंश। विशेषज्ञ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के मूर्धन्य अध्येता एवं लेखक मिलिंद प्रभाकर सबनीस।
1: वंदे मातरम, वंदे मातरम।
2: नमस्कार। और वंदे मातरम, वंदे मातरम का ये 150वां जन्म वर्ष शुरू है। इस अवसर पे वंदे मातरम के विविध पहलुओं का जो परिचय है मैं करता रहा हूँ। पिछले 30-35 साल से वंदे मातरम पर जो कुछ अभ्यास संशोधन मैं कर रहा हूँ वो सब समग्र वंदे मातरम का एनसाइक्लोपीडिया जैसा है, उसमें मैंने लिखा है। लेकिन वंदे मातरम ये जो मंत्र है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बहुत बड़े लेखक थे, उपन्यासकार थे, काव्य बहुत उन्होंने कम किए, लेकिन भारत के साहित्य में उपन्यास लिखने वाले जो पहले 3-4 लेखक है, उपन्यासकार है, उसमें बंकिम चंद्र जी है। वंदे मातरम का जो संगीत प्रवास है वो बहुत बहुत ही लंबा है। रविंद्रनाथ से लेकर आज के A.R. रहमान और अजय अतुल तक अभी भी वो चालू है। और कुल मिलाकर मेरे ही पास 240 से भी ज्यादा वंदे मातरम की रिकॉर्डिंग्स है। भारतीय फिल्मों में वंदे मातरम का जो इस्तेमाल किया है, वंदे मातरम जिस स्वरूप में पिछले 100 बरस में आया है वो प्रस्तुत करने मैं जा रहा हूँ। बंकिम चंद्र एक विख्यात उपन्यासकार थे। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के बाद भारत में जनाकोश की एक लहर फैल गई। विशेषकर महाराष्ट्र और बंगाल में सामाजिक परिवर्तन तीव्र गति से हो रहे थे। उस समय के साहित्यकार और कलाकारों ने भी इस जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बंकिम चंद्र जी के जो साहित्यिक गुरु थे उनका नाम था ईश्वर चंद्र गुप्त। उन्होंने 1850 के आसपास एक कविता की थी, जननी भारत भूमि आव केन थाक तुमि। आधुनिक साहित्य में, पूरे भारतीय साहित्य में जननी भारत भूमि यानी मातृभूमि ये शब्द का इस्तेमाल करने वाले आधुनिक साहित्य के वो पहले साहित्यिक थे, ईश्वर चंद्र गुप्त। और उन्होंने बंकिम चंद्र जी को प्रोत्साहित किया उनके कॉलेज आयुष्य में। बाद में उस कविता के बाद शिशिर कुमार घोष ने 1870 के आसपास भारत माता नाम की एक बहुत अच्छी कविता लिखी। उस पर किरण चंद्र बंदोपाध्याय द्वारा 1873 में एक नाटक रचा गया और वो नाटक बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। बंकिम चंद्र अपने घर नैहाटी कांटा पड़ा कलकत्ता से 30-35 किलोमीटर के आसपास, ये छोटा गांव है, अश्विन शुद्ध अष्टमी के दुर्गाष्टमी के रात वो मूर्ति के सामने बैठे थे और रात के समय उन्हें उस मूर्ति में उन्हें भारत माता प्रतीत होने लगी और उन्होंने उठकर अपने कमरे में जाकर एक लेख लिखा। उसका नाम था अमार दुर्गोत्सव। अश्विन शुद्ध अष्टमी के रात और नवमी के

प्रातः काल में उन्होंने लेख लिखा। वो अमर दुर्गोत्सव उनका मानस पुत्र साहित्य का कमलाकांत वो नदी के किनारे पर बैठा है, उसमें उन्हें भारत माता दिखाई देती है और अदृश्य हो जाती है, तो वो व्याकुल होता है और वो माता का जय जयकार करता है, माता को बुलाता है, ऐसा उसमें आया है। ये लेख वंदे मातरम का पहला गद्य स्वरूप है, बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद केवल एक महीने के बाद कार्तिक शुद्ध नवमी के दिन 7 नवंबर 1875 के दिन बंकिम चंद्र ने एक ही समय पूरा वंदे मातरम 25 पंक्तियों का लिखकर पूर्ण किया। वो वंदे मातरम का पहला जो उपयोग है वो आनंद मठ कादंबरी में हुआ। आनंद मठ कादंबरी में वंदे मातरम का इस्तेमाल एक थीम सॉन्ग जैसे किया। कथानक में बार बार वंदे मातरम के शब्द आते हैं और उसके बाद आनंद मठ नाम का नाटक रंगमंच पर आया और उसमें पहली बार वंदे मातरम किसी ने, भवानंद के काम करने वाले पात्र ने पहली बार वंदे मातरम का गायन किया। वंदे मातरम लोगों तक पहुंचने लगा, लेकिन 1894 में बंकिम चंद्र जी का देहांत हुआ, तब तक वंदे मातरम इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ था। 1905 में बंगाल के पार्टीशन के समय वंदे मातरम ये शब्द हर एक भारतीयों के मन में जा चुके, हर एक संग्राम को एक रणगर्जना की आवश्यकता है ही, वैसी रणगर्जना हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को वंदे मातरम ये शब्द के रूप में मिली। और वो दिन था 7 अगस्त 1905, बालजी पेंढारकर और उनके भाई बाबूराव पेंढारकर ने वंदे मातरम आश्रम नाम की एक मुखपट बनाया था। उनकी फिल्म कंपनी का नाम भी वंदे मातरम फिल्म कंपनी था। 1924 में उन्होंने ये फिल्म निकाली, लेकिन सेंसर ने इतने कट्स का सुझाव किया कि वो फिल्म प्रदर्शित ही नहीं कर सके। उसके बाद मुखपटों में वंदे मातरम ये शब्द स्क्रीन पर दिखाई दिए। वंदे मातरम 1935 में पहली बार फिल्म में गाया गया और वो फिल्म का नाम ही था वंदे मातरम। बंगाली फिल्म थी, सुकृति सेन इन संगीतकार ने इसकी संगीत रचना की है।

वंदे मातरम ये शब्द भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबसे ऊंचा स्थान पर गए। वंदे मातरम ये शब्द बोलकर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना बहुत महत्वपूर्ण समझने जाने लगा। कलाकार, संगीतकार, चित्रकार, इन लोगों को भी ऐसे लगा कि हम भी इस स्वतंत्रता संग्राम में अपने कला द्वारा सहभाग लेंगे। तो संगीतकार

और गायक लोगों ने वंदे मातरम का गायन किया। मराठी फिल्म नीलकंठ मास्टर 2015 में ये फिल्म रिलीज हुई। गजेंद्र अहिरे नाम के बहुत जाने माने दिग्दर्शक है, उन्होंने दिग्दर्शित की थी और संगीतकार है अजय अतुल। इंग्रजी में जैसे हम थीम सॉन्ग कहते हैं वैसे ही इस फिल्म में उसका उपयोग किया है।

1909 साल में हुतात्मा अनंत कान्हे ने अपना बलिदान दिया, वंदे मातरम बोलकर वो फांसी पर चढ़े। यह फिल्म उनके चरित्र पर, उनके बलिदान पर आधारित थी। उनकी क्रांतिकारी यात्रा का चित्रण करते हुए वंदे मातरम का प्रयोग क्रांतिकारियों को प्रेरणा गीत के रूप में इस फिल्म में किया है। यह गीत फिल्म में अपने संपूर्ण रूप में नहीं बल्कि विभिन्न प्रसंगों में खंडों के रूप में सुनाई दिया है। केवल यही फिल्म ऐसी है कि इसमें पूरा वंदे मातरम का इस्तेमाल किया है। संगीतकार प्रदीप वैद्य ने केवल यही एक फिल्म संगीतबद्ध की है। गायक जयदीप दिग्विजय वैद्य। हम सुनेंगे वंदे मातरम हुतात्मा अनंत कान्हे 1909 फिल्म से।

वंदे मातरम ये शब्द हर एक भारतीय व्यक्ति के लिए गौरव की बात है, अभिमान की बात है। तो वंदे मातरम का उपयोग केवल मराठी या हिंदी फिल्म में किया ऐसे नहीं है, सभी भारतीय भाषाओं में उसका प्रयोग किया है। अब हम सुनेंगे तमिल फिल्म भारती, इसमें वंदे मातरम का इस्तेमाल किया है। ये वंदे मातरम तमिल रूपांतर है। प्रसिद्ध कवि सुब्रमण्यम भारती, तमिल भाषा के बहुत बड़े राष्ट्रकवि, उन्होंने वंदे मातरम ये शब्द सुनकर उन्होंने एक गीत तमिल भाषा में किया। ये जो फिल्म है उसे राष्ट्रपति अवार्ड मिला था सन 2000 में। इस फिल्म की विशेषता यह है कि इसमें सुब्रमण्यम भारती का कैरेक्टर जो किया है वो मराठी अभिनेता सयाजी शिंदे ने किया है और उसके लिए उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला है। और इस फिल्म का संगीत विख्यात संगीतकार इलाय राजा ने किया है। इलाय राजा ने केवल दो फिल्मों के लिए वंदे मातरम संगीतबद्ध किया, इसमें एक हिंदी है और एक ओरिजिनल वंदे मातरम है और दूसरा वंदे मातरम ये तमिल है। गायक और गायिका मधु बालकृष्णन।

1996 में एक फिल्म आई थी फातिमा मीर के उपन्यास द अप्रेंटिसशिप ऑफ अ महात्मा, इस उपन्यास पर आधारित ये फिल्म थी। महात्मा गांधी के युवावस्था के उन 21 वर्षों का चित्रण इस फिल्म में किया है। आर्ट फिल्म के जाने माने निर्देशक श्याम बेनेगल ने इसका निर्देशन किया था। रजत कपूर ने युवा गांधी का पात्र निभाया था। इस फिल्म का नाम था मेकिंग ऑफ द महात्मा और हिंदी में नाम था गांधी से महात्मा तक। इस फिल्म में गांधी जी एक सत्याग्रह के दौरान जन प्रेरणा के लिए वंदे मातरम गीत केवल 2 पंक्तियों का प्रयोग इसमें उन्होंने किया है। ये गाना गाया है प्रसिद्ध पॉप गायिका उषा उत्तप ने और संगीत दिया है वनराज भाटिया ने।

अगला फिल्म है सबूज द्वीप राजा। चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी के तरफ से ये फिल्म का निर्माण किया था बच्चों के लिए। दिग्दर्शक थे तपन सिन्हा और संगीतकार थे तपन सिन्हा और आलोकनाथ डे। फिल्म में वंदे मातरम दो भागों में प्रस्तुत किया था। पहला भाग फिल्म के आरंभ में आता है जहां क्रांतिकारी तालुकदार के अतीत का चित्रण किया गया है, जबकि दूसरा भाग फिल्म के समापन पर सुनाई देता है। इसकी धुन में बंगाल की रविंद्र संगीत की परंपरा का स्पष्ट प्रभाव अनुभव होता है, जो इस प्रस्तुति का एक विशिष्ट सांगीतिक पहचान होती है।

1971 में और एक बंगाली फिल्म बनी, उसका नाम था महाविप्रभो अरविंद, श्री अरविंद, योगी अरविंद के जीवन पर आधारित यह फिल्म थी। इसमें वंदे मातरम गीत तीन अलग अलग प्रसंगों में सुनाई देता है। इसके संगीतकार है हेमंत कुमार मुखर्जी। हेमंत कुमार मुखर्जी बहुत प्रतिभावान संगीतकार थे। उन्होंने दो अलग अलग चित्रपटों के लिए संगीतबद्ध वंदे मातरम किया और वो दोनों ही वंदे मातरम अलग अलग ही है। ये जो धुन है वो रविन्द्रनाथ ठाकुर की मूल धुन के आधार पर उन्होंने बनाई है। पहली बार यह गीत फिल्म के शीर्षक यानी टाइटल सॉन्ग के स्वरूप में आती है। हेमंत कुमार का स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करता है। हम पहले सुनेंगे वंदे मातरम टाइटल सॉन्ग महाविप्रभो अरविंद से।

इसी फिल्म में तीसरा जो वंदे मातरम है वो और भी थोड़ा अलग है। अंत में जब योगी अरविंद सांसारिक जीवन का त्याग कर ईश्वर प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक मार्ग का वर्णन करते हैं, तब देवी की दर्शन के प्रसंग में वंदे मातरम एक बार पुनः सुनाई देता है। इस प्रकार गीत का अंतिम प्रयोग राष्ट्रभक्ति और आध्यात्मिक चेतना के अद्भुत संगम का प्रतीक बनकर उभरता है।

इसी फिल्म में टाइटल सॉन्ग के रूप में वंदे मातरम प्रस्तुत किया था, वैसे ही और एक हिंदी फिल्म में केवल टाइटल सॉन्ग के लिए वंदे मातरम का प्रयोग किया था, इसीलिए उसकी रिकॉर्ड बाजार में नहीं आई। वो फिल्म थी विडर, दिग्दर्शक थे राम मुखर्जी और प्रख्यात संगीतकार नौशाद ने इस गीत को संगीतबद्ध किया था। इस फिल्म की शुरुआत ही इसी टाइटल सॉन्ग से होती है। वंदे मातरम मार्चिंग सॉन्ग जैसे केवल दो संगीतकारों ने ही बनाया है, उसमें से एक ये है और दूसरे तिमिर बरन भट्टाचार्य है। हम सुनेंगे फिल्म विडर वैजयंती माला और दिलीप कुमार समूह स्वर में।

स्वतंत्रता के बाद जो पहली फिल्म आई जिसमें वंदे मातरम का उपयोग किया था वो थी आंदोलन। निर्देशक थे फणी मुजुमदार और संगीतकार थे विख्यात बांसुरी वादक पन्नालाल घोष। वंदे मातरम की संगीत रचना 200 से ज्यादा है। उसमें जो चार पांच संगीत रचना सबसे बढ़िया है उसमें से ये एक है। और फिल्म की एक विशेष उपलब्धि यह है कि इस फिल्म में रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा गाया गया जनगणमन चित्रित किया था वो देखना मिलता है। इसके अतिरिक्त 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के वायु दृश्यों को प्रस्तुत करने वाली यह स्वतंत्रता के बाद की पहली फिल्म थी। इस गीत के संगीत प्रख्यात बांसुरी वादक पन्नालाल घोष ने किया था। इसमें सुधा मल्होत्रा, पारुल घोष और मन्ना डे ने स्वर दिया था।

1951 में आनंद मठ फिल्म, लेकिन वो थी बंगाली फिल्म। हिंदी फिल्म किससे पहले ये फिल्म आई थी, उसमें दिग्दर्शक थे सतीश दास गुप्ता और संगीत था सुबर दास गुप्ता, बंगाल के प्रख्यात संगीतकार थे। इस फिल्म में वंदे मातरम फिर एक बार अलग ढंग से प्रस्तुत किया है। बंगाल की एक लोक संगीत प्रसिद्ध है बाउल संगीत, इसमें वंदे मातरम का इस्तेमाल बाउल संगीत जैसा किया है, यानी भजन जैसा किया है। बहुत ही अलग सा ये संगीत है। हिंदी जो आनंद मठ फिल्म है उसमें रणगीत जैसा वंदे मातरम का इस्तेमाल किया है, लेकिन इसमें पूजा गीत जैसा, प्रार्थना गीत जैसा वंदे मातरम का उपयोग किया है। हम सुनेंगे बंगाली फिल्म आनंद मठ, संगीत सुबरदास गुप्ता और स्वर है द्विजेन मुखोपाध्याय और अरुंधति मुखर्जी।

लेकिन ऐसे कुछ फिल्म जगत के जाने माने संगीतकार हैं जिन्होंने वंदे मातरम की धुन बनाई, लेकिन उसका इस्तेमाल फिल्मों में नहीं किया गया। पहली है संगीतकार और गायक पंकज मौर्य इनकी धुन। पंकज मौर्य न्यू थिएटर के प्रमुख संगीतकारों से एक थे। वे रविंद्र संगीत के विख्यात गायक भी थे और उनके द्वारा प्रस्तुत वंदे मातरम की धुन वंदे मातरम की रविंद्रनाथ की जो धुन है उससे अलग है, ये महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने अपनी विशिष्ट शैली के माध्यम से इस गीत को अलग सांगीतिक पहचान प्रदान की है। हम सुनेंगे पंकज मौर्य द्वारा गाया हुआ वंदे मातरम।

मास्टर कृष्णाराव पुरंबीकर ये प्रख्यात गायक और संगीतकार थे, भास्कर बुआ बखरे के शिष्य और बाल गंधर्व के गुरु बंधु थे। उन्होंने वंदे मातरम जो किया वो वंदे मातरम राष्ट्रगीत बनाने के लिए पंडित नेहरू के साथ उन्होंने सांगीतिक संघर्ष किया, उसकी एक अलग ही कहानी है। आज जो हम वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के रूप में देखते हैं उसका कारण मास्टर कृष्णाराव पुरंबीकर ने घटना समिति के साथ किया गया सांगीतिक संघर्ष ये महत्वपूर्ण कारण है। मास्टर कृष्णाराव ने झिंझोटी राग में वंदे मातरम का बंधन किया और अन्य कुछ रागों में भी उन्होंने वंदे मातरम किया था। हम सुनेंगे मास्टर कृष्णाराव द्वारा झिंझोटी राग में वंदे मातरम।

तीसरे संगीतकार है वसंत देसाई। वंदे मातरम को बहुत सारे संगीतकारों ने संगीतबद्ध किया, लेकिन वंदे मातरम ये राष्ट्रगीत है और राष्ट्रगीत की तरह से उन्हें संगीतबद्ध किया जाना चाहिए, ये विचार बहुत कम संगीतकार ने किया है। उसमें से एक है वसंत देसाई। धुन एक ही है, लेकिन उसके लिए जो वाद्य का इस्तेमाल किया है वो अलग अलग है। हम सुनेंगे जो रिकॉर्ड, उसमें उन्होंने ढोल, ताशा, तुतारी, बांसुरी, ये भारतीय वाद्यों का उपयोग किया है, शंख का भी उपयोग किया है।

चौथे संगीत का है ज्ञान दत्त, और इसका गायन किया है गीता दत्त और जी एम दुरानी ने। लेकिन ये वंदे मातरम थोड़ा अलग ही है। इस रिकॉर्ड में अपेक्षापूर्ण तेज गति से प्रस्तुत किया है। संक्षिप्त होने पर भी इसकी प्रस्तुति अत्यंत प्रभावशाली है। हम सुनेंगे गीता दत्त जी एम दुरानी, संगीत का ज्ञान दत्त।

संगीत रचना है तिमिर बरन भट्टाचार्य। भारतीय शास्त्रीय संगीत के इतिहास में सरोद वाद्य पर शास्त्रीय संगीत बजाने वाले वे पहले सरोद वादक थे। 1938 के आसपास सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे, तब तिमिर बरन भट्टाचार्य ने वंदे मातरम उनके लिए तैयार किया था और पहला भाषण सिंगापुर से किया आजाद हिंद सेना का नेतृत्व लेने के बाद। तब भाषण पूरा होने के समय यही रिकॉर्ड उन्होंने बजाए। सुभाष चंद्र बोस की अत्यंत प्रिय ये रिकॉर्डिंग थी।

यार रहमान ने वंदे मातरम किसी फिल्म के लिए नहीं किया है. स्वतंत्रता को जब 50 बरस पूरे हुए तो 1997 में उन्होंने वंदे मातरम का एल्बम बनाया था. उसी बरस में 1997 में रंजीत बारोट यह संगीतकार ने वंदे मातरम 2 नाम की पहले कैसेट बाद में सीडी बनाई. उसमें साजिद खान ने राजस्थानी लोक संगीत जैसे वंदे मातरम गाया था. कौशिकी चक्रवर्ती आज की प्रख्यात गायिका, उन्होंने वंदे मातरम का गायन किया था. और पॉप म्यूजिक शैली में प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका शुभा मुद्गल ने वंदे मातरम का गायन किया था. हेमंत कुमार मुखर्जी ने 3 फिल्म के लिए वंदे मातरम गाया और 2 फिल्म के लिए संगीतबद्ध किया, लेकिन वो सब वंदे मातरम एक से दूसरे अलग है. इसी फिल्म में 2 बार वंदे मातरम प्रस्तुत किया है. हिंदी आनंद मठ में 1952 में ये फिल्म आई. इस फिल्म का बहुत सारे वैशिष्ट्य है कि जिसमें दिग्दर्शक है हेमेंद गुप्ता. हेमेंद गुप्ता जी ने स्वातंत्र्य संग्राम में सहभाग लिया था, इसलिए इस फिल्म का दिग्दर्शन कर अलग ही दिखाई देता है. राष्ट्रभक्ति की भावना अन्य फिल्मों से ज़्यादा इसमें दिखाई देती है. पहला जो गायन है वो खुद हेमंत कुमार ने किया है. गीत का आरंभ हेमंत कुमार के करुण स्वर आर्त स्वर से होता है. हेमंत कुमार का भावदर्शन बहुत ही सुंदर है.

वंदे मातरम को अब तक अनेक संगीतकारों ने विभिन्न धुनों में स्वरबद्ध किया है और लगभग सभी धुनें अपने अपने ढंग से उत्कृष्ट है, किंतु फिल्मी रूपांतरण में इस प्रस्तुति को जो लोकप्रियता और जन स्वीकृति मिली वह अद्वितीय है। 2003 में बीबीसी वर्ल्ड सर्विस द्वारा 165 देशों के श्रोताओं के बीच कराए गए सर्वेक्षण में लता मंगेशकर द्वारा गाए गए इसी वंदे मातरम को विश्व के सार्वकालीन 10 सर्वश्रेष्ठ गीतों में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था। लता मंगेशकर का गायन एक साथ वीरता और करुणा दोनों भावों से परिपूर्ण है। अनेक स्वर में जहां एक और ओज और आक्रोश का संचार है, वही दूसरी ओर मातृभूमि के प्रति समर्पण और संवेदना की गहरी अनुभूति भी है। यह गीत अभिनेत्री गीता बारी पर फिल्माया गया है। यदि लता मंगेशकर द्वारा वंदे मातरम शब्द पर ली गई प्रत्येक तान को ध्यानपूर्वक सुना जाए तो हर बार उनके एक नया स्वर विन्यास और सूक्ष्म वैविध्य अनुभव होता है। वंदे मातरम का यह रिकॉर्डिंग आज सबसे लोकप्रिय रिकॉर्डिंग माना जाता है।

0: कंठ संगीत में यानी वोकल गायन में तीन गायकों को भारत रत्न मिला, उनमें से पहली थी डॉक्टर एम एस सुब्बलक्ष्मी, दूसरी थी लता मंगेशकर और तीसरे थे पंडित भीमसेन जोशी। तीनों भारत रत्न ने वंदे मातरम गाया है अलग अलग तरह से। लता मंगेशकर जी ने गाया है अनंत मठ फिल्म के लिए, एम एस सुब्बलक्ष्मी ने गाया है दो वंदे मातरम की उनकी रिकॉर्ड है, एक गाई है दिलीप कुमार रॉय के साथ दक्षिणी और उत्तर हिंदुस्तानी जुगलबंदी के रूप में वंदे मातरम का गायन, और दूसरा वंदे मातरम उन्होंने गाया है सुब्रमण्यम भारती द्वारा तमिल वंदे मातरम। और भीमसेन जोशी जी ने 1997 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को 50 वर्ष जब पूर्ण हुए तो 14 अगस्त को रात 12 बजे संसद के विशेष अधिवेशन में भीमसेन जोशी जी ने वंदे मातरम गाया। तीनों भारत रत्न ने वंदे मातरम गाया है ये एक अलग ही बात है।
1: सृजन भारती के अंतर्गत 28 जुलाई 2026 को विविध भारती में आयोजित विशेष ऑडियो विजुअल शो भारतीय फिल्म संगीत में वंदे मातरम, इस कार्यक्रम के ये थे संपादित अंश। विशेषज्ञ थे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के मूर्धन्य अध्येता एवं लेखक मिलिंद प्रभाकर सबनीस। इस विशेष कार्यक्रम का संयोजन किया था शिल्पा मिलिंद सबनीस ने, संपादन एवं प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। इसी के साथ आज का विविधा कार्यक्रम अब संपन्न होता है।
2: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू होकर 17 अगस्त तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये अब एक बड़े जन भागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष देशभर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानून प्रौद्योगिकी, समयबद्धता और विश्वास के 3 महत्वपूर्ण स्तंभों पर आधारित।

0: आयोजित हैं। गृहमंत्री ने गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में ये बात कही।
1: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अंग्रेजों के बनाई हुई दंड संहिता को बदलकर 3 भारतीय न्याय संहिताओं को लागू किया है। ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये 3 पिलर पर खड़ी की गई है।
0: श्री अमित शाह आज पुदुचेरी के मुरुगा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य और देश के विकास में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 15 अगस्त से राष्ट्र निर्माण में भागीदार कार्यक्रम में शामिल होने का आह्वान किया है। श्री नायडू ने कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और मेरा राष्ट्र राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को बढ़ावा देने का आह्वान किया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश में 124 पात्र कैदियों की सजा में कमी की जाएगी। इनमें से 118 आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों को समय से पहले रिहा किया जाएगा। 6 अन्य पात्र कैदियों को विशेष छूट दी जाएगी। ये छूट अच्छे आचरण, अनुशासित व्यवहार और निर्धारित नियमों के पालन के आधार पर दी जाएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के करो या मरो के आह्वान से प्रेरणा लेकर इन सेनानियों ने देशवासियों को स्वतंत्रता संग्राम के लिए एकजुट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों और आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन वीरों का साहस हमेशा हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। सरकार ने पंजाब की मंडियों में पड़े 18 लाख मीट्रिक टन पुराने अनाज के भंडार को 20 सितंबर तक उठाने पर सहमति व्यक्त की है, ताकि राज्य में धान की बंपर फसल की उम्मीद के चलते भंडारण की जगह खाली हो सके। पंजाब से इस वर्ष केंद्रीय भंडार में 170 लाख मीट्रिक टन अच्छी गुणवत्ता वाले चावल की आपूर्ति होने की उम्मीद है। सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। सबसे ज्यादा 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति मद्रास उच्च न्यायालय में हुई है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध अब समाधान की ओर है। राज्य सरकार आज आंदोलनकारी छात्रों के साथ अगले दौर की वार्ता करेगी। आज विश्व जनजातीय दिवस के अवसर पर नागालैंड के राज्यपाल नंद किशोर यादव ने प्रकृति और समृद्ध संस्कृति तथा परंपराओं और विरासत का संरक्षण करने वाले सभी जनजातीय समुदाय के लोगों के प्रति सम्मान व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्थानीय ज्ञान, परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का आह्वान किया। इस बीच नागालैंड जनजातीय मंच आज दीमापुर के टाउन हॉल में विश्व जनजातीय दिवस का आयोजन कर रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में नागालैंड पहली बार इस दिवस की मेजबानी कर रहा है। भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर अपना पहला बीडब्ल्यूएफ विश्व टूर खिताब हासिल किया है। फाइनल में अश्मिता ने चीन की हान क्यानशी को हराया। चीन के हेफेई में 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में भारत के साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरी।

0: आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म सौतन से।
1: एक आवाज जिसमें है जोश, जुनून।

जो आपको अपने साथ बहा कर ले जाती है। एक आवाज जिसके साथ जुड़ी है आपकी

0: आ रहे हैं
1: महबूबा महबूबा महबूबा
0: विविध भारती पर
1: सुंदरा
0: 12 अगस्त दिन में और रात में 11 बजे
2: विविध भारती का ये कार्यक्रम है यादों की महफिल।

0: मुकेश की आवाज में सबक फिल्म का गीत आप सुन रहे थे।
1: वो कॉमिक क्रिएटर है।
2: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
1: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
2: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
2: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
1: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

महेश किशोर की आवाज थी, सावन कुमार की रचना आपने सुनी, बिपिन सचदेवा लता मंगेशकर के युगल्स फिल्म में। ये गीत था सनम बेवफा फिल्म से।

श्रोताओ, आज यादों की महफिल कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं लेखक, निर्माता और निर्देशक सावन कुमार की फिल्मों के नगमे।

0: उषा खन्ना की बनाई तर्ज पर इसे गाया मोहम्मद रफी ने। हवस फिल्म का गीत आपने सुना, सावन कुमार का लिखा।
1: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान,
2: चार औरतों की

0: थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गाँव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं थी।
1: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
0: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

0: साजन की सहेली इस फिल्म का दो गाना था, मोहम्मद रफी सुलक्षणा पंडित की आवाजों में, मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत आपने सुना, संगीत था उषा खन्ना का।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई गांवों में खिली गलियां,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत,
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
2: तुम्हारी याद सताते हैं
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप आए बाहर आई फिल्म का गीत था, मोहम्मद रफी लता मंगेशकर का गाया, आनंद बख्शी के बोलों को सुरों में ढाला लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। यही है श्रोताओं आज के कार्यक्रम यादों की महफिल की आखिरी पेशकश।

एक आवाज जिसमें है जोश, जुनून, नशा। एक आवाज जो आपको अपने साथ बहा कर ले जाती है। एक आवाज।

0: आ रहे हैं
1: महबूबा
0: विविध भारती पर।
1: सुनिए
0: 12 अगस्त दिन में और रात में 11

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। अपने सभी श्रोताओं का हम इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। रुनझुन बूंदों की बौछारें लिए आपके रेडियो सेट पर श्रोताओं आ चुका है विविध भारती का कार्यक्रम सुरीला सफर। हम सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं।

और हमारे जो श्रोता आज नए नए जुड़े हैं फेसबुक से या फिर हमारे इस कार्यक्रम से, उन सभी का भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। बने रहिए हमारे साथ सुरीला सफर कार्यक्रम में। आज की जो इबारत है वो हमारे श्रोताओं ने वैसे देखी है और पढ़ी भी है, देखी भी है फेसबुक पेज पर और लिखा भी है बहुत कुछ, तो ये इबारत जल्दी से आपके लिए पढ़ देते हैं। सुंदर सजीली धरा पर हरियाले सावन की छटा, नव पल्लवित पुष्पों की झनकार, बादलों का मृदंगवाद, चमकी बिजुरिया, बूंदों की गागर छलकी, तो नींद नहीं आए, कोई पास तो कोई दूर, कहीं मेघ मल्हार, कहीं कजरी की तान, कोयल की कूक, पपीहे की पुकार, बाग बगीचे और खेतों की हरियाली, पावस ऋतु में मिलन की आस, मोर का सजीला नृत्य, सावन की इस नैया में तन भीजे मन भीजे, जी डरे और करे पिया की पुकार कि घर आजा संग साजन झूला झूली। अब के सावन में गजब हुई गवा, मन लाजवंती सा छुई मुई हुई गवा, झरने पानी से खिलाते हैं, सरिता में भर गया नूतन पानी, पत्थरों में भी फूलों का इंद्रधनुषी श्रृंगार, छोटी सी उम्र से अनजान प्रकृति में रंग भरती नन्ही तितलियां, धरती अंबर में ये कैसा लगा है सावन का मेला। श्रोताओं आप समझ चुके हैं आपके रेडियो सेट पर आजकल वैसे सावन का मौसम छाया है, क्या क्या छुपा है सावन की बूंदों में, जरा दिल से पूछिए। दिल का राग, कभी दूरी कभी कोई पास पास, छोटे छोटे झरनों की अंगड़ाइयाँ, तालाब पोखरों नदियों में उमड़ता पानी, हरियाली हर तरफ, मवेशियों के लिए चारागाह, हल बैलों के घुंघरुओं की रुंझन आवाजें जैसे घन बरसता हो, रात कभी कभी बिजलियों से सिहर जाती है, क्या रात क्या शामें क्या सुबह, सब भीगे अंदाज में नजर आते हैं। पिछले सावन क्या कुछ छूटा, इस सावन क्या कुछ नयापन लेकर आया हरियाला सावन, क्योंकि ये एक मौसम ऐसा है श्रोताओं, जितनी खुशी हमारे दिल में होती है उतनी ही खुशियाँ घर के बाहर प्रकृति में भी नजर आती हैं। सावन का वो कौन सा खास अंदाज है जो आपके दिल को छू जाता है, ये बातें आप हमसे साझा कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स हम आपके आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। हमारे जो श्रोता नए हैं उन्हें बता दें आपको लॉग ऑन करना है www.facebook.com/vbsmumbai और आपको इस पते पर अपनी प्रतिक्रियाएं अपने कमेंट्स भेजने हैं। रेडियो श्रोताओं का भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अब ये फिल्म पहचानिए। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

तो सचमुच नाच उठता है सावन में। और जब गायन की बात करें तो राग मेघ मल्हार और कजरी की तान हर सू सावन के मौसम में नजर आती है। श्रोताओं, अगले गीत में आपको संगीतकार बताने हैं और फिल्म में जो कलाकार हैं उन्हें पहचानना है। वैसे इन कलाकारों की और भी फिल्में हैं, कौन सी फिल्म आपको अच्छी लगती है अगर आप चाहें तो बता सकते हैं। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि सावन आते ही जैसे प्रकृति अपने आंचल में धरती को सजा लेती है, नव पल्लवों की हरियाली, फूलों की मुस्कान, बादलों का मृदंग और बिजली की चमक सब मिलकर ऐसा संगीत रचते हैं जिसमें मन अनायास ही झूम उठता है। बारिश की बूंदें जब धरती पर गिरती हैं तो लगता है जैसे आसमान ने अपनी प्रेम पाती धरती के नाम लिख दी हो। कहीं मेघ मल्हार की तान तो कहीं पपीहे कोयल कजरी की मिठास, बाग बगीचों से लेकर खेतों तक हर ओर हरियाली का साम्राज्य है। झरने इतलाते हुए बह रहे हैं और मोर अपने सजीले नृत्य से सावन का स्वागत कर रहे हैं। और बहुत सारे मधुर गीत भी इन्हें आज याद आ रहे हैं, कुछ एक गीत इन्होंने बताए भी हैं। वैसे आपको ये भी बताना है श्रोताओं कि आजकल जब हम सावन की बात करते हैं तो खेतों की भी बात करते हैं। आप जरूर व्यस्त होंगे, हमारे कृषक जो हैं वो खेतों में, तो आप विविध भारती कहाँ से सुन रहे हैं जरूर बताइए और वहाँ का मौसम कैसा है ये भी बताइए। वैसे आपके प्रदेश में सावन किस खास अंदाज में मनाया जाता है, कोई खास परंपरा तो आप लिख सकते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि सावन के सुहावने मौसम में रिमझिम फुहारों के बीच पिया मिलन की आस और उनसे जुदाई किए का एहसास दिल को बहुत तड़पाती है और हर पल अपनी पिया के पास होने की इच्छा और तीव्र हो जाती है, जिससे दो दिलों की दूरियां दिल में बेचैनी और तड़प को बढ़ा देती है, जिससे बारिश की बूंदें मन में ठंडक के बजाय सुरीली उदासी से भर देती हैं। सावन के सुहावने मौसम में अपने पिया मिलन की पुरानी यादों को जगाता है, जिससे भीगी हुई धरती और उमड़ते घुमड़ते काले बादल मन को अत्यधिक भावुक बना देते हैं। जी हाँ, आजकल वैसे श्रोताओं देखें तो हर तरफ बस निगाहें बादलों पर ही टिकी हैं। ये बादल जो सावन में आजकल छाए हुए हैं, इनका रंग बड़ा निराला होता है।

0: खरीफ आ गया
1: दिल तेरा दीवाना है सनम, ओ दिल तेरा।

सिन्हा और शमी कपूर पर फिल्माया गया दिल तेरा दीवाना फिल्म का ये टाइटल सॉन्ग आप सुन रहे थे श्रोताओं। दो बीघा जमीन फिल्म के लिए हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने डिटेल्स जो लिखी है बिल्कुल ठीक लिखी है और शैलेंद्र की रचना थी वो गीत जो आपने सुना। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि ग्राम में पृष्ठभूमि और शैव क्षेत्र के वाशिंदे होने के कारण सावन सदैव सर्वश्रेष्ठ लगता है, कृषि धान रोपण आदि आदि की इन्होंने बात करी है। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि सावन का महीना केवल प्रेमियों के मिलने का समय नहीं बल्कि ये आम आदमियों परिवारों और पूरी दुनिया के लिए भगवान शिव की भक्ति प्रकृति के उत्सव और आत्म शुद्धता का पवित्र मास है। इसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व शिव उपासना का है। ये पूरा महीना भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा को समर्पित है। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है अब के सावन में जी डरे तन मन पे पानी गिरे और कुछ हमारे श्रोताओं ने सावन का महीना पवन करे शोर इस फिल्म की इस गीत की बात की है और हमारे एक

और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि इतने सारे गीत जो हैं वो हमें याद आ रहे हैं, देखते हैं कि कौन सा गीत जो है वो आज शामिल हो पाता है। और एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि ऋतु चक्र के गतिमान जीवन का कि उत्सव धर्मिता के परिप्रेक्ष्य में सावन प्रकृति के उल्लास सृजन का प्रतीक है। ये केवल जल वर्षा का समय नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर छिपे राग प्रेम और सांस्कृतिक उत्सवों को जीवंत ताने बाने का अनुपम दस्तावेज है। रिम झिम फुहारे फुहारे कजरारे बादलों की गर्जन मोर और पपीहे की कोख से उत्पन्न होने वाली संगीत लहरियों से मानव मन में एक उत्सव धर्मिता का संचार होता है। झूला झूलना मल्हार कजरी और अन्य लोकगीतों के गायन की गूंज सामाजिक सौहार्द को मजबूत करती है। सावन पावस के रूप में भक्ति और श्रृंगार रस के विभिन्न रंगों से जुड़कर विरह और वियोग की तीव्रता से प्रकृति के उल्लास चित्त को आकर्षित करता है। ऋतुओं के इस शाश्वत चक्र में सावन मनुष्य को प्रकृति के साथ लयबद्ध होने और जीवन को उत्सव की तरह जीने का संदेश देता है। जी हाँ, प्रकृति के साथ रहना, लयबद्ध होना, ये भी सावन सिखाता है। और इसी लय में एक बड़ी खूबसूरत सी चिड़िया जो मानसून के सीजन में अपना खास घोंसला बनाती है, ये कौन सी चिड़िया है और ये किस तरह का घोंसला बनाती है, क्या आपने इसे देखा है, तो आप हमें जरूर लिखें। और ये गीत जो अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, इस गीत को कब आपने गाया, गाते हैं इस गीत को बारिश के मौसम में।

जलालाबादी के बोल थे कल्याण जी, आनंद जी की तरस थी। हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि स्कूल के दिनों में अगर बारिश हो गई और हमें मौका मिला रोड पर चलने का, तो गाने की लाइन इतना याद नहीं रहती। उस समय राज कपूर का पानी में छप्पा छैया करना बहुत पसंद आता था और हम सभी एक इस तरह की हरकत करके एक दूसरे को भी भिगोते थे। वैसे राज कपूर साहब का एक और गीत है श्रोताओं, जो बारिश का बहुत ही प्रसिद्ध गीत है। वो गीत अगर आपको याद आ रहा हो तो आप जरूर बताएं। एक और श्रोता ने राज कपूर नूतन द्वारा जो है इस फिल्म में अभिनीत इस फिल्म छिलिया की बात की है। एक और श्रोता लिखते हैं कि सावन आते ही हरियाली जो चारों तरफ दिखाई देती है और हमारे घर के पास के मंदिर से आती शिव जी के भजनों की आवाज और महिलाओं का हरे रंग की साड़ी पहनकर सजना संवरना बड़ा ही अच्छा है। और जी हाँ, और मेहंदी भी तो लगाई जाती है। तो हमारी जो श्रोता सखियां हैं वो बता सकती हैं। वैसे मेहंदी की अगर बात किया जाए तो मेहंदी का आजकल चलन थोड़ा थोड़ा सा बदल रहा है, यानी मेहंदी जो है वो अलग तरह से लगाई जाती है। इस बारे में अगर आप बताना चाहें तो बता सकती हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि सावन का महीना केवल बारिश का नहीं बल्कि यादों, प्रेम और आस्था का भी है। शिवालयों में गूंजते हर हर महादेव के स्वर और मन में उमड़ते भाव जीवन को एक नई ताजगी दे जाते हैं। शायद यही वजह है कि सावन हर साल आता तो है लेकिन हर बार दिल में एक नई कहानी छोड़ जाता है। पिछले सावन में श्रोताओं, कौन सी ऐसी बात थी जो आपकी इस सावन में पूरी हुई? तो ये जो परिवर्तन है वो कैसा लगा या क्या कुछ परिवर्तन हुआ, ये आप बता सकते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि पटना में कल रात में बारिश हुई, अभी तो तेज धूप निकली है। आज एकादशी के दिन मंदिरों को खूब सजाया जा रहा है और श्रीहरि और महादेव दोनों की पूजा चल रही है। एक और श्रोता ने लिखा है, क्या किए कोई मन भाग गया, दिल में हमारे वो समा गया। हंस के किसी ने देखा एक बार, दिल की मुराद कोई पा गया। सांसों की मीठी आग, होंठों पे मीठा मीठा राग, और अपने मन का इन्होंने गीत भी बताया है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज जो गीत हैं, यानी सावन का के जो गीत हैं और जो बारिश के जो गीत हैं वो सुनवाए जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल हैं। और कौन से गीत आपके पसंद के हैं? वैसे इस इबारत में बहुत सारे शब्द भी ऐसे हैं श्रोताओं, जिनसे आप अपनी कोई बात लिख सकते हैं। फिल्म पहेली का ये गीत है, इस अभिनेत्री को आपको पहचानना है, यही आपकी पहेली है।

हमारे श्रोताओं ने अभिनेत्री का नाम कुछ कुछ लटपटा सा बताया है, लेकिन हम आपको बता दें श्रोताओं, पहली फिल्म का ये गीत था हेमलता की आवाज में। गीत और संगीत था रविंद्र जैन का। नमिता चंद्रा पर फिल्माया गया गीत था। हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि अंताक्षरी में जब ड शब्द आता है तो ये गीत बरमास गाया जाता है, डम डम डिगा डिगा। जी हाँ, ये तो है कि अंताक्षरी में ये गीत बहुत गाया जाता है। वैसे हमने एक सवाल और भी श्रोताओं आपसे पूछा था कि जो एक पक्षी है बड़ा सुंदर सा घोंसला बनाता है मानसून में, वो आपको बताना है। एक और श्रोता ने लिखा है कि सावन को झूलना उत्सव पर्व के रूप में भी मनाया जाता है, पास के मंदिर का हरियाली श्रृंगार हुआ है। जी हाँ, अब तो धीरे धीरे सावन जो है वो शबाब पर आ रहा है। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि महाकवि कालिदास ने मेघदूत और ऋतु संहार, जी मेघदूतम हो सकता है ये है, और ऋतु संहार लिखा है। तो मोहन राकेश ने आषाढ़ का एक दिन नाटक लिखा है। कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने आषाढ़ का पहला दिन कविता लिखी, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कविताओं में बादल और वर्षा जीवन की सृजन और संघर्ष के रूप में लिखा है इसे और दिखाई देता है। और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी लिखा है, घन घमंड नभगर्जत घोरा दामिनी दमक रहन घन माही। और मलिक मोहम्मद जैसी की भी ये बात करते हैं, पद्मावत की भी बात करते हैं। जी हाँ, ऐसे तो बहुत सारे हमारे कवि हैं जिन्होंने सावन और जो वादियां हैं बारिश की, उन पर बहुत सारे कविताएं लिखी हैं, गीत भी लिखे हैं। इस गीत में श्रोताओं मेला नजर आता है, तो मेले की कोई यादें अगर आपकी हों तो आप साझा कर सकते हैं।

जरीना बहव और अरुण गोविल पर फिल्माया गया ये गीत आपने सुना। और इस गीत में अरुण गोविल के हाथ में श्रोताओ एक वाद्य यंत्र है, वो आपको बताना है कि ये वाद्य यंत्र कौन सा है। और जो भारत है वो बड़ा ही अलग प्रकार का, अगर हम बात करें प्रकृति के नजरिए से, तो प्रदेश है। यहाँ पर हैं अलग अलग, तो तितलियों का प्रदेश किसे कहते हैं, क्योंकि बारिश के मौसम में बड़ी अलग अलग सुंदर सुंदर तितलियां नजर आती हैं। लैंड ऑफ बटरफ्लाइज किसको कहते हैं, आपको ये बताना है। और साथ ही ये बताना है कि एक प्रदेश जिसके नाम में मेघ आता है वो कौन सा प्रदेश है, ये आपको बताना है। एक श्रोता लिखते हैं कि बारिश के आगमन के बाद प्रकृति अपना रूप निखारती है, चारों ओर छटा देखते ही बनती है, धरती पर चारों ओर हरियाली ही हरियाली छा जाती है। मुझे भी बारिश में भीगना बेहद अच्छा लगता है, कल ऑफिस से लौटते वक्त भी बारिश में भीगता हुआ ही आया। जब घर में होता हूँ तो टेरिस पर चला जाता हूँ और बारिश में भीगने का आनंद लेता हूँ। और गीत भी इन्होंने बताए हैं, रामा रामा गजब होई गवा। और एक और श्रोता ने लिखा है कि हमारे यहाँ सावन का विशेष महत्व है, जिसमें भोले बाबा का जलाभिषेक पूजन किया जाता है, जिसमें हरे श्रृंगार अर्पित किए जाते हैं। सावन में हर सोमवार को विशेष व्रत रखते हैं, हमारे घर में सभी लोग इस व्रत को रखते हैं। और इसके अतिरिक्त सावन में मेहंदी रचाने का भी विशेष महत्व है, झूले भी डाले जाते हैं और महिलाएं और कन्याएं विशेषकर हरे परिधान श्रृंगार का प्रयोग करती हैं। तो आपने किसके साथ झूला झूला, ये आप बताइए हमें। और हमने एक और सवाल आपसे पूछा, लैंड ऑफ बटरफ्लाइज और ऐसा प्रदेश जिसके नाम के साथ मेघ जुड़ा हुआ है। और एक श्रोता ने लिखा है, बया पक्षी घोंसले बनाती है और घोंसले को घर में रखना, उस घोंसले को घर में रखना शुभ माना जाता है। ये कलाकार जोड़ी आपको बतानी है श्रोताओं।

जैसे को तैसा फिल्म की किताब में सुना रीना रॉय और जितेंद्र पर फिल्माया गया, और इनकी जोड़ी का कौन सी ऐसी फिल्म है श्रोताओं जो आपको अच्छी लगती है, क्योंकि इस जोड़ी की और भी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में हैं, तो अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि लैंड ऑफ बटरफ्लाइज सिक्किम को कहते हैं। जी हाँ, सिक्किम में श्रोताओं जो जोंगू क्षेत्र है वो लैंड ऑफ बटरफ्लाइज कहलाता है, तितलियों का प्रदेश, क्योंकि यहाँ बड़ी सारी तितलियाँ हैं। और एक और सवाल हमने आपसे पूछा था कि किस प्रदेश के नाम के साथ मेघ जुड़ा हुआ है, ये आपको बताना है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि हम तो अभी सावन की रिमझिम बारिश में अपने घर में खिले हुए उन गुड़हल के सफ़ेद फूलों को देख रहे हैं जिन पर ये बूंदें ओस के जैसे चमक रही हैं और उन्हें नीचे की तरफ झुका रही हैं, और हमारा दिल एक गीत गुनगुना रहा है, नैना बरसे रिमझिम रिमझिम। भाई ये तो बड़ा ही मतलब थोड़ा दुखी कर देने वाला गीत है। तो नैना क्यों बरसे? बादल बरसे, ऐसा होना चाहिए। पहले पत्थर पर पीस कर मेहंदी लगाते थे, फिर सूखी मेहंदी को छानकर चाय के पानी में घोल कर रात भर रखते, फिर दूसरे दिन माचिस की तीली से तार बनाकर बारीक डिजाइन बनाते। समय के साथ अब बहुत परिवर्तन आया है, अब बने बनाए कोन मिल जाते हैं, लाओ और लगा लो, सुंदर सुंदर डिजाइन भी आसानी से बन जाती है। जी हाँ, और कई बार छाप कर भी मेहंदी लगाते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ता है कि कहीं कुछ हाथ में इन्फेक्शन ना हो जाए। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि आजकल मैं अपनी बेटी के घर बर्लिन आई हुई हूँ और यहाँ जो टाइम है थोड़ा पीछे चलता है, और इन्होंने वहाँ के टाइम के बारे में भी लिखा है। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि सावन तो नहीं बरस रहा पर विविध भारती हमको रोज सावन के गीतों से भिगो रही, अच्छा लगता है। शुक्रिया विविध भारती। जी हाँ, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे सावन है तो भीगना तो पड़ता ही है। एक और श्रोता ने लिखा है कि पतझड़ सावन बसंत बहार एक बरस का मौसम चार तमाम सारे गीतों को इन्होंने लिखा है, अब इनमें छठे मौसम का इजाफा कर देते हैं, वो मौसम है सुरीले सफर का इंतजार। जी हाँ, वो तो पूरा हुआ। एक और श्रोता लिखती है कि सावन की हर बूंद में एक कहानी है, हर पुहार में प्रेम की रवानी है, भीगी धरती कहती चुपके से ये मौसम नहीं किसी के आने की कहानी है।

आर्टी बर्मन की तर्ज थी छोटे नवाब फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। शीला आवाज पर फिल्म आया गया। श्रोताओं, बारिश का मौसम जो होता है वो अपने आप में बड़ा सुहावना होता है। अगर किसी एक जगह आपको जाना हो बारिश के मौसम में, तो आप कहाँ जाएंगे और क्या आपको तस्वीरें उतारना बारिश के मौसम का अच्छा लगता है? तो कुछ तस्वीरें तो ज़रूर आपके पास होंगी जो आज भी आपने सहेज कर रखी होंगी, तो ये बातें आप हमसे साझा कर सकते हैं। एक श्रोता लिखती हैं कि सावन का मौसम प्रकृति के सौंदर्य को बढ़ा देता है। चारों ओर हरियाली छा जाती है, रंग बिरंगे फूल, हरे भरे लहलाते खेत, कलकल करती नदियाँ, पहाड़ों से बहते झरने, बादल की गड़गड़ाहट, रिमझिम वर्षा और तमाम बातें इन्होंने लिखी हैं। और वैसे छोटे छोटे जो झरने होते हैं श्रोताओं, वो भी इस समय अपने पूरे शबाब पर होते हैं। तो ये झरने समय के साथ बिल्कुल सूख जाते हैं, यानी बारिश होगी उसके बाद फिर नजर नहीं आते। तो ऐसे प्यारे प्यारे झरने आपकी तरफ हैं क्या, और कौन सी ऐसी जगह है जहां बारिश में आप जाना पसंद करेंगे, ये हमने अभी आपसे पूछा था, आप बता सकते हैं। वैसे अगर ऐसी जगहों की बातें की जाएं, तो हो सकता है कि आपका खुद का शहर हो, खुद का प्रदेश हो, जो ऐसे सुंदर जो चित्र कह सकते हैं बारिश के मौसम का, वहाँ नज़र आता है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि हम आपका प्रोग्राम सुनते हुए हम देख रहे हैं कबूतरों को, वो इतने खुश हैं कि साथ नीचे घास पर बैठे हैं, मानो उनकी अपनी कोई महफिल चल रही हो। हमने उन्हें उस तरह पहले कभी नहीं देखा। अरे वो तो उड़ गए बहुत जल्दी। जी हाँ, पंछी होते हैं ये तो उड़ जाते हैं, और गौरैया भी बहुत नहाती है पानी में, आपने देखा है। तो आप गौरैया की जो बातें हैं वो भी ताज़ा कर सकते हैं। गौरैया बड़ी ही सुंदर होती है श्रोताओं। एक और हमारी श्रोता ने लिखा है कि पूर्णिमा की सुनहरी रात और चंचल पुरवैया, हवा के झोंके गगन में तैरते उमड़ते घुमड़ते मेघ और चपला की चमक, रिमझिम फुहारों के बीच भीगी बलखाती वसुंधरा और मयूर का मन भावन नृत्य, तमाम सारी बातें जो सावन की।

गीत से जो सवाल वाबस्ता है उसका जवाब अभी मुझे तो नजर नहीं आया श्रोताओं। फिलहाल एक श्रोता लिखते हैं कि श्री 420 का गाना प्यार हुआ इकरार हुआ बहुत ही प्रसिद्ध है। जी हाँ, ये तो है बारिश का गीत। और एक और श्रोता लिखते हैं कि मेघालय का जो दुनिया है, मेघालय की मैं सुन रहा हूँ दुनिया, सबसे अधिक वर्षा होने वाली जगह के रूप में ये प्रसिद्ध है। जी हाँ, मेघालय जो है वो बड़ा ही प्रसिद्ध जगह है श्रोताओं। वैसे अगर हम सेवन सिस्टर्स की बात करें, इस जगहों की बात करें, इन जगहों की बात करें सेवन सिस्टर्स की, तो यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि सावन की ऋतु कितनी अनोखी, कितनी अलग है, इस पर जितना लिखा जाए कम ही लगता है। सावन की ऋतु में प्रकृति अपने पूरे उफान पर पूरा श्रृंगार किए एक आमंत्रण सा देती है। सावन रंगों में सराबोर होने के दिन लेकर आता है धानी चादर में लिपटी ये धरती नीले आसमान को ओढ़े, ऐसे प्रतीत होती है जैसे ऋतुराज हो। सावन की हरियाली संदेश लेकर आती है कि जीवन हरा भरा तभी हो पाता है जो इंसान प्रतीक्षा करना जानते हैं। तो इस सावन आप कहाँ हैं बताएं, क्योंकि कुछ तो हमारी सखियाँ ऐसी हैं जो अपने मायके में होंगी, कुछ होंगी जो अपने ससुराल में होंगी।

हेमा मालिनी पर फिल्माया गया ये किताब सुन रहे थे नया जमाना फिल्म से, और हमारे श्रोताओं के कमेंट्स, हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज पहाड़ से घूम के लौट रहे थे तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, अच्छा लग रहा था। भीगते भीगते पहाड़ों का मौसम और वहां का नज़ारा, जी हाँ पहाड़ों का मौसम बड़ा ही अलग होता है बारिशों में। अगर आप ऐसे किसी क्षेत्र में रह रहे हों तो आप लिख सकते हैं कि वहां इस समय क्या मौसम है। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि लिखती हैं कि आज की भीगी भीगी सुरमई ये सफर आज का है, सावन का मेला, मेले में बादल, बादल में बिजुरिया, बूंदों की गागर छलकी रे, कोयल की कजरी तान, पपीहे की पुकार, पिया मिलन की आस जगाए। और इन्होंने बहुत सारे शब्दों को जोड़कर एक पैरोडी सी बनाई हुई है। कलाकार आप पहचान रहे हैं श्रोताओं, और संगीतकार।

0: अरुण गोविल के हाथ में जो वाद्य यंत्र होता है श्रोताओ, वो रावण हत्था है।
1: कजरा लगा के, गजरा सजा के,

भारत भूषण और मीना कुमारी जी के लिए लिखा है हमारे श्रोताओं ने कि उन्हीं पर फिल्माया गया बैजू बावरा फिल्म का गीत था। और एक श्रोता ने लिखा है कि बारिश में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जाना बेहद पसंद है।

इकमाजे श्रोता ने लिखा है कि हमारे यहाँ तो टिटेरी बहुत आती है, उसके लिए पीने का पानी सकोरे में बहुत रख देते हैं भरकर, और वो नहाती भी है, अभी भी खिड़की के कांच को अपनी चोंच से ठोकर दे रही है, ठोक रही है, बहुत शोर कर रही है। एक और श्रोता ने लिखा है, तस्वीरें लेना, वीडियो बनाना, वो भी चिड़ियों के फूलों पर गिरते पानी की बूंदों के, अच्छा लगता है। एक और श्रोता ने लिखा है, हम तो मैदानों के उत्तर प्रदेश में रहते हैं जहाँ पहाड़ और झरने बिल्कुल नहीं हैं, नदियाँ तो बहुत तेरी हैं और इनमें कई जगह बांध बनाकर बिजली पैदा की जाती है, झरनों का लुत्फ इन बांधों पर लिया जा सकता है।

अंदाज और राजेश खन्ना पर फिल्माया गया अपना देश फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि भोपाल से 170 किलोमीटर दूरी पर पंचमढ़ी है, वहाँ मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन ये है और वहाँ पर बरसात के मौसम में पहाड़ से बहुत सारे झरने निकलते हैं। ये समय यहाँ पर घूमने का सबसे अच्छा समय होता है। जी हाँ, पंचमढ़ी तो बड़ी सुंदर जगह है। और आप सभी के कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। सुरीला सफर कार्यक्रम में आपके साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ।

दोस्तों नमस्कार। अक्सर यही देखा जाता है कि लोग अपनी असुरक्षा, जलन या व्यक्तिगत कुंठा के कारण दूसरों से नफरत करने लगते हैं। हम सभी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और मानते भी हैं कि नफरत का बोझ ढोने से मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों ही खराब होते हैं। फिर भी कभी ना कभी किसी ना किसी को लेकर हमारे मन में नफरत की भावना आ ही जाती है। नफरत को छोड़ देने में ही भलाई है, क्योंकि क्षमा और प्रेम वो भाव हैं जिनसे मन को सुकून मिलता है और जीवन में सकारात्मकता आती है। मन में नफरत या द्वेष की भावना रखना अपने कीमती समय की बर्बादी है। इसीलिए अपने दिमाग को खाली करें और उन चीजों से भरें जो मायने रखती हैं।

अगर हम नफरत की भावना से खुद को मुक्त करना चाहते हैं तो अपने व्यवहार में भी थोड़े से बदलाव लाने होंगे। क्षमा या माफ करने को अपनाना होगा। जिसने हमें दुख पहुंचाया है उसे माफ करना भी सीखना होगा, क्योंकि यही बदले की भावना से मुक्ति पाने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर हम दूसरों के प्रति सहानुभूति रखेंगे और उनके नजरिए से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे तो नफरत से बच सकते हैं। दूसरों से तुलना और खुद को दूसरों से कम या ज्यादा आंकने की बजाय अपनी भलाई पर ध्यान देना होगा। सकारात्मक दृष्टिकोण पर ध्यान दें जो हमारे जीवन में खुशी और शांति लाते हैं। नफरत

धर्मो हया का पर्दा दुश्वार नहीं है, अजी हल्का सा एक पर्दा है, दीवार नहीं है।

हम वो हैं जिंदगी में कभी साथ न छोड़ेंगे, थामेंगे अगर हाथ तो फिर हाथ न छोड़ेंगे।

0: चलो माना कि कोई और हमसे नफरत करने लगे तो उसकी नफरत को कम करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम शांत रहें और कोई भी प्रतिक्रिया ना दें और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक चीज़ों में लगाएं और उनके नकारात्मक व्यवहार को व्यक्तिगत रूप से कभी ना लें। विवाद से नफरत को और हवा मिलती है। कभी यदि कोई गलती हो भी जाए तो क्षमा मांगने में संकोच ना करें। खुद को दूसरों के मुताबिक बदलने की बजाय अपने मूल्यों पर टिके रहें। एक परिपक्व मानसिकता ही सहानुभूतिपूर्ण मानसिकता मानी जाती है। हमारा देश विभिन्नताओं का देश है। यहाँ बहुत सारे धर्म, भाषा, संस्कृति, इन सभी का अपना एक अलग महत्व है। इन विभिन्नताओं को कमजोरी नहीं बल्कि देश की ताकत मानना चाहिए। सभी देशवासियों को आपसी मतभेद और नफरत मिटाकर प्रेम और भाईचारा बढ़ाना आज के समय की सबसे बड़ी मांग है। नफरत या प्रेम, दोनों ही चीजें बचपन से सिखाई जाती हैं। हम भी अपने बच्चों को सभी धर्मों का और सभी इंसानों का सम्मान करना सिखाएं।
1: नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का जश्न मनाने के लिए देशभर में हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से समयबद्ध न्याय प्रदान करना है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। ओडिशा में बारिश से कई नदियों में जलस्तर बढ़ा, फिर से बाढ़ की आशंका। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। चीन में तूफान डॉल्फिन के मद्देनजर 1300 से अधिक उड़ानें रद्द, 3,00,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। और भारत की अश्मिता चालिया ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। हर घर तिरंगा अभियान आज से 17 अगस्त तक चलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने पुदुचेरी से हर घर तिरंगा अभियान यात्रा रवाना की। अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।
1: हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर तिरंगा।
2: हर घर तिरंगा अभियान पूरे देश में देशवासियों में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने और भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जा रहा है। यह अभियान हर घर तिरंगा पहल का

0: पांचवा वर्ष है। इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी और तब से यह देश के सबसे बड़े जन भागीदारी आंदोलनों में से एक बन गया है। इस पहल का उद्देश्य देशवासियों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने और देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता तथा भारत की सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाने वाली गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ होने के कारण इस वर्ष का अभियान विशेष महत्व रखता है। यह अभियान देशभक्ति के एक अनूठे उत्सव में राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत को एक साथ लाता है। उत्सव के हिस्से के रूप में पूरे देश में सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन आयोजित किया जाएगा। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम स्थित फ्लैग पॉइंट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर उन्होंने वीर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने डॉक्टर बीआर आम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान के सभागार में आयोजित राजकीय समारोह वंदे मातरम पर तिरंगा संगीत कार्यक्रम में भी भाग लिया। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के गौरवशाली इतिहास को स्मरण किया। उन्होंने 30 दिसंबर 1943 के उस ऐतिहासिक दिन को भी याद किया जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराया था।
2: It is indeed to pleasure to launch this campaign today on the August Gandhi Divas as we commemorate the Quit India Movement of 1942. Millions of Indians responded to his call and rose against the British with the unwavering resolve of do or die on this day. It is therefore deeply significant that we launch the Har Ghar Tiranga campaign from the historic islands on this historic day.
1: उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन 2 दिवसीय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की यात्रा पर हैं। इधर दिल्ली में अभियान के हिस्से के रूप में लोकसभा में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने मालवीय नगर में पंडित मदन मोहन मालवीय के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की, जिसके बाद पिलांजी गांव से ग्रेटर कैलाश तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। संवाददाताओं से बातचीत में सुश्री स्वराज ने कहा कि ये स्वतंत्रता दिवस विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत अपनी स्वाधीनता का 80वां वर्ष मना रहा है।
3: भारत अपना 80th इंडिपेंडेंस डे मना रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने आज से एक सप्ताह की मुहिम शुरू करी है, जहां पर हम हमारे राष्ट्र के नायक, जितने भी हमारे शहीद स्मारक हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, लोकल RWAs, MWAs और स्थानीय निवासियों के साथ जाकर, हमारे स्वच्छता वॉरियर्स के साथ यहां पर आकर स्वच्छता का अभियान भी शुरू करेंगे और पुष्पांजलि का भी कार्यक्रम करेंगे।
1: केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी आज से हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत सभी 20 जिलों में सप्ताह भर के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करना है। गृह मंत्री ने गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में ये बात कही।
4: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अंग्रेजों के बनाई हुई दंड संहिता को बदलकर 3 भारतीय न्याय संहिताओं को लागू किया है। ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये 3 पिलर पर खड़ी की गई है।
1: श्री अमित शाह ने पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करने पर बधाई दी।
4: राष्ट्रपति ध्वज किसी भी डिसिप्लिन फोर्स के लिए उसके जीवन काल का सबसे गौरवपूर्ण क्षण होता है। पुदुचेरी पुलिस भले ही संख्या में 5,000 से कम हो, मगर आज इस देश की आध्यात्मिक धरोहर को संभाले हुए पुदुचेरी की रक्षा, आंतरिक सुरक्षा और पुदुचेरी के सम्मान की रक्षा करने का काम करते हैं।
1: राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित होने की इस उपलब्धि के साथ ही पुदुचेरी देश का 18वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया।

0: है जिसे पुलिस बल को दिए जाने वाले इस सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और देश की महिलाओं के माथे के सिंदूर की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्री ने ये बात नई दिल्ली के बेस अस्पताल में सिंदूर महारक्तदान यात्रा के शिविर उद्घाटन के अवसर पर कही। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। एजेंसी के अनुसार आरोपी को कल मलप्पुरम जिले के मंजेरी से गिरफ्तार किया गया। एजेंसी ने बताया कि आरोपी इस मामले का मुख्य साजिशकर्ता है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर गतिरोध जारी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार और आंदोलनकारी छात्र प्रतिनिधियों के बीच तीसरे दौर की वार्ता जारी है।
1: सरकार की 4 सदस्यीय मंत्री स्तरीय टीम छात्रों की मांगों पर चर्चा कर रही है। इधर जेकेएलएम विधायक जयराम महतो ने छात्रों के समर्थन में एक दिन की भूख हड़ताल शुरू की है। उन्होंने कथित परीक्षा अनियमितताओं की सीबीआई जांच और मुख्यमंत्री से छात्रों के सीधे संवाद की मांग की है। वहीं राज्य के सांसद और केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचकर आंदोलनकारी छात्रों से मुलाकात की और उनकी मांगों का समर्थन किया। उन्होंने सीबीआई और ईडी जांच, जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाएं रद्द करने तथा पुलिस टेबल शारीरिक परीक्षा के दौरान जान गंवाने वाले 19 युवाओं के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: केंद्र सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। नवनियुक्त न्यायाधीश जल्द ही शपथ लेकर कार्यभार संभालेंगे। इन नियुक्तियों से चारों उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कमी दूर करने और लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है। सरकार ने पंजाब की मंडियों में पड़े 18 लाख मीट्रिक टन पुराने अनाज के भंडार को 20 सितंबर तक उठाने पर सहमति व्यक्त की है ताकि राज्य में धान की बम्पर फसल की उम्मीद के चलते भंडारण की जगह खाली हो सके। पंजाब से इस वर्ष केंद्रीय पूल में 170 लाख मीट्रिक टन अच्छी गुणवत्ता वाले चावल की आपूर्ति होने की उम्मीद है। पंजाब में आज तड़के सरहिंद जीटी रोड पर एक कार की टक्कर में 3 कांवड़ियों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। वे उत्तराखंड के गंगोत्री से पवित्र जल लेकर पंजाब के फरीदकोट जिले के कोटकापुरा लौट रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मौके से फरार चालक की तलाश जारी है। जम्मू कश्मीर में रेल संपर्क को मजबूत करने के लिए कई बड़ी रेलवे परियोजनाओं का काम प्रगति पर है। जम्मू रियासी को पुंछ से जोड़ने वाली नई रेल लाइन सहित प्रमुख परियोजनाओं के लिए अंतिम स्थल सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी गई है। 190 किलोमीटर लंबी जम्मू रियासी पुंछ रेल लाइन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए फील्ड सर्वे शुरू कर दिया गया है। जम्मू और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच 78 किलोमीटर लंबी अतिरिक्त रेल लाइन के लिए भी सर्वे को मंजूरी दी गई है। इस बीच जालंधर कैंट जम्मू तवी के बीच 216 किलोमीटर लंबी तीसरी रेल लाइन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए ने 33 राज्य जैव विविधता बोर्डों, केंद्र शासित प्रदेशों की जैव विविधता परिषदों और राष्ट्रीय संस्थानों को अभिगमन तथा लाभ साझाकरण के तहत 3 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि ये राशि भारत के कृषि और पशुपालन क्षेत्र की जैव विविधता संरक्षण के लिए भी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। चीन में तूफान डॉल्फिन के मद्देनजर शंघाई के दोनों हवाई अड्डों पर 1,300 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। आसपास के क्षेत्रों के 3 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। एक रिपोर्ट।
2: तूफान के बाहरी हिस्से ने कल राजधानी ताइपे सहित उत्तरी ताइवान को भी प्रभावित किया और उन क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हुई। ताइवान की कुछ एयरलाइंस ने भी चीन जाने वाली अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं। तूफान की अधिकतम निरंतर हवा की गति आज सवेरे तक लगभग 162 किलोमीटर प्रति घंटा आंकी गई थी। इससे तेज बारिश हो रही है जिससे भीषण बाढ़ और भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है और इसके चाचियांग प्रांत और पड़ोसी फुचियान प्रांत के उत्तरी हिस्सों को प्रभावित करने की आशंका है। अधिकारियों ने चाचियांग में में भीषण भूस्खलन के खतरे की चेतावनी

0: निगरानी जारी कर दी है। शंघाई के हांगशाओ और पुडोंग हवाई अड्डों ने भी लगभग 60% अपेक्षित उड़ानों को रद्द कर दिया है। समाचार कक्ष से मुनीष शर्मा।
1: जापान में आज नागासाकी पर अमेरिका के परमाणु बम हमले की 81वीं बरसी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची ने परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया के लक्ष्य को हासिल करने के लिए यथार्थवादी और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की अपनी नीति दोहराई। ओडिशा में बारिश से कई इलाकों में नदियों का जलस्तर दोबारा बढ़ने से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रशासन राज्य भर में निचले इलाकों और नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रख रहा है।
2: उड़ीसा में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ का खतरा फिर बढ़ गया है और कई बाढ़ प्रभावित इलाकों में और ज्यादा पानी भरने की आशंका है। बालेश्वर के बस्ता इलाके में हालात फिर गंभीर हो गए हैं क्योंकि मयूरभंज के ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के बाद जलका नदी का जलस्तर बढ़ गया है। राजगोविंदपुर, सुलियापदा, मोरड़ा और चित्रड़ा में बारिश से जलका नदी उफान पर है, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है और सैकड़ों हेक्टेयर खेती की जमीन जलमग्न हो गई है। भद्रक में बैतरणी और सालंदी नदियों के बढ़ते जलस्तर ने चिंता बढ़ा दी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, असम और मेघालय में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। आज शाम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है। भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब हासिल किया है। फाइनल में अश्मिता ने चीन की हान चेन शी को हराया। अमेरिका में आयोजित विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के पदकों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। भारत के बसंत कुमार मेघवाल ने हाई जंप में रजत पदक जीता, जबकि शाहनवाज खान ने लॉन्ग जंप में कांस्य पदक अपने नाम किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का जश्न मनाने के लिए देशभर में हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से समयबद्ध न्याय प्रदान करना है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। ओडिशा में बारिश से कई नदियों में जलस्तर बढ़ा, फिर से बाढ़ की आशंका। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सदाबहार नगमे आप सुनेंगे कुछ ही पलों में।

रवि ने इस गीत को सुरबद्ध किया। सह लुधियानवी की रचना थी, महेंद्र कपूर की आवाज में। हमराज फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। हरे कांच की चूड़ियां, इस फिल्म का गीत है। आशा भोसले की आवाज, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन की तर्ज।

खफा ना होना अगर मैं पूछूं कहां से पाया ये हुस्न शबाब तुमने। खफा ना होना अगर मैं पूछूं कहां से पाया ये हुस्न।

0: पालकी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी का गाया, शकील बदायूनी के बोल थे, नौशाद का संगीत था। और इस गीत से पहले सगाई फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया था, महेंद्र कपूर की आवाज थी, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, रफी का संगीत था।
1: एक आवाज जिसमें है जोश, जुनून, नशा। एक आवाज जो आपको अपने साथ बहा कर ले जाती है।
2: कभी तो नजर
1: एक आवाज जिसके साथ जुड़ी हैं

0: आ रहे हैं
1: महबूबा महबूबा महबूबा
0: विविध भारती पर 12 अगस्त दिन में और रात में 11 बजे।

0: फिल्म शागिर्द का दो गाना आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी लता मंगेशकर का गाया, मजरूर सुल्तानपुरी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की तर्ज थी।
1: एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान,
2: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गाँव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं,
1: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
2: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

राम और श्याम फिल्म का गीत था, लता मंगेशकर मोहम्मद रफी का गाया, शकील बदायूं के बोलों को सुर में ढाला नौशाद ने। सदाबहार नगमे कार्यक्रम श्रोताओं यही संपन्न होता है।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बादलों का दिल लिए, फूलों की मुस्कान लिए आ चुका है आपके रेडियो सेट पर आप ही के पसंदीदा गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत। चलिए देखते हैं श्रोताओं आज कौन से गीत हैं शामिल और किन श्रोताओं की पसंद है शामिल आज के इस प्रोग्राम में। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

गीत और संगीत थे रविंद्र जैन के, किशोर कुमार, लता मंगेशकर के युगल स्वरों में आप सुन रहे थे फकीरा फिल्म का ये गीत। सुनना चाहा आप सभी ने धमतरी राजिम से रमेश लाल धीवर, यदुवंश धीवर, कुणाल ममता और मुन्नी धीवर ने इस गीत को सुनना चाहा। रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा रियाज, शमरीन, मोहम्मद रेहान, माहिरा नूर, ये हमारे श्रोता हैं जसपुर उत्तराखंड के। और पालदाना का इंदौर से इसी गीत को सुनना चाहा हसीना बी मंसूरी, मोहम्मद रफी मंसूरी और बबलू मंसूरी ने इसी गीत की फरमाइश की। कुंडलिक मोरे, पांडुरंग मोरे, अश्विनी वैष्णवी ने हिंगोली वारंगा से और मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से, अभिजीत गवाड़कर, श्रीमती सरिता गवाड़कर, प्रिंस और बदलापुर मुंबई के हमारे श्रोता हैं सिद्धांत गवाड़कर।

अर्जुन गवाणकर और बहादुरा नागपुर के ये श्रोता हैं वैशाली शैलेश, सुमित और कुमार ध्वनि। और इसी गीत को सुनना चाहा जफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनैद अब्बासी, ये हमारे श्रोता हैं दौलत बेग, दौलताबाग, मुरादाबाद से।

रोटी कपड़ा और मकान इस फिल्म का गीत आपने सुना। लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की आवाज़ें थीं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बनाई धुन पर ये गीत था और लिखा संतोष आनंद ने। गीत की फरमाइश की भुज कच्छ गुजरात से विपिन भाई देविका और इनके परिवार के सभी सदस्य, और इस गीत को सुनना चाहा छत्तीसगढ़ बेमेतरा से हमारे श्रोता हैं भरत लाल सिन्हा, लव कुमार सिन्हा और लकी सिन्हा। इसी गीत के लिए हमें पत्र लिखे ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम और मेहराज जहानी। इन्होंने लिखा है आजाद नगर लक्सर से, ये हरिद्वार से ये पत्र आया है। और हमारे जो श्रोता हैं ये हैं कालेगांव जाफराबाद के सुधाकर, प्रशांत, सचिन, सर्वद, प्रथमेश प्रणाली और कल्पना ने इस गीत को सुनना चाहा। इसी गीत के लिए हमें पत्र लिखे मानिक सिंह बैसे, कावेरी विनीत बैसे, लल्ली लेखमणि बैसे। इन्होंने लिखा है शंकर नगर दुर्ग से। और ये हमारे श्रोता हैं शुभांगी अनिल वागवेकर, ये हैं ग्राम बालिंगा करवीर कोल्हापुर महाराष्ट्र के श्रोता। विविध भारती से आप सुन रहे हैं अपने ही पसंदीदा गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बनाई धुन पर साहिर लुधियानवी की ये रचना आपने सुनी, लता मंगेशकर मोहम्मद रफी के गाए इज्जत फिल्म का ये गीत था। बड़ा बाजार उदयपुर राजस्थान से गोपाल तंबोली, कांता तिलक, किरण सक्षम और लावण्या तंबोली की ये फरमाइश थी। हिच्छा महासमुंद से अदालत दास वैष्णव, मानसी शांति, मानस और शांति, ऋचा गायत्री वैष्णव की ये फरमाइश थी। और ये पत्र है छत्तीसगढ़ के इस जगह का, नाभा जिला पटियाला से पंजाब सोमदत्त, केरव और ज्योति रानी और गुरमंत की ये फरमाइश थी। और जोधपुर से गिरधारी लाल विश्वकर्मा ने इस गीत को सुनना चाहा था। नचगांव जिला वर्धा महाराष्ट्र से आरती भगत, वैशाली भगत, पूर्वी भगत, लता, प्रदीप, विशाल, रामचंद्र भगत और चंद्रकांत भगत और इनके परिवार के सभी सदस्य इस गीत को सुनना चाहते थे।

आनंद बख्शी का लिखा अनजाना फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर, आवाजें थी सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की, ये आवाजें थी। अनजाना फिल्म का गीत आपने सुना, आनंद बख्शी का लिखा। पुराना तालाब डुमराओं से वलीउल्लाह अंसारी, आसमान नाज वसीम अकरम की ये फरमाइश थी। और इस गीत को सुनना चाहा, इसी गीत को बीकानेर राजस्थान से हुसैन भिश्ती, सुल्ताना भिश्ती, असलम और विनोद इस गीत के लिए हमें पत्र लिखे। इस्लामपुर जिला बुल्ढाना, सहदेव दामोदर, शशिकला कुमारी, साधना सुमेद कुमार दामोदर की ये फरमाइश थी। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला शेफाली, मास्टर डेविस और शेफी की ये फरमाइश है। और टीवी टावर नागपुर से डूंगर दिवे और दीक्षा रमाताई, सीमाताई और राहुल की ये फरमाइश है। और इसी गीत के लिए लेक सिटी उदयपुर से पत्र आया है। प्रकाश चंद्र, इंदिरा देवी, शैलेंद्र बाबू, सुरुचि, नेहा और इनके परिवार के सभी सदस्यों की ये फरमाइश है। और श्रोताओं, इस गीत के पहले हमने आपको इज्जत फिल्म का गीत सुनवाया था। चंद्रेश गौहर, वंदना गौहर, मयंक गौहर और तन्वी गौहर की भी फरमाइश थी।

आप ये गीत सुन रहे हैं श्रोताओं, कभी कभी फिल्म से लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाज़ें हैं, सहल ध्यानवी के बोल, खयाम की तर्जी है। और इस गीत के लिए फरमाइश भेजी मछली गोदाम कौदीमुड़ा रायगढ़ से भाई पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, ऋषभ, प्रियंका, पूजा सिंह, लीलू और रितु की फरमाइश है ये। बाबूराम आनंद, बीना खुशी, नंदग्राम, गाजियाबाद से इन्होंने पत्र भेजा है। पी बी कुलथे, हनुमंत कुलथे, समर्थ कुलथे, इनकी फरमाइश आई है बीड़ शहर से।

और कभी कभी फिल्म के इस गीत के लिए जिसे गाया लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने, जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, इनकी फरमाइश आई हनुमान जंक्शन राजस्थान के। ये हमारे श्रोता हैं बागपत उत्तर प्रदेश से, संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया, और ये हमारे श्रोता हैं मालेगांव से अरविंद, सुनीता, रोहित और निखिल सारकर, ये हमारे श्रोता हैं। और चौक रोड यानी गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव, बलविंदर, जितेंद्र और मीका विरक की फरमाइश हमने आज शामिल की। आपके पत्रों का श्रोता रहता है हमें इंतजार। मनचाहे गीत कार्यक्रम का यही था आखिरी गीत और हमें रहेगा आपके पत्रों का इंतजार। मनचाहे गीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है, दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को नमस्कार और जरूर लिखिए पत्र अपने पसंदीदा गीत मनचाहे गीत कार्यक्रम के लिए। नमस्कार।

0: नाटी तरंग में कल हमने आपको सुनवाया था नाटक किसी एक फूल का नाम लो का पहला भाग। मूल गुजराती लेखक मधुराय, हिंदी रूपांतरण ज्योति व्यास, संपादन चिरंजीत, निर्देशक सुशील बनर्जी। आज सुनिए दूसरा भाग, किसी एक फूल का नाम लो।
1: नहीं, आप सब लोग कुछ छिपा रहे हैं। अदालत फिर आपसे पूछती है, शेखर खोसला को आप जानते हैं? शेखर खोसला को आप जानते हैं? शेखर खोसला को आप जानते हैं?
2: शेखर खोसला के बारे में आप क्या जानते हैं? शेखर खोसला के बारे में आप क्या जानते हैं? शेखर खोसला के बारे में आप क्या जानते हैं? शेखर खोसला के बारे में आप क्या जानते हैं?
3: जट्टी आवाज,
2: खोसला के बारे में आप क्या जानते?
3: मुकदमा खत्म हुआ। कामनी को उम्र कैद की सजा हो गई, लेकिन लेकिन अदालत की ये आवाज मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, मेरा पीछा नहीं छोड़ रही।
4: प्रीतम सोनी,
3: कौन?
4: मुझे नहीं पहचानते? प्रीतम, अपने अंतःकरण की आवाज को भी नहीं पहचानते? उस अदालत में तुमने झूठ बोला। स्वाति, पाठक, सुंदर और केशव सबके साथ मिलकर तुमने अदालत में कहा था कि तुम शेखर खोसला के बारे में कुछ नहीं जानते।
3: नहीं,
4: लेकिन क्या ये सच है?
3: कामनी को बचाने के लिए औरों की तरह मुझसे जो कुछ बन पड़ा किया, सच को छिपाया, सच को छिपाया।
4: क्या आप अपनी अदालत, अपने अंतःकरण की अदालत में भी वो सब छुपाओगे? झूठ छुपाओगे?
3: नहीं,
4: बोलो।
3: नहीं, अब सच सच कहना होगा। मैं जानता हूं कि कामनी ने जान

0: बूझकर, सोच समझकर शेखर खोसला का खून किया। शेखर खोसला उसे ब्लैकमेल करना चाहता था, ब्लैकमेल करना चाहता था।
1: वाह, वो तुम्हें कैसे ब्लैकमेल कर सकता है? तुम्हारे पास पैसे कहाँ है कामनी?
2: प्रीतम भाई, मेरे पास पैसे ना हो लेकिन जो है वही मांगता है वो।
1: क्या मतलब?
2: मतलब मेरा रूप, मेरा शरीर, मैं आपको कैसे समझाऊं?
1: ये बात और कोई भी जानता है?
2: नहीं।
1: पाठक भी नहीं?
2: नहीं, पाठक भी नहीं। सबसे ज्यादा डर तो मुझे पाठक का ही है। ये बात जानते ही पाठक समझ जाएगा कि मैं उससे डरती हूँ, उसे खो देने के लिए तैयार नहीं। तब क्या वो मुझे अपनी बांदी न समझेगा? मेरा मनमाना इस्तेमाल नहीं करेगा? शेखर खोसला की तरह वो मुझे ब्लैकमेल नहीं करेगा?
1: तुम्हारी बात सही है कामनी, प्रेमी कमजोरी जानकर और भी बेरहम हो जाता है। स्वाति मेरी कमजोरी जानती है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता उसका। और सुंदर का कड़वा प्रसंग छेड़ने की मुझमें हिम्मत नहीं है। और वो जानती है कि मैं उसे प्यार करता हूं, मैं उदारता का ढोंग रचता हूं, पर रात दिन क्या बीतती है मुझ पर वो मैं ही जानता हूं। कई बार सोचता हूं नाटक ही नाटक में पिस्तौल के अंदर असली गोली भरकर आत्महत्या कर लूं, या कहीं चला जाऊं, पर मुझे डर है स्वाति और सुंदर मुझ पर हंसेंगे, हंसेंगे। और इस तरह अनजाने ही मैंने यह ख्याल कामनी के दिमाग में डाला, पिस्तौल में असली गोली भरकर आत्महत्या करने की। उसने आत्महत्या न करके खून किया और जिंदगी भर की कैद पाई। उस घटना के लिए मैं अपने आप को अपराधी मानता हूं। भले ही अदालत में कोई बात नहीं खुली, कामनी आखिर तक बिल्कुल चुप रही। शेखर खोसला का राज अभी तक राज ही है, पर मैं अपने आप को उसकी आत्महत्या के लिए जिम्मेदार मानता हूं, जिम्मेदार मानता हूं, जिम्मेदार मानता हूं।
3: ओ, ये कौन आ मरा इस समय? कौन है?
4: भैया मैं हूँ, मैं, यानी केशव ठाकर।
3: क्या
4: है? गुड इवनिंग, यानी नमस्कार। आपने मुझे बुलाया था ना?
3: ओ हाँ, आओ।
4: नमस्कार कामनी जी।
2: नमस्कार, कैसे हैं केशव जी?
4: अजी मजे में हूँ। सुंदर भाई ने कहा था एक नाटक चाहिए, सोचा दे आऊं।
3: तुम जरा जल्दी आ गए।
4: मैं पहले पैदल आ रहा था, फिर सोचा बस में चलूं। ये रही नाटक की काफी। ठीक है तो मैं जाऊं।
2: फिक्र कीजिए, जल्दी भी क्या है?
4: क्यों, जल्दी होगी तभी बस में आए हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं। हाँ हाँ, मैं तो नाटक सुनाना चाहता था।
2: बैठिए बैठिए, क्या जल्दी है?
3: हम कुछ जरूरी बात कर रहे थे।
4: जरूरी बात? अति सुंदर, अति सुंदर। हाँ हाँ कहिए, मैं कुछ सलाह दे सकता हूँ तो
3: हमारी निजी बातें थी।
4: निजी बात? ओ समझा, आप लोग शायद, मेरा मतलब है शेखर खोसला के बारे में बात कर रहे थे। वो बात ये थी कि मैं बाहर ही सोच में खड़ा था कि दरवाजा खोलूं या नहीं, और तभी आपकी बातें सुनाई पड़ी जी।
3: छिप छिप कर बातें सुनते हो बदतमीज।
2: क्या हुआ केशव जी?
4: जी
2: आप नाटक पढ़िए ना, लेखक के मुंह से सुनने में कुछ और ही मजा है।
4: जी जी।

0: बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ तो सुनाता हूँ, लेकिन सुनिए, आप लोग शेखर खोसला को जानते हैं
1: क्या? तुम जानते हो?
0: जरूर जरूर, बहुत अच्छे तरीके से। अरे कुछ ही दिन पहले वो अफ्रीका से आया है।
2: ओह, वो शेखर खोसला? आपके शेखर खोसला कोई और ही होंगे।
0: अजी तो आप किस खोसला की बातें कर रहे थे?
2: होगा कोई, छोड़िए नाटक पढ़िए ना।
0: हाँ तो वो नाटक का नाम है रात की रानी।
2: वाह कैसा खूबसूरत नाम है, रात रानी। आगे
0: आगे आगे उसमें पात्र हैं एक लेखक और।
1: आत्मकथा लिख लाए हो?
0: नहीं नहीं, आत्मकथा नहीं लिख लाया। हाँ वैसे देखा जाए तो आत्मकथा ही है।
1: ये क्या झमेला है?
0: हाँ वो मैं ये कह रहा था कि मैं शेखर खोसला नाम के आदमी को जानता हूँ।
1: क्या कहा?
0: आपने पूछा था ना कि मैं शेखर खोसला नाम के आदमी को जानता हूँ या नहीं।
1: तो तुम जानते हो?
2: जानते होंगे, इसमें क्या खास बात है? एक ही नाम के बहुत से लोग हो सकते हैं, इसमें क्या?
0: नहीं नहीं, शेखर खोसला को तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अरे हमने अपने बुरे और अच्छे दिन साथ साथ बिताए थे। हाँ सालों गुजर गए, 5-6 साल पहले हम बम्बई की कोठरी में साथ साथ रहते थे। अरे वो बेकार था और मैं भी। फिर वो अफ्रीका चला गया, वहां से बहुत सा धन कमाकर जब लौटा और अरे छोड़िए भी, किस पछले में मैं पड़ गया। हाँ अजी वो अब मैं नाटक पढ़ूं?
2: हाँ हाँ पढ़िए ना।
1: नहीं पहले शेखर खोसला के बारे में सब कुछ बताओ।
0: शेखर खोसला? हाँ शेखर खोसला बड़ा होशियार आदमी था, हाल ही में अखबार में नाम भी छपा था उसका और फोटो के साथ।
1: अच्छा?
0: हाँ, अरे अपनी जात के किसी समारोह में मुख्य अतिथि था वो।
1: उम्र क्या है?
2: सुंदर तुम बेकार परेशान हो रहे हो, केशव जी किसी दूसरे शेखर खोसला की बात कर रहे हैं।
0: मुझसे यही कोई 2 साल बड़ा होगा।
1: मतलब ये कि शेखर खोसला 30-32 का है, ठीक?
0: और वो कहता था अरे लड़कियां उस पर जान देती हैं जान।
2: और क्या?
0: और मैं सोचता था कि कामनी देसाई का मतलब ये है कि आपका रूप ऐसा है कि
1: क्या
0: कि शेखर इन पर जान दे।
1: शेखर खोसला का रंग कैसा है?
0: ये गोरा।
1: रंग गोरा है, आंखों में भूरापन, काले बाल और चौड़ा माथा। वो आदमी कैसा है?
0: अजी बहुत चालाक। उसी पर तो ये नाटक लिखा है मैंने। हाँ
1: देखो केशव, मुझसे बाद में मिलना, एक जासूसी कहानी बताऊंगा।
0: अरे अरे लेकिन भैया ये नाटक पढ़कर तो देखिए।
1: कह दिया ये नहीं चलेगा, नया नाटक तुम्हें सामने बिठा कर लिखवाना पड़ेगा।
0: अच्छी बात है।
1: और इस तरह अपने पास बैठाकर हमने उस बौड़म से नाटक लिखवाया। बाद में कामनी ने माना कि शेखर खोसला ने उसके साथ बलात्कार किया था। कुछ दिनों वो उसके प्रेम में पागल रही और उसने शेखर को बेशुमार पत्र भी लिखे थे। अफ्रीका से लौटने पर शेखर ने कामनी को कीर्ति वैभव के शिखर पर देखा तो उसे अपने वश में रहने के लिए पुरानी बात जाहिर करने की धमकी दी। कामनी ने पाठक के दर से शेखर के सारे पत्र जला दिए। नाटक में पिस्तौल वाला प्रसंग मैंने ही रखवाया था, पता नहीं कैसे कामनी ने उसमें असली गोलियां डाली और शेखर खोसला का खून कर दिया।
3: शेखर खोसला को आप जानती हैं? स्वाति सोनी बताइए, शेखर खोसला के बारे में आप कुछ जानती हैं?
2: मैं जानती हूँ, लेकिन ओह कामिनी को उम्र कैद की सजा हो गई, वो हमारे बीच से चली गई, लेकिन अदालत का ये प्रश्न मेरे दिल में दिमाग में अब भी गूंज रहा है।

0: मुझे बेचैन कर रहा है। हाँ, शेखर खोसला से उसे बदला लेना था। क्या कहा, अब वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है?
1: हाँ भाभी।
0: अरे बुद्धू, अगर किसी भी तरह वो तुम्हें ब्लैकमेल करता तो तुम्हारा व्यवहार ऐसा ना होता जैसा है।

0: मिल करता तो तुम्हारा व्यवहार ऐसा ना होता जैसा है। मुझे तो लगता है तुम कोई धोखा खड़ा कर रही हो।
1: अभी ये धोखा नहीं, हकीकत है। और अब मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, मुझे शेखर खोसला से बदला लेना है।
0: तुम्हारे प्यार को ठुकराया इसलिए? कैसे लोगी बदलो?
1: लगता है वो मेरे साथ चाल चल गया।
0: क्यों, तुमसे शादी करने से इनकार कर दिया?
1: लेकिन नहीं, तब वो अफ्रीका जा रहा था। मैंने जब उससे कहा कि मैं उसके साथ किसी भी तरह नहीं चल सकती तो उसने साफ कह दिया, चिंता रहे तो फिर मिलेंगे वरना अलविदा।
0: वो अफ्रीका से लौट आया है?
1: हाँ हाँ भाभी, ये देखो अखबार में छपा हुआ उसका ये फोटो देखो। ये देखो इस ग्रुप में दाएं से तीसरा, यही है शेखर खोसला।
0: हाय, कैसा है?
1: गोरा, भूरी आंखें, चौड़ा माथा, नुकीली नाक, तेज निजात, मजबूत जिस्म।
0: तो क्या आप उससे शादी करेगी और उसकी जिंदगी तबाह करके बदला लेगी?
1: क्या करूं भाभी, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। भाभी मेरी कुछ समझ में
0: अरे
1: नहीं आता।
0: ये सब चालबाजियां छोड़ दे, समझी? अब उसे भूल जाओ और पाठक से शादी करके चैन से जिंदगी बसर करो।
1: भाभी आप समझती क्यों नहीं, जिस आदमी को तुमने उसकी कच्ची जवानी में पाया हो और बहुत दिनों अपनी अमानत समझा हो, अब वो आदमी अचानक भव्य पुरुष बन जाए, कसकर तुम्हारी उंगलियों में फंसे शीशे की तरह एकाएक सारी दुनिया का चकमकाता सितारा बन जाए, तो तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि तुम लुट गई?
0: तुम्हें जो करना है करो, लेकिन कामनी प्लीज मेरे साथ ऐसी बातें ना करो, नहीं तो मुझ पर भी भूत सवार हो जाएगा।
1: अभी मैं बदला लेना चाहती हूँ, मुझे उस आदमी को मिटा देना है।
0: तो शादी कर लो और इस तरह तुम्हारा घायल अहम शांत हो जाएगा, फिर उसे सारी जिंदगी सता कर मारना, तड़पा तड़पा कर खत्म कर देना उसे। लेकिन कामनी को इतना सब्र न था, उसने केशव ठाकर के जरिए शेखर खोसला को नाटक में आने का निमंत्रण भिजवाया और उसे मार कर ही चैन की सांस ली। मैंने ही उस मनुष्य घड़ी में उसे ऐसी बुरी सलाह दी। मैं उस अपराध के लिए जिम्मेदार हूँ, सजा मुझे मिलनी चाहिए, मुझे मिलनी चाहिए सजा, मुझको सजा मिलनी चाहिए, मुझको सजा मिलनी चाहिए, मुझको मुझको सजा मिलनी चाहिए।
2: शेखर खोसला को आप जानते हैं? शेखर खोसला के बारे में आप कुछ जानते हैं? बोलिए जगन्नाथ महाशंकर पाठक, शेखर खोसला को आप जानते हैं?
3: हाँ जानता हूं, लेकिन उसी अदालत की आवाज मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही?
4: यह आवाज तुम्हारा कभी पीछा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि तुम भी अपराधी हो। बचने के लिए तुमने अदालत में झूठ बोला। कामनी किसी और से भी प्रेम करती है ये जानकर तुम ईर्ष्या और शक्ति आग में जल उठे।

0: हाँ, मैं ईर्ष्या की आग में जल उठा था।
1: पाठ्य, एक आदमी मुझे परेशान कर रहा है।
2: कौन है वो? वो लेखक केशव ठाकर?
1: नहीं, उसका एक दोस्त है।
2: कैसे परेशान कर रहा है?
1: वो कहता है तू जगन्नाथ पाठक से शादी कर, नाटक कर, सब ठीक है, लेकिन मुझसे संबंध रख।
2: मतलब?
1: मतलब वो जब भी चाहे किसी बहाने में उससे मिलूं।
2: और तुम ये सब ना मानो तो?
1: तो वो तुम्हें उड़ा ले जाएगा।
2: उस आदमी का नाम क्या है?
1: शेखर खोसला।
2: शेखर खोसला?
1: हाँ हाँ पाठक, पर मैं तुम्हें ये बताती कैसे?
2: काम नहीं, या तो वो आदमी पागल है या बेवकूफ, या फिर तुम मेरे सामने ढोंग रच रही हो।
1: क्यों?
2: तुम्हारी बात मुझे सच्ची नहीं लगती।
1: तुम डर गए ना, तुम कायर हो, तुम दर्शकों के सामने अपनी महानता सिद्ध करना चाहते हो। शेखर और अपने दोस्तों के सामने तुम दोनों मेरा इस्तेमाल करना चाहते हो। चतुर स्वार्थी नीच कंगाल।
0: एक शब्द भी और कहा तो गला घोटूंगा।
1: वाह मेरे प्रेमी, मुझे बचाने के बदले खुद ही मुझ पर हाथ उठा रहे हो, शक करते हो, और तुम तो मुझसे शादी करना चाहते थे।
2: हाँ, शक के इसी डरावने क्षण में मेरे दिमाग में पिस्तौल के अंदर असली गोलियां भर देने का ख्याल आया, और उस दिन मंच पर नाटक शुरू होने से कोई 15 मिनट पहले मैंने पिस्तौल में चुपके से असली गोलियां भर दी, ये जानते हुए कि कामनी ने एनसीसी में पिस्तौल चलाना सीखा है और हाथ में आते ही वो पिस्तौल चलाएगी, और इस प्रकार देश पांडे की भूमिका करने वाला वो लेखक केशव ठाकर मर जाएगा, और ये दुर्घटना ही मानी जाएगी। मगर बात झूठी नहीं थी, शेखर खोसला सचमुच जीता जाता इंसान था। कामनी उसे दर्शकों में बैठा देख सुखबुद्ध खो बैठे और उसे गोली का निशाना बना डाला, लेकिन सजा उसे नहीं मुझे मिलनी चाहिए। सजा मुझे मिलनी चाहिए, क्योंकि शेखर खोसला की हत्या के लिए जिम्मेदार मैं हूं।
3: शेखर खोसला को आप जानते हैं? केशव ठाकर, आप चुप क्यों हैं? बोलिए, शेखर खोसला के बारे में आप क्या कुछ जानते हैं?
2: ये आवाज कामनी को सजा हो गई, शेखर खोसला हमेशा के लिए खत्म हो गया, लेकिन अदालत की आवाज खत्म नहीं हुई। शेखर खोसला मेरा मित्र था, उससे कई बार रुपए पैसे से मैंने मदद मांगी, लेकिन वो अच्छा आदमी नहीं था, वह बदमाश था। उसने मेरी पत्नी को भी मेरी आंखों में धूल झोंककर अपना बंदी बना लिया था। सुध-बुध खत्म कर देने वाले कुत्तों की तरह वो मुझे निकले जा रहा था। उसका दर्द, उसकी छूट किसी दूसरे को दे देने के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं था।
1: केशव जी,
2: कहिए जी,
1: आपको नाटक के लिए कथानक हमेशा जीवन से मिलता है ना?
4: आप नाटक रात की रानी की बात कर रही हैं कामनी जी?
1: आप बता रहे थे ना कि आपने ये नाटक अपने आप अपनी पत्नी या शेखर खोसला पर लिखा है?
4: और क्या?
1: और ये नया नाटक किसी एक फूल का नाम लो।
4: वो हाँ, वो तो जैसा आप सबने कहा वैसा।
1: बड़े गहरे हैं कवि जी,
2: बड़े गहरे हैं कवि जी। कोकेन जैसा नशा था कामनी के दिमाग में शेखर खोसला की मित का, कहानी का। उसे नशे की आदत पड़ गई थी, रोज रिहर्सल के बाद नृत्य का अभ्यास करते वक्त उच्चारण ठीक रखने के बहाने मुझे बुलाती और मुझसे बातें करती रहती। इसी तरह उसके अहम को संतोष मिलता और पाठक अंधे प्यार के अंधी जलन में दीवाना होकर मुझसे और भी ज्यादा शराफत से पेश आता। उसके कहने से मैंने नाटक में

0: देश पाने का पाठ करना स्वीकार कर लिया था और फिर नाटक के प्रदर्शन से एक दिन पहले।
1: सुनिए कवि जी।
0: जी।
1: कल शो है ना?
0: हाँ।
1: कल पाठक में सवेरे 10:30 बजे ड्रेस रिहर्सल रखी है, क्या आप उससे 1 घंटा पहले ठीक 9:30 बजे आ सकते हैं?
0: जी।
1: एक जरूरी बात करनी है आपसे।
0: कामनी जी, मैं ठीक 9:30 बजने से 2 मिनट पहले थिएटर हॉल में पहुंच जाऊंगा आपकी खातिर।
1: कवि जी।
0: जी जी।
1: आप आ गए?
0: मैं बिल्कुल आ गया।
1: ये पहली पंक्ति के तो
0: टिकट
1: मैंने खरीदे हैं अपने पैसे से।
0: टिकट किस लिए?
1: ये तो टिकट शेखर खोसला को पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी। सीट नंबर A14 और 15, उससे कहिएगा जरूर आए, नहीं तो उसके घर जाकर मैं उसका खून करूंगी।
0: समझ गया। मतलब ये कि आप शेखर खोसला को देखना चाहती हैं और अपनी मनगढ़ंत कहानी को।
1: हाँ, अपनी मुट्ठी के शीशे को देखना है। देखूं मेरे मन की कल्पना से ज्यादा उजला है या ज्यादा काला। देखूं आपके उस खूबसूरत चित्चोर को।
0: और आपको अपनी खोज भी तो सच्ची कर दिखानी है कामनी जी।
1: आप बड़े गहरे हैं कवि जी।
0: और दूसरे दिन शाम को नाटक शुरू हुआ। पर्दा उठने से कुछ ही देर पहले थिएटर हॉल में शेखर खोसला सबसे अगली पंक्ति की A14 नंबर की सीट पर आकर बैठ गया था। पता नहीं कामनी ने कब और कैसे पिस्तौल में असली गोलियां भरी। कोई नहीं जानता उसे मेरा खून करना था या शेखर का। और शेखर खोसला की हत्या के अपराध में कामनी को उम्र कैद की सजा दी। आज जेल में मैं उसे देखने गया। मैंने उसे अजीब हालत में पाया।
1: शेखर खोसला
0: जेल की कोठरी।
1: हाँ, पूरा सच।
0: पकड़ी
1: सच के सिवा कुछ नहीं।
0: शेखर खोसला की बात कर रहे हैं।
1: शेखर खोसला, झूठ बोलोगे तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। बताओ इस मुलसिमा कामनी देसाई को जानते हैं? जवाब तो हाँ या ना। रात को गर्माई मेरी है, जिसे तुम गाया प्रेमी चचो भाई और नीच माँ की कैद से छुड़ा लाए, उस कामनी देसाई को तुम नहीं जानते। शेखर, मैं तुम्हें जानती हूं। मैं तुम्हें जानती हूं। मैंने तुम्हारी पूरी पत्नियों में अपना घोंसला बनाया है। तुम्हारी लंबी तीखी नाक से मैंने अपनी जिंदगी में गर्म सांसें ली हैं। तुम्हारी प्यारी मजबूत बाहें पकड़कर तुम्हें मैं आसमान से यहां उतार लाई अपने हाथों में। और अब कहां गई तुम्हारी वो छेदती हुई आंखें? कहां गई तुम्हारी वो घमंड से तनी हुई गर्दन? चुप क्यों शिखर? जवाब तो उससे बातें करो। मुझसे बातें करो। मुझसे

किसी एक फूल का नाम लो। इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग अभी आपने सुना। मूल गुजराती लेखक मधुराय, हिंदी रूपांतरण ज्योति व्यास, संपादन चिरंजीत, निर्देशक सुशील बनर्जी और प्रस्तुति आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक और आ गया।
2: जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर सुनिए।

0: उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज निर्देशिका और पटकथा लेखिका पद्मभूषण सई परांजपे अपनी यादों के उजाले बिखेरने आई हैं हमारे साथ। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। पिछले सप्ताह हमने इस लंबी बातचीत की तीसरी कड़ी सुनी थी, आइए आज सुनते हैं चौथी और अंतिम कड़ी।
1: कथा की तरफ आते हैं, कथा फिल्म का प्लॉट कहाँ से आया था?
2: हाँ, कथा का प्लॉट ये एक प्लॉट है कि जो मेरे से नहीं आया,
1: एक किसी और जगह से आया।
2: हाँ, बिल्कुल, ये मैंने एक प्ले देखा, ससा आणि कासव, शंगो साठे करके एक बहुत हमारे लायक मराठी राइटर है और उनका नाटक था जो मैंने मंच पे देखा। अब नाटक मुझे ठीक ही लगा, मतलब जिस तरह से वो आगे चलता गया वो किसी हद तक रूखा लगा थोड़ा सा, और मेरे लिए तो बात नहीं बनी, लेकिन उसकी जो ये ठीक क्या कहते हैं अंडरलाइंग कथा, नहीं कथा से भी उसकी जो प्रेरणा या उसका जो एक मतितार्थ था, हाँ, वो इतना खूबसूरत और इतना सही था कि क्या मैं बताऊं। मतलब उसका कहना था इस नाटक का कि आजकल कंटेंट को कोई कीमत नहीं रही, हाँ, तुम क्या हो इससे ज्यादा तुम कैसा पेश आती हो,
1: दिखावा क्या है,
2: ये दिखावा क्या है ये माने रखता है आजकल के जिंदगी में। और जो सही है, अफसोस है कि आज भी ये बिल्कुल सही है, और माल को नहीं बल्कि पैकेजिंग को महत्व है। इस तरह वो उसको चांदी के कागज में लपेटा जाता है, उसको रिबन किस तरह से लगाई जाती है और उसमें और चमचम डाली जाती है वगैरह वगैरह। तो इट इज अ वेरी वेरी रियलिस्टिक ऑब्जर्वेशन और बहुत ही बढ़िया मुझे लगा। मैंने कहा वाह वाह वाह, ये क्या बात है, अगर ये मैं लेके, ये तत्व को लेकर मैं एक फिल्म बनाऊं और कहानी मैं पूरी अपनी अलग ही बनाऊं तो चलेगा क्या? मैंने टाटे साहब से कहा कि आइडिया तो आपका है, आपको पूरी तरह हम क्रेडिट दे देंगे कि आपसे हमने प्रेरणा ली, लेकिन बाद का सब मेरा, चलेगा क्या? उन्होंने कहा जो मर्जी करो। वो अच्छी तरह जानते थे मुझे, बहुत मतलब घरेलू हमारी पहचान और दोस्ती सी थी, तो उन्होंने कहा जो मर्जी करो, किया जो मर्जी किया मैंने और पूरा ही वो बदल दिया। उसमें सारे कैरेक्टर्स, वो तो प्ले में नहीं है, जो वो बापू का कैरेक्टर आता है जो घंटी बजाते रहता है, या वो सिंधी नमिया बीबी है, या ये जो डालडा का टमरेल लेके घूमता है वो आदमी, या वो दादी अम्मा किससे सुनाने वाली, वो सब सब सब मेरी कल्पना के बच्चे।
1: और चौल को आपने जिस तरह से पकड़ा अपने सीरियल्स में भी और अपनी फिल्मों में भी, तो वो गुलजार साहब ने जो कहा था द मिनिस्टर ऑफ चौल,
2: आपको मालूम है, वो बहुत ये करते थे, मजाक उड़ाते थे मेरा कि सही है।

0: चौल का क्या चक्कर है यार, तुम तो मिनिस्टर ऑफ चौल हो। तो ये मुझे बड़ा बचपन से ही फैसिनेशन रहा है चौल्स का, शायद इसलिए कि हमारे घर में, हमारे बंगले में मैं अकेली, मेरी माँ अकेली, अदाना अकेले, मतलब हम तीनों, तीन जनरेशन के तीन लोग, और बड़े प्यार से हम रह रहे थे। लेकिन मुझे अपने उम्र का या और भी तो जरूरतें होती है ना बच्चे की, तो फिर मैं इधर उधर पड़ोस में, बगल में, इधर उधर जाती थी, या हमारे और दूर के कोई रिश्तेदार हो, उनके यहाँ जो ढेर सारे बच्चे होते थे, खूब मामा मामिया मौसी चाचियां होती थी, उधर जाती थी। और इतना मुझे वो अच्छा लगता था, उनका आपस में लेन देन सुनना, उनकी नोक झोंक सुनना, उनके झगड़े सुनना, उनका त्योहार मनाना वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैं बड़ा जाके उसमें समाने की कोशिश करती थी। और मुझे लगता है ये चौल्स का और ये इकट्ठा रहने का जो फैसिनेशन है ना, कि मतलब अलग अलग, बेशक तुम्हारे घर हो, दीवारें अलग अलग हो,
1: जी
0: लेकिन छप्पर तो एक है।
1: बहुत सुंदर बात है,
0: हाँ,
1: वाह।
0: तो इसका मुझे बहुत मोह रहा है बचपन से कि
1: गुलजार
0: ये।
1: साहब से जुड़ी एक और घटना है,
0: हाँ,
1: वो भी बताइए,
0: कौन
1: वो
0: सी?
1: डायलॉग सुधरवाने वाली।
0: नहीं, कहीं वो सुन ले तो। नहीं, वो एक जमाना था, वो अफसोस कि इतना मिल नहीं सकते हम। लेकिन तब मैं बार बार उनको कुछ उर्दू लफ्ज अगर मुझे चाहिए होता, या किसी उर्दू लफ्ज का सही मतलब चाहिए होता, तो मैं उनको फोन करती थी कि गुलजार साहब इसका क्या मतलब है वगैरह वगैरह। तो एक दिन उन्होंने कहा, सही, अब मैंने तय कर लिया, मैंने बहुत सोचा है इस बात पर, बहुत सीरियस लिया, कि ये मैं तुम्हें बहुत मुफ्त में सलाह देता रहता हूँ, और अब आगे से मैं चार्ज करूंगा। तो और सचमुच फिर वो कहते थे, देखो 2 रुपए 50 पैसे हो गए हैं अभी तक, वो कुछ 8 चार्ज होता, तो क्या अब बात
1: एक
0: नहीं
1: बार की सलाह पे
0: लेकिन
1: 8, यानी 5 बार की सलाह पे 2.5 रुपए हुए थे।
0: हाँ, तो वो याद दिलाते थे कि तुमने मेरे पैसे अभी नहीं चुकाए, नहीं वो करो जल्दी, ऐसी बात अच्छी नहीं वगैरह वगैरह। तो वेरी लवली पर्सन, वेरी
1: जी,
0: डिलाइटफुल।
1: ये जो कथा की कास्टिंग आपने की थी तूफानी, इसके बारे में बताइए कि आपने ये कैसे सोचा कि इन दोनों बंदों को उलट कैरेक्टर दिया जाए।
0: ये कोई खास बैठ के सोचने की बात ही नहीं थी ना, अब मुझे सच पूछो तो याद नहीं कि कैसे क्यों सोचा। लेकिन नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, हाँ, कुछ थोड़ा सा रौबीला, हाँ,
1: शरारती भी।
0: शरारती भी और दूसरे पे हावी होने वाला, हाँ। और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा, मुस्कुराता हुआ, शरीफ, जैसे चश्मे बद्दूर में था। तो मैंने कहा ये तो टेलर मेड नहीं चाहिए, है ना। तो कथा में नसीर विल बी द स्लाइटली बुद्धू भोला भाला राजा राम, जो बिल्कुल सही नेक आदमी, नाक के सीधे जाने वाला, और ये दूसरा जो है चंट होगा, हाँ, कि दूसरे को ठगाने वाला, अपनी चलाने वाला वगैरह वगैरह। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया, दोनों ने कहा बढ़िया स्क्रिप्ट है, मजा आ गया, मजा आ गया, कब करें? तो मैंने कहा कौन से रोल करना? नसीर ने कहा वो, ये तो मैं हूं ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूं। मैंने कहा ना ऐसा नहीं है, उल्टा है। तो उन्होंने कहा क्या, जैसे क्या बात कर रही हो, डोंट बी सिली। एंड आई सेड नहीं, आई एम सीरियस, एब्सोल्युटली अ फैक्ट। और नसीर ने कहा मैं राजा राम, तुम भूल गई हो मैं कितना स्मार्ट बंदा हूँ, और कैसे मेरा रौब है, ये फलाने का, क्या लोग मुझे मान लेंगे, ये भोला भाला बुद्धू राजा राम, डू यू थिंक एनीवन विल एक्सेप्ट मी एज राजा राम? एंड फारूक ने यही कहा कि तुम बताओ कि मुझ में कहाँ बदमाशी तुम्हें नजर आई, बता तो दो जरा, इतना मैं सीधा साधा नेक आदमी वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा यार तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम पोस्टर बॉयज हो क्या या एक्टर हो? तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए? वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है? हाँ, वही करते रहोगे, अच्छा ये भोला भाला दिखता है तो भोला भाला, और तुम शरारती हो तो तुम, वैसे दो चैलेंज, डोंट यू वांट एनीथिंग मोर एक्साइटिंग इन लाइफ? तो फिर आई डोंट नो, आई मस्ट हैव डन अ गुड जॉब, क्योंकि दोनों मान गए फिर, और दोनों ने फिर लाजवाब रोल्स किए आपने
1: बिल्कुल
0: तो देखा
1: बिल्कुल
0: ही। हाँ,
1: बिल्कुल।
0: बहुत सुंदर रोल्स।
1: और
0: और
1: वहां पर
0: फारूक,
1: फिर दीप्ति चली आई।
0: दीप्ति चली आई, और दीप्ति को तो लिया ही था चश्मेबद्दूर, बाद हमारा बहुत आपस में प्यार भी था, और आई रियलाइज दैट शी इज अ फैंटास्टिक एक्टर, दीप्ति इतनी अच्छी कलाकार है, अरे बाबा बाबा। वो देखो, इन दोनों की बड़ी तारीफ हुई, लेकिन दीप्ति को भी देखो ना, तो वो सीधी एकदम चौल में रहने वाली सीधी सी, और इतना प्यार से वो, एक फारूक उसका सीन है कि आजकल देखा नहीं कि लड़कियां कितनी लिबरेटेड हैं, हाँ, और आप क्या काकू बन के रहती है? तो दीप्ति कहते हाँ वैसे लिबरेटेड मैं भी हूँ, मतलब काफी लिबरेटेड हूँ, ऐसे इतना वो प्यारी,
1: मासूम
0: प्यारा
1: एकदम।
0: से मासूमियत में
1: बल्कि
0: बोल
1: एक
0: रहे।
1: सीन चश्मे बद्दूर का भी याद आता है, जब वो इसको 5 मिनट के लिए भिगो के रख देते हैं। अब वो 5 मिनट बीत नहीं रहे हैं और वो इधर उधर देख रहे हैं और वो रेडियो लगता है हम तुम एक कमरे में बंद हो, और वो सुंदर सीन है उसमें जो

0: अच्छा है जीता है, तो दीप्ति जी ने जिस तरह से किया है, कमाल कमाल
1: बहुत
0: है
1: सुंदर किया ना दोनों ने, वो जो प्यार का एक मासूमियत जो प्यार की है
0: जी।
1: इतनी दोनों के तरफ से इतनी सुंदर तरीके से टपकती है, इट्स ब्यूटीफुल। इवन आई लव दिस वन ऑफ माय फेवरेट सीन्स टोटली इन
0: जी
1: माय एंटायर करियर। इफ यू आस्क मी नेम फाइव सीन्स व्हिच आई फील आर रियली रियली गुड, दैट्स वन ऑफ देम।
0: क्या बढ़िया सीन की बात हुई है। अच्छा, फिल्मों की पटकथा कितने दिनों में आप अमूमन लिखा करती थीं?
1: अरे बाबा ऐसा नहीं मैं कह सकती, इट डिपेंड ऑन द फिल्म।
0: जी
1: जैसा कि दिशा का पूछो तो दिशा को लिखने में मुझे लगा 17 साल।
0: ओ गॉड,
1: मैं मजाक नहीं कर रही, मतलब ये नहीं कि मैं 17 साल हर एक दिन लिखती रही
0: लेकिन
1: थोड़ा
0: वो
1: थोड़ा,
0: प्रोसेस
1: ऐसा
0: में
1: नहीं
0: था
1: नहीं
0: जी।
1: लेकिन वो दिशा के लिए एक कुछ देखा, फिर वो जहन में बैठ गया कि इसको कभी ना कभी कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना है, तो वो दिमाग के कंप्यूटर में दर्ज हो गया। फिर और कुछ ऐसा ही हुआ, फिर
0: जी
1: और कुछ, इस तरह छोटा छोटा छोटा छोटा तो वो समेटता गया मेरे
0: जी
1: अंदर। और फिर एक दिन विस्फोट हुआ और फिर मैं लिखने लगी, और फिर 7 दिन में लिखी। तो टेक योर चॉइस, अगर 17 साल लगे कहो या 7 दिन लगे कहो।
0: वाह, ये भी बात है।
1: हाँ।
0: और जब आपने कहा कि ये कुछ देखा और दिमाग के कंप्यूटर में जमा हो गया, तो मुझे याद आता है कि आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि आप गई ब्लाइंड स्कूल में
1: जी
0: और वो रस्सा कशी का खेल हो
1: हाँ
0: रहा
1: हाँ
0: था।
1: हाँ
0: वो सीन बाद में स्पर्श में आता है ना? तो कोई कोई चीजें जो दर्ज होती जाती हैं दिमाग में, वो
1: इसमें कोई शक
0: पटकथा का
1: नहीं,
0: हिस्सा बनती
1: बिल्कुल
0: जाती
1: बिल्कुल।
0: हैं।
1: अरे ये रस्सी जाने दो, लेकिन दिशा का एक एस ऑफ स्पेड्स कहो या ट्रम्प्स कहो, क्या है कौन सा सीन, तो वो अंधे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। हाँ,
0: हाँ
1: इससे और क्या चाहिए। अब वो मैं बैठ के थोड़ी ना सोचा है वो सीन, वो देखा तो लिख लिया,
0: जी
1: क्योंकि एक्चुअली वो करते हैं बच्चे वैसे, वो क्रिकेट खेलना चाहते थे, वो उनका गेंद क्या है, एक रिंग है, और उस रिंग में उन्होंने बॉटल टॉप्स होते हैं ना सॉफ्ट ड्रिंक्स के, उनको छेद करके उनको पिरोए हैं और रिंग फिर फिक्स कर दी, ताकि वो रिंग में वो सब झुन झुन झुन झुन करके बजते हैं ढक्कन सब, और फिर वो रिंग फेंको तो झुनझुनाती हुई जाती है हवा में, झुन झुन झुन झुन झुन। फिर जो बैट्समैन है उसको एक बड़ा सा चौड़ा सा क्रिकेट बैट से भी चौड़ा फट्टा दिया होता है, प्लाईवुड का कहो या लकड़ी का फट्टा, नॉट वेरी हेवी, तो लकड़ी का फट्टा उसकी बैट है। तो ये बॉलर फेंकता है, ये झुनझुना या बॉल कहो, का बॉल है वो, बॉल फेंकता है, ये सुनता है और जैसे पास आया ठाक करके
0: क्या
1: मारता
0: बढ़िया,
1: है, तो या तो सिक्सर या तो कैच।
0: वाह
1: और
0: वाह,
1: ये खेल देख के रोंगटे खड़े हो गए, अभी मैं आपको बता रही हूँ तब फिर भी मेरे
0: वो
1: रोंगटे खड़े हो
0: एहसास
1: गए।
0: हो रहा है।
1: इट इज सो ब्यूटिफुल, इट वॉज सो ब्यूटिफुल। तो बस ये बच्चे खेले सुंदर तरीके से, स्क्रीन पे सैनी ने उनको उतारा और मैंने फिल्म में दिखाया।
0: इसीलिए तो सेल्यूलाइट के पर्दे पर जीवन धड़का, क्योंकि
1: जी
0: जीवन से चीजें निकाली गई थी।
1: बिल्कुल।
0: मैं एक चीज का और जिक्र करना चाहता हूं ताकि वो इस इंटरव्यू में दर्ज हो, और वो ये है कि ये जो चॉल है, मिनिस्टर ऑफ चॉल्स ने ये चॉल ढूंढने में जो जमीन आसमान एक किया
1: हाँ
0: और वो मुंबई में नहीं मिली।
1: नहीं, क्या मजे की बात है ना,
0: पूना
1: बम्बई की खास चॉल पुणे में। अब
0: में
1: दिस इज फिल्म यार,
0: जी।
1: यू नो फिल्म ए टू जेड, फिल्मी एवरीथिंग इज फेक, तो ये भी फेक ही है, चॉल भी फेक है हमारी, लेकिन चॉल फेक नहीं है,
0: हाँ,
1: पोजीशनिंग फेक है।
0: पोजीशनिंग फेक है कि
1: हाँ
0: वो आपको बंबई में मिलती ही नहीं।
1: नहीं ना, बम्बई में कितनी चौल है रे बाबा बाबा बाबा, हम पागल हो गए ढूंढते ढूंढते, मतलब दादर से लेके गोरेगांव तक, उधर थाना तक, कहाँ कहाँ नहीं घूमे हम। तो कई चौल तो होती थी, वहां के मालिक बहुत बदतमीज होते थे, बेतहाशा पैसा मांगते थे, या वहां सुना कि कोई गुंडागर्दी थी बहुत ज्यादा, कई चौले थे इतनी खराब थी, मतलब सीढ़िया लगे पैर रखो तो कब कोलैप्स हो जाए, और कहीं तो इतनी गंदगी थी, कहीं कुछ था, कहीं भीड़ जा ही नहीं पाते थे चौल तक। तो इस तरह से एक भी चौल हमें रास नहीं आई, और फिर परेशान हो गए, फिर हमने सोचा चलो किसी स्टूडियो में नकली चौल बनाते हैं, अब क्या करें। तो मैंने कहा कि अरे ये चौल करना और वो भी सेट बनाना, हाय हाय, कभी नहीं ये हो सकता, लेकिन क्या करे, मानना पड़े। फिर किसी ने बताया कि पूना में देखो ना, पूना में जरूर मिल जाएगी चौल। तो मैंने कहा नहीं, बम्बई की चौल और पूना में क्यों। तो कहता है अच्छा, तुम स्टूडियो में नकली चौल लगाने को तैयार हो, लेकिन पूना में असली चौल नहीं चाहिए, क्योंकि वो पूना में है। मैंने कहा हाँ, ये तुम ठीक कह रहे हो। यू आर राइट। फिर मैं भी समझ गई कि मतलब अड़ियलपना नहीं करना चाहिए ज्यादा। तो फिर हम पुणे गए और पुणे में तो उल्टा ही हुआ, जो चौल देखो हमें पसंद आए, जो चौल देखे वो हमें रास आए। तो फिर हमने 5 चौले शॉर्टलिस्ट की, हाँ, और फिर एक जो बहुत हमारे

0: मतलब की थी, जो हमारे घर से दूर नहीं थी, सेंट्रल भी थी, जहाँ के लोग भी बड़े माशाल्लाह अच्छे थे वगैरह वगैरह। और वो एक ताड़ुग के चौल करके केसरीवाड़ा के बिल्कुल करीब में थी, सेंट्रल पूना में। तो वो बढ़िया चौल थी, और चारों ओर वो बीच में ये था, पूरा एक ग्राउंड था चौल
1: आंगन।
0: के बीच में आंगन, और चारों ओर बालकनीज थी, बैलुस्टेज और कटघरे लगे हुए। एक एक एक एक फ्लैट था चौल का। हाँ, मतलब कोई भी आदमी चौल वाला किसी भी चौल वाले को पुकार सकता था अपने घर से
1: बिल्कुल
0: बैलुस्टेज। और फिर इतनी वो सुंदर चौल, और वो क्या चौल वाले, और वहां के बच्चे भी और ये भी, और इतना उन्होंने हमें सहयोग दिया कि मैं क्या बताऊं। फिर हम कुछ बहुत ही ढीठ बन गए कि कहने लगे, तात्या कल आपके घर हम आ रहे हैं, हाँ तो वो सब वो तोते का पिंजरा जरूर लगा के रखी है वगैरह वगैरह वगैरह। और बड़े प्यार से फिर हमको सब शूटिंग करने देते, कहीं खुद चले जाते बगल में पड़ोस में।
1: इस तरह पूना की साड़ुन के चौल कथा
0: कथा
1: फिल्म
0: में
1: में बंबई की चौल बन
0: बन
1: के
0: गई,
1: हमेशा के लिए अमर हो गई, है
0: बिल्कुल।
1: ना। ये कमाल है। इस फिल्म का वो गाना बजाते हैं
0: कौन सा?
1: जो हमने तब बजाया था जब आपने विविध भारती की पहली सीडी पे
0: कितनी
1: कदम
0: वो
1: रखा
0: इतना
1: था।
0: प्यारा लगा मुझे। अगर सुनो, एक से जल्दी से बताती हूँ
1: जी
0: कि जिंदगी में प्यारे प्यारे इंसिडेंट्स फिल्मी करियर में मेरे बहुत आए, उसमें से ये एक दर्ज हो गया जो
1: ये भी
0: आपने गाना बजाया विविध भारती में।
1: क्या बात है। कौन आया कौन आया। हम अपने सुनने वालों को बता दें कि जब सई जी विविध भारती के स्टूडियो में आ रही थी, तो जैसे ही वो गाड़ी से उतरी और पहले स्टेप पर उन्होंने कदम रखा और तुरंत गाना बजा, कौन आया। तो यही गाना सुनते हैं।
0: जी
1: कौन आ

0: अब दिशा की तरफ चलते हैं, आपकी जिंदगी की आपकी नजर में हाँ। सबसे महत्वपूर्ण फिल्म हाँ। है ये
1: बिल्कुल,
0: और इसका बीज विलासराव सालुंके से मिलके पड़ा था।
1: विलासराव सालुंके वॉज द फर्स्ट

0: tip or the first thing. See, very dear friends of mine, Vijay and Saroja Parulkar, Pune mein, dono ab nahi rahe, lekin bahut hi pyare dono pati patni the aur hamesha kuch na kuch social kaam mein lage rehte the. Kahin kuch kisi ke saath jaati ho to ye dono wahan hazir, ladne ke liye unko ye dilwane ke liye wagaira wagaira. To unhone mujhe kaha ki sahi ye tumne Vilas Rao ki pani panchayat nahi dekhi, unke gaon mein wo gaon pura pani ko unhone अर्पित किया है जैसे, और पानी पर उनका बहुत रिसर्च हो रहा है, और उनका कहना है कि बारिश की हर बूंद पर हर गांव वाले का हक होना चाहिए.
1: बहुत बढ़िया बात है.
0: और उन्होंने क्या क्या परियोजनाएं बनाई है. एनीवे मैं देखने गई
1: जी
0: उनके गांव में,
1: नायगांव
0: गई थी. तो वहाँ नायगांव में उन्होंने कहा सब पूरा देख लिया, ये हो गया. उन्होंने कहा अच्छा एक हस्ती से आप नहीं मिल गए, हमारे नायगांव में एक बड़ा मशहूर आदमी है, मिलवाइए. तो एक किसान सामने आया, दुबला पतला ठिंगना सा, एक टोपी सर पे जिसका ऊपर का हिस्सा पूरा गायब हो गया था, धूप में काम कर करके सिर्फ उसका दे रहा था चारों ओर का. ये है हमारे सोमा. तो मैं जरा सी चौंके, मैंने कहा ये अच्छा नमस्कार, बड़ी खुशी हुई. सोमा अपना कुआं दिखा दो सहिताई को. तो मुझे सोमा ने अपना कुआं दिखाया, बाकायदा कुआं पत्थर से चारों ओर बांध बनाया हुआ, ये वो नीचे पानी, अंदर कुएं में पानी. कहता ये सोमा ने खुद खोद खोद के पानी निकाला. 12 साल सोमा कुआं खोद रहा था, क्योंकि सोमा को पूरा यकीन था कि मेरे खोपटे के बाहर, मेरे झोपड़े के बाहर जो छोटी सी बंजर जमीन है खरकाली, उसके अंदर पानी है. ऐसे उसको पता नहीं कहां और क्यों और कैसे, लेकिन उसको ये पूरी उसकी धारणा थी. और वो उस हिसाब से पूरे दिन काम पे जाता था, बेचारा करेगा क्या, पैसे तो कमाने थे. तो वो काम पे जाता, मेहनत से कमाता रोजी रोटी, घर आके कुआं खोदता. और बीवी उसकी झगड़ा करके कितनी बार पता नहीं मायके चली गई, फिर वापस आ गई, बेचारी जाएगी कहां, बच्चे उसके 3-4, और पूरा गांव सोमा पे हंसता था. उसका नाम था पगला सोमा, क्योंकि सारे देखते सोमा क्या है, वो अरे खोद रहा होगा और क्या करेगा सोमा. और जब सोमा को पानी मिला तो फिर पूरा गांव पगला गया बिल्कुल. तो ही हैड द लास्ट लाफ. फिर गांव वालों ने आगे बढ़ बढ़ के फिर उसका कुआं बांधा, ये किया वो किया. तो विलास राव ने कहा सही, ये फिल्म बनाने लायक है. मैंने कहा जरूर है, और ये मैं अपने दिमाग में दर्ज कर.
1: इंसान के जुझारूपन की मिसाल,
0: जुझारूपन की क्या मतलब किस हद तक उफ. और फिर ये जब हुई फिल्म, ओम पुरी ने ये रोल किया
1: जी,
0: और शबाना ने उसके बीवी का किया. और वो इतना उनके प्यारे सीन है, वो कहती है कि अरे इस चुड़ैल को लेके मैं क्या करूं, कोई औरत होती तो मैं देख लेती, लेकिन ऐसी सौत का क्या करूं जो कुआं मतलब उसकी सौत.
1: तो,
0: और हाँ, तो वहां से शुरुआत हुई
1: जी.
0: फिर वो कुआं हो गया. लेकिन मैंने सोचा कि ये एक पूरी फिल्म के लिए ये शायद इट्स नॉट मीटी इनफ, नॉट फ्लेशी इनफ. हाँ, आगे इतना रोजमर्रा के काम में लग गई. और फिर काफी साल गुजरे, और मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त सुभाषिनी अली,
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल
0: मालूम है, कैप्टन लक्ष्मी की बेटी और खुद मार्क्सिस्ट है, फिर बहुत धड़ल्ले वाली औरत और मेरी बड़ी प्यारी दोस्त है. तो वो बहुत मिल मजदूरों का काम करती थी मुंबई में. और वो एक दिन मेरे घर के पास ही रहती थी तब. तो मेरे घर आई और दो चटाइयां देखी सुभाषिनी ने. कहती है सही, दो चटाइयां क्या करनी. मैंने कहा है पड़ी है. कहते एक चटाई तो दे दो ना मुझे. मैंने कहा तुम क्या करोगे चटाई लेके. कहते मेरे लिए नहीं रे, मुझे अपने गाड़ा में काम आएगी. मैंने कहा क्या, कहाँ काम आएगी. कहते गाड़ा, गाड़ा गाड़े में जाती हूँ ना मैं, तो गाड़े में काम आएगी. मैंने कहा गाड़ा मतलब क्या बोल रही हो, क्या गाड़ा. तो सुभाषिनी ने ऐसी आंखें फाड़ के मुझे देखा, कहती है तुम मराठी औरत अपने आप को डायरेक्टर कहती हो, लेखिका कहती हो, और तुम्हें गाना नहीं मालूम हाँ बम्बई में रहकर. मैंने कहा नहीं नहीं सच्ची नहीं मालूम मुझे क्या गाना मतलब. कहती है चल मेरे साथ चल. और फिर मैं सुभाषिनी का पल्लू पकड़ के उसके साथ गई, और हम चिंचपोकड़ी और यहाँ वहाँ वो सब मिल एरिया में वो मुझे ले गई, और गाड़ा देखा मैंने. गाड़ा क्या होता है, इट्स अ डॉर्मेटरी, बड़ा कमरा जिसमें 20 से लेकर 40 बंदे एक साथ रहे.
1: एक लंबा
0: लंबा बड़ा एक हॉल, हॉल ही गाड़ा मतलब हॉल कमरा. हाँ, लेकिन उस कमरे में साथ रहते हैं, साथ काम करने वाले मिल मजदूर, चालीस चालीस मिल मजदूर एक कमरे में। हाँ, तो वो जैसे मैं दहलीज पर खड़ी हुई, सुभाषिनी तो अंदर गए ठका ठक करके, और मैं आंखें फाड़ के देखती रही, चालीस जने अंदर कमरे में, और अलग अलग उनका हर एक का कुछ ना कुछ चल रहा था, कोई पेपर पढ़ रहा था दिन का, कोई लेटर लिख रहा था पोस्ट कार्ड पे, कोई फ्लूट बजा रहा था।

0: चार जने पत्ते खेल रहे थे, ताश खेल रहे थे, एक जन स्टोव पे चाय बना रहा था, एक जन कुछ भी, मतलब अलग अलग अलग अलग उनके सवाल। और बहुतेरे लोग सोए थे चटाइयों पे, गहरी नींद सो रहे थे, चारों तरफ ये झमेला चल रहा है, लेकिन बीच बीच में लोग मेरे मजे के खर्राटे भी भर रहे। तो मैं देखती रह गई, खड़ी रह गई। फिर उसने कहा, अरे आओ ना, क्या देख रही हो? फिर मैं अंदर गई और फिर बातें करने लगी लोगों का। वो सब कहते, हम अपना देहात छोड़ के आए हैं, अपने माँ बाप, अपने बीवी बच्चे, अपने घर बार सब छोड़ के हम वो अपने पेट भरने के लिए, रोजी ढूंढने के लिए बम्बई शहर में आ गए हैं, लेकिन हमारा दिल तो गाँव में रह गया, पीछे दिल छोड़ के आए हैं, बाकी सब लेके आए। तो मैंने कहा, तो फिर आपको सिर्फ ये 6 फुट जगह मिलती है? कहते, हाँ, ये हक की हमारी 6 फुट जगह जहां हम सो सकते हैं आराम की नींद। कहते, हाँ, सो सकते हैं लेकिन करवट नहीं बदल सकते। मैंने ये फिल्म में डायलॉग इस्तेमाल किया है कि हम सो सकते हैं, करवट नहीं बदल सकते। किसी ने मुझे कहा, क्या तुम बहुत अच्छा डायलॉग लिखती हो? मैंने कहा, मैं डायलॉग चोरी करती हूँ, मेरा अपना
1: आम जीवन से आया है जी।
0: तो एनीवे, तो ये इस तरह वो देख के मैंने कहा, ये तो इट्स टू टू ड्रामेटिक, टू फिल्मी टू नॉट डील विथ। तो फिर ये भी वो कुएं के साथ ये
1: जुड़ गया।
0: और देन द लास्ट थिंग वॉज विजय सरोजा अगेन, दे वर रिटर्निंग फ्रॉम निपानी। निपानी, इफ यू नो,
1: इंडस्ट्रियल एरिया,
0: इज द इंडस्ट्रियल एरिया नोन फॉर बीडी वर्क्स। हाँ, निपानी की तंबाकू और निपानी की बीड़ियां मशहूर है। तो वहां औरतों ने एक जंग खड़ा किया था, क्योंकि उन पर बहुत अत्याचार हो रहे थे, उनको पैसे ठीक से नहीं दे रहे थे, उन पर वो बहुत ही क्या क्या तरह तरह के जुल्म होते थे वगैरह वगैरह। तो विजय और सरोजा वो उनके साथ शामिल होने के लिए गए थे निपानी, और वहां से लौट रहे थे। और विजय ने मुझे जो किस्से कहानियां सुनाई, तो मुझे लगा मैं चारों तरफ मेरे तम्बाकू ऐसे
1: उड़ रहा है
0: और मेरा दम घुट रहा है ऐसे। तो ये फिर तम्बाकू वाली औरतें भी खड़ी हो गई लाइन में, और फिर देखते ही देखते जैसे जादू हुआ, और फिर 7 दिन के अंदर इसका मेल हो गया और फिर पटकथा मेरी बन गई।
1: क्या बात है। और मैंने हमेशा हर जगह ये देखा है कि आप ये कहती हैं कि आपकी नजर में ये आपकी सबसे अच्छी फिल्म है।
0: जी जी, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ये इस तरह कह सकते हैं कि ये परिपूर्ण फिल्म है। इसका अब तक मुझे लगा कि एक तो ये मेरी 4थी 5वीं फिल्म थी, मतलब फीचर फिल्म, बाकी छोटी मोटी छोड़ो, डॉक्यूमेंट्रीज और टेलीफिल्म, लेकिन तब तक मुझे ये मीडियम भी खासा समझ में आया था, और लोग भी बहुत बढ़िया मिल गए, एक्टर्स भी नाना पाटेकर और रघुवीर यादव, नीरू फुले, शबाना आजमी, ओमपुरी और बाकी सब मिल वाले, एक्चुअल मिल वाले, ऐसे एक से एक बढ़कर लोग मुझे मिल गए फिल्म के लिए। और म्यूजिक के लिए आनंद मोडक ने बहुत बढ़िया एक गाना, जो सबसे मेरा अच्छा गाना मैं सोचती हूँ, लिखा हुआ बम्बई बम।
1: हाँ, वो आपने खुद लिखा है?
0: जी,
1: ये भी कमाल की बात।
0: मैंने खुद लिखा, और दिशा के सारे गाने मैंने लिखे, और म्यूजिक उसका आनंद मोडक ने दिया, और राहुल रानडे ने बढ़िया पार्श्व संगीत दिया, बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत बड़ा हिस्सा है उसका, बैकग्राउंड म्यूजिक का इस फिल्म में। और फिर एडिटिंग क्या, फोटोग्राफी क्या, फोटोग्राफी के लिए 2 जने थे, गांव की फोटोग्राफी मधु अंबटनी की, केरल का मशहूर कैमरामैन, और जी एस भास्कर ने बंबई की फोटोग्राफी की।
1: क्या
0: तो
1: बात,
0: दोनों
1: है?
0: ने कमाल किया, मतलब इट वाज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस।
1: जब एक काम की ऊर्जा आगे बढ़ती है तो समान विचार के लोग जुड़ते चले जाते हैं।
0: सही बात है,
1: है ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी। यहाँ मैं 2 चीजों का जिक्र करना चाहता हूँ, एक तो नाना पाटेकर से हुई लड़ाई और उनकी दादागिरी, और दूसरा रघुवीर यादव का आगमन इस फिल्म में।
0: तो नाना की तो दादागिरी क्या बताऊं, कि नाना का मेरा बहुत पुराना परिचय, दोनों थिएटर के बंदे
1: जी,
0: और कभी काम नहीं किया था हालांकि, लेकिन हाँ, नाना का जो फिल्म इंडस्ट्री में पदार्पण हुआ वो मेरी तरफ से है।
1: जी जी,
0: हाँ, बिकॉज मुजफ्फर वॉज मेकिंग गमन एंड ही सेड, सही, आई वॉन्ट सम अ गुड एक्टर, इट्स नॉट अ बिग रोल बट ही शुड बी हैव अ लॉट ऑफ पैशन, ये वो। सो आई सेड, आई गिव यू अ फर्स्ट क्लास एक्टर फॉर द रोल, एंड आई गेव हिम नाना पाटेकर।
1: वाओ,
0: एंड नाना, इट वॉज सच अ स्मॉल रोल, वो आया गया ऐसा ही रोल था, कुछ था नहीं उसमें, लेकिन वो पहली बार जो स्क्रीन पे आया वो गमन में आया मुजफ्फर के, और वो मैंने उसको मुजफ्फर से मिलवाया। खैर, लेकिन मेरी अपनी फिल्म में तो कहीं मौका ऐसा लगा नहीं कि उसको लिया जाए। और देन फॉर दिशा आई सेड कि नाना एक्चुअली सच बताऊं तो मुझे परशुराम के रोल के लिए चाहिए था। परशुराम मतलब

0: कुआं खोदने वाला,
1: जी
0: क्योंकि वो जो उसका एक हल्का सा पागलपन, उसका एक
1: जुनून,
0: जुनून, एग्जैक्टली उसका जुनून बिल्कुल मुझे नाना में नजर आया कि ये जरूर कुआं खोदेगा 12 साल बिना रुके। तो मैंने नाना को बुलाया, नाना आ गया मेरे घर और चटाई पे लेटे उसने स्क्रिप्ट पढ़ा एक ही दम में, जो एक टांग पे दूसरी टांग लेट के वो पढ़ता गया।
1: ये भी कितना सुंदर दृश्य है।
0: हाँ, और मैं आसपास मैं कुछ अपना करती रही, उसने कहा तुम करो तुम्हारा, मेरी तरफ मत देखो। और फिर पढ़ा उसने, बंद किया, फर्स्ट क्लास बना लो, करना रपन। हाँ मैं करूंगा। तो मैंने कहा अरे वाह वाह बहुत अच्छा। कहता हाँ लेकिन परशुराम नहीं, मैं वसंत। ऐसे क्या वसंत, कैसे तुम वसंत की तो फिल्म के शुरुआत में शादी होती है और वो बहुत जवान है ये वो। तो नाने ने कहा कि बताओ क्या मैं 30 से ऊपर लगता हूँ। तो मैं चुप रही, फिर हमारी थोड़ी बहसबाजी हुई इस बात को लेकर और आखिर में वसंत का रोल नाना ने किया तो जीत किसकी हुई जाहिर है।
1: मुझे लगता है पहली बार किसी ने आपको हराया होगा।
0: पहली बार तो नहीं लेकिन हाँ ऐसा कम ही मौका था, लेकिन उसने हराया, यस इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि ऐसा किसी ने भी नहीं कहा कि अरे वो बहुत बड़ा लगता है उस रोल के लिए, नहीं वो सही लगता है अपनी जगह पे, उसने अच्छा काम किया। लेकिन हुआ क्या कि लोगों ने मुझे फिर बहुत आगाह किया, दादा को ले रही हूँ देखो तुम्हें मालूम है ना वो झगड़ा करता है, बहुत उल्टी खोपड़ी का आदमी है और कभी कभी गुस्सा आता है तो इतना वो शोर मचाता है, ये करता है वो करता है। मैंने कहा देख लूंगी। और वाकई में फिर एक बार ऐसा हुआ कि बकुरी गांव में हमारा शूटिंग था और वो किसी बात को लेकर खूब बिगड़ गया, खूब चिल्ला चिल्ली ये वो, मैं नहीं करूंगा मैं जा रहा हूँ फला। तो फिर विनी मेरी बेटी, विनी की नाना की अच्छी दोस्ती थी, तो विनी ने फिर जाके उसको समझाया दादा बाबा करके, फिर वो शाम तक ठंडा हो गया, फिर शूटिंग चालू रही। ऐसे और एक बार कभी हुआ, अब वो मुझे डिटेल याद नहीं है। तो ये दो बार हुआ, दो बार निपटाया, दोनों बार हम बड़े डरे हुए थे और मैंने भी कि नाना ऐसा कहे ये वो, मन में ना होते हुए भी बड़ा प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसे हुआ। फिर तीसरी बार डबिंग कर रहे थे हम, तैयार हो गई थी, शूटिंग पूरा हुआ था और अब डबिंग बाकी, तो बी आर में डबिंग चल रही थी और किसी बात को लेके वो बिगड़ा स्क्रिप्ट, ये वो करके चिल्लाने लगा। अब मेरा भी माथा ठनका और गुस्सा मेरा भी थोड़ा सा वो
1: खतरनाक वाला
0: हो सकता है कभी कभी। तो फिर इस बार मेरा भी एकदम से मेरी घंटी बजी, फिर मैंने कहा नाना तुमको इस तरह पेश आना है तो यहाँ जगह नहीं है, बाहर हो जाओ एकदम, यहाँ कोई जगह नहीं है तुम्हारे लिए, और यहाँ अगर रहना है तो तमीज से पेश आना पड़ेगा वगैरह वगैरह जो भी तू मैं बहुत हुई। फिर कहता तुम मुझे बाहर निकाल रही हो, मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो गया दरवाजे तक, जा रहा हूँ वापस नहीं आऊंगा, मैंने कहा यही आइडिया है जाओ। तो गया और सब हक्का बक्का, अंदर 7-8 लोग थे हम बाकी, अब सब एक दूसरे को देख रहे, कह तो दिया जोर से। फिर किसी ने कहा अब क्या होगा, मैंने कहा एनीवे बाकी लोग अभी काम अपने पास है तो काम जारी रखते हैं। नाना फिर आ गया दरवाजा खोल के,
1: कितनी देर बाद,
0: कुछ 20 मिनट बाद, आधा घंटा बाद। मैंने कहा अरे तुम आने वाले नहीं थे आगे। कहते हाँ सुनो इसलिए आया हूँ तुम्हें बताने के लिए कि तुम औरत जात हो इसलिए बच गई, नहीं तो कोई ठिकाना नहीं था।
1: अरे बाप रे,
0: तुम औरत हो इसलिए बच गई करके धड़ाम से बड़ा ड्रामेटिकली निकल गया। तो निकल गया चुप।
1: ये बहुत ड्रामेटिक सीन,
0: वेरी ड्रामेटिक। और फिर सबने कहा कि फलाने को कहें जाके, अब क्या दूसरे ने डबिंग करने का सवाल ही नहीं था और वो ये कर सकता था बिल्कुल कायदे से, कानून के खिलाफ होगा। तो मैंने कहा नहीं सुनो देखते हैं जरा, अभी आज तो कुछ नहीं करेंगे, आज बाकी काम करेंगे देखते हैं। सब घर गए। अब मैंने कहा पता नहीं क्या होगा। सुबह सुबह बड़ी जल्दी फोन आया, फोन उठाया, सही नाना, अगर मैं नाना भूलते, बड़ी मीठी प्यारी आवाज हमेशा बोली काहे रे नाना, मैं भी उतनी ही मीठी आवाज में, अगर आज कितनी बजे शिफ्ट है, कितने बजे की शिफ्ट है आप? तो मैंने कहा दो शिफ्ट है, एक 9 बजे और एक 3 बजे, तुम्हें कौन सी पसंद है? वो कहता मैं 3 बजे आऊं तो चलेगा? मैंने कहा हाँ हाँ जरूर चलेगा, आ जाओ, अच्छा मिलते हैं। बात खत्म। मतलब
1: क्या बात है,
0: प्याले में मराठी में कहते हैं ना
1: प्याले में तूफान,
0: प्याले में तूफान, वैसे वो हुआ। लेकिन ये अच्छा, तो अभी

0: किस्सा खत्म नहीं हुआ,
1: जी
0: अभी फ्लैश फॉरवर्ड तो कुछ मेरे ख्याल से 15 साल बाद की बात होगी और
1: जी
0: मे बी इवन मोर, अब साल वाल मुझे याद नहीं रहते, लेकिन महाराष्ट्र टाइम्स से मुझे फोन आया
1: हाँ
0: कि इस साल का जीवन गौरव पुरस्कार हम नाना पाटेकर को दे रहे हैं।
1: जी जी
0: मैंने कहा बहुत अच्छी बात है,
1: जी
0: तो मुझे क्यों बता रहे हैं आप? कहते इसलिए कि वो आपके हाथों देने का हमारा इरादा है, हमें बहुत अच्छा लगा, आप देंगी क्या? मैंने कहा दूंगी, जरूर दूंगी। हाँ, तो बड़े खुश हुए, अच्छा, तो फला वक्त ये वो आपको लेने आएंगे वगैरह। तो फिर मैं स्टेज पे गई और मैंने ये किस्सा सुनाया नाना का। मैंने कहा आज मैं हूँ तो एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ, नाना भी खड़ा पास में। फिर बाद में मैंने कहा कि अंत में मुझे इतना ही कहना है कि देवा परमेश्वरा मला स्त्री जन्माला घातलं से फार उपकार केलेस, कारण आज मी म्हणून नानाला हा मुजरा देऊ शकते।
1: बहुत शानदार
0: एंड नाना लॉफ्ट
1: अद्भुत
0: एंड आई गॉट अ स्टैंडिंग ओवेशन, सब
1: जी
0: लोग उठ के तालियां बजा रहे और नाना ने जो मुझे जप्पी लाई, बहुत हंसा नाना, बहुत हंसे हम
1: क्या बात है। उसका
0: दोनों।
1: हिंदी बता देते हैं कि स्त्री के रूप में जन्म लिया
0: हाँ
1: इसलिए आप बच गई
0: हाँ
1: और इसीलिए आज नाना को आप जीवन
0: मैं
1: गौरव
0: भगवान की
1: पुरस्कार दे पा
0: दुआ
1: रही हैं।
0: मानती हूँ कि हे भगवान मुझे आपने स्त्री जन्म दिया, इसका लाख लाख शुक्रिया, ताकि आज मैं ये दे पाई नाना को
1: बिल्कुल, क्या
0: सुनाऊँ।
1: बात है। बड़े प्रेम से आपने नाना को याद किया। ये गाना सुनते हैं।
0: जी क्या बात।

0: रघुवीर यादव का इस फिल्म में आना भी एक घटना है।
1: रघुवीर यादव का मेरे समझ में नहीं आ रहा कि क्या मतलब है। रघुवीर मेरा हमेशा का बहुत लाडला एक्टर रहा है, बहुत ही प्यारा, एंड आई लव हिम एज अ पर्सन, आई लव हिम एज एन एक्टर। और इसलिए मैंने ये जब लिखी कहानी तो सोमा तो और कोई हो ही नहीं सकता था, रघु तो मतलब ओमपुरी का छोटा भाई
0: जी, जी।
1: जो देखता है कि अपना भाई और भाभी कितने परेशान हैं और मैं बोझ बन के रह रहा हूँ, इसलिए वो बेचारा

0: छोड़ के जाता है। तो रघु किसी और फिल्म में बिजी था,
1: जी
0: तो उसने कहा सही जी ये तो डेट बिल्कुल नहीं हो सकती किसी तरह, मैं बिल्कुल बुरी तरह फंस गए हो, मैं नहीं मना कर सही ये वो। मैंने कहा नहीं नहीं तुम किसी तरह पटा लो उनको ये वो। कहता हाँ कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा कोशिश मतलब, और नहीं हुआ तो फिर क्या करोगे? कहता है फिर तो आपको पटाऊंगा।
1: बिल्कुल मासूमियत इंटैक्ट।
0: और उसने किया रोल, और क्या रोल, बहुत सुंदर रोल किया,
1: जी जी जी
0: वेरी ही लिव्स द रोल, रियली लिव्स द रोल।
1: जी जी और ये दिशा जिसकी बात हम कर रहे हैं, सई परांजपे की नजर में उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्म है।
0: जी
1: आपने बीच में एक कहा था कि अगर आपके फिल्माए गए बेस्ट सीन की बात करें तो मैंने चश्मे बदूर के जिस सीन का जिक्र किया
0: जी
1: था वो
0: जी बिल्कुल
1: शामिल है,
0: वो एक है।
1: तो एक सहज जिज्ञासा है कि
0: हाँ
1: बाकी कौन से सीन है।
0: बाकी दो जो हैं वो दिशा के ही है।
1: जी
0: हाँ एक वो है जहाँ परशुराम को पानी लगता है कुएं में,
1: वाह
0: क्या
1: वाह
0: वो
1: वाह वाह
0: सीन है
1: वाह
0: मैं
1: वाह
0: बताऊं,
1: वाह
0: कि परशुराम खोद रहा है कुदर से और वो देखता है कहता है फिर हाथ डालता है देखता है तो कीचड़, कहता है पानी पानी, और चिल्लाने लगता पानी लग गया मेरे कुएं में पानी लग गया, हौसा मतलब बीवी का नाम बच्चों के नाम। और इधर घर में शबाना मतलब उसकी बीवी हौसा अपने बेटी के बाल बना रही है, वो छोटी कंघी होती है ना वो मराठी, और वो एक हमारा करंडा होता है
1: जी
0: ये रखने का वो, तो वो लेके बस। तो एक छोटा बच्चा आता है कि कद्दू की माँ, उसके छोटे बच्चे का नाम कद्दू है, कद्दू की माँ, वहां परसा चाचा चिल्ला रहा है कुएं पे पानी लग गया करके। तो ये कहते हे राम मुझे मालूम ही था पगला ही गया आखिर। और वो बेचारी इतनी वो तैयार है ये झेलने के लिए कि अब मियाँ की तो फाइनली घंटी बज गई, ही इज गॉन मैड। तो वो उठती है उसके पीछे बच्चे और दौड़ दौड़ के, वो कांटे कटोरे में वो कांटे लगता रहता है, दौड़ के बेचारे जा रहे कुएं की तरफ, और फिर वो देखते हैं नीचे और वो फिर दिखाता है कीचड़, और ये कहते हैं कुआं, एंड देन दे कांट बिलीव इट, एंड देन दे गो इन, एंड देन यू नो वो पानी लेके पहले तो अपना
1: माथे पे लगाते
0: माथे
1: हैं।
0: पे लगाती है, फिर बच्चे एक दूसरे को लगाते हैं पानी डालते हैं एक दूसरे पे, और फिर रघुवीर को पोस्टकार्ड एक आता है, और वो पोस्टकार्ड के जैसे हमारे यहाँ शुभ तिलक करके केसर का लगाते हैं किसी की शादी का ये बताना हो या कुछ है केसर का, तो ऐसे मिट्टी का लगाया हुआ है कीचड़
1: जी
0: के, कि ये जो शुभ तिलक है ये अपने कुएं की मिट्टी का है पानी तो,
1: वाह
0: और फिर वो कुएं का ये होता है। तो फिर शबाना जो आज तक गालियां देती है कुएं को, वो कहती है कुआ माता आपको हमारी वगैरह वगैरह करके बोलती है, तो वो
1: जी
0: छोटा बच्चा कहता है कि बाबा सौत माता बन गई। छोटा बच्चा कहता
1: कितना सुंदर
0: है
1: है, कितना
0: तो
1: सुंदर।
0: दैट्स आई जस्ट लव दिस फिल्म बिकॉज आई थिंक इट्स अ वेरी ट्रू फिल्म
1: जी
0: एंड इट कीप्स यू एब्सॉर्ब्ड एंड इट्स अ वेरी सीरियस सब्जेक्ट बट इट इज सो एंटरटेनिंग इन द राइट सेंस, आई मीन यू नो उसमें बहुत हंसी मजाक भी है, बहुत ह्यूमन गिव एंड टेक है, बहुत चीजें हैं। मैं सोचती हूँ उसमें सचमुच मैंने अपना सब कुछ डाला है दिशा में।
1: जी एक और किसी दृश्य की बात आप करना चाह रही थी।
0: हाँ वो दृश्य बहुत ही कमाल का दृश्य है कि एक दिन ऐसा आता है कि नाना नाना भी अब पहुंच गया है, नाना मतलब वसंत, वसंत और सोमा अब दोनों दोस्त बंबई पहुंच गए हैं, और वसंत की बेचारे की नई नई शादी हुई है लेकिन उसको छोड़ना पड़ता है गांव, पैसे ही नहीं है, और वो तरसता रहता है बीवी के लिए, बहुत प्यार करता है उससे। फिर एक उनका मिल वाला है जिसका एक छोटा कमरा होता है कहीं, तो वो कोई कहता है कि अरे वो बापू का एक कमरा है वो कभी कभी दे देते हैं किसी को जरूरतमंद को, तुम क्यों नहीं भाभी को बुलाता यहाँ वगैरह वगैरह वगैरह। तो बापू को पूछता है, कहता है हाँ हाँ बुलाओ बेशक बीवी को। तो एनीवे वो आती है फूलवंती उसकी बीवी, वो आती है और एक शाम को फिर वो कमरा उसका, हाँ, और वो दिखाता है जो बहुत अच्छा एक्टर है जिन्होंने कमरे का मालिक बताया वो किशोर नांदलस्कर,
1: जी
0: हाँ
1: जी
0: ग्रेट कॉमेडियन, तो किशोर नांदलस्कर ही हैज द कमरा, ही सेज कि हाँ भाभी पानी आता है सुबह 4 बजे, हाँ, और फिर वो निकल जाता है। फिर ये दोनों बहुत मशगूल किए प्राइवेसी और इतने दिनों बाद वगैरह वगैरह, और वो दोनों लेटते हैं इतने में खट खट खट खट खट खट, तो दरवाजा खोलो खोलो दरवाजा, तो कौन है रात के इस वक्त, तो कौन है हमें और कौन है, तो जिसका कमरा है उसकी बहन कोल्हापुर से आई है अपने बच्चे लेकर, और टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट इन दोनों को खाली करना पड़ता है फिर। और

0: अब दिस इज द सीन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट.
1: जी
0: दे रीच द गाड़ा. गाड़ा के बाहर एक गली सी है, छोटी बहुत पतली गली. वहाँ वो फुलवंती सर पे पल्लू और उसके साथ ट्रंक उसका छोटा बसंत और सोमा भी साथ है. और वो रो रही है और वो कहते कि 40 बंदों के साथ एक कमरे में मैं सोऊं. तो वो कहता है सोमा, और चारा भी तो नहीं है ना भाभी. शी सेड और कुछ तो चारा होगा. तो बसंत कहता है सड़क पे सोना होगा, फुटपाथ पे सो सकते हैं वगैरह. तो सोमा कहता है रुको. अंदर आता है और अंदर पर एकदम सब बंदे कोई ये बनियान पहना हुआ, तो छोटी छोटी अपने कच्चे में है चड्डियां पहने. और वो सब चिल्ला चिल्ली तो कहता है क्या एक औरत यहाँ, ये कैसे हो सकता है? नहीं, हम ये नहीं होने देंगे. आज एक आई ये, कल ये दूसरा कोई ले आएगा वगैरह वगैरह. फिर वो सयाजी शिंदे भी है उन गाले वाले में. वो कहता है अरे लानत भेजी तुम पर, तुम अपनी गांव की बहन को सड़क पे सोने दोगे वगैरह वगैरह. कहते हैं लेकिन जगह कहाँ है? तो फिर सोमा कहता है

0: जैसे और कुछ तो चारा होगा, तो वसंत कहता है सड़क पे सोना होगा, फुटपाथ पे सो सकते हैं वगैरह। तो सोमा कहता है रुको, अंदर आता है और अंदर पर एकदम सब बंदे, कोई ये बनियान पहना हुआ तो छोटी छोटी अपने कच्छे में है चड्डियां पहने, और वो सब चिल्ला चिल्ली तो कहते हैं क्या एक औरत यहाँ, ये कैसे हो सकता है, नहीं हम ये नहीं होने देंगे, आज एक आई ये कल ये दूसरा कोई ले आएगा वगैरह वगैरह। फिर वो सयाजी शिंदे भी है उन गाले वाले में, वो कहता है अरे लानत भेजी तुम पर, तुम अपनी गांव की बहन को सड़क पे सोने दोगे वगैरह वगैरह, कहते लेकिन जगह कहाँ है, तो फिर सोमा कहता है मैं बाहर सो रहा हूँ तुम मेरी जगह वगैरह वगैरह। फिर सब मानते हुए कहते हैं रुको रुको रुको, और फिर हमने ऊपर कैमरा लगाया था क्योंकि एक वहां ये था जहां कैमरा रख के हम ऊपर से देख रहे थे, तो टॉप शॉट था और सब ये लोग आधे लोग सोए हुए हैं, और ये भगदौड़ मची है कि अब औरत आएगी तो कोई पैजामा पहन रहा है, कोई ये डाल रहा है, कोई एक लुंगी के लिए दोना खींचा खींचा होती है, एक जना तो एक सोया हुआ आदमी उसको उठो उठो कहते हैं वो गहरी नींद सोया, तो उसका चटाई के साथ उसको ऐसे ऐसे से ये दोना लेते हैं, इट्स अ ब्यूटिफुल, इट्स अ वेरी फनी दिस थिंग। तो ये सब होके फिर नाना और ये दोनों चुपके से अंदर आते हैं, सब सन्नाटा, अब सब लेट जाते हैं, और फिर नाना सोता है, वो भी सोती है, और जैसे दोनों सोते हैं उनके बगल में एक बुजुर्ग उनमें से जो है वो उनकी तरफ पीठ करता है और साइड वाले को इशारा करता है, फिर वो भी पीठ करता है और सब लोग उनकी तरफ पीठ करते हैं ताकि थोड़ी प्रिवेसी उनको मिले, मतलब ये या क्या है कि प्रिवेसी है पीठ करने से, लेकिन उतने में वो कोशिश करते हैं अपनी तरफ से शराफत दिखाना। तो सब एक एक एक एक करके ऐसे, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल, यू सीइंग इट फ्रॉम द टॉप, सब एक करते हैं और फिर सन्नाटा है। ठीक, आई थिंक दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट शॉट्स।
1: क्या बात, अद्भुत दृश्य, राजश्री सावंत थी वो एक्ट्रेस।
0: राजश्री सावंत थी
1: जी, कमाल। अब पपीहा है जो चिपको आंदोलन पर बनी, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि पपीहा का जिक्र करें।
0: तो पपीहा का जल्दी जल्दी मैं बताती हूँ, ये फिल्म कह सकते हैं कि अपने भारत के वन अरण्य, हाँ जंगल और आदिवासी, इनको ये मेरा एक सलाम है।
1: वाह,
0: हाँ, इसका ये पढ़ के
1: चिपको आंदोलन की
0: आंदोलन का मैंने कहा ये तो कुछ इसको तो करना ही चाहिए, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं अपन एक फेरी टेल फॉर एडल्ट्स करें, हाँ, बड़ों के लिए एक परी कथा। हाँ, तो अभी तक मैंने कभी प्यार का ट्रायंगल नहीं हैंडल किया था, तो एक प्यार का ट्रायंगल करें, एक कोना फॉरेस्ट ऑफिसर हीरो जिसके लिए वन और जंगल और उनकी रक्षा यही सब कुछ है, ही इज ऑन अ मिशन, मिलिंद गुना जी। देन द गर्ल विनी माय डॉटर हु इज अ सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हु इज स्टडिंग समाज
1: मानवी की,
0: हाँ, लेकिन आदिवासियों की,
1: जी,
0: शी इज स्टडिंग ट्राइबल्स और इसलिए वो इस जंगल में आई है, और तीसरा एंगल है फॉरेस्ट, खुद जंगल। तो ये इन तीनों को लेके ये ऐसे कहानी ये की, और बहुत आदिवासी है उसमें नेचुरली, तो अब उस पे एक जैसे प्रॉब्लम्स आते हैं और वो कैसे सुलझते हैं, ये भी एक मजे का बता सकती हूँ इस फिल्म को लेकर, कि हमने सोचा कि ये आदिवासी तो दिखाया है बड़े चाव से कि हाँ आदिवासी है, लेकिन अब कौन से आदिवासी, देर आर 300 आदिवासी ट्राइब्स इन इंडिया, भील या डागर या महादेव कोड़ी या वारली या कौन, मतलब इतने हैं और उनकी भाषाएं अलग है थोड़ी सी, उनके रिवाज अलग है, तो क्या करें फिर, बहुत है, और गलत भी नहीं करना चाहिए, इफ यू आर मेकिंग अ फिल्म यू कांट टेक लिबर्टीज विद एक्चुअल फैक्ट। फिर सोचा कि कह तो रहे हैं कि ये परिकथा है बड़ों के लिए,
1: जी,
0: तो व्हाई नॉट टेक लिबर्टी एंड हैव एन जेनेरिक ट्राइबल, यू ना भींड है ना भील है ना महादेव कोड़ी है, वो ट्राइबल है बस, एंड ट्राइबल्स हैव अ वेरी यूनिक कॉमन फैक्टर, दे आर ऑल वेरी इनोसेंट, they are all very believing, and they are all very scared, insecure, and they are all very helpful and very loving. तो ये सब जो है, तो वो सब लेके हमने ट्राइबल्स तो बना दिए, और जंगल को भी जूटी बूटी का जंगल किया, मंतरबन नाम दिया जंगल को मंतरबन,
1: जी,
0: और फिर भाषा, भाषा क्या करें, फिर ये सोचा कि एक नई भाषा बनाई जाए, क्योंकि वो जो हर कहीं हम गए और आदिवासियों से बोले तो उनकी भाषा समझ में आती थी, बेशक अपने में अलग अलग हो लेकिन समझ में इसलिए आती थी कि बहुत मराठी की

0: ताक थी उसमें।
1: बिल्कुल,
0: मतलब मराठी को ही ट्विस्ट करके कुछ उन्होंने अपना बनाया था। तो हमने कहा हम भी क्यों नहीं ऐसा ही करें। फिर हमने अपनी भाषा बनाई, और मेरे दो फैंटास्टिक असिस्टेंट्स, एक सुहेल अब्बासी,
1: अरे वाह,
0: और एक श्रीधर रंगायन, फैंटास्टिक दोनों, इतने मजे के। तो उन्होंने ये भाषा को लेके तो वो बहुत ही मतलब पगला गए, और उन्होंने फिर बहुत ये सब लिखा पढ़ी की, ये किया, उसका व्याकरण बनाया, और फिर वो इतना मुझे इरिटेशन है, तो गलतियां निकालते थे, नहीं नहीं सही, वो न्यूट्रल है, ये नहीं स्त्रीलिंग ही नहीं है पुलिस, अरे चुप कर यार, इसे सही भाषा थोड़ी ना।
1: गजब गजब गजब,
0: इतना सीरियसली वो लेते थे, अरे नहीं नहीं वो गलत बोला गलत बोला। मैंने कहा भाषा ही गलत है तो क्या गलत है। तो एनीवे, तो बहुत मजा आता था वो सब, हम जंगल में वो किया, और वो फैंटास्टिक, इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। इट वेंट टू वन फेस्टिवल इन इटली, बट अनफॉर्चुनेटली प्रोडक्शन में लकीली मेरा जेब का पैसा नहीं खर्च हुआ, लेकिन हमको मिनिस्ट्री ने दिया काफी, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, दैट वेंट ऑफ वेरी वेल, एंड इट हैड अ लॉन्च ऑन दिल्ली दूरदर्शन।
1: जी,
0: तो वो जेब से गया नहीं, लेकिन फिल्म ने कमाया नहीं कुछ, और दिखाई भी नहीं गई, लेकिन उसकी कैसेट्स बिकती थी, बहुत कैसेट्स, तरह तरह के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स में, या फॉरेस्ट के शिक्षा केंद्रों में, या स्कूलों में, कॉलेजों में, ऐसे बहुत कैसेट्स खरीदे लोगों ने।
1: जी,
0: और द फिल्म वाज यूज्ड फॉर वर्कशॉप्स अ लॉट।
1: ये गाना सुनते हैं
0: जी, क्या बात।

0: जीवन की नाटकीयता की एक मिसाल और है इस फिल्म से जुड़ी हुई, और वो ये है कि चुनाव में जिस व्यक्ति ने आपको हराया था।
1: यस यस,
0: मैं पूरी नहीं करूंगा ये बात, आप ही बताएंगी।
1: जब कॉलेज में मैं थी तो पहली बार मैंने जो एक प्ले डायरेक्ट किया, अंग्रेजी प्ले था, डियर

0: Patil, which won the best intercollegiate prize for the best play. I won the best director award, and I acted in that
1: actress.
0: Play. I won the best actress. तो ये हो गया. तो anyway, तब थोड़ा सा हौसला बढ़ गया. मैंने कहा, there used to be different elections in the college. For different posts. There were like sports secretary,
1: cultural secretary,
0: ladies representative, fanatical. So there was a post called secretary entertainment. So I said I want to stand for that. तो लोग हक्का बक्का नहीं, लेकिन आज तक कोई लड़की नहीं कभी ये पोस्ट के लिए खड़ी. मैंने कहा क्यों, क्या ऐसा कानून थोड़ा है कि लड़की नहीं है? नहीं नहीं ऐसा नहीं, लेकिन लेडीज रिप्रेजेंटेटिव है ना, तो उसके लिए खड़ी रहो. मैंने कहा मुझे नहीं लेडीज रिप्रेजेंटेटिव होना, ये दिस इज कंसर्निंग द वर्क दैट आई डू प्लेज वगैरह, सो आई वॉन्ट टू स्टैंड फॉर दैट. एंड आई गॉट इलेक्टेड इन अ वेरी थम्पिंग मेजोरिटी. बहुत अजूबा था ना उन दिनों, लड़की खड़ी वगैरह वगैरह, और मेरा ये प्ले भी जीता था. तो ये हुआ. अच्छा, उससे एक बड़ी पोस्ट थी ड्रामा सेक्रेटरी. तो अगले साल मैंने कहा ड्रामा सेक्रेटरी के लिए
1: चुनाव लड़ा जाए.
0: तो वो नाम दिया, और अब पूरा मामला पलट गया. सब लड़के कहने लगे ये लड़कियां सर पे बैठ जाती है, जरा सा मौका दो तो. अब ये ड्रामा सेक्रेटरी बनेगा. तो देन देयर वाज अ हवा चलती है ना, जैसे हवा चली कि इसको हराना है. तो मुझे अच्छी मेजोरिटी से हराया, बहुत बुरी तरह पिटाई हुई मेरी. तो अब फ्लैश फॉरवर्ड, और ये हम इसका कर रहे थे, एंड मिनिस्ट्री हैड गिवन अस देयर ब्लेसिंग्स कि करो फिल्म वगैरह,
1: पपीहा बनाओ.
0: और मैं फिर जंगल का सबसे कौन फॉरेस्ट ऑफिसर, सबसे नंबर वन था माशेलकर, उनके पास पहुंच गई. तो बड़ा सीनियर सा आदमी और बहुत तमीज वाला वगैरह वगैरह, हमारे अच्छी बातें हुई. फिर उन्होंने कहा पहचाना नहीं? मैंने कहा नहीं पहचाना. ही सेड क्यों पहचानोगी? क्या ही सेड वो फर्ग्यूसन कॉलेज अमुक अमुक साल हो मी तुमच्याच वर्गात होतो, मैं आप ही के बैच में था, आप ही के क्लास में मैं. ओह, मैंने कहा. ही सेड येस ऑफ कोर्स, एंड ही सेड यू वर स्टैंडिंग फॉर द ड्रामा पोस्ट, एंड ही सेड समवन फॉरगेट हिज नेम स्टूड ऑपोजिट मी हु वन. He said, I was his number one supporter. So, and we saw to it that you lost. So I said, अच्छा तो ये है वगैरह. फिर बड़ी हंसी मजाक की बातें हुई. He said, अच्छा तो मुझे अब कुछ पापक शालन करना चाहिए. I have to make up for that. So I said, हाँ करो. He made everything possible. Wherever we went, we had the forest guest house to stay. We had a forest expert committee to guide us. We had a forest retinue, bodyguards, etc. We had jeeps. क्या नहीं बोलो, and permission everywhere. ताड़ोबा जाना है जाओ, संजय गांधी उद्यान जाओ, महाबलेश्वर जाना है जाओ, नागजीरा जाना है जाओ. You know, so we shot all over, fantastic, and it really went out very well.
1: क्या बात है.
0: It's sad that the film didn't, people have not seen it so much.
1: जी. अभी हाल ही में आपको जी गौरव अवार्ड मिला आपके नाट्य कर्म के लिए. आपने अभूतपूर्व काम किया है, अप्रतिम काम किया है. मुझे लगता है कि इस लंबी बातचीत के आखिर में कुछ बातें आपके बहुत महत्वपूर्ण नाटकों की कर ली जाए.
0: बात यह है यूनुस कि ये मेरे नाटकों के बारे में मैंने बहुत अच्छा लिखा है, और क्यों नहीं आप वो पढ़ते हैं, ये मैं रिक्वेस्ट करूंगी. और अब मेरी ये जो किताब है, जो मेरे क्या कहते हैं, जो मेरे क्रिएटिव एक्सपीरियंस पे लिखी है, तो वो अब हिंदी में छप रही है.
1: जी.
0: और वो पब्लिकेशंस डिवीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा छपी जाएगी. तो मैं आपसे बहुत प्यार से रिक्वेस्ट करती हूँ, बल्कि इनवाइट करती हूँ आपको कि आप उसमें पढ़ें. मैंने बहुत तफसील से लिखा है.
1: बिल्कुल बिल्कुल. और हम अपने सुनने वालों को ये भी बताना चाहते हैं कि ये जो आपकी किताब है ये मराठी में उपलब्ध है, और उसके अलावा ये किताब अंग्रेजी में भी उपलब्ध है.
0: जी.
1: और अब हिंदी वर्जन भी आ रहा है.
0: हाँ, मराठी में उसका नाम है सय. हाँ, जो राजहंस प्रकाशन ने किया है. फिर अंग्रेजी हार्पर कॉलिंस की छपी है. इट्स कॉल्ड अ पैचवर्क क्विल्ट. अ पैचवर्क क्विल्ट इसलिए कि वो टुकड़े टुकड़े जोड़ के क्विल्ट बनाया जाता है ना, सुंदर सा.
1: जी, जी.
0: तो मेरी माँ कहती थी हमेशा कि तुम एक चीज पे क्यों नहीं ध्यान देती हो, आज नाटक, कल टेलीविजन, परसों फिल्म. हाँ, ये 50 एक ना भर पर मारा भर छिन दिया, दैट मीन्स ना एक कुछ ठीक से करती है, ये टुकड़े टुकड़े जमा कर बैठती है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये टुकड़े जोड़कर मैंने ये क्विल्ट बनाया है, तो पैचवर्क क्विल्ट। और अब ये हिंदी में जो

0: छप रही है उसके दो टाइटल्स हैं, अभी पक्का नहीं तय हुआ, आप बताओ कौन सा आपको अच्छा लगता है। एक है सहनामा या सही नामा, और दूसरा है सही बात या सही बात।
1: क्या बात है, अब ये तो बड़ा मुश्किल है, हम अपने श्रोताओं से कहते हैं कि वो तय करेंगे
0: लवली
1: क्या नाम होगा।
0: आई लव टू हियर व्हाट दे फील, आई ट्रूली वुड सिंसियरली, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस।
1: जी सही जी, एक बात कहना चाहता हूँ
0: जी।
1: आज से तकरीबन 20 बरस पहले मैंने बड़े डरते डरते आपसे फोन पर बात की थी और आपसे इंटरव्यू चाहा था। तब मैं बहुत नया था और तब भी आपसे डरता था, अब भी डरता हूँ।
0: अभी तो मैं ये कहूंगी कि ऐसे ही आप डरते रहिए, अच्छी बात है। ये अच्छा लगा कि कोई मुझसे डरता है
1: जी। तो आपने कहा था कि इंटरव्यू करने का अभी मन नहीं है,
0: बर
1: आगे कभी बात करेंगे,
0: तो किए ना।
1: मुझे पता नहीं
0: वादा निभाया
1: कि 20 साल इस वादे में लग जाएंगे। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने इतनी लंबी बात इतने धीरज के साथ की, थोड़ी ज्यादती है इतने
0: अच्छा
1: सारे सवाल कर, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे निर्देशिका और पटकथा लेखिका पद्म भूषण सई परांजपे से यूनुस खान की बातचीत की।
3: अभी आप विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम सुन रही थी। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM में 103.2 MHz पर शाम के 5 बजे हैं। और अब लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये बूंगा, रमकोला, भेलकक्ष, बड़वारी, धुरिया, अरचोका, बरपटिया के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये खड़गवा, रामेश्वरपुर, पंडो पारा, झींगा पारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहा है। बलरामपुर वन मंडल के राजपुर और धमनी में हाथियों की कुल संख्या 20 है। ये खुखनिया, बदौली, जामदोहर, रेवतपुर, परसवार कला, नरसिंहपुर, पकरीडांड, जमुनिया, करजी, इंद्रावतीपुर, धौली, सिमरवा, सिलाजू, उचेरवा, आनंदपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के लुंड्रा और सीतापुर में हाथियों की कुल संख्या 3 है। ये अस्कला, दोरना, जरहाडी, ढेकी डोली, एरन, नवापारा, बिनई, गिरहुल डी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी, कांसाबेल, बगीचा और पत्थल गांव में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये कुंजारा, श्री टोली, ढोंगा आंबा, मयूर चूंदी, बिलासपुर, बोडालता, कटंग खार, देवरी, छेरा घोघरा, जुमे केला, झिक्की, खंता डांड, परसा डांड, कुर्डेग, बिमड़ा, खड़ा माचा, पीठा आमा, महेशपुर, झिमकी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल की छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, बाकारुमा, लेलुंगा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 105 है। ये प्रेमनगर, पोटिया, इंचपारा, कुड़ेकेला, बोजिया, जमाबीरा, आमापाली, पंडो पारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वन मंडल के करतला और पसर खेत में हाथियों की कुल संख्या 12 है। ये बड़गांव, टीमन भैना, सुईयारा, पंडरीपानी, पतरापाली, टेवानारा, गोड़मा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वन मंडल के एतमानगर, जडगा और पसान में हाथियों की कुल संख्या 51 है। ये बंजारी, मड़ई, लोधीबहरा, मतीन, आमाटिकरा, नवापारा, झुनकीडी, जुनवानी,

0: खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़, घरघोड़ा और तमनार में हाथियों की कुल संख्या 39 है। ये बंगूरसिया, जुनवानी, भैंसगढ़ी, कंटाझरिया, बटुरा कछार, अमलीडी, सराई पाली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सराई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के रवान और कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये छताल, दलदली, तालाझर, मुरुमडी, फुरफुंदी, गुड़ागढ़, ताल, दादर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये कावारामा, नारी पानी, कुनारी, बुड़ार, जिडार, पायली खंड, बेसराझर, कोदोमाली, तौरेंगा, कुकरार, ताराझर, खोलापारा, छिंदौला, लूठापारा, फरसरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
2: प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। एफएम में 103.2 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 5:05 हुए हैं। और अब आइए लेते हैं आनंद चित्रपट संगीत का।

फिल्म फूल और कांटे का ये गीत, रवि मलिक का गीत और संगीत, आवाज़ें अनुराधा पौडवाल और कुमार शानू की।

फिल्म अफसाना प्यार का गीत ये आपने अभी सुना, और इस गीत में आवाज़ें थी आशा भोसले और अमित कुमार की, अनजान की लिखी हुई और बप्पी लहरी का संगीत।

फिल्म लगान का ये गीत सुखविंदर सिंह, उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ें, जावेद अख्तर की लिखी बोल और ए आर रहमान का संगीत। और इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये क्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM 103.2 MHz पर शाम के 5:35 होने वाले हैं। और अब आइए सुनते हैं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। ईमेल करें, गीत सुनें। और ईमेल भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं गांव जाखोद से शंभु दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश, दीपक, पूजा खटक, लगान पंडरिया, उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल, भारती बघेल। और जमानिया गाजीपुर यूपी से हैं सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक, स्वाति जायसवाल। और गांव हीरावाली फजिलका पंजाब से हैं सुभाष गुदारा, विमला, इंदु पार्वती, हिमांशु गुदारा। जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी, कल्पित गर्वी, हिमांश। डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू, मोहित, तानिया नारंग। बुलढाणा वडसिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभा ताई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार। जनकपुरी सहारनपुर से जोन डिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल, विलीज डिकेस्ट्रो। बठेना से परमेश्वर साहू, राजबती, टोप सिंह, काजल पूर्वी, हेजल, राजेश, रेशमा साहू। नाईवाला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्ढा, अलका मिड्ढा। बोरसरा नैला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु, बबली और प्रियांशु साहू। राजकोट से जूली जगदीश, गुजराती, प्राची और प्रवीण पुजारी। गुमला झारखंड से नजमुल होदा, SM जावेद और शगुफ्ता अंजुम। आइए सुनते हैं हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद का ये गीत।

किशोर कुमार की आवाज़, आनंद बख्शी के लिखे बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, फिल्म ड्रीम गर्ल। और अगले गीत की फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं गुमला झारखंड से नजमुल हुदा, एसएम जावेद शगुफ्ता, तखतपुर से मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा, पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल, नानक चंद मल्होत्रा, लोरमी चचेड़ी से कमलकांत मरावी, प्रमिला नेहा, पुष्पराज, ऋषभ मरावी, सोंगा जिला धमतरी से कोमल सेन, तोषण सेन, विनायक सेन, कुंभार गली कोलगांव से पांडु चंदन, ऊषा प्रतीक्षा, प्रथमेश चंदन, पांडुरंग कुंभार, रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति, रितेश, राजेश्वरी, उत्कर्ष चौहान, और नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर, मनु, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा, धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, आलिया आयान, नानघाट कातलबोर से भाग सिंह राजपूत, भाग्यश्री टिकेश्वर, रितु राजपूत, डोंगरगांव से राजपाल गजभिये, राधिका अनिष्का और तन्मय गजभिये, कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल, विनीत, सोनम वर्मा, बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून और सुरित रमेश साहू, कैदीमुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, ऊषा, ऋषभ सिंह, पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंत भगत, अरुणा सुलोचना भगत और चेतन भगत। आइए सुनते हैं हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद का ये गीत फिल्म मोहरा से।

0: साथ बजाज जनरल इंश्योरेंस साथ लाए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। कृषि और बीमा की जानकारी एवं पंजीकरण के लिए आज ही हमारा फार्म मित्र ऐप डाउनलोड कीजिए। आपकी रक्षा में
1: आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। ईमेल करें, गीत सुनें। और इस क्रम में अगले गीत की फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं देवरी भाटापारा से के आर साहू, आकाश कमलेश, गन्नूलाल रजक, मुरली छत्री, सावतपुर से ऋषि सेन, रितेश कंचन, माही सेन, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल सोनू, पप्पी भाटिया, जलंधर से संदीप जाटोलिया, बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निखत परवीन, शहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान अब्बासी और गिरिडीह झारखंड

से मोहम्मद यासीन, अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, अहमद, मिफ्रा नवाज, चाहत। बिलासपुर से छन्नूला शिवास, अनीता पुष्पा, अंजू योगिता शिवास, रज्जन साहू, निमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी। भाटापारा से बचकमल, मोतीलाल यादव, सियाराम, चोवाराम वर्मा, सूरज बारेकर, नारायण यदु, भुवन कामरी। और एठीपारा भाटापारा से अनीता साहू, वीना, नेहा, मोनिशा साहू। खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब, अब्दुल हक, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे। बहादुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश गावड़कर, टुक टुक प्रिंस, एकांश, सुमित गावड़कर, ध्वनि गावड़कर। देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे। निमनाबाद जिला जिंद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर, करमजीत कौर। नांदघाट कातलबोर से भाग सिंह राजपूत, भाग्यश्री टिकेश्वर, ऋतु राजपूत। आइए सुनते हैं हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद का ये गीत फिल्म गुलाम से।

गुलाम। और इस क्रम का आखिरी गीत आइए सुनते हैं हमारे इन श्रोताओं की पसंद पर। इस गीत की फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता हैं गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू, रविंद्र रौनक सेन, रसेड़ा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश, संध्या, कीर्ति, डिकेश, वासु, डॉली, पूर्वेश साहू, इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता, गणेश, कार्तिक, परी खर्चे, स्वाति, प्रयाग चौधरी, बागबहरा भदरसी से पन्नालाल सेन, खुशबू, तारा, कौशल सेन, पांडरकवड़ा से अनिल बुरांडे, ऊषा, अनुषी, धनश्री बुरांडे, खुंदरा, उदयपुर, सरगुजा से जीवधन सिंह पैकरा, घुरनी, करिश्मा, सोमार साय, कमलेश्वर सिंह, सुखराम, हीरामणि, ऐश्वर्या पैकरा, पाटापारा से प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र साहू, दुष्यंत, राघवेंद्र साहू, दिल्ली से लाल बाबू दीवाना, उमाराज और दिव्या भारती, छत्तीसगढ़ से प्रभा जाटव, डॉली, कबीर जाटव और दीवशंकर जमादार, भूत कछार, लोरमी से दुर्गेश मरकाम, निर्मला, दीपक, प्रीतम, धनराज मरकाम, रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से उदय भानपाल, जय हिंद, दीक्षा, प्रतीक्षा, विमलेश पाल, दिव्यांश बघेल, अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद, गौरव मंदूरकर, आरव और अर्पिता, पैठर से सुरेश जाधव, अनीता, आरती, पूजा प्रसाद, सोनल, सिया जाधव और पोड़ीभाटा अकलतरा से दिलीप चंदन, चोवाराम यदु, निखिल चंदन, वसुंधरा और प्रांजल चंदन। आइए सुनते हैं हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद का ये गीत।

अब 2 MHz पर 6 बजने वाले हैं और कार्यक्रम विवरण में आइए अब हम आपको जानकारी दे दें आज और कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में। आज रात 8 बजे आप सुनेंगे कैच द रेन कैंपेन और कोरबा की बदलती तस्वीर। नगर निगम आयुक्त तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री आशुतोष पांडे से बातचीत। भेंटकर्ता और प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन। रात 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम रजनीगंधा। शाम 7:30 पर आप सुनेंगे ग्राम सभा कार्यक्रम जिसमें बेरा के गोट का विषय होगा ग्रामीण विकास में ग्राम सभा का महत्व। फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम आप मन के गीत आप सुनेंगे। इसके साथ ही क्रम होगा मौसम मंडी भाव और सामायिक सुझाव का। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे रायपुर केंद्र से कानून की बात। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम श्रीमती शालिनी सिन्हा सामाजिक कार्यकर्ता महिला एवं बाल विकास विभाग अंबिकापुर जिला सरगुजा छत्तीसगढ़। ईमेल करें। गीत सुने का शेष भाग आप सुनेंगे शाम 7 बजे। शाम 6:05 पर रायपुर केंद्र से आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी और शाम 6:20 का समय होगा ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम का। रात 9:15 पर हम जुड़ेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से। आइए आपको जानकारी दे दें कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में। कल सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम अमराई में गंगाबाई कौशल कुमार भानु और साथियों के स्वर में गीत। सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह का समय होगा रोज की तरह सुबह 7:05 पर। सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे यादों के झरोखों से। समाचार प्रभात आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से सुबह 8 बजे और अंग्रेजी में समाचार सुबह 8:15 पर। प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी का समय होगा सुबह 11 बजे। 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आपकी पसंद और सुबह 10 बजे का समय होगा तुहर गोट हमर गीत कार्यक्रम का। विविध भारती प्रसारण सेवा से हम जुड़ेंगे सुबह 11:30 पर। पर रायपुर केंद्र से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और 12 बजे हम दोबारा जुड़ेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। शाम 5 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। 5:05 का समय होगा चित्रपट संगीत का। शाम 5:35 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युवा जगत जिसमें आज की बात का विषय होगा पर्यावरण अनुकूल हमारी जीवन शैली। क्रम होगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का प्रस्तुति नेमीचंद साहू की। रात 8 बजे दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे संसद समीक्षा और रात 10 बजे का समय होगा दिल्ली केंद्र से संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्रवाई की रिकॉर्डिंग का प्रसारण। कल शाम 7:30 पर ग्राम सभा में आप सुनेंगे बेरा के गोट धान फसल में कीट रोग नियंत्रण। इसके साथ ही क्रम होगा मौसम मंडी और सामायिक सुझाव का। कार्यक्रम रजनीगंधा की महक लेकर हम हाजिर होंगे आपके साथ रात 8:15 पर। रात 8:45 पर दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार संध्या और रात 9 बजे अंग्रेजी में समाचार। विविध भारती प्रसारण सेवा से हम जुड़ेंगे रात 9:15। हम आपको एक बार फिर बता दें रात 8 बजे आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से संसद समीक्षा और रात 10 बजे दिल्ली केंद्र से संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्रवाई की रिकॉर्डिंग का प्रसारण। कल शाम 6:20 और शाम 7 बजे आप सुनेंगे ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। ईमेल करें गीत सुने। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM 103.2 MHz पर। 6:05 होने वाले हैं और रायपुर केंद्र से आइए सुनते हैं जिले की चिट्ठी।

और लता मंगेशकर की आवाज़ है आनंद बख्शी के लिखे बोल और फिल्म आ पाए बहार आई। और इस गीत के साथ ही ईमेल करें, गीत सुने का ये क्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM 103.5।

श्रोताओं नमस्कार। जिले की चिट्ठी के आज के अंक में हम लेकर आए हैं नारायणपुर जिले की चिट्ठी। इसके जरिए हम आपको अगले 5 मिनट में जिले में चल रही विभिन्न गतिविधियों से रूबरू कराएंगे। श्रोताओं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 6 अगस्त को विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण VBG रामजी योजना के तहत राज्यव्यापी मेरी बेटी मेरा अभिमान अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 6,671 बालिका शौचालय बनाए जाएंगे। यह अभियान 15 अगस्त से 26 जनवरी तक चलाया जाएगा। वहीं 6,524 गांव में प्रतीक्षालय सहित मुक्तिधाम का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा राज्य में 10,000 से अधिक बंद अथवा डिफंक्ट बोरवेलों में सैंड फिल्टर और रिचार्ज संरचनाओं का निर्माण कराया जाएगा। श्रोताओं, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर कल 10 अगस्त को प्रदेश में 1 से लेकर 19 वर्ष तक के सभी बच्चों और किशोर किशोरियों को एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई जाएगी। दवा का वितरण प्रशिक्षित शिक्षकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मितानिनों तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की निगरानी में किया जाएगा। इस अभियान के दौरान यदि कोई पात्र बच्चा दवा नहीं ले पाता है तो उसे 17 अगस्त को आयोजित मॉपअप दिवस पर एल्बेंडाजोल की दवा दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने सभी विभागों, शिक्षण संस्थानों, आंगनबाड़ी केंद्रों, पालकों और आम लोगों से अपील की है कि वे अभियान को सफल बनाने में सहयोग करें तथा सभी पात्र बच्चों को 10 अगस्त को एल्बेंडाजोल की दवा अवश्य खिलाएं। श्रोताओं, नशा मुक्त भारत अभियान के तहत बीते 5 अगस्त को नारायणपुर के शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में नशा मुक्त जागरूकता और शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रताप सिंह मांडवी और नगर पालिका अध्यक्ष इंद्र प्रसाद बघेल ने छात्र छात्राओं, शिक्षकों और जनप्रतिनिधियों को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई। उन्होंने विद्यार्थियों से स्वयं नशे से दूर रहने तथा अपने परिवार और आसपास के लोगों को भी नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों ने धूम्रपान, शराब और अन्य मादक पदार्थों के सेवन से होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक दुष्परिणामों की जानकारी दी। श्रोताओं, कलेक्टर नम्रता जैन की अध्यक्षता में बीते 4 जून को नारायणपुर जिला कार्यालय में साप्ताहिक समय सीमा बैठक हुई। बैठक में मलेरिया मुक्त अभियान, स्वास्थ्य सेवाओं, आधार पंजीयन, शिक्षा और आवासीय संस्थाओं से संबंधित कार्यों की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से कहा कि मलेरिया मुक्त अभियान के तहत अधिक से अधिक लोगों को मलेरिया जांच कर उन्हें समय पर उपचार उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने विशेष रूप से स्कूलों, आश्रमों और छात्रावासों में अध्ययनरत बच्चों की मलेरिया जांच कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने जिले के सभी स्कूलों, आश्रमों और छात्रावासों में अध्ययनरत बच्चों का 100% आधार कार्ड बनाने को भी कहा। बैठक में कलेक्टर ने सभी कन्या आश्रमों और छात्रावासों में महिला सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। श्रोताओं, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्रों में संचालित नक्सल विरोधी अभियानों की समीक्षा के लिए बीते 28 जुलाई को नारायणपुर में अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक हुई। बैठक में दोनों राज्यों के पुलिस और सुरक्षा बलों के बीच नक्सल विरोधी अभियानों, खुफिया सूचनाओं के त्वरित आदान प्रदान तथा आपसी समन्वय को और अधिक मजबूत बनाने पर सहमति व्यक्त की गई। साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में सतत निगरानी, समन्वित कार्रवाई और प्रभावी रणनीति के माध्यम से वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध अभियान को और तेज करने पर चर्चा हुई। श्रोताओं, नारायणपुर जिला प्रशासन द्वारा संचालित सुशासन एक्सप्रेस के माध्यम से अबूझमाड़ के पहुंच विहीन क्षेत्रों में ग्रामीणों को शासकीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। इसी कड़ी में जुलाई माह में अबूझमाड़ क्षेत्र की 36 ग्राम पंचायतों में अभियान चलाकर 1300 हितग्राहियों के आधार कार्ड बनाए गए। आधार कार्ड बन जाने से अबूझमाड़ के निवासियों के लिए शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ना आसान हो गया है। श्रोताओं, नारायणपुर के ग्राम पंचायत करलखा में पिछले दिनों एक पेड़ माह के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। अभियान के तहत ग्रामीण

0: ने अपनी मां के सम्मान में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों को नारियल और आम के पौधों का वितरण किया गया। इस दौरान लोगों से अधिक पौधे लगाने और पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की अपील की गई। इसी के साथ जिले की चिट्ठी का यह अंक समाप्त हुआ। अगले रविवार एक नए अंक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: नारायणपुर जिले की चिट्ठी अभी आप सुन रहे थे। आलेख प्रमोद पोटाई का था। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अब छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार होंगे।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग किरण वर्मा के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। आज विश्व आदिवासी दिवस है। ए मौका मां प्रदेश भर में होवत है आने आने कार्यक्रम। देश भर में आज ले हर घर तिरंगा अभियान शुरू। 17 अगस्त तक चली ए अभियान। औ अवैया 24 घंटा के दौरान प्रदेश के कुछ एक जगह मां भारी ले अति भारी वर्षा होए के चेतावनी दे गए है। अब समाचार विस्तार ले। आज विश्व आदिवासी दिवस है। ए मौका मां राजधानी रायपुर समेत प्रदेश भर में आने आने कार्यक्रम आयोजित करे जाते। उन्हें आने आने जिला मन में जागरूकता रैली घलो निकालेंगे। विश्व आदिवासी दिवस के मौका मां गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला के गौरेला स्थित लाइवलीहुड कॉलेज में बैगा आदिवासी युवा मन पर मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण के शुभारंभ करेगे। कार्यक्रम के उद्देश्य बैगा समुदाय के युवा मनला कौशल प्रशिक्षण दे के रोजगार ले जोड़ना और ओ मनला आत्मनिर्भर बनाना है। आज पेंड्रा में ही आदिवासी समाज रहार ले एक ठिन रैली निकालेगे। एमा आदिवासी समाज के लोगन मन उछा के संग शामिल हुई। उन्हें सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला में घलो ऐसने रैली निकालेगी। ए रैली में आने आने आदिवासी समुदाय के लोगन मन पारंपरिक वेशभूषा में ढोल नगाड़ा के थाप और लोकगीत के संग अपन संस्कृति और परंपरा के झलक दिखाई। देश भर में आज ले हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो गए है। 17 अगस्त तक चलैया ए अभियान के उद्देश्य लोगन मल्ला अपन घर में तिरंगा फहराए और देशभक्ति के संग्रह राष्ट्रीय एकता ले जुड़े कार्यक्रम में भाग ले बर प्रोत्साहित करना है। ए बछर अभियान के विशेष महत्व है। काबर की यह राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150वां वर्षगांठ के संग मनाए जाते। देश भर में वंदे मातरम के सामूहिक गायन घलो होही। 14 अगस्त के विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाए जाही। इति छत्तीसगढ़ में आज ले 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाए जाते। उन्हें भारतीय जनता पार्टी डहले प्रदेश में 10 ले 14 अगस्त तक भव्य तिरंगा यात्रा निकाले जाही। पार्टी कोती ले 11 ले 15 अगस्त तक हर एक घर प्रतिष्ठान और कार्यालय मन में तिरंगा फहराए पर जन जागरण अभियान घलो चलाए जाही। उन्हें कोरिया जिला के पर्यटन स्थल झुमका में हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता अभियान के तहत स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण पर श्रमदान कार्यक्रम रखेगी। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि अधिकारी और ग्रामीण मन हिस्सा लें। जम्मू मन झुमका पर्यटन स्थल परिसर के सफाई करें और एला साफ सुंदर और प्लास्टिक मुक्त बनाए रखे के संदेश दें। संग्रह स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण ला जन भागीदारी करके जन आंदोलन बनाए के संकल्प लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा देशवासी मन ले हर घर तिरंगा अभियान में उछा के संग भाग ले और विकसित भारत के निर्माण में योगदान दे के दोबारा संकल्प ले के अपील करीन है। प्रधानमंत्री हा सोशल मीडिया पोस्ट में कहीन है कि तिरंगा देश के गर्व है और देश के खातिर हमेशा अपन सर्वश्रेष्ठ काम करे के प्रेरणा दे थे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी हा आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ले जुड़े मामला ला लेके शिक्षा मंत्रालय के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी मन संग बैठका लेन। श्री जोशी हा सोशल मीडिया पोस्ट में कहिन कि ओमन संस्थागत व्यवस्था ला मजबूत करे प्रक्रिया सुचारू बनाए और विद्यार्थी मन के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करे ले जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दा मन ऊपर विचार विमर्श करें। श्री जोशी हा कहिन कि सरकार के मुख्य ध्यान मजबूत पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था बनाए ऊपर है ताकि हरेक विद्यार्थी की आकांक्षा पूरा हो सके। लोक शिक्षण संचालनालय के अंतर्गत शिक्षक मन के 1654 पद में भर्ती पर आवेदन के प्रक्रिया शुरू हो गए है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम ले भर्ती परीक्षा आयोजित करे जाही। मंडल को तिले जारी परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार अभ्यर्थी 2 सितंबर के संझा 5 बजे तक मंडल के वेबसाइट में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 3 ले 5 सितंबर तक आवेदन में कोनो तरह की गलती होए में सुधार करे जा सकी। परीक्षा बार 16 ठिन जिला मुख्यालय में

0: बनाए जाही। विषय बा शिक्षक के भर्ती ई और टी दोनों संवर्ग बा होही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर लिए आपकी वास्ता और खबर के विश्वसनीयता लिए हमार वास्ता आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचा था छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बढ़ो माचे समाचार को ती। केंद्र सरकार है स्पष्ट करे है कि उपभोक्ता मन पर UPI निशुल्क रही और जम्मू व्यक्तिगत लेन देन निशुल्क बने रही। केंद्रीय वित्त मंत्रालय है कहे है कि UPI के माध्यम ले भुगतान करे के बेरा उपभोक्ता मन ले कोनो भी तरह के लेन देन शुल्क नहीं देना होही, जबकि अधिकांश व्यापारी लेन देन घलो निःशुल्क रही। मंत्रालय है कहे है कि यदि व्यापारी छूट दर शुल्क लागू करे जाते तो यह केवल एक निश्चित सीमा ले ज्यादा के सीमित व्यापारी लेन देन में नाम मात्र दर ले लागू होही। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA है 33 राज्य जैव विविधता बोर्ड केंद्र शासित प्रदेश के जैव विविधता परिषद और राष्ट्रीय संस्थान मनला लाभ साझाकरण और सुलभता के तहत 3 करोड़ रुपया ले ज्यादा के राशि वितरित करे है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है बताया है कि यह राशि भारत के कृषि और पशुपालन क्षेत्र के जैव विविधता संरक्षण पर घलो है। एक तहत छत्तीसगढ़ ला लगभग 19 लाख रुपया मिली। मंत्रालय है बताया है कि NDA डहार ले अब तक 166 करोड़ रुपया ले ज्यादा के वितरण करे गए है। मंत्रालय है कहे है कि हरेक वितरण जैव विविधता संरक्षण वैज्ञानिक अनुसंधान और भारत के समृद्ध जैविक संसाधन के संरक्षण में जुटे समुदाय मन के आजीविका के बीच संबंध ल और मजबूत करते। कोंडागांव जिला के फरसगांव में पुलिस अब संदिग्ध गतिविधि और अवैध रूप ले रहत लोगन मन के पहचान पर सघन जांच और सत्यापन अभियान चलाइस। ए अभियान में करीबन 150 पुलिस अधिकारी कर्मचारी मन के 21 टीम शामिल हुईं। पुलिस है फरसगांव नगर पंचायत के जम्मू 15 वार्ड समेत तीर्थकार के जगह मन में 1200 ले ज्यादा घर और 160 ले ज्यादा प्रतिष्ठान के जांच करीस। अभियान के दौरान 173 संदिग्ध मनखे मन ले पूछताछ और दस्तावेज के सत्यापन पर थाना लाएगीस। पुलिस है पहचान पत्र और दूसर दस्तावेज मन के जांच के संग्रह संबंधित थाना मन ले घलो जानकारी जुटाइस। पुलिस है मकान मालिक मन ले किरायेदार मन के जानकारी दर्ज कराए बर कही से। जांजगीर चांपा जिला के साइबर थाना पुलिस है म्यूल बैंक खाता के जरिया ठगी करैया गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करत 5 खाताधारक मल्ला गिरफ्तार करे है। जम्मू आरोपी मल्ला न्यायिक रिमांड में जेल भेज दे गए है। पुलिस के अनुसार ए आरोपी कमीशन के लालच में अपन नाम ले बैंक खाता खुलवा के साइबर अपराधी मल्ला लेन देन के सुविधा देवात रहीन। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस में काली 10 अगस्त के प्रदेश में 1 ले 19 बछर तक के लयिका और किशोर किशोरी मनला एल्बेंडाजोल के दवा खवाए जाही। एकर बर शासकीय और निजी विद्यालय आंगनबाड़ी केंद्र और दूसरा संस्थान के माध्यम ले दवाई खिलाए के व्यवस्था करे गए है। कोनो लयिका 10 अगस्त के कोनो कारण ले दवा नहीं ले पाही तो ओला मॉपअप दिवस 17 अगस्त के कृमिनाशक दवा खिलाए जाही। अभियान के तहत प्रदेश में 1 करोड़ 10 लाख लयिका और किशोर मल्ला एल्बेंडाजोल के खुराक दे के लक्ष्य रखे गए है। और अब पेशे मौसम के हाल। अवैया 24 घंटा के दौरान प्रदेश के कुछ एक जगह में भारी ले अति भारी वर्षा होए के चेतावनी दे गए है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तट में एक ठिन कम दबाव के क्षेत्र बने हुए है। एक सेती आज प्रदेश के आने आने जगह में हल्का ले मध्यम वर्षा होए के संभावना है। मौसम विभाग सरगुजा जशपुर कोरिया मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर और कोरबा जिला पर येल्लो अलर्ट और सूरजपुर के संग्रह बलरामपुर पर ऑरेंज अलर्ट जारी करे है। बता दें कि पाछू 24 घंटा में बलरामपुर और बीजापुर जिला में भारी बारिश दर्ज करे गए है। उन्हें राजधानी रायपुर में घलो काली संझाले लेके देर रतिहा तक बरसा हुई। इसी बीच बिलासपुर जिला के सिपत थाना क्षेत्र के सेलर बरभाटा गांव में रोपा लगाए के बाद लहुटत महिला के गाज के चपेट में आए ले मौत हो गए। उन्हें एक घटना में एक झन ग्रामीण झुलस गए। आखिर में प्रमुख समाचार एक घो फेर। आज विश्व आदिवासी दिवस है। ये मौका में प्रदेश भर में होवत है आने आने कार्यक्रम।

0: देशभरमा आजले हर घर तिरंगा अभियान शुरू। 17 अगस्त तक चलही ए अभियान औ अवैया 24 घंटा के दौरान प्रदेश के कुछ एक जगह में भारी ले अति भारी बारिशा होए के चेतावनी दे गए है। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यही सिरावत है। जय जोहार।
1: प्रादेशिक समाचार आप रायपुर केंद्र से सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM में 103.2 MHz पर। शाम के 6:20 हुए हैं और अब आइए सुनते हैं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम। ईमेल करें गीत सुने का शेष भाग। और इस क्रम में पहले गीत की फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं, वो है हमारे इन श्रोताओं की पसंद पर। पंजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक। राजकोट से जूली जगदीश, गुजराती प्राची, प्रवीण पुजारी। रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायब और लड्डू। हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू। जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक। दुराबाद भाटापारा से प्रमोद साहू, देव नवीन, युवराज साहू। नईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्ढा, अलका मिड्ढा। बठेना पाटन दुर्ग से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, निधि, निखिल, यश, प्रयाण, शिवम, रेखा, धनेश्वरी वर्मा। रघुनाथपुरा श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी। भिलाई से अशोक श्याम कुंवर, प्रमीला आसमा श्याम कुंवर। गंडई टिकरीपारा से जगेश्वर देवांगन, कचरीबाई, दीपक, जयश्री, ऋषभ, रीचा देवांगन। कुमारहेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम। सनावल से मोहम्मद सादिक, मुस्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अल्तमस खत्री, मोहम्मद अलकमा खत्री, रमेश गोड़, मोहम्मद शादाब खत्री। लुत्रा खमरिया से मोहम्मद अकरम, अमीन, अर्श और अतिका। रिंगनी से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय डिंगिया, नमन और अपार डिंगिया। आइए सुनते हैं हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद का ये गीत।

0: मजबूरी।
1: बजाज जनरल इंश्योरेंस साथ लाए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
0: तभी तो कहते हैं हम, तभी तो रहते हैं हम, आपकी रक्षा में पूरी, आपकी रक्षा में पूरी।
1: कृषि और बीमा की जानकारी एवं पंजीकरण के लिए आज ही हमारा फार्म मित्र ऐप

0: बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: और इसी के साथ ईमेल करें गीत सुने का ये क्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM 103.2 MHz पर 6:30 होने वाले हैं और रायपुर केंद्र से सुनेंगे कार्यक्रम कानून की बात।

किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम श्रीमती शालिनी सिन्हा, सामाजिक कार्यकर्ता, महिला एवं बाल विकास विभाग, अंबिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़।

आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है, कानून की बात। इसमें सुनिए किशोर न्याय अधिनियम पर सामाजिक कार्यकर्ता महिला एवं बाल विकास विभाग अंबिकापुर की श्रीमती शालिनी सिन्हा द्वारा दी गई जानकारी। ये आकाशवाणी अंबिकापुर की प्रस्तुति है।

0: कानून की बात कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। श्रोताओं, आज हमारे साथ एक नए विषय के साथ एक नई विषय विशेषज्ञ स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका नाम है श्रीमती शालिनी सिन्हा, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं और महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंध रखती हैं। और आज का जो हमारा विषय है वो है किशोर न्याय, बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम। तो इससे पहले कि हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें, महोदया आपका स्वागत है हमारे श्रोताओं की ओर से।
1: सभी श्रोताओं को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जैसा कि हमारा आज का विषय है किशोर न्याय, बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम, हम यहीं से शुरू करते हैं कि किशोर का क्या तात्पर्य है?
1: किशोर के बारे में जो 18 वर्ष से कम उम्र के जो भी बालक हैं उन्हें किशोरावस्था में रखा गया है। और किशोरावस्था को अगर ज़्यादा डिफाइन करेंगे तो हम उसमें सबसे पहले जो 12 से 18 वर्ष के बीच के जितने भी बालक हैं वो सभी किशोरावस्था में आएंगे।
0: 11 पूरा किया
1: जी सर
0: और 12 शुरू हुआ
1: जी
0: तो वो किशोर की श्रेणी में आ
1: जी
0: जाएगा। किशोर न्याय और बालकों की देखरेख, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? क्या ऐसी कौन सी बात हो गई कि किशोरों के देखरेख के लिए अलग से नियम बनाने की
1: जी
0: जरूरत पड़
1: बिल्कुल
0: गई?
1: जी किशोर न्याय अधिनियम JJB, जिसे हम जीवेनाइल जस्टिस एक्ट के नाम से भी जानते हैं, JJ एक्ट के नाम से भी जानते हैं। किशोर अधिनियम जो है ये जैसे जो 0 से 18 वर्ष तक के जो भी बालक हैं उनके देखरेख, संरक्षण और सुरक्षा से संबंधित, और जो बच्चे बालक अपराध की श्रेणी में आ गए हैं है ना, तो उन संबंधित मामलों को सुलझाने के लिए किशोर न्याय अधिनियम का गठन
0: गठन किया
1: किया
0: गया
1: गया।
0: है जी।
1: जी
0: मतलब ऐसे बच्चे जो 18 वर्ष तक की उम्र
1: जी
0: के
1: जी
0: हैं और
1: जी
0: अगर उनसे कोई अपराध हो गया
1: हो
0: है
1: गया है
0: तो
1: तो
0: उनसे विशेष तरह से
1: जी
0: उनके साथ व्यवहार किया जाएगा, न
1: जी
0: कि जो और लोगों के साथ किया जाता है,
1: जी
0: इसीलिए इसकी जरूरत पड़ी।
1: जी
0: जी। तो क्या कुछ विशेष बातें हैं, जरा हमारे श्रोताओं को बताइए, कैसे हम अन्य युवाओं से इन किशोरों को अलग रखते हैं?
1: अन्य युवाओं से जैसे जब कोई बालक किशोर न्याय अधिनियम के तहत या किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष जब प्रस्तुत होता है तो जो किशोर न्याय अधिनियम का जो प्रारंभिक अवलोकन होता है उस अवलोकन के पश्चात उस बालक को ना कोई दंड दिया जाता है, उसे एक मत सुधार गृह के रूप में, सुधार आश्रय जिसे स्पेशल होम कहते हैं उसमें रखा जाता है। तो जो बालक होते हैं उनसे किसी प्रकार का सजा या दंड का प्रावधान नहीं है, उन्हें सुधार गृह में रख के सुधारने पर जोर दिया जाता है।
0: और ये किस उम्र से ये शुरुआत हो जाती है इस कानून की?
1: 12 से 18 वर्ष के बीच के बच्चों के बीच
0: आमतौर पे लोग ये समझते हैं कि बच्चा अगर छोटा है और उससे कोई आपराधिक गतिविधि हो गई
1: जी
0: तो उसे कुछ नहीं होगा क्योंकि वो युवा नहीं है, वो 18 वर्ष से कम है। तो
1: जी
0: इस पर थोड़ी स्थिति साफ कीजिए क्योंकि उन्हें लगता है कि 18 वर्ष से कम बच्चों को कुछ नहीं होगा, चाहे वो कोई भी अपराध कर दें। क्या इसमें सच्चाई है?
1: इसमें ये कह सकते हैं कि जैसे कोई बालक है अगर उससे किसी भी प्रकार का कोई जघन्य अपराध हो गया है उस बालक से, तो सबसे पहले तो जो किशोर न्याय अधिनियम के तहत जो भी प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के तहत अवलोकन होगा, जांच होगा, अवलोकन के पश्चात अगर उसका अपराध बालिक की तरह है तो फिर

0: तो भी उसको मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा नहीं मिलती है। हाँ, कठोर कठोर सजा नहीं दी जाती है उसको। जैसे हमारे विभाग में विशेष गृह है जिसे हम स्पेशल होम्स के नाम से जाते हैं, तो उसमें नॉर्मल जो सामान्य बच्चे जो छोटे मोटे अपराध करके आए रहते हैं उनके बीच में नहीं रखा जाता है। एक स्पेशल होम होता है जिसे हम विशेष गृह कहते हैं, वहाँ रखा जाता है और वहाँ पे बच्चों को सुधारने की ओर पे जोर दिया जाता है। जो थोड़ा सा जिनका अपराध थोड़ा सा जघन्य अपराध हो गया है उस कैटेगरी के उस श्रेणी के बालकों के लिए है।
1: और मान लीजिए सामान्य अपराध है जैसे मारपीट गाली गलौज
0: जी,
1: और कोई बच्चा जो है स्कूलों में पढ़ रहा है वहाँ पे उसने अपने साथी से मारपीट की
0: जी,
1: या गाड़ी चलाते समय उसने
0: जी
1: कुछ दुर्घटनाकारित की
0: जी,
1: इस तरह के जो सामान्य
0: हाँ इस तरह के जो बच्चे हैं ये भी किशोर न्याय अधिनियम के तहत आएंगे। तो इनके लिए जो संस्थाएं होती हैं सर वो है संप्रेक्षण गृह जिसे हम ऑब्जर्वेशन होम कहते हैं, वहाँ उन बच्चों को रखा जाता है जो नॉर्मल कुछ सामान्य अपराधों के जरिए उस संस्था में आते हैं। अगर हम थोड़े बड़े अपराध के देखें तो उसके लिए स्पेशल होम जिसे हम विशेष गृह कहते हैं, और अगर कुछ सामान्य कोई बच्चा छोटा मोटा कोई गलती किया है तो उसके लिए ऑब्जर्वेशन होम,
1: मतलब कि रखने की जगह है।
0: जी जी सर जी। और एक और बात बताना चाहूंगी, जब कोई बालक 18 वर्ष का कम उम्र का है और उसे कोई भी अपराध हो गया है ठीक है, तो हम जो है उन बच्चों का पहचान छिपाएंगे
1: जी,
0: हम उनका पहचान छिपाएंगे, बच्चे का नाम, बच्चे का पता, बच्चे का स्कूल, मीडिया या पुलिस के द्वारा उसे सार्वजनिक तौर पे सर उसे मतलब गुप्त रखा जाएगा,
1: गोपनीय
0: रखा जाएगा।
1: बच्चा वो तो आप समझिए कि 18 साल से
0: जी,
1: कम है
0: जी,
1: पूरी उम्र उसकी बची हुई है
0: जी,
1: अगर वो सुधर जाएगा और उसकी बदनामी नहीं हुई
0: जी,
1: है, तो
0: जी,
1: वो सही रास्ते पे
0: सही पे रास्ते पे आ जाएगा जी,
1: ये एक बहुत अच्छी बात है
0: जी।
1: अच्छा, ऐसे बच्चों की गिरफ्तारी के संबंध में, घर से ले जाने के संबंध में कुछ विशेष प्रावधान है?
0: जी
1: जी
0: जैसे सबसे पहले तो बच्चा का पता चलता है कि वो कुछ अपराध की श्रेणी में आया है, तो पुलिस सहायता के माध्यम से और किशोर न्याय अधिनियम की सहायता से सर वो बाल कल्याण किशोर न्याय अधिनियम के समक्ष प्रस्तुत होते हैं। उसके बाद जब तक उसका सर वो जो भी प्रक्रिया है तब तक वो संप्रेषण गृह में रहता है। अगर जब पुलिस सर अगर थाने में अगर बच्चे का केस हुआ है तो वो फिर वापस से वो किशोर न्याय अधिनियम के तहत उसमें ट्रांसफर हो जाएगा, स्थानांतरण हो जाएगा। और जब अगर बच्चा कई बार कोई बच्चा को पकड़ के लाना है तो जब वो बच्चे को पुलिस के द्वारा पकड़ के लाया जाता है तो वो ना बच्चे सर विशेष गृह में जाएंगे और ना ही वो बच्चे संप्रेषण गृह में जाएंगे। एक प्लेस ऑफ सेफ्टी एक संस्था है, वो बच्चे को उन्हें वहाँ रखा जाएगा जी।
1: मतलब ये एक तीसरे तरह की जगह
0: जी, जी,
1: जहाँ पर जिन बच्चों को विचाराधीन
0: जी, जी जी जी जिनका निर्णय नहीं हुआ है अभी जी, जैसे कई बार ऐसा होता है कि संस्थाएं से एक उदाहरण है, संस्थाएं से बच्चे चले गए हैं अनजाने में कहीं से निकलकर चले गए हैं, तो फिर वो पुलिस वाले उन बच्चों को पकड़ करके लाती है। या कई बच्चे क्या होता है सर, जैसे उनका पूरा निराकरण हो गया है, उनका केस निर्णय हो गया है उनका, और वो फिर उन बच्चों को पेशी में आना रहता है, वो बच्चे लेकिन पेशी में नहीं आते हैं, तो फिर उसके बाद उन बच्चों को पुलिस वाले भी अगर पकड़ के लाएंगे तो फिर वो उनको प्लेस ऑफ सेफ्टी जो एक संस्था है वहां रखते हैं। मतलब अगर उन बच्चों का केस क्लियर हो गया है तो उन बच्चों को पेशी में उपस्थित होना है, नहीं उपस्थित होने की जगह पे उन बच्चों को पुलिस वाले फिर से प्लेस ऑफ सेफ्टी में ला करके रखते हैं जी।
1: ये तो बात हुई कि बच्चे को कैसे घर से लाया जाता है और मामला अगर विचाराधीन है तो उसे कहाँ रखा जाता है। अब ये भी है कि मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा विचारण के बाद दोष सिद्ध पाया जाता है
0: जी।
1: और उसे उसे सजा दी जाती है, आरोप तय हो जाता है और उसे सुधार गृह में भेज दिया जाता है
0: जी।
1: वहाँ किस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए कि बच्चों को कोई तकलीफ ना हो, क्या इसमें कोई प्रावधान है?
0: जी जी सर, बिल्कुल अच्छे से प्रावधान है। जब बच्चे संप्रेक्षण गृह में, विशेष गृह में या कोई भी संस्था में रहते हैं तो सर उन बच्चों की रहने की उचित व्यवस्था होती है
1: जी।
0: उनकी चिकित्सीय सुविधाओं के लिए भी समय समय पर सर चिकित्सक आते हैं, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, और ये उनके खान पान, उनके स्वल्पाहार, उनके भोजन की उचित व्यवस्था होती है सर। स्वास्थ्य संबंधी किसी प्रकार की परेशानी ना हो इससे चिकित्सक आगे हमेशा उन बच्चों की का जांच करते हैं जी। और सर उन बच्चों को एक्टिविटी जैसे कुछ गतिविधियां भी सिखाई जाती हैं, जैसे ब्रह्मा कुमारी से बहने जाती हैं, राजयोग सिखाती हैं, सिलाई भी सीखते हैं बच्चे।
1: कोई बच्चा अगर पढ़ना चाह रहा है, वहाँ बंद है लेकिन अपनी पढ़ाई लगातार बनाए रखना चाहता है, तो उसके संबंध में क्या
0: सर
1: कदम
0: वहाँ पे
1: है?
0: शिक्षक रहते हैं।

0: हैं जो कि जाकर के बच्चे को कंप्यूटर की शिक्षा और शिक्षा देते हैं। संगीत का भी क्लास लगता है,
1: अच्छा।
0: जो बच्चा अगर संगीत में उसका रुचि है और वो संगीत में उसकी रुचि है तो उसके लिए संगीत के टीचर आते हैं, शिक्षक आते हैं, वो उसका भी शिक्षा देते हैं।
1: यदि बच्चे को परीक्षा देना हुआ
0: जी,
1: अगर मान लीजिए वो पढ़ रहा है और उसे परीक्षा देना है
0: जी,
1: तो उसके संबंध में
0: सर, उसके संबंध में जो किशोर न्याय अधिनियम है, जो जिसे किशोर न्याय बोर्ड, उसमें एक जज बैठते हैं और दो सामाजिक कार्यकर्ताएं बैठती हैं। तो अगर उस बच्चे को पेपर देना है तो वहाँ पे उस आवेदन को हम उस समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे कि इस बच्चे का इस क्लास का परीक्षा है, तो समिति अनुमति प्रदान करे ताकि हम उस बच्चे को उस परीक्षा में बैठने दें।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कि किस तरह के प्रावधान बच्चों के हक में, बच्चों का शारीरिक मानसिक विकास बाधित न हो, और इसलिए बहुत सारे प्रावधान इस कानून में किए गए हैं। यदि किसी बच्चे से अपराध कारित होता है तो बच्चा खुद ही अपराध बोध से ग्रसित होता है, इसलिए उसका और नुकसान न हो, इसलिए बच्चों को संभालने के लिए ये कानून बनाए गए हैं। महोदया, मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा रिहा होता है
0: जी,
1: और उसे लगता है कि अब तो मैं बदनाम हो जाऊंगा
0: जी,
1: या अब मैं कहां जाऊंगा, मान लीजिए कुछ लंबे समय तक यदि वो सुधार गृह में है, तो उसके बाद के क्या प्रावधान होते हैं?
0: उसके बाद बच्चे को तो संप्रेषण गृह में या किसी भी संस्था में, सुधार गृह में, सुधारने के ही उद्देश्य से रखा जाता है ताकि जिस गलती से वो संस्था में आया है दोबारा से उससे वो गलती ना हो
1: जी।
0: और दूसरा, संप्रेषण गृह में काउंसलिंग होता है, परामर्श होता है, तो परामर्श भी हम बच्चों का इस तरीके से करते हैं कि कभी भी बच्चे को ये ना लगे कि उसने किस तरह क्या करके इस संस्था में वो आया है। और उसे बहुत अच्छे से, जैसे उस बच्चे की बातों को जानना है तो उसके लिए बहुत खुल के उन बच्चों से चर्चा किया जाता है ना, कि तुम घर जाना चाहते हो कि नहीं, तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है कि घर जाना चाहते हो, इस प्रकार की बातें, और बच्चे से जो भी गलती हुई है उस बारे में उसको सलाह दी जाती है कि अब दोबारा तुम कभी इस तरह की गलती ना करना।
1: तो एक बार उसे समझाइश दी जाती है
0: जी
1: है, तो
0: जी
1: उसके भीतर आत्मविश्वास
0: जी जी। और कई बार सर, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो तुरंत खुल नहीं पाते हैं, तो उन बच्चों को एक बार काउंसलिंग में बहुत सारी बातें खुल के सामने नहीं आ पाती हैं, तो उन बच्चों के लिए दो बार, तीन बार, कई बार काउंसलिंग किया जाता है।
1: महोदया, बहुत सारे बच्चे या उनके परिवार ऐसे हैं जो कानूनी मदद जो है वो ले नहीं पाते हैं, तो क्या ऐसे लोगों के लिए कोई विशेष जगह है, जैसे कि मैं जिक्र करना चाहता हूँ विधिक सेवा प्राधिकरण का, तो कृपया उसके बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं।
0: जी जी, विधिक सेवा प्राधिकरण जो है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जैसे कोई समाज में कोई निर्धन वर्ग है या समाज के कुछ ऐसे वर्ग हैं जो कि धन के अभाव में कानूनी सहायता लेने से वंचित रह जाते हैं, तो ये जो विधिक सेवा प्राधिकरण है ये उन लोगों के लिए एक निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करती है ताकि वे न्याय से वंचित ना रहें। और जो विधिक सेवा प्राधिकरण है, इसमें जब किसी भी मतलब मामले को सुलझाने के लिए अदालत के अलावा भी लोक अदालत का आयोजन किया जाता है, अदालत के अलावा लोक अदालत का आयोजन किया जाता है जहां पे आपसी समझौते के द्वारा भी मामले को निपटाया जा सकता है
1: जी।
0: और ये तीन स्तर पे इसे बांटा, वर्गीकृत किया गया है, जिसमें एक नालसा है जो हमारे राष्ट्र स्तर पर है, एक सालसा है जो राज्य स्तर पर है, और डालसा कहेंगे जो कि हमारे जिला में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नाम से है। एक हेल्पलाइन नंबर है जिसका हेल्पलाइन नंबर है
1: 151-00-151-00, इस पे बातचीत कर सकते हैं
0: जी, बातचीत कर सकते हैं।
1: सीधे
0: संपर्क करना चाहें तो हमारे कलेक्टर परिसर में जो पुलिस अधीक्षक कार्यालय होता है, विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यालय वहीं लगता है, तो जो भी इस सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं वो यहाँ आकर के संपर्क कर सकते हैं। ये प्रत्येक जिले में गठित होता है।
1: बहुत अच्छी जानकारी दी आपने शालिनी जी, आप यहाँ आई और श्रोताओं के सामने किशोर न्याय अधिनियम को रखा, और उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोताओं की एक सामान्य समझ इस विषय पर बन पाई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर, आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कानून की बात, इसमें विषय विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ थी श्रीमती शालिनी सिन्हा, सामाजिक कार्यकर्ता महिला एवं बाल विकास विभाग, और आज का हमारा विषय था किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम। इस कार्यक्रम से अपने मित्र अंजनी कुमार पांडेय को यही अनुमति दें। कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग अंजनी कुमार पांडेय का।

0: और प्रस्तुति परमेंद्र कुमार की। फिर मिलेंगे, नमस्कार।
1: कानून की बात में अभी आप किशोर न्याय अधिनियम पर श्रीमती शालिनी सिन्हा, सामाजिक कार्यकर्ता, महिला एवं बाल विकास विभाग अंबिकापुर द्वारा दी गई जानकारी सुन रहे थे। ये आकाशवाणी अंबिकापुर की प्रस्तुति थी। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अब प्रादेशिक समाचार।

0: यह आकाशवाणी अंबिकापुर की प्रस्तुति थी। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
2: बेटा,
1: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
2: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
3: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो,
1: कहाँ
3: एडमिशन कराने? खाता हुआ एक्टिव।
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
7: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
6: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
8: हर घर सूर्य घर।
9: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
10: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
9: तू अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
10: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं, उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
9: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
10: क्यों?
9: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है, और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
11: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
12: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
13: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
12: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
13: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
12: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
13: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
11: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
14: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
13: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
15: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
13: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
14: आकाशवाणी से।
11: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
0: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। देश भर में हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ भाग लेने की अपील की। आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर में हो रहे हैं विविध आयोजन। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा होने की चेतावनी। और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर कल प्रदेश में 1 से 19 वर्ष तक के बच्चों और किशोर किशोरियों को दी जाएगी एल्बेंडाजोल की दवा। अब समाचार विस्तार से। देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का जश्न मनाने के लिए देश भर में हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साह के साथ भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का दोबारा

0: संकल्प लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि तिरंगा देश का गौरव है और देश के लिए हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ कार्य करने की प्रेरणा देता है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुदुचेरी से हर घर तिरंगा यात्रा को रवाना किया। इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। हर घर तिरंगा अभियान 17 अगस्त तक चलेगा। इस वर्ष इस अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि यह राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। इसके तहत देशभर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। इधर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी द्वारा 10 से 14 अगस्त तक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। पार्टी द्वारा 11 से 15 अगस्त तक हर घर प्रतिष्ठानों और कार्यालयों में तिरंगा फहराने के लिए जन जागरण अभियान भी चलाया जाएगा। वहीं कोरिया जिले के पर्यटन स्थल झुमका में हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता अभियान के तहत स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के लिए श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के लिए यूपीआई निःशुल्क रहेगा और सभी व्यक्तिगत लेन देन निःशुल्क बने रहेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से भुगतान करते समय उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार का लेन देन शुल्क नहीं देना होगा, जबकि अधिकांश व्यापारी लेन देन भी निःशुल्क रहेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि यदि व्यापारी छूट दर शुल्क लागू किया जाता है तो यह केवल एक निश्चित सीमा से अधिक के सीमित व्यापारिक लेन देन के नाम पर नाममात्र दर से लागू होगा। आज विश्व आदिवासी दिवस है। इस अवसर पर राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं विभिन्न जिलों में भी जागरूकता रैली निकाली गई। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के गौरेला स्थित लाइवलीहुड कॉलेज में मेगा आदिवासी युवाओं के लिए मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बैगा समुदाय के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। आज पेंड्रा में भी आदिवासी समाज द्वारा रैली निकाली गई। इसमें आदिवासी समाज के लोग उत्साह के साथ शामिल हुए। वहीं सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले में भी इसी तरह की रैली निकाली गई। इस रैली में विभिन्न आदिवासी समुदायों के लोगों ने पारंपरिक वेशभूषा में ढोल नगाड़ों की थाप और लोक गीतों के साथ अपनी संस्कृति और परंपरा की झलक प्रस्तुत की। लोक शिक्षण संचालनालय के अंतर्गत शिक्षकों के 1654 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। मंडल द्वारा जारी परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार अभ्यर्थी 2 सितंबर शाम 5 बजे तक मंडल की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 3 से 5 सितंबर तक आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर सुधार किया जा सकेगा। परीक्षा के लिए 16 जिला मुख्यालयों में केंद्र बनाए जाएंगे। विषयवार शिक्षकों की भर्ती ई और टी दोनों संवर्ग के लिए होगी। इस भर्ती के लिए हिंदी के 250, संस्कृत के 300, अंग्रेजी के 504, गणित के 250, सामाजिक विज्ञान के 250 और कृषि के 100 पद हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
1: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारे YouTube चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
0: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। कोंडागांव जिले के फरस गांव में पुलिस ने संदिग्ध गतिविधियों और अवैध रूप से चल रहे लोगों की पहचान के लिए सघन जांच और सत्यापन अभियान चलाया। इस अभियान में करीब 150 पुलिस अधिकारी कर्मचारियों की 21 टीमें शामिल हुईं। पुलिस ने फरसगांव नगर पंचायत के सभी 15 वार्डों सहित आसपास के क्षेत्रों में 1200 से अधिक घरों और 160 से ज्यादा प्रतिष्ठानों की जांच की। अभियान के दौरान 173 संदिग्ध व्यक्तियों को पूछताछ और दस्तावेजों के सत्यापन के लिए थाने लाया गया। पुलिस ने पहचान पत्र और अन्य दस्तावेजों की जांच के साथ संबंधित थानों से भी जानकारी जुटाई। पुलिस ने मकान मालिकों से किरायेदारों की जानकारी दर्ज कराने को भी कहा है। और पेश है मौसम का हाल। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा होने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल और

0: ओडिशा के तट पर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके असर से आज प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने सरगुजा, जशपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और कोरबा जिलों के लिए येलो अलर्ट तथा सूरजपुर और बलरामपुर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गौरतलब है कि पिछले 24 घंटों में बलरामपुर और बीजापुर जिले में भारी बारिश दर्ज की गई है। वहीं राजधानी रायपुर में भी कल शाम से लेकर देर रात तक वर्षा हुई। इस बीच महासमुंद जिले में कल से रुक रुक कर हो रही वर्षा के कारण नदियों और जलाशयों का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। यहां जिले का कोडार बांध पूरी तरह से भर गया है। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर बांध से करीब 30 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इस वजह से बांध के आसपास निचले इलाकों में सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। महासमुंद जिले में ही कोड़िया बांध के एनिकेट में नहाने गए दो बच्चे पानी के तेज बहाव में बह गए। वहां मौजूद ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए एक बच्चे को रस्सी की मदद से बचा लिया, जबकि दूसरे बालक की तलाश जारी है। इस बीच बिलासपुर जिले के सीपत थाना क्षेत्र के सेलर बरभाठा गांव में रोपा लगाने के बाद घर लौट रही महिला की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई। वहीं इस घटना में एक ग्रामीण झुलस गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि असम के बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत और पुनर्वास संबंधी कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 5 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। श्री साय ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा से आज दूरभाष पर बात करते हुए कहा कि इस कठिन समय में असम की हर संभव मदद के लिए छत्तीसगढ़ तैयार है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर कल 10 अगस्त को प्रदेश भर में 1 से लेकर 19 वर्ष तक के बच्चों और किशोर किशोरियों को एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई जाएगी। इसके लिए शासकीय और निजी विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों तथा अन्य संस्थानों के माध्यम से दवा खिलाने की व्यवस्था की गई है। कोई बच्चा 10 अगस्त को किसी कारणवश यदि दवा नहीं ले पाता है तो उसे मॉपअप दिवस 17 अगस्त को कृमिनाशक दवा खिलाई जाएगी। इस अभियान के तहत प्रदेश में 1 करोड़ 10 लाख बच्चों और किशोरों को एल्बेंडाजोल की खुराक देने का लक्ष्य रखा गया है। जांजगीर चांपा जिले की साइबर थाना पुलिस ने म्यूल बैंक खातों के जरिए ठगी करने वाले गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5 खाताधारकों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार ये आरोपी कमीशन के लालच में अपने नाम से बैंक खाते खुलवाकर साइबर अपराधियों को लेनदेन की सुविधा उपलब्ध कराते थे। साथ ही उन्होंने अपने नाम से मोबाइल फोन के सिम कार्ड भी मुहैया कराए थे। समन्वय पोर्टल से मिले इनपुट और बैंकिंग लेनदेन की जांच में यह जानकारी सामने आई है कि इन आरोपियों ने म्यूल खाते से देशभर में दर्ज 33 साइबर ठगी के मामलों में सहयोग किया है। इन मामलों में करीब 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी उजागर हुई है। पुलिस इन सभी मामलों की जांच कर रही है। अब कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए। रायपुर उत्तर क्षेत्र के विधायक पुरंदर मिश्रा ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति को रायपुर में आयोजित होने वाले नुआखाई पर्व में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया। लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र की विधायक विद्यावती सिदार के पति कुंज बिहारी सिदार का आज निधन हो गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। और भिलाई इस्पात संयंत्र में नौकरी लगवाने के नाम पर एक युवक से करीब 5.5 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देशभर में हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ भाग लेने की अपील की। आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर सहित प्रदेशभर में हो रहे हैं विविध आयोजन। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा होने की चेतावनी और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर कल प्रदेश में 1 से लेकर 19 वर्ष तक के बच्चों और किशोर किशोरियों को दी जाएगी एल्बेंडाजोल की दवा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
2: बेटा,
1: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
2: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
3: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव, एकदम फ्री। चलो,
1: कहाँ
3: एडमिशन कराने? खाता हुआ एक्टिव।
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा नाम मुनिया भाई राठिया है, मैं ग्राम केरा कछार से हूं। 2024 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से 93,000 का वित्तीय राशि मिला खरीफ फसल में, कि फसल बीमा जरूर कराएं ताकि फसल में जो नुकसान होता है उसके लिए सहायता मिल सके। फसल बीमा कराना बहुत जरूरी है।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: प्रादेशिक समाचार आप रायपुर केंद्र से सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM 103.2 MHz पर। और अब आइए सुनते हैं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। ईमेल करें गीत सुने का शेष भाग। इस क्रम में पहला गीत हम आपको सुना रहे हैं और इस गीत की फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं वर्निंग खेड़ा पंजाब से, मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा नरगोड़ा से, कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी, महसूल सीतामढ़ी, बिहार से मुसर्रत जहानास, तलत फरहत, रिफत, नुजहत साजिया शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज, हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान उत्तम जमदाड़े, भूचो कैंचिया, भटिंडा पंजाब से परम सिंह जौड़ा, मंजीत कौर जौड़ा, करणवीर, करण, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सिमू, एकम, दमन, अभिजीत, गुजरात से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जोहरी, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, पूजा परिहार, रायगढ़ बिहार से उमा राज, पवन, संजय, दीपक और कमल उमा। आइए सुनते हैं हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद का ये गीत।

दिल क्या क्या सूर से है जी। आशा भोसले कुमार सानू की आवाज़ें हैं।

इस गीत के बाद अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं और इस गीत की फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं लश्कर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, अंडार नांदघाट से माखन वर्मा, चांदनी राहुल, गोपी वर्मा, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता, समडील नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा अदिति, राधे, दीपक, अंकु, राघव गुप्ता, राजकोट से राजेश कृष्णा, स्वाति और ख्याति कुमारी, छोटी बलिया करजत मुंबई से अब्दुल कलाम रायन, अब्दुल सलाम रायन, पिपरलोड सरगांव से दीपेश वर्मा, पूनम ज्योति और शिवांश वर्मा, पाहंदा पलारी से नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशांत लखनलाल, सावित्री बाई देवांगन, कमरिया से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार, बलौदा से दिलहरण गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल और समृद्धि पटेल, नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन, राजेंद्र शाह, दतरिंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा। आइए सुनते हैं हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद का ये गीत फिल्म दोस्ताना से। रफी किशोर कुमार की आवाज़ें हैं। आनंद बख्शी के लिखे बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

किशोर कुमार आशा भोसले की आवाज़ ही फिल्म दोस्ताना से ये गीत आपने सुना। और अगले गीत की फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं नागर कोहरा राजनांदगांव से, बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, आराध्या साहू। महाराष्ट्र से रुपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश संघई, प्रीतेश संघई। भागलपुर से कमल किशोर साहू, अश्विनी, अमरदीप, पशुपति साहू, टिकू, मुस्कान। गतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा। कतियापारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश, लोकेश, आशीष, रवि, शनि, रियांश, कान्हा, आदित्य देवांगन। मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश, राहुल साहू। जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना, आदेश कुमार काले, वसुधा वज्रसेन। ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण, लव्या, आरव खुराना, एस के पप्पी। सहारनपुर से आशु मोची। कस्बा गुनौर से नसीमुल इस्लाम गुनैरी।

फरीन अब्बासी और दानिश गुनौरी, रायपुर से विनोद वंडलकर, वीणा वंडलकर, विविधा वंडलकर, और मुताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला ओम कुमार सुरलकर। आइए सुनते हैं हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद का ये गीत।

फिल्म रंगोली का ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ और शैलेंद्र के लिखे बोल और शंकर जयकिशन का संगीत। अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं और इस गीत की फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं धांडी नांदूड़ा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल्य बाठे, पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल यशस्वी वर्मा, देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश राम मिस्त्री, टोडरवाल जिला नवांशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता प्रियंका, प्रशांत प्रियम, शांदी वामिका और वाणी चौधरी, पंजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चौसलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक।

और मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गावड़कर, सरिता प्रिंस, एकांश गावड़कर, सेक्टर 67 मोहल्ली चंडीगढ़ से टी मल्होत्रा, डी ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, अंबागढ़ चौकी से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप, प्राची, शीतल, राजेश, कोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता, शशांक, सीमा साहू, लशनपुर से रामजी साहू, जीवनराल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश साहू, डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, महेंद्र मोदी, विक्रांत मोदी और इफजाल ताज, कोटवा नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश राय, ऊषा, अमित राय, हैप्पी राय, नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नावरकर, निर्मला विशाल नावरकर, सोंगा मगरलोड से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार और हेयांश कुमार चंदन। आइए सुनते हैं हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद का ये गीत फिल्म खिलौना से।

इस गीत के बाद ईमेल करें, गीत सुने, क्रम में आखिरी गीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं। और इस गीत की फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं कुमार गली श्रीरामपुर से, अशोक दले, सविता, अनिकेत दले, रोहिणी ऋषिकेश, जीविका दले, कर्मा चौक लोहारडी जिला कवर्धा से अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी खुशांत निशांत साहू, रोहासी से मुकेश साहू, नंदिनी मनीष मयंक जानकी साहू, गावना थाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता, चिरमी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव ऋषभ सिंह, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे, कालंदी लहरे, मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु सागर बालूजा, सरगांव से राजेश वर्मा, हीरामन पल्लवी राजेश्वरी वर्मा, पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, और दिल्ली से बोधराज खुरवाल, कमला रानी, गीतिका भानु, कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे, जाधव प्रशांत, राधे जाओ, संचित पायल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, शरवत देशमुख, और दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना चैतन्य मस्कीन और मेघा मस्कीन। आइए सुनते हैं हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद का ये गीत फिल्म अजनबी से। लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाज़।

फिल्म अजनबी का गीत लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाज़ें थी और आनंद बख्शी के लिखे बोल, आर डी बर्मन का संगीत, फिल्म अजनबी। और इस गीत के साथ ही ईमेल करें गीत सुनने का ये क्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM एंड 103.2 MHz पर 7:30 हुए हैं। और अब आइए सुनते हैं किसान भाई बहनों का कार्यक्रम ग्राम सभा।

0: ग्राम सभा कार्यक्रम सुनैया जम्मो संगवारी मल्ला जीतू भाई के राम राम जय जोहार। भाई का हाल चाल है, कैसन हा? आज सावन के एकादशी रही से और देखा सावन हा ऐसन जबरदस्त पानी लेके आए है अपन संग मा के का पूछिए। कतको बेर पानी है बरस जाते, कहूँ जाथन तब बरस जाते, कहूँ ले आथन तब बरस जाते। ए दरी कुल मिला के चाहे सावन हो है, चाहे फिर पहली के समय में हो है, अभी पानी है बढ़िया झमाझम गिरे है। तो जतका बोरवेल या कोनो भी पानी के स्रोत है तेन मन बढ़िया ढंग से रिचार्ज हो गए। और हम देखथन भाई हमर गांव गवई में आनी बानी की योजना थे, वो सबला जब हम धरातल तक पहुँचाथन तो माँ बड़ योगदान रही थे ग्राम सभा के। आज हम यही बात करबो कि ग्रामीण विकास में ग्राम सभा के योगदान कौन ढंग ले होते। ग्राम सभा लोकतंत्र के सबले छोटे और सबले महत्वपूर्ण इकाई होते। कोनो भी ग्राम पंचायत के क्षेत्र में रही या सबो मतदाता ग्राम सभा के सदस्य होते। ग्राम सभा में केवल बैठकी नहीं हुए बल्कि गांव के विकास के दिशा तय करे या मंच होते, जी हाँ ग्रामीण मन खुद अपन गांव के समस्या और ओखर समाधान पर निर्णय ला लेते। ग्रामीण विकास में ग्राम सभा के सबले बड़े भूमिका योजना मन के प्राथमिकता तय करना होते। गांव में जैसे सड़क नाली है, पेयजल है, टंकी है, सिंचाई है, स्कूल है, आंगनबाड़ी है, स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक भवन है, जैसन कोनो भी योजना ला पहली पूरा कर जाए, कौन ला पहली पूरा करे जाए, एकर निर्णय हमर ग्राम सभा में ही लिए जाते। कुल मिला के गाँव के सांसद होते ग्राम सभा। संगवारी हो, आज आप मन पर बढ़िया आप मन के चिट्ठी पत्री संग फरमाइशी गीत के कार्यक्रम आप मन के गीत माँ आगू बढ़बो। पहली आवाज सुनथन ये छोटकन संदेश ला।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए वो भी ऐप से, वाह
2: फसा। अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: तो कुल मिला के हम ये कहत रहन कि ग्राम सभा सरकारी योजना मन के लाभार्थी मन के व्यवस्था करे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते, चाहे प्रधानमंत्री आवास, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और आनी बानी के जिन योजना है पात्र हितग्राही के चयन पारदर्शी तरीका से ग्राम सभा के माध्यम से करे जाते, जेखर से वास्तविक जरूरतमंद मनखे और परिवार तक लाभ पहुँचे में मदद मिलते। त हम ही कहबो कि जब गांव के हर मनखे गांव के बैठक में भाग लेते, अपन बात रखते, स्वयं और लिए गए निर्णय के क्रियान्वयन में सहयोग करते, तब गांव के विकास तेजी और टिकाऊ रूप से होते। अंत में ही कहे जा सकते कि मजबूत ग्राम सभा ही मजबूत ग्राम पंचायत और समृद्ध गांव के आधारशिला बनते। तो संगवारी हो, एकरे संग आज के हमर गोड बात यही में थी रात है गोड बात और आगू करबो। पहली तो भाई हम आज के जन फरमाइशी गीत के कार्यक्रम आप मन के गीत है, तो आनी बानी के रंग बिरंगा चिट्ठी पत्री हमर हाथ में हवे। तो पहली जन गीत है चिटिक अंजोरी पुन्नी के चंदा। ये गीत

ला स्वर से सजाए हैं अनुराग ठाकुर और कविता हिरकने। ए गीत ला सुने बर फरमाइश करे है नकुल श्याम मोहम्मद अकरम मोहम्मद अजीज इमाने लुतरा कमरिया ले बिलगहना शक्ति बहरा ले श्याम शंकर मिस्त्री बाबा विजय पायलट रागनी गीता देवी कुसुम काशीपुरी राधा पड़वार लव सिंह ठगवा सिंह दुकला राम ग्राम रसेड़ा अकलतरा से मुरलीधर साहू लक्ष्मी देवी साहू योगेश कुमार कीर्ति कुमार संध्या डिकेश कुमार साहू वासु डाली पूर्वेश साहू। यही गीतला फरमाइश करे हैं पिपरा पारा पालचू व मुंगेली छत्तीसगढ़ ले उत्तरा कुमार दिवाकर परमेश्वरी योगिता नितिन वंशिका भानुप्रिया दिवाकर। तो आवा एकर पसंद के सुघर गीत के आनंद लेते हैं।

तो संगवारी हो ये रही से चिटिक अंजोरी पुन्नी के चंदा सबो महीना के बखान करिस अनुराग ठाकुर ओकर संगवारी मन। अगला फरमाइश है तोर कंचन काया, ये गीत ला स्वर से सजाया है पंचराम मिर्जा ओकर संगवारी मन। ये गीत ला फरमाइश करे हैं चिट्ठी पत्री के माध्यम से पोटिया कला दुर्ग से संजय सुजाता शशांक सीमा साहू मन, पिंडरा धनगवा ले कैलाश दरकेश चंद्रवती सुरेंद्र संजना श्याम शंकर औ दरकेश संग प्यारे लाल सोनवानी मन। श्रृंगी ऋषि महानदी सिहावा पर्वत क्षेत्र ले ग्राम बेलर गांव जन्म पड़ते वहां ले मिथिलेश देवांगन मधु हिमांशु अंकित देवांगन। दतरेंगी से विश्राम यदु पार्वती प्रतिमा रीना लक्ष्मीना यदु, लालपुर से लुकेश यदु समीर यदु। देवरी भाटापारा ले गंजू गन्नू लाल रजक के आर साहू अश्वनी वर्मा गणेश मिस्त्री मयाराम पुनेश्वर फणेश्वर मुकेश कुमार रजक कुमारी काव्या और टानिया रजक। भाटापारा से दतरंगी से ही द्वारिका प्रसाद वर्मा किशोर कुमार दीपक कुमार झावेंद्र कुमार वेदबाई सुमित्रा योगिता फलेश्वरी वर्मा।

यही गीतला हमर हरदेव लाल पारा सिमगा से फरमाइश करे हैं रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया यादव, रिंकू सन्नी कोमल यादव। तो आवा एकर पसंद के शुभ घर गीतला सुन लेथन।

0: मजबूरी।
1: बजाज जनरल इंश्योरेंस साथ लाए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
2: तभी तो कहते हैं हम, तभी तो रहते हैं हम, आपकी रक्षा में पूरी, आपकी रक्षा में पूरी।
1: कृषि और बीमा की जानकारी एवं पंजीकरण के लिए आज ही हमारा फार्म मित्र ऐप डाउनलोड कीजिए।
2: आपकी रक्षा में पूरी।
3: दीदी नौकरी लग गई।

0: कृषि और बीमा की जानकारी एवं पंजीकरण के लिए आज ही हमारा फार्म मित्र ऐप डाउनलोड कीजिए। आपकी रक्षा में
1: पूरी। दीदी नौकरी लग गई।
2: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
1: हाँ दी नया मोबाइल।
2: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
3: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
2: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
1: पर दीप
2: देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
3: हाँ दी, पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
2: अच्छा।
4: आरबीआई कहता है,
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
6: तो संगवारी हो, अगला चिट्ठी है हमारे हाथ माँ दतरंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी, लक्षणपुर से विश्वनाथ साहू, चना डोंगरी पिपरिया ले दुर्गा राम साहू, औ हवे दतरंगी भाटा पारा लेही नोखेलाल वर्मा, हीरामढ़ी पारसमढ़ी पुष्पेंद्रमढ़ी वर्मा के, मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटैले नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा दामिनी वर्मा के, अव हे जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिला उदास, जयदास देवेश, धनवंतीन भाई, मोतिम भाई, गणेश धाम परसुली बालोदले। अगला चिट्ठी है हटौद बाजार लहौदले कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार, समीर राजकुमारी पटेल के। तो आवा इन सब के पसंद की सुघर गीत के आनंद ली, जिला स्वर से सजा है नवल दास मानिकपुरी ओखर संगवारी मन।

रहे करा, अब जैसन रोग राय दिखे वैसन है ओखर जेन भी इलाज है ओला करना चाहिए। तो हमार हाथ में अगला पत्र है मोती गार्डन भाटा पारा ले मोतीलाल झेरिया कल्पना बिट्टू कुमार चिंटू युग कुमार झेरिया भाटापारा से ही राम कुमार राउत अमेरिका गणेश कार्तिक युवराज राउत नैला बुड़सरा जांजगीर से हेमदेव तिवारी दुर्गा प्रसाद अमन कुमार मीनाक्षी उमाबाई अंजुलता ठगिया देवी विष्णु प्रसाद तिवारी मोंगरा देवी मिश्रा और प्यारे लाल मिश्रा मन के चिट्ठी है। चांदनी चौक गंडई पंडरिया ले पवन कुमार सेन प्रभा देवी लक्की विक्की नानू रविन्द्र सेन इहे ले खुशी रौनक सेन के भी चिट्ठी आए है। और महादेव घाट अमलेश्वर ले डोमन ठाकुर सुमन मिथिलेश तारनी सूरज सुल्ला ज्योति रेयांश ठाकुर मन इमन चतुर साहू औखर संघवारी मन के स्वर मा किसानी गीत के फरमाइश करे हैं। आवा ओखर।

तो संगवारी हो आप हमारे संगवारी मन किसान भाई घलो आता अभी के समय है जब 15 दिन 20 दिन के हो गए धान पान तो पहली खातू के व्यवस्था हमारा करना है संग में यही समय जब मौसम हगड़म बगड़म रही थे तो आनी बानी के रोग रही उत्पन्न होते तो दिखत

0: मजबूरी।
1: बजाज जनरल इंश्योरेंस साथ लाए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
2: तभी तो कहते हैं हम, तभी तो रहते हैं हम, आपकी रक्षा में पूरी, आपकी रक्षा में पूरी।
1: कृषि और बीमा की जानकारी एवं पंजीकरण के लिए आज ही हमारा फार्म मित्र ऐप डाउनलोड कीजिए।
2: आपकी रक्षा में पूरी।
3: संगवारी हो, आज के कार्यक्रम के आप मन के गीत कार्यक्रम के आखिरी गीत पर फरमाइश भेजे है ग्राम बसी बार शिवरी नारायण ले, नाम सविता देवी, राम प्रसाद, कुमारी आंचल, चंचल, चांदनी, विनय कुमार, वर्षा, डॉक्टर मनोज कुमार कंवर, शांतिनगर पाली से विष्णु सिंह कोरम, श्रीमती संतोषी कोरम, कुमारी आरती, पूर्वा, प्रतिभा, योगेश, नीलेश, चंद्रशेखर और परिवार। तेलीपारा बिलासपुर से हमर सज्जन साहू, रज्जन साहू, बेबी ईशानी साहू, चन्नूलाल श्रीवास, अनीता श्रीवास और हमर पुराना श्रोता भाटापारा ले बचकामल, मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत भृगु, विनय ठाकुर, चोवा राम वर्मा, सूरज बारेकर, नारायण यदु, लेखराम यदु, राधे श्याम टेलर, जितेंद्र साहू, सियाराम टेलर, अश्वनी पांडे। ग्राम उड़नताल दगोरी ले बिल्कुल नदिया के तीर के गाँव है, वहाँ ले श्यामता प्रसाद गायकवाड़, हेमलता, जागृति, सरला, पल्लवी, समीर गायकवाड़। और आखिरी चिट्ठी हमर हाथ में है ग्राम बुड़गहन छत्तीसगढ़ ले राम दुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकला और शशिकांता प्रजापति। आवा इन सब के पसंद के सुखघर हमर देश मन के जवान के सुखघर गीतला जिला स्वर से सजाए हैं दुखिया बाई और धुरवा राम सुनाथन।

0: तो संगवारी हो, अभी मौसम के बात करी तो पानी के क्षेत्र भी हवा हमर पानी गिरे के संभावना है, देखभाल के अपन काम बूता ल करिहा, फिर यह आगु बढ़ जाही दो तीन दिन में जिन मौसम है। तो आपन चिट्ठी पत्री भेजत रहिहा, हमर पता है कार्यक्रम आपमन के गीत, पोस्ट बॉक्स नंबर 49 आकाशवाणी केंद्र नूतन कॉलोनी बिलासपुर सरकंडा 495006। एकरे संग देवा विदा कार्यक्रम ले, राम राम जय जोहार।
1: रामसभा कार्यक्रम अभी आप सुन रही थी। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM 103.2 MHz पर 8 बजे हैं। और अब लीजिए सुनिए कैच द रेन कैंपेन और कोरबा की बदलती तस्वीर। नगर निगम आयुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री आशुतोष पांडे से बातचीत, भेंटकर्ता और प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर सुप्रिया भारती।

0: आज की इस विशेष भेंटवार्ता में श्रोताओं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। श्रोताओं, देश में गहराते जल संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री महोदय द्वारा कैच द रेन कैंपेन की गहन शुरुआत पूरे देश में की गई। हाल ही में जब रेडियो पर प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में इस कैंपेन की उल्लेखनीय सफलता के बारे में बताते हुए जब उन्होंने छत्तीसगढ़ की कोरबा नगरी का उल्लेख किया तो हम सभी का मन गौरव से भर गया। जल संकट और प्रदूषण की दोहरी मार झेलती ऊर्जा नगरी कोरबा आज देश में कैच द रेन कैंपेन की सफलता का खूबसूरत मॉडल सामने रख रही है। आकाशवाणी बिलासपुर की टीम इस उल्लेखनीय सफलता को आप श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए कोरबा गई और हमने बातें की इस कैंपेन के द्वारा कोरबा नगरी की तस्वीर बदलने वाले दूरदृष्टा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी कोरबा नगर निगम आयुक्त श्री आशुतोष पांडे जी से। कमिश्नर साहब, आज की इस विशेष भेंट वार्ता में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद मैडम।
0: सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि इस दौरान जब हम इस नगरी के विकास को देखते हैं, यहाँ पे जो काले सोने के रूप में कोयले के उत्खनन को देखते हैं और विकास के इस पूरे पक्ष का एक दूसरा पक्ष था जो पानी के लेवल और जमीन के अंदर के पानी की बात कहता था, क्योंकि वही चीज है जो आने वाले समय में किसी भी नगर की तकदीर और तस्वीर दोनों ही बदलने वाली है, तो उसके बारे में ये सोच आपके अंदर कैसे आई, कैसे ये विचार, ये प्रेरणा कहाँ से आई?
1: मैडम, बचपन में हम एक खेल खेला करते थे, घो घो रानी इतना इतना पानी, तो उसमें जो बच्चे रहते थे उनके शरीर के लेवल से पानी बढ़ता जाता था, फिर वो उसको पकड़ते थे जो कि पानी का नुकसान करता था। तो ये कहानी अचानक से मेरे जहन में आती है। मैं यहाँ 1.5 साल से लगभग पदस्थ हूँ, 2019 बैच का IAS ऑफिसर हूँ। जब यहाँ मैंने आया और देखा यह शहर इतना विस्तीर्ण है, इतना विस्तार है इसका, और यहाँ तमाम PSUs यहाँ पर अपना कारोबार फैलाए हैं, लेकिन जो जमीन का पानी है वो कहीं ना कहीं बहुत नीचे चला गया है। लगभग हमने यहाँ जांच कराई तो 600 फीट से भी नीचे चला गया
0: जी।
1: तो ऐसा लगता है जो यहाँ पर हसदेव नदी है जो 4 महीने अपना पानी यहाँ पर, जिसका बहाव में यहाँ पर कोरबा झेलता है, उस सरफेस वाटर को इतनी तेजी से हम सरपास कर देते हैं और उसका यूज नहीं कर पाते। यहीं से एक आइडिया आया था कि क्यों ना रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को लगातार मजबूत बनाया जाए।
0: अमृत मिशन 2 में कोरबा का चयन और सैम यानी शैलो एक्विफर मैनेजमेंट की योजना और इसमें इसरो की भूमिका, इन सब के बारे में हमारे श्रोताओं को बताइएगा।
1: इसके बाद फिर ऐसा हुआ कि जो अमृत मिशन के तहत जो 75 शहर हैं उनमें से 9 शहरों को पहली मरतबा यहाँ पर एक टारगेट दिया गया कि किस तरीके से आप इसरो के माध्यम से और नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के माध्यम से एक ऐसे स्थानों का चयन करें और वहाँ कुछ ऐसी युक्ति भिड़ाएं ताकि जमीन में पानी को रोका जा सके। तो इस पे हमने काम करना शुरू किया, 10 स्थलों की पहचान की और उसके बाद ये जो तकनीक है शैलो एक्विफायर मैनेजमेंट का, जिसको कैच द रेन इफ यू कैन कहा जाता है, तो इसके तहत हमने स्ट्रक्चर्स बनाए और हमने विषय विशेषज्ञों को बुलाया, इसरो से यहाँ पर आए वैज्ञानिक आए और बाकी जो हमारे इंजीनियर्स हैं जो अमृत मिशन का काम देखते हैं। हमने इसको 4 भागों में बांटा। सबसे पहले तो इन 10 स्थानों का चयन किया और योजनाएं तो शहरों में बहुत बड़ी बड़ी बनती हैं, करोड़ों की योजनाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन जो जादू करती हैं वो बहुत छोटी 50,000 से लेके 5 लाख तक के स्ट्रक्चर्स होते हैं।
0: क्या बात?
1: तो इनका ही मैसेज जो जाता है वो ऊपर तक जाता है। शायद प्रधानमंत्री जी को यही चीज पसंद आती है और वो उनका जिक्र करते हैं। तो हमारे लिए तो गौरव भरा क्षण था कि हमने जब इसको 4 भागों में बांटा तो हमें उस समय यह अंदाजा नहीं था कि इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय लेवल पर पहचान मिलेगी। पहला तो सैलो एक्विफायर मैनेजमेंट का काम 10 जगहों पे, रिचार्ज जो हमारा इंजेक्ट वेल पद्धति से हम बनाते हैं उससे हमारा जो वाटर लेवल है वो लगभग 3/4 तक बढ़ा है।
0: क्या बात है।
1: साथ ही स्कूलों में, आंगनबाड़ी में, सामुदायिक भवनों में हमने 1,000 से ऊपर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के काम शुरू कर दिए। कुछ ऐसे जो तालाब थे जो कि सूख चुके थे उनका काम शुरू किया और जो पहले हमको जो बोरवेल्स मिले थे जब यहाँ पर वाटर स्कीम चालू नहीं हुई थी तो कुछ

0: बोरवेल स्थित। देखा जाए कहीं ना कहीं तो बोरवेल का काम पर्यावरण को क्षति पहुंचाना ही है। हम धरती के छाती से पानी निकालते हैं और उसको अपने लिए यूज करते हैं। तो हमने देखा कि जो बोरवेल हमारे थे, अत्यधिक दोहन, क्षरण और खनन, इससे ये पानी जो था वो डेड हो गए हैं। तो हमने उनके रीड्रिलिंग की योजनाएं शुरू की और 95 से अधिक जो डेड बोरवेल हैं उनकी रीड्रिलिंग पे काम किया जा रहा है। साथ ही लगभग 1728 जगहों पर, जिसमें सरकारी और निजी दोनों इमारतें थीं, उन पे हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बहुत ही कड़ाई से लागू किया। तो ये चारों पायदानों पे हमने काम करना शुरू किया और इस वर्ष हमने एक साल के अंदर जो पानी का, जो कहा जाए भूजल स्तर है, उसको काफी उन्नत पाया और अब टेल एंड पे भी पानी जो है वो बखूबी जाता है। और अभी हमारे पास नगर निगम में हमारी जो वाटर ऑगमेंटेशन स्कीम है उसको हम 20 MLD और बढ़ा रहे हैं।
1: जी
0: तो इस तरह जो हमारे एक व्यक्ति को, जो हमारी लगभग 3.5 लाख की जनसंख्या है, उसमें एक व्यक्ति को लगभग 200 लीटर पानी हर दिन यूज का मिलेगा,
1: क्या बात
0: जो अभी 135 लीटर था। 52,000 से अधिक जनसंख्या इसमें इससे लाभान्वित होगी और 11 वार्ड इसमें जुड़ जाएंगे। बहुत सारे इस पे स्कीम्स पे ओवर हेड टैंक बनाने के भी काम चल रहे हैं।
1: वाह। एनटीपीसी के सहयोग से कोरबा के प्रदूषित पानी को शुद्ध कर पुनः उसके उपयोग और विक्रय की योजना बड़ी ही बढ़िया रही, इसके बारे में हमें बताइएगा।
0: एनटीपीसी हमारा स्टेक होल्डर है, पीएसयू है। तो एनटीपीसी जो पानी यूज करता था अपने तकनीकी क्रियाओं में,
1: जी
0: ब्लास्ट फर्नेस जो बॉयलर वगैरह है उनमें, वो डिस्टिल्ड वाटर होता है। डिस्टिल्ड वाटर की कीमत आप जानती हैं। तो उनके पास एक ऐसी, इनको टारगेट मिला कि क्यों ना जो आपका कॉरपोरेशन है नगर निगम, क्योंकि पानी की सफाई, पानी को की उपलब्धता और पानी की क्वालिटी मापने का काम नगर निगम ही करता है या स्थानीय स्वायत्त निकाय करता है। तो हमने उनसे MOU किया कि हमको आप फुल डिपॉजिट में काम दीजिए, हम आपको पानी पूरी तरीके से डिस्टिल करके देंगे,
1: क्या बात है।
0: आश्रित जल हम आपको देंगे जिसको आप अपने प्लांट में यूज कीजिए। लगभग 200 करोड़ के प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई इससे, जिसमें 100 करोड़ एक तो टर्सरी ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का है और उसके आगे के लगभग 115 करोड़ जो हैं, 111 करोड़, ये उसके मेंटेनेंस के लिए और ऑपरेशन के लिए जो 15 साल तक चलेगा।
1: वाह।
0: और ये जब बन जाए, बन के तैयार हो जाएगा, अभी हम अमृत टू पे STP पे काम कर रहे हैं, सेकेंडरी वाटर ट्रीटमेंट। 11 जगहों के नालों को हमने साफ करके फिर उस पानी को नदी में छोड़ने का
1: जी
0: उपक्रम निर्धारित किया है। जैसे ये बन जाएगा हमारा STP प्लांट जो 60% कंप्लीट हो गया है, हम टर्सरी पे चले जाएंगे। तो जो तृतीयक शुद्धिकरण होता है उस प्लांट के जरिए हम पूरे जल को डिस्टिल वाटर में चेंज कर देंगे और ये 7.5 रुपए पर किलोलीटर के दर से हम NTPC को सेल करेंगे। तो
1: जी
0: इसको विन विन सिचुएशन बोलते हैं, जो आम के आम गुठलियों के दाम।
1: सच।
0: तो हसदेव नदी जो तो माँ के समान ही है कोरबा के लिए, जीवनदायिनी है, उसके पानी को पूरी तरीके से साफ करके और NTPC को उद्योग को दिया जाना, यही इस शहर की पहचान बनेगी। और ये TTP प्रोजेक्ट जो है ये भारत में बहुत कम जगहों पे, 10 या 12 जगहों पे है, छत्तीसगढ़ में कोरबा में तैयार हो रहा है।
1: जी।
0: इसके साथ अगर जन भागीदारी की बात करें तो हमने मिशन वरुण चलाया, जैसा वरुण देव जल के देवता है। तो हमारा जो वाटर टैक्स कलेक्शन था उसके लिए लोगों में उदासीनता थी, हमने जल संरक्षण का उनको लगातार कैंपेन किए और उसके फायदे बताए, जल को पूरी तरीके से, रुके हुए जल, ठहरे हुए जल, उसको भी साफ किया, पीने के पानी के रोटेशंस बनाए हर जगह। एक जो है वहां पर हमने एक नोडल टीम तैयार की जो 24 घंटे 7 दिन किसी भी पार्षद के, किसी जनप्रतिनिधि के, किसी नागरिक के एक कॉल पर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करे। इस तरह हमने उनको राजी किया 200 रुपये प्रति महीने जो आवासीय हैं और 600 रुपये प्रति महीने जो व्यावसायिक हैं।
1: क्या बात है।
0: तो हमने सामान्य सभा में इस प्रस्ताव को लाकर और एक रेट तय किया जिससे कि उन्होंने वाटर टैक्स देना चालू किया। लगभग 4 से 10 गुना इसकी वृद्धि हुई, जो पहले 4% था वो 40% तक अभी आ गया है। इसके साथ साथ उनको रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए प्रोत्साहित किया, तो मिशन वरुण की भी आशातीत सफलता मिली। इसको देखते हुए भी हमको जो DMF से लगभग हमको 36 करोड़ रुपए इसी के लिए मिले, जिससे हम आगे 20 MLD अपनी

0: क्षमता बढ़ा रहे हैं।
1: बहुत सुंदर, और वाकई में ये चौतरफा प्रयास रहा। मतलब आपने ना सिर्फ रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, बल्कि नालों की सफाई करके उस पानी को भी यूटिलाइज किया, नदी जो हमारी सभ्यता की जीवन रेखा है उसको बचाया, उसके प्रदूषण को रोका, और कुल मिलाकर अब कोरबा की ये स्थिति हो गई है कि ग्राउंड वाटर हम जमा कर रहे हैं और उसके उपयोग करने की जरूरत नहीं है, सरफेस वाटर से ही पूरा काम हो रहा है। तो ये बहुत सुंदर प्रयास है। इसके संदर्भ में जो आधुनिक तकनीक और पारंपरिक जो पुरानी चीजें हैं उसका समन्वय करने का विचार आपके अंदर कैसे पैदा हुआ? क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ, एक तरफ आपने अंतरिक्ष से मैपिंग भी की, आपने ऐसे नेचुरल जो एरियाज हैं जहाँ पर कि नेचुरली चट्टाने उसकी एक्विफर्स थी वो आपने पता किया, वहीं पर आपने अपने बोर्स इंजेक्ट वेल्स बनाए। तो अद्भुत चीज लगती है मुझे जब हम हमारे पारंपरिक ज्ञान और नई टेक्नोलॉजी का इस तरह मिश्रण कर उसे जन सामान्य के लिए प्रस्तुत करते हैं।
0: कोरबा है ही वैसा ट्राइबल कल्चर, इंडस्ट्री और साहित्यिक सांस्कृतिक जगहों का एक अनमोल मिश्रण है। यहाँ आप देखेंगे तो अभी भी पुरानी जो हमारे प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं वो रहते हैं, उनके जीवन यापन का, जल संचयन का, जल संग्रहण की अलग पद्धति है। जो हमारे पीएसयूज हैं उनका एक अलग कार्यकलाप। इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने जनप्रतिनिधियों का उपयोग किया।
1: जी
0: हमारे पास जो जनप्रतिनिधि हैं, जो यहाँ के लोकल और लोगों के वोट के द्वारा जो चयनित हैं, उनसे हमने अनुरोध किया कि वो लगातार जाएं। और जब हम स्वच्छता का मिशन चलाते थे, सैनिटेशन ड्राइव चलाते हैं, महास्वच्छता अभियान, तो उसमें लगभग हमारे 67 वार्ड हैं, तो इनमें हर दिन एक वार्ड को चुनकर और लगभग 5,000 कदमों पद यात्रा करते हुए, और इसमें जब सफाई की बात करते हैं, वहां बिजली की बात करते हैं, तो उसके साथ हमने जल संरक्षण की भी बात की। तो इससे यह फायदा हुआ कि हर जनप्रतिनिधि उसको मनसा वाचा कर्मणा जो बोलते हैं, इन तीनों चीज पे, पानी पे, बिजली पे, सफाई पे, इन तीनों चीजों पे उसके दिनचर्या में ये आ गया कि जब भी मैं वार्ड में घूमूंगा तो अगर मैं देखता हूँ कोई लाइट जल रही है तो मैं उसे कारण पूछ के और उसे ठीक करूंगा। पानी कहीं बर्बाद हो रहा तो उसे संग्रहण करने का प्रयोग करूंगा, और जहां पानी दिख रहा है उसको वहीं रोक लिया जाए, इस सिद्धांत पे काम करूंगा। साथ ही स्वच्छता के लिए, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, इतना प्रदूषण जो बोलते थे पहले, कोरबा का नाम था, वो अब चेंज हो गया है और पूरे भारत में 8वां सबसे साफ शहर हमारा कोरबा है।
1: क्या बात।
0: ये क्यों साफ हुआ? क्योंकि हमारी नालियां जो हैं वो लगातार हमने उस पर काम किया, उनको जलवाहक बनाया जो पहले कचरे से भरी पड़ी थी। तो इसको देखते हुए हमको शहरी आवासन मंत्रालय है, उसने हमको वाटर प्लस का दर्जा दिया। वाटर प्लस का अर्थ ही है कि पानी का 100% पुनर्चक्रण हम कर पा रहे हैं, जो रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकल, ये तीनों RRR का फार्मूला जो है हम पानी पर भी लागू करते हैं।
1: जी
0: तो वाटर प्लस सिटी होने के नाते हमारी जिम्मेदारी और अधिक बनती है कि हम पीने का साफ पानी लोगों को तो उपलब्ध कराएं ही, साथ ही जो पानी रोकने की क्षमता है, या जो धरती का जो आंचल है, जो कोरबा का जो मतलब माइंस के कारण बहुत ज्यादा डिप्लीट हो गया है, उसको हम फिर से संसाधन युक्त बनाएं।
1: इस बातचीत से इतना तो समझ में आ रहा है कि केवल स्वप्न दृष्टा और दूरदृष्टा होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इस पूरे प्रयास में आपके नेतृत्व में पूरी एकजुटता के साथ आपकी टीम ने बड़ा ही खूबसूरत काम किया है।
0: और इसके लिए सबसे बड़ा जो प्रयास था वो हमारी मेयर मैडम का, हमारे कोरबा कलेक्टर का, और जो यहाँ के लोकल विधायक हैं माननीय लखनलाल जी देवांगन, इन लोगों का भी लगातार प्रयास सराहनीय रहा। 15वें वित्त आयोग करके एक योजना होती है, इस पे सभी ने यह संकल्प लिया कि अब भवन का, सामाजिक कोई ऐसी संरचना है या मंच का, ऐसे जो काम उनको छोड़कर सिर्फ पानी, नाली और बिजली का काम लिया जाए। तो इस आधार पर जब यह संकल्प पारित हुआ तो जितनी भी योजनाएं, चाहे वो DMF की योजना हो या अधोसंरचना की, हमारी जो शहरी विकास की योजनाएं हैं, उन सब में जो ऐसे निर्जीव साधन छोड़ के जल पे काम करना शुरू किया
1: जी।
0: और सफाई के इक्विपमेंट पे काम करना शुरू किया। अभी हम बड़े शहरों की तर्ज पर इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्लान ला रहे हैं, जिसमें जैसे चंडीगढ़ है, मुंबई है, इवन इंदौर है, इनमें जिस तरह से सफाई होती है, पूरी सफाई कर्मी और जितने बड़े बड़े संयंत्र रहते हैं उनको लेके, और जो हम उनकी प्रोसेसिंग करते हैं उसको 100% तक ले जाने के लिए हमने PPP मॉडल पर काम करना शुरू किया है। जल्दी ही उस पर हम आगे आ जाएंगे और कंपनी के आधार पे बड़े विस्तृत कार्य योजना बनाकर उसका जो सफाई का काम यहाँ पर किया जाएगा।
1: बहुत सुंदर। और

0: मुझे लगता है जैसे आपने कहा कि लोगों को जोड़ने के लिए जनप्रतिनिधियों के साथ साथ पूरा अमला जाकर लोगों को जागरूक कर रहा है, तो मुझे लगता है छोटे बच्चे और युवाओं की भी बड़ी भूमिका है। बचपन से ही ये बात समझ में आ जाए कि पानी को बचाना है, ऊर्जा को बचाना है, तो ये सारी बातें, उस तरह का कोई काम हम अपने शहर में कर रहे हैं कि हम छोटे बच्चों को इन्वॉल्व करके उनके अंदर ये भाव पैदा कर सकें।
1: अभी स्कूलों में लगातार हम इस चीज़ को अपने उसमें रखते हैं, अपने एजेंडा में रखते हैं, चाहे वो ट्रैफिक की बात हो या जल संरक्षण की बात हो या स्वच्छता की बात हो। हम इसके लिए सारे स्कूलों में DO जो हैं, जिला शिक्षा अधिकारी, और जो मुख्य जिला कार्यपालन अधिकारी हैं, जो CO हैं, उनके साथ मिलकर क्विजेज कराते हैं। साथ ही हमने अभी रन फॉर ग्रीन कराया,
0: जी
1: एक ग्रीन रन का प्रोग्राम कराया, मैराथन का। इसमें भी स्कूली बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। एक इससे भी सबसे अच्छा जो जल संरक्षण और सफाई पे हमने वो किया, स्वच्छता के लिए हमने महासंकल्प कराया, जिसमें 20 मिनट के अंदर 15,500 से अधिक बच्चों ने, नागरिकों ने मिलकर एक 250 मीटर लंबे बैनर पर एक साथ साइन किया,
0: क्या बात।
1: जिससे कि वह वर्ल्ड रिकॉर्ड बन पाया और हमारा नाम जो है पहले शहर के रूप में महासंकल्प अभियान में दर्ज हो सका।
0: हर तरीके से चहुमुखी विकास की ओर आज कोरबा अग्रसर है, और आप जैसे अधिकारी जो दूरदर्शिता के साथ और पूरे संकल्प के साथ इस अभियान को पूरा करने में लगे हैं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे?
1: औद्योगिक शहर के मुख्य सेवक होने के नाते, कमिश्नर होने के नाते, मैंने जो सीखा यहाँ और जो मैंने पाया, मैं अपने सभी युवाओं को, अपने सभी नागरिकों को, और साथ ही जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति से जो भी संबद्ध रखते हैं, यहाँ के सभी सामाजिक संगठनों से यही अपील करना चाहूंगा कि जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री लगातार जल संरक्षण को लेकर सचेत कर रहे हैं, जिस प्रकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे हमें लगातार अमृत मिशन के तहत कई योजनाओं का सरोकार दे रहे हैं, और लोकल स्तर पर भी जो जनप्रतिनिधि लगातार इसको लेकर अपनी आवाज उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमको आगे पानी जो है वो हमको जो एक बोला जाए कि जो हमारा पानी है या जो हमारा जो स्वाभिमान है उससे जुड़ी हुई चीज है, और हमें हमेशा जल को जहां देखो कैच द रेन इफ यू कैन, ये जो सिद्धांत है, कहीं ना कहीं हमारे आसपास, हमारे खेतों में, खलिहानों में, हमारे घरों के आसपास, हमारे ऑफिसेस के आसपास, हमारे प्रतिष्ठानों के आसपास, अगर कहीं भी पानी वर्षा का अगर इकट्ठा होता है तो तत्काल उसको छोटी लागत से और जन सहयोग से, जन सरोकार से उसको इकट्ठा किया जाए, और ये एक स्वप्रेरणा से होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी शहर का विकास जो है वो कंक्रीट से नहीं होता, वो होता है पानी की सफाई से, वो होता है वहां पर कितने पेड़ पौधे हैं उनके हिसाब से, वो होता है अगर वहाँ जो सबसे पिछली पंक्ति का पिछला व्यक्ति है उसको स्वरोजगार के कितने साधन उसको मुहैया कराया जा सके, वहां पर ग्रीन एनर्जी के और सोलर एनर्जी के कितने लोगों ने अपने घरों में और अपने आसपास उसका प्रयोग करना शुरू किया है। इस तरीके से एक शहर जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़ता है। भारत में शहर तो बहुत हैं, लेकिन उन शहरों की बात किया जाए जिसपे हम अगर देखें कि विकास के सही पैमानों पे वो अपने आप को चरितार्थ कर पाए हैं, तो बहुत कम शहर रह जाते हैं। तो क्यों ना इसको हम ऐसा करें कि सारे शहर इस दौड़ में शामिल हो सकें, और कोरबा ही नहीं, कोरबा की तरह बाकी जितने छोटे नगर हैं, छोटे शहर हैं, वो भी कैच द रेन का हिस्सा बने, सेल्फ एक्वीफायर मैनेजमेंट का अपने यहाँ उपयोग करें, और साथ ही जो नागरिक सहभागिता से उनको आगे बढ़ाएं, क्योंकि वो कहते हैं कि एक पत्थर तबीयत से उछालो यारों, जो आसमान में भी सुराख कर सकते हैं, और कभी भी इस पे घबराना नहीं है, ये एक आंदोलन है, ये निरंतर चलने वाला आंदोलन है। हो सकता है इस पे कुछ विपत्तियां हैं, लेकिन वो रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता है ना कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते हैं, कभी नहीं धीरज खोते, कांटों पर राह बनाते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं, जो लाक्षागृह में जलते हैं वही सूरमा निकलता है।
0: वाह वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर। और यही विकास का सच्चा पैमाना है कि समाज के आखिरी व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचे, और सतत विकास का ये प्रयास जारी रहे पूरे देश के लिए, सभी लोग उसमें शामिल हों, और वो सुख शांति जो हम आने वाली पीढ़ियों को दे सके, स्वच्छ पानी और हवा के रूप में, हरियाली के रूप में ये सौगात हम दे सकें। शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत ये काम आपके द्वारा और आगे पहुंचे, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू मैडम, लॉट ऑफ थैंक, लॉट ऑफ।

कैंपेन और कोरबा की बदलती तस्वीर। नगर निगम आयुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री आशुतोष पांडे से बातचीत अभी आप सुन रहे थे। भेंटकर्ता और प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM 103.2 MHz पर और प्रस्तुत है कार्यक्रम रजनीगंधा।

श्रोताओं, आज 9 अगस्त का यह दिन एक ऐतिहासिक दौर की याद दिलाता है। यह वो दौर था जिसने अंग्रेज़ी हुकूमत की नींव हिला दी थी। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया गया। गांधी जी ने देशवासियों को अमर संदेश दिया था, करो या मरो। यह आंदोलन भारत की स्वतंत्रता की निर्णायक लड़ाई बन गया। देश के कोने कोने में स्वतंत्रता की अलख जगी। लाखों भारतीयों ने जेल की यातना सही और अपने प्राणों की आहुति देकर आज़ादी की मशाल को प्रज्वलित रखा। इन अमर बलिदानियों को नमन।

सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुल सिता हमारा। श्रोताओं, भारत छोड़ो आंदोलन ने देश के कोने कोने में स्वतंत्रता की ऐसी अलख जगाई, ऐसी चेतना जगाई कि लाखों भारतीयों ने अपनी सुख सुविधाओं का त्याग कर मातृभूमि की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। देश प्रेम और राष्ट्र गौरव की

भारत छोड़ो आंदोलन केवल एक राजनीतिक आंदोलन नहीं था, बल्कि यह जन जन की चेतना का आंदोलन था। छात्र, किसान, मजदूर, महिलाएं और युवा सभी एक स्वर में स्वतंत्रता का उद्घोष कर रहे थे। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध उठी यह आवाज़ पूरे देश में गूंज रही थी।

1942 के आंदोलन में अनेक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन आंदोलन रुका नहीं। जनता स्वयं नेतृत्व बनकर आगे बढ़ी और स्वतंत्रता के लौ को प्रज्वलित रखा। यही वह संघर्ष था जिसने अंग्रेजों को यह एहसास करा दिया कि भारत पर अब अधिक समय तक शासन करना संभव नहीं है। हमारे देश के अमर वीर सपूतों के बलिदान से हमें आज़ादी मिली। प्राणों की आहुति देकर उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को स्वतंत्रता का उपहार दिया।

श्रोताओं, भारत छोड़ो आंदोलन की गूंज आज भी हमें राष्ट्र निर्माण, एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए प्रेरित करती है। आज हमारा कर्तव्य है कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों के भारत के निर्माण में अपना योगदान दें।

भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ हमें यह संदेश देती है कि राष्ट्र की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। और इसी के साथ कार्यक्रम रजनीगंधा से हमें लीजिए अनुमति। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर 8:45 होने वाले हैं। और अब समाचारों के लिए हम जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, याद रखें समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेताओं से बातचीत की, लोगों से भारतीय खिलाड़ियों का हमेशा

शिक्षा उत्साह वर्धन करने का आग्रह किया। देश भर में कई कार्यक्रमों के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों से अभियान में शामिल होकर विकसित भारत के लिए फिर से संकल्प लेने की अपील की। झारखंड सरकार अनियमितताओं के आरोपों के बाद जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने पर सहमत। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा आंदोलन जारी रहेगा। जेपीएससी के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा ऑपरेशन

0: आंदोलन जारी रहेगा। जेपीएससी के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति के तहत देशवासियों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ने लाभार्थियों को 1 करोड़ से अधिक घर सौंपकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। और तूफान डॉल्फिन चीन के पूर्वी तट पर पहुंचा, 1300 से अधिक उड़ानें रद्द और 3 लाख लोग विस्थापित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर इस वर्ष के राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग खेलों से जुड़ते हैं वे जीवन में आगे बढ़ते हैं। उन्होंने देशवासियों से खिलाड़ियों का हमेशा उत्साह बढ़ाने की अपील की।
1: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
0: स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीतकर पदक तालिका में 4th स्थान पर था। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। आसमान को पाना है, आसमान से आगे जाना है। इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने वीर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति वंदे मातरम पर तिरंगा संगीत कार्यक्रम में भी शामिल हुए। उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े भारत छोड़ो आंदोलन का स्मरण किया।
2: To launch this campaign today on the August Kranti Divas as we commemorate the Quit India Movement of 1942. Millions of Indians responded to his call and rose against the British with the unwavering resolve of do or die on this day. It is therefore deeply significant that we launch the Har Ghar Tiranga campaign from the historic islands on this historic day.
0: गृह मंत्री अमित शाह ने पुदुचेरी में तिरंगा यात्रा को रवाना किया। हजारों लोगों ने इस यात्रा में तिरंगे के साथ भागीदारी की। मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर सहित देश भर में आज से हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत सप्ताह भर के कार्यक्रम शुरू हुए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: झारखंड सरकार ने आंदोलनरत छात्रों की अधिकांश मांगों पर सहमति जताई है। राज्य के मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने कहा कि सरकार 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और वर्ष 2023 से 25 की बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमत है। आज सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद में मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ईडी जांच और आपराधिक मामलों की सीआईडी जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की भी बात कही गई है। है। परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए आईआईटी आईएसएम आईआईएम रांची और एक्सएलआरआई के विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाएगी। छात्रों ने कहा कि सीबीआई जांच की मांग पर कोई समझौता नहीं होगा। इस बीच झारखंड लोक सेवा आयोग के 3 मौजूदा सदस्यों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है।

0: तीनों को सीआईडी ने कल पूछताछ के लिए तलब किया है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को ये स्पष्ट संदेश दिया कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में ये बात कही।
2: पहलगाम में धर्म पूछकर हमारे निर्दोष नागरिकों पर कायराना आतंकी हमला हुआ था, तो उसके बाद हमारी बहादुर सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी। हमने पाकिस्तान में बैठे आतंकियों और उनके सरपरस्तों को नेस्त नाबूद कर दिया और सारी दुनिया को यह बता दिया कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए वह किसी हद तक जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने दुनिया को बताया कि हमारी नारी शक्ति के सिंदूर की रक्षा करने के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं।
1: गृह मंत्री अमित शाह पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान किए जाने के समारोह में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करना किसी भी अनुशासित पुलिस बल के जीवन के सबसे गौरवशाली क्षणों में से है। गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध न्याय निश्चित करना है।
3: ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये 3 पिलर पर खड़ी की गई है।
1: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में वर्तमान चीनी मौसम के लिए चीनी के भंडार की स्थिति, उत्पादन और जरूरतों का आकलन किया गया। श्री जोशी ने चीनी का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए इसकी उपलब्धता की सघन निगरानी और समय समय पर आवश्यक उपाय करने पर बल दिया ताकि पूरे मौसम के दौरान चीनी की स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए से संबंधित मामलों को लेकर शिक्षा मंत्रालय के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री जोशी ने संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने, प्रक्रिया सुचारू बनाने और विद्यार्थियों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। श्री जोशी ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्यान मजबूत, पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था बनाने पर है ताकि प्रत्येक विद्यार्थी की आकांक्षा पूरी हो सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1 करोड़ से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें करीब 1 करोड़ मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
4: दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी में स्वीकृत 2,09,000 आवासों में से 2,03,000 से अधिक आवास महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए 16,600 से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं, जबकि करीब 22,000 आवास अनुसूचित जाति, 14,000 से अधिक अनुसूचित जनजाति और 75,000 से अधिक आवास अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों को आवंटित किए गए हैं। इस योजना में आवासों के स्वामित्व में महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। पीएम आवास योजना शहरी की शुरुआत वर्ष 2015 में पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं से युक्त हर मौसम के लिए उपयुक्त पक्के मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। आनंद कुमार के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। 31 जुलाई को हासिल की गई ये उपलब्धि वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। सौर ऊर्जा प्रमुख विकास इंजन बनी हुई है। इसकी वर्तमान स्थापित क्षमता लगभग 165 गीगावाट है, जो वर्ष 2014 में मात्र 2.8 गीगावाट थी। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान में हुई घटना की जांच कर रहा है। इसे गंभीर घटना के रूप में दर्ज किया गया है। दोनों पायलट की मादक पदार्थों के सेवन की जांच की गई। जांच पूरी होने तक दोनों पायलट को ड्यूटी से

0: हटा दिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि जांच और अंतिम रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। जनजातीय लोगों के अधिकारों, संस्कृति, परंपरा और योगदान को मान्यता देने के लिए आज दुनिया भर में विश्व जनजातीय दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1994 में जनजातीय लोगों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इस दिवस की शुरुआत की थी। इस वर्ष का विषय है जनजातीय धाय सम्मान, जीवन और देखभाल का संरक्षण। इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। हरियाणा में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित पवित्र कलश वंदन यात्रा आज कंबोपुरा गांव पहुंची। बड़ी संख्या में लोगों ने संत श्री रविदास मंदिर में यात्रा का स्वागत किया। ये यात्रा गुरु रविदास की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश के काशी स्थित सीर गोवर्धनपुर से शुरू हुई थी। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, आसाम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। ओडिशा में एक बार फिर तेज बारिश होने के बाद बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
1: उड़ीसा में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे कई जिलों में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इस सीजन में बैतरणी नदी में तीसरी बार बाढ़ आई है, जिससे जाजपुर और भद्रक जिलों के कुछ हिस्सों में फिर से पानी भर गया है, जबकि बैतरणी की एक शाखा कानी नदी के कारण जाजपुर जिले में फिर से बाढ़ आ गई है। IMD ने पूरे राज्य के लिए येलो वार्निंग जारी की है और अनुमान लगाया है कि उत्तरी उड़ीसा, पश्चिम उड़ीसा के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के आसपास के इलाके में कम दबाव वाले सिस्टम के कारण भारी बारिश होगी। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: चीन के पूर्वी तट से तूफान डॉल्फिन के टकराने से झेजियांग और फुजियान प्रांत प्रभावित हुए हैं। मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच शंघाई के दोनों हवाई अड्डों ने 1300 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी हैं और 3 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। तूफान के तट से टकराने के बाद उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और धीरे धीरे कमजोर पड़ने की संभावना है। उज्बेकिस्तान में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुंग पंडियन ने 65 किलो वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। महाराजन ने आज कुल 285 किलो का भार उठाकर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेताओं से बातचीत की, लोगों से भारतीय खिलाड़ियों का हमेशा उत्साहवर्धन करने का आग्रह किया। देश भर में कई कार्यक्रमों के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों से अभियान में शामिल होकर विकसित भारत के लिए फिर से संकल्प लेने की अपील की। झारखंड सरकार अनियमितताओं के आरोपों के बाद JPSC प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने पर सहमत। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा आंदोलन जारी रहेगा। JPSC के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति के तहत देशवासियों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। और तूफान डॉल्फिन चीन के पूर्वी तट पर पहुंचा, 1300 से अधिक उड़ानें रद्द और 3 लाख लोग विस्थापित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi interacts with medal winners of Commonwealth Games 2026, urges citizens to always cheer for Bharat. Har Ghar Tiranga campaign begins with multiple events across the country. Vice President and Prime Minister appeal to people to renew commitment to Viksit Bharat by joining this movement. Jharkhand government agrees to scrap JPSC preliminary exam over allegations of irregularities. Protesting students say agitation will continue. 3 JPSC members resign from their posts. ڈیفینس منسٹر راجناتھ سنگھ اسرٹس آپریشن سندور سینڈ گلوبل میسج دیٹ انڈیا ول گو ٹو اینی ایکسٹینٹ ٹو پروٹیکٹ اٹس سٹیزنز ود زیرو ٹالرنس اپروچ ٹو ٹیررزم پردھان منتری آواس یوجنا اربن ہیز کراس میجر مائل اسٹون ود اوور 1 کروڑ ہاؤس

लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में सुनिए बॉबी फिल्म का गाना। गीत विठल भाई पटेल ने लिखा है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में कामचोर फिल्म का गाना, गीत इंदिवर का है, संगीत राजेश रोशन का।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की दीजिए अनुमति, और आप सुनते रहिए विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं।

0: यार जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉर्ट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
1: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

सावन कुमार फिल्म दर्शकों के लिए फिल्मों की बहार और गीतों की बौछार लेकर आए। फिल्म जगत का एक जाना पहचाना और प्रतिष्ठित नाम है निर्माता निर्देशक गीतकार सावन कुमार टाक का। आज ये कार्यक्रम इन्हीं पर केंद्रित है।

सन 1972 में आई फिल्म गोमती के किनारे। इस फिल्म के निर्माता निर्देशक थे सावन कुमार। सामाजिक ताने बाने को दर्शाती ये फिल्म कई मायने में महत्वपूर्ण है। ये फिल्म मीना कुमारी की आखिरी फिल्म थी और उनके मरणोपरांत रिलीज हुई थी। इस फिल्म में सावन कुमार और मीना कुमारी अमिताभ बच्चन को मुमताज के नायक के रूप में भूमिका निभाने के लिए विचार कर रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुमताज के नायक बने समीर खान। संगीत आर डी बर्मन का था। ये फिल्म उतनी सफल नहीं हुई जितनी उम्मीद थी। आइए सुनते हैं गोमती के किनारे, इस फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

बात करते हैं सन 1967 की फिल्म नौनिहाल की। इस फिल्म की कहानी लिखी थी सावन कुमार टाप ने और इस फिल्म को प्रोड्यूस भी किया था। फिल्म में कलाकार थे संजीव कुमार, बलराज साहनी और इंद्राणी मुखर्जी। गीत कैफी आजमी के थे और संगीत मदन मोहन का था। निर्देशक राज मार्बो।

लेखक, निर्माता और निर्देशक के रूप में सावन कुमार ने 1974 में रिलीज हुई एक बेहद संवेदनशील फिल्म बनाई हवस। अनिल धवन, नीतू सिंह, बिंदु, विद्या सिन्हा और विनोद मेहरा जैसे कलाकारों ने इस फिल्म में काम किया था और ये एक सफल फिल्म थी। इस फिल्म के लिए लिखे सावन कुमार के गीत को आइए सुनते हैं, जिसे संगीतबद्ध किया है उषा खन्ना ने।

सावन कुमार का जन्म 9 अगस्त 1936 को जयपुर में हुआ। वैसे अमूमन फिल्मों में हीरो बनने की चाहत से लोग मुंबई आते हैं। सावन कुमार भी अपवाद नहीं थे। कोशिश की रोल पाने की, सफल नहीं हुए तो इन्होंने फिल्म बनाने की ही सोच ली। जैसा सोचा उसे करने के लिए रुपयों की जरूरत थी। अपनी बहन से मदद मांगी, पर उनकी आनाकानी के बीच इनके ब्रदर इन लॉ ने इनकी कोशिश को सहारा दिया और सावन कुमार ने फिल्म बनाई नौनिहाल। संजीव कुमार को अपनी फिल्म में पहले पहल रोल देने वाले सावन कुमार।

एक गीतकार के रूप में भी हम सावन कुमार को जानते हैं। अपनी कई फिल्मों में इन्होंने गीत लिखे हैं, साथ ही अन्य फिल्मकारों की फिल्मों के लिए भी इनके लिखे गीतों ने श्रोता दर्शकों को मुतासिर किया है। शत्रुघ्न सिन्हा और अभिनेत्री पूनम द्वारा अभिनीत 1973 की इनकी फिल्म सबक का आइए ये गाना सुनते हैं।

सावन कुमार ने 2004 की फिल्म कहो ना प्यार है के लिए कुछ गाने लिखे और इसी साल देव फिल्म के लिए भी इन्होंने गाने लिखे। आइए सुनते हैं कहो ना प्यार है का ये गाना।

सावन कुमार टाक ने अपनी ही फिल्मों में कई गीत लिखे जो लोकप्रिय भी हुए, जैसे फिल्म सौतन की बेटी का गाना हम भूल गए और फिल्म बेवफा से वफा का ये गाना।

एक थिएटर आर्टिस्ट के रूप में एक कलाकार लोकप्रियता हासिल कर रहा था। ऐसे ही एक अच्छे वक्त में सावन कुमार ने उन्हें ड्रामा करते हुए देखा और इतने प्रभावित हुए कि अपनी पहली ही प्रोडक्शन नौनिहाल में कास्ट कर दिया और उनके मूल नाम हरी भाई जरीवाला से बदलकर एक नया और फिल्मी नाम और उम्दा नाम दिया उम्दा कलाकार को, जिनका नाम है संजीव कुमार। वैसे ही सावन कुमार ने जूनियर महमूद को भी ब्रेक दिया। संगीतकार उषा खन्ना के साथ इनका फिल्मी और व्यक्तिगत जीवन काफी लंबा चला। हवस से साजन बिन सुहागन तक कई हिट गाने इस साथ ने दर्शक श्रोताओं को दिए। मधुबन

सावन कुमार लिखते हैं, साजन बिन सुहागन मेरे लिए एक विशेष फिल्म थी क्योंकि ये मेरी पहली गोल्डन जुबली फिल्म थी। साजन बिन सुहागन फिल्म से जुड़ा हुआ एक किस्सा सुनाते हुए सावन कुमार कहते हैं कि उन दिनों कोई भी डायरेक्टर राजेंद्र कुमार और नूतन की जोड़ी को नहीं चाहता था। मैंने सोचा इन दोनों ही कलाकारों ने अपने दिनों में एक साथ काम नहीं किया है, क्यों ना ये एक साथ आएं। मैं राजेंद्र कुमार से मिलने उनके घर गया। उनकी पत्नी ने बताया अपने मित्र के साथ हैं, जाइए। वहां जाकर देखा तो राज कपूर थे। उन्होंने सोचा ऐसे ही मिलने आया होऊंगा। तब बात रोशन हो गई जब मैंने 11,000 रुपए का चेक साइनिंग अमाउंट के रूप में राजेंद्र कुमार को दिया। दोनों खुश हुए और अचंभित भी। राज जी ने कहा, मैं इनका इतना घनिष्ठ दोस्त होने के बाद भी इन्हें कास्ट करने की नहीं सोच पाया था।

सावन कुमार के साथ अभिनेत्री रेखा ने 5 फिल्में की। सावन कुमार एक वाकया शेयर करते हुए कहते हैं कि बात हवस फिल्म के बनने की प्रक्रिया के दरमियान की है, जब मैं आओ यारो गाओ गीत की रिकॉर्डिंग कर रहा था, जिसके लिए मैंने अभिनेत्री फरियाल को चुना था। ये गाना रेखा को बहुत पसंद आया और उन्होंने मुझसे चांस देने की बात कही। मैंने रेखा से ये कहकर समझाने की कोशिश की कि ये वैम्पिश नंबर है। रेखा ने एक ना सुनी और शूटिंग के दिन अपनी हेयर ड्रेसर मेकअप आर्टिस्ट की मदद से पूरी तरह तैयार अपने अंदाज की ड्रेस कॉस्ट्यूम के साथ हाजिर हो गई। ये सब देखकर मैं कुछ न कह सका, फरियाल को मनाया और श्रोताओं ये गाना फिर रेखा के हिस्से आया।

सावन कुमार टाक ने अपनी प्रतिभा, रचनात्मकता और फिल्म बाजार में अपनी अहमियत अपनी फिल्मों से साबित की। 1972 से लेकर 2006 तक इनके द्वारा निर्मित निर्देशित फिल्मों ने दर्शकों का खूब मनोरंजन

जन किया। वो बेवफा साजन की सहेली लैला, प्रीति, प्यार की जीत, 1989 तक सौतन की बेटी जैसी फिल्मों का आपने निर्माण किया। फिर आई 1991 में सलमान खान द्वारा अभिनीत फिल्म सनम बेवफा। इस गीत को सावन कुमार ने लिखा और संगीत महेश किशोर का है।

सन 1992 में बेवफा से वफा, खलनायिका, चांद का टुकड़ा, सनम हरजाई, सलमा पे दिल आ गया, मदर सावन कुमार द्वारा निर्मित और निर्देशित फिल्में थी। सन 2003 में सावन कुमार टाक की फिल्म आई दिल परदेसी हो गया और सन 2006 में सावन द लव सीजन। सावन कुमार एक फिल्मकार के रूप में निश्चित रूप से अद्वितीय है। आज का ये कार्यक्रम इन्हीं पर केंद्रित था।

0: आलेख और स्वर जी श्याम का, संपादन आकांक्षा सिंह का, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। महक रही है जमीन चांदनी के फूलों से, खुदा किसी की मोहब्बत पे मुस्कुराया है। उसे किसी की मोहब्बत का एतबार नहीं, उसे जमाने ने शायद बहुत सताया है।

उड़ान वालों, उड़ानों पे वक्त भारी है, परों की नहीं अब हौसलों की बारी है। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है।

उदास आसमां है, दिल मेरा कितना अकेला है, परिंदा शाम के पुल पे बहुत खामोश बैठा है, तुम्हारे शहर के सारे दरीचे तो सो गए, लेकिन हवा से पूछना दहलीज पे ये कौन जलता है।

0: अच्छा यह गीत जारी रहेगा इस अंतराल के बाद, और अंतराल के बाद जब हम आएंगे आपके लिए लाएंगे ये नगमा।
1: बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद कर।
0: हम अभी हाजिर हुए

बताना, मैं उनकी आंखों में हूं। वो लोग फूल समझकर मुझे मसलते हैं, उदास आंखों पे आंसू नहीं निकलते हैं, ये मोतियों की तरह सीपियों में पलते हैं।

याद किसी की चांदनी बन कोठे कोठे उतरी है, याद किसी की धूप हुई है, जीना जीना उतरी है।

0: आज के छाया गीत में थे सेक्सोफोन पर आधारित कुछ गाने। इन सभी गानों में मनोहारी सिंह ने सेक्सोफोन बजाया। फिल्मों के नाम आपको बता दें।
1: दुनिया उसे के जमाना उसे का।
0: फिल्म कश्मीर की कली, एसएच बिहारी, ओपी नैयर।
2: आगे भी जाने न तू।
0: फिल्म वक्त, साहिर लुधियानवी, रवि।
3: वो भूली दास्तां लो फिर याद आ।
0: फिल्म संजोग, राजेंद्र कृष्ण, मदन मोहन।
4: आवाज देके हमें तू बुला।
0: फिल्म प्रोफेसर, हसर जयपुरी, शंकर जयकिशन।
5: बेदर्दी बाल मां तुझको मेरा मन याद करता है।
0: फिल्म आरजू, हसरत जयपुरी, शंकर जयकिशन। आज का छाया गीत इतना ही। इजाजत दीजिए यूनुस खान को। नमस्कार।

एक आवाज जिसमें है जोश, जुनून, नशा। एक आवाज जो आपको अपने साथ बहा कर ले जाती है। एक आवाज जिसके साथ जुड़ी है

0: 12 अगस्त दिन में और रात में 11 बजे
1: पहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन संघर्ष अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गिवारीकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जयो कहासे हुजूर।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

0: जाए रात।
1: विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM 103.2 MHz पर 11 बजे हैं। और अब समाचारों के लिए हम जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की। पदक विजेताओं ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान खेलों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया है और उनकी सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी। श्री मोदी ने एक वीडियो संदेश साझा करते हुए कहा कि जो खेलेंगे वे आगे बढ़ेंगे और उन्होंने नागरिकों से हमेशा भारत का उत्साह बढ़ाने की अपील की।
1: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की
2: जय।
1: भारत माता की
2: जय।
1: भारत माता की
2: जय।
0: इस मौके पर युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया और युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़ से मौजूद थे। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित हुए इन खेलों में भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में कुल 39 पदक जीते, जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।
3: घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा।
0: इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देशभर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में ये बात कही। श्री सिंह ने भारतीय रक्षा बलों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों और उनके आकाओं का सफाया किया और भारत पर बुरी नजर डालने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1 करोड़ 25 लाख से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1 करोड़ से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें करीब 1 करोड़ मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। राज्य के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि सरकार 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और वर्ष 2023 से 25 की बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमत है। आज सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ईडी जांच और आपराधिक मामलों की सीआईडी जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की भी बात कही गई है। सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशक राहुल नवीन का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। ये कार्यकाल इस महीने की 13 तारीख से शुरू होकर अगले वर्ष 13 अगस्त तक रहेगा। सेवा में ये विस्तार 31 जुलाई 2027 को उनकी तय सेवा निवृत्ति के बाद भी जारी रहेगी। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने राहुल नवीन का कार्यकाल बढ़ाने को मंजूरी दी है। वे 1993 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Prime Minister Narendra Modi today met the medal winners of the Commonwealth Games 2026 at his residence in New Delhi. During the interaction, the medal winners shared their experiences from the games with the Prime Minister. In a social media post, Mr. Modi said that each one of them has made the nation proud through their exceptional performances and their success will motivate many youngsters. India finished at the fourth spot on the medal table at the games held in Glasgow, Scotland between 23rd of July to 2nd of August. Indian athletes won 39 medals, including 13 gold, 17 silver and 9 bronze across various sporting disciplines. The Har Ghar Tiranga campaign is being celebrated nationwide to foster a sense of patriotism among citizens, strengthen national unity and promote India's cultural heritage.